अंबर कन हर छाया बर्फ परे सरताल चात्रिक जो तरसत रहे तिनको कौन हवाल। कबीर चके जो निस बीछ रहे आए मिले परबात जो नर

काल पाछे कछु न होए बात जो सिर पर आवे काल। कबीर ऐसा जंत इक देखिया जैसी तोई लाख, दिसे चंचल बहुगुना मत हीना ना पाक। कबीर मेरी बुद्ध को जम ना।

सतगुर क्या करे जो सिखा में चूक, अंधे एक ना ला गई जो बांस बजाए फूक। कबीर है गए बाहन सगन कन छत्रपति की नार, ताश पटन करना।

हमरा को नहीं हम किस हूँ के नाहे जिन ए रतन रचाया तिस ही माहे समाए कबीर की चढ़ आटा गिर परया कि छू न आयो हाथ पीसत।

कारवी केवल काची धात साबत रखे ता राम भजे नाहे ता विनती बात कबीर केसो केसो कुकिया ना सोए सारे राम।

केवट बिरला संत कबीर राम रतन मुख को श्री पार्थ आगे खोले कोई आए मिले जो गाती ले गो महंगे मोल कबीर राम नाम जान्यो नहीं।

जीवन के पंखी चले दिसावरी बिरखा सुकल कलंक। कबीर साधु संग पर आपकी लिखिया होए लिलाट, मुकुट पदार्थ पाये खाक न अवकट काट। कबीर एक करी आदि हूं ते आदे।

खेलत खेलत हाल करे जो कुछ होए ता होए कबीर जो तुम्हें साध तिरम की ताके से तू खेले काकी।

ਚੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਪਾਤੇ ਬੰਨ ਉਠਾਈ ਪੋਟਲੀ ਕਿੱਥੇ ਵੰਜਾਂ ਕੱਟ।

खल डूंगर पवे ओमन अज करी दे कूजड़ा सह को माखी ओम राती वड्डियां कुक उठन पास सिज तिना दा जीरिया जिना विदानी आस करीदा जे मैं होंदा वारिया निता आयड़िया फेरा

ओ लबी वाते थप्पड़ तू मैं क्या हो चिकर डुबे हाथ फरीदा नंदी संत नारायण वड़ी सी मोई आते।

हंस न कोदरा खाए, चल चल गईया पंखिया गिनी वसाए तल, फरीदा सर परिया पी चलसी थके कवले कल। फरीदा इत सिराने तोए सवन कीड़ा लड़ियो मास, केतड़िया जुग वापरे इकट पया पास। फरीदा पन्नी कड़ी सवन वी टुटी नागर लाजे, अजराइल फिरिश्ता कै कर नाथी अज। फरीदा पन्नी कड़ी सवन वी टूटी नागर लाजे, जो सज्जन कोई

फरीदा खालक खलक में खलक वसे रब माही मंदा किसनो आखी है जा किस दिन कोई ना है फरीदा जे जे नाला कपया जे गल कपे दुख पवन ना इकी मामले सहाना इकी दुख चबन चलन रतन से सुनियर बह गए हेरे मिट्टी पासे जानी चल गए फरीदा बुरे दा पला कर गुस्सा मन न हंडा।

और अब खजूरी पक्या माके नहीं वहन जो जो बन जाए दीहड़ा तो उम्र हथ पवन खरीदा तन सुखा पिंजर किया कलिया खूंडे काज अजय सुरज न बहुड़ो देख बंदे के पाज काजा करंग तंडोलिया सगला खाया मास मत हो फिर देखन की आस कागा चूड़ ना पिंजरा बसे ता उदर जाहे जित पिंजरे मेरा सौ वसे मास न तिदू खाहे फरीदा गोर मिमानी सड करे निकरिया कर आओ।

कमल आखी से था बंदगी चलन अज के कल खरीदा मोतैदा बन्ना एवें दिसे ज्यों दरिया वैता अगे दोजक तपिया सुनिए हूल पवे कहा इतना नू सब सोजी आई इक फिर दे

क्या चलै किस नाल इक जा बंदे नाल हन कितना सुतियां दे उठाल तू देंदिए सुहाग को सौ तन काई कोर जिन्ना नाव सुहागनी तिन्ना छाप न होर सबर मंज कमान ए सबर का नीहण सबर संदा बाण खालक खता ना करी सबर

ए सिर तल उपर पाए मैं जानिया वड हंस है ताने की पासंग जो जाना बग बकुड़ा जन्म न पेड़ी अंग क्या हंस क्या बगुला जाको नदर करे जो किस पावे नानका सागो हंस करे सरवर पंखी हे परो फाही वाल पचास तन लहरी गद किया सच्चे तेरी आस कम को अखर कम गुण कम को मणिया मंते कम को वे सोहा करी जित वस आवे कंत निहन को अखर खन गुण जो बामणिया मंते के प्रै पैणी वेश कर ता वस आवी कंत मत होंगी हो ताण होंदे हो निताणा अण होंदे आप वंडाए को ऐसा भगत सदाए इक सिक्का ना गालाए सबना मैं सच्चा तनी ह्याओ न कही ठाहे मानक सब अमोल वे सबना मन

एक आन नहीं तुम भरे हर अंत नहीं पारावार कौन है करे विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भगत दर तुले ब्रह्म संसार एक दिन क्या बखाने हाँ के बल बल बल बल सद बल हार अमृत प्रवास हर अतुल भंडार भर परे ही ते परे अपर अपार पर आपनो भावन कर मंत्र न दूसरो धर उप तो कर लो एक निमत तो घर आन नई समसर उजियारो निर्मल कोट पर अथते जाए नाम लिए हर हर जन नानक भगत दल कुल ब्रह्म समसर एक दिन क्या बखाने हाँ के बल बल बल बल सद बल हार।

जन नानक भगदर तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बसन है हाके बल बल बल बल।

निरंकार आकार अचल पूरन अविनाशी हर्षवंत आनंद रूप निर्मल विगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं।

धन धन ते धन जने जे कृपाल हर हर भयो हर गुरु नानक जिन परसो से जन्म मरण दो ते रहो सत सत हर सत सत सत सत भणिए दूसर आन न आवर पुरख पुरातन सुनिए अमृत हर को नाम लेत मन सब सुख पाए जे रसन साखो तै जन तृप्त अधाए जे ठाकुर सो परसन भयो सतसंगत तें प्यार हर गुरु नानक जिन परसो तिन सब कुन कियो उधार सच सभा दीवान सच सचे पै धरयो सचे तख्त निवास सच तथावस करयो सच सुन जो

हर तारन तरन समरथ सवैद कुल समूह उदाहरण सो चित चेत अचेत जाम सत संगते भरम अंधेर मोयो कत धो मूरत घड़ी सापल सिमरन राम नाम रखना संगलो होतो काज अलग सुख बंधन कोट जन्म कहा दुख भाव सिखा संत नाम भजनान के राम रंग आत्म स्योरों रंच करेत खेत तन निर्मत दुर्लभ दे सवार भरी खान पान सोधे सुख भुंचत संकट काट विपत हरी मात का भाई अर बंधते बूधन के सब सोज परे बरमान होवत दिन प्रतिनित आवत निक

नानक गाठ भरम भरी। रे मन मूस बिलावे गर्वत कर्तव करत महाम भुना। संपत धौल धूल संग झूलत माया मगन भरमत घुगना। सुत बनता साजन सुख बंदते तासु मो बड़ो सुघना। बोयो भीत अहं मम अंकुर बीतत औध करत अधना। मृत मंजार पसार मुख निरखते भुंचत भुगत भूख भुखना। सिमर गोपाल दयाल सतसंगत नानक जगे जानत सुपना। देहे न देहे।

काष्ट बहु खटुआ भस्म लगाए तीरथ बहु भ्रम के सूखम दे बंधे बहु जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावती जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चक्र करत सोम पाका अनक भात फाटे कर खटुआ सोये मले तले ते एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक मन पुरख दयाय वरदाता संत सहार सदा दिखयाता

उन मर्म चार फट दर्शन ब्रह्मादत सिमरंत गुणाम गावे गुण शेष सहस जेदा रस आद अंत ले।

भगत दीन गुण रही सहज आत्म रंग माने, योग ध्यान गुरु ज्ञान बिना प्रभ और न जाए। सुखदेव परिखत गुण रहे गौतम रिख जस गायो, कब कल सुजस ना।

करतार करह समरथो। सतगुरु धन नानक मस्तक तुम धरयो जिन हथो, तै धरयो म

सतसंगत सहज सारे जागीले गुर बिचारे निमरी भूत सजीव परम प्यारे कौटीरत कल सहारे सतत दीप मझारे लेना जगत गुर पर समुरारे तै तो दिलियो नाम अपारे बिमल जास बिठारे साधक सिद्ध

मन हर हर दर्श समानी आत्मावंत ज्ञानी जाने अकलगत गुरु परवानी जाके दृष्ट अचल छानी बिमल बुद्ध सुठानी पैर शील सना।

लैणा जगत गुरु परस मुरार। दृष्ट भरत कम हरन दहन अघ पाप परासन। सबद सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन। लोभ मोवश करण शरण जाचिक प्रित पालन। आत्मरत संग्रहण कहन अमर।

गरल नाश कन नठे अम्यो अंतरगत पियो रिद बिगास जागे अलग तल धरी जुगंतल सतगुर सहज समाद रव्यो सामान निरंतर उदारो चित दारद हरन तिखंते कलमल प्रसन सब रंग सहज कल उचरे जस जमतो लैने रसने नाम औखद नाम आधार अर नाम समाज सुख सदा नाम निशान सो है रंग रतो नाम सो कल नाम सुर नरे बो है नाम परस जन पायो सत प्रगटो रवलो दर्शन परसे गुरु कैन अठसठ मजन हो सच तीरथ सच स्नान अर भोजन भाव सच सदा सच भाषंत सो है सच पायो गुर सबर सच नाम सुगंती बो है जिस सच संजम वर्त सचे कब जन कल्व खाने दर्शन परसिए गुरु कै सच जन्म परवाणी अमे दृष्ट शुभ करे हरे अघ पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोवश करे सदै बल सदा सुख मन वसै दुख सन

तीरथ रव तिर प्रगण संसारे सात सरोवर मवल सराब। उत्तर दक्षिण पुग अर पश्चिम जय जयकार जपंत नरा। हर नाम रसन गुरुमुख बरदायो उल्ट गंग पश्चिम।

कोई नाम अचल भगते भवतार अमरदास गुरु को पुरिया चित नाम लागते तुलसे धयावे जसी कपी सर मनवसया सोई नाम सिमर गंगे पितामे चरण चित अमृत रसया चित नाम गुरु गंभीर गुरु मत सत कर संगत उदरिया सोई नाम अचल भगते भवतार अमरदास गुरु को पुरिया नाम कित संसार किरण रहो सुर कर साथे उत्तर दक्षिण पूब देश पश्चिम जस भाके जन्म तयो सके अत जित नाम हर दे निवासे सुर नर गण गंधर्व छे दर्शन आशा से भलो प्रसिद्ध तेजो तनु कल जोड़ कर ध्यायो सोई नाम भगत भव जल हरन गुर अमरदास तय पायो नाम ध्यावे देव कैपीश अर साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मंड धारे जय नाम समाधेव हरक सोग समतर सहारे नाम शिरोमण सर्व में भगत रहे निवधार सोई नाम परार्थ अमर गुरु तुस दियो करकार सत सूरो शील बलवंत सत भाय संगत सघन गुरु मत निर्वैर लिया जिस धीरज धुर धवल भुजा सहित बैकुंठ बीना परचे संत प्यार जय कर तारे संजोग सतगुरु सेव सुख पायो अमर गुरु की को जोग नाम नावन नाम रस खान अर भोजन नाम रस सदा चाय मुख मिष्ट बाणी धन सतगुरु सेवे जिस पसाए

हृदय बसो अत हो सोए रस नहीं जातो। मुखों भगत उतरे अमर गुर इत रंग रातो। मस्तक निशान

चरण तपर सकत चरण गुर अमर पवल हथ तपर सकत हथ लगे गुर अमर पे जी तपर सकत जी गुर अमर भरजे

सरवणी गुर अमर सुनि जै सत सोहियो जित ही बसे गुरु अमरदास निज जगत पिते।

सुख लेते नर संसार में अभय पट रिद में बिते सकते नर जालप भणी गुर अमरदास सो पर समझे तई पढ़ो एक मन धर्यो एक कर

सुपन एक पर तख एक एक समेनू तीस एक अर पंज सिदे मैं तीस नसीनू इको जे लाख लखो अलख है एक एक कर वन्यो गुरु अमरदास जा

अनुल है जालता पदार्थ इतने गुरु अमरदास दिखे मिले सच नाम करतार सुदृढ़ नानक संग्रह हो ताते अंगद नैन।

जो गुण अलख अगम तिने गुण अंत न जानो। बोल तो विधाते निर्मयो सब संगत कुल उधरणे। गुरु अमरदास कीरत कहे त्राहे त्राहे तो पासरण। आप नारायण कलाधार जग में परवरयो। निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करयो। जैसे जैसे भरपूर सबक दीपक।

धर्म धन कर गयो भगत सीने सर लड़यो। धन निर्भव हर अटल मन सबद गुरु ने जाग दियो। काम क्रोध लोभ मोह

दे एक मन पुरखन अंजन ध्याओ गुर प्रसाद हर गुण सद गाओ गुम गावत मन होए दिगासा सतगुर पूर जने की आशा सतगुर सेव परम पद पायो अबला से अबगत दयायो किस भेटे दारिद्र न चमते कल सहारता।

नाम निरंजन उर धरया। हर नाम रसक गोविंद गुण गाहते, चाहत तत समत सरे, कब कल ठकर हर दास ने, गुरु राम दास सर अबर भरे। छूटत प्रवाह अमेव अमरा तत, अमृत सरोवर सद भरया। ते पीरे संत करे मन मज्जन, उपजनो सेवा करिया। तिन भव निवार अनभय पद दीना, शब्द मात्र ते उधर धरे। कल कल ठकुन हर दास तने, गुरु राम दास सर अवर भरे। सतगुरु मत गूढ़ बिमल।

रंजन खरेलहा। सतगुर दयाल हर नाम दिलाया, इस पर साधवस पंच करे। कर कर ठाकुर हरदास तने, गुरु राम दास सर अभर भरे। अनुभव अनुमान अकल लेव लागी, पारस भेटिया सहज घरे। सतगुर प्रसाद परम पद पाया, भगत भाए भंडार भरे। मेटिया जन मंत्र मरण भव, भागा चित

भीम भरत परवासी तुम पुबली न होते सतगुर शब्द अथाओ अम्यो धारा रसगुत्ते मत माता संत।

نام ہر دے نواسے جن کو گر سو پرسن درت درنتر ناسے گر جن کو سو

सतगुरु नाम एक निव मन जपे दृष्टि जन दुख पाप पौकत हो जियो तारण करण सिन मात्र जाको दृष्ट धारे शब्द हृद विचारे काम क्रोध खोए जियो जीवन शब्द दाता अगम ज्ञान दुखाता ऐन से ध्यान धारे पलक न सोवे जियो जाको देखत दरिद्र जाए नाम सो निधान पाए गुरमुख ध्यान दुर्मत मैल धोवे जियो सतगुरु नाम एक लिव मन जपे दृतन जन दुख पाप को

सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाती सबद सार एक लिव लाई है। सुन जाने को तेरा अपारे निर्भव निरंकारे अकथ कथन हारे तुझे बुझाई है।

नाम सो अपार सार दीनो गुरुद धरे नल कौ पारस परस कट कंचना हुए चंदना सुवास जास सिमरत अंतरे जाके देखत द्वारे काम को दे।

गुर अंगद दियो निधानी अकथ कथा ज्ञानी पंच भूत बस कीनी जमत ना त्रासी।

तैनीर सर अवर अनल अनाद कियो। सखन खन ससुर दिन सैर करो फल फूल दियो। सुर नर सपत

होते अथ संसार में। गुरु गुरु गुर कर मन मेरे, तारण तरण समर्थ कलयुग सुनत समाद शब्द जिसके रे। सुन दुखन नाश सुखदायक सूरो, जो धरत ध्यान बस्त तै मेरे। पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत

मुख देख गरु सुख पायो। होती जो प्यास पियो सेवन की, बंसत सिद्ध को विद मिलायो। पूरन भवन ठौर बसोर से, बासन सुजो दंज सधायो। गोविंद वाल गोविंद पुरी, समजलन तीर विवास बनायो। गयो दुख दूर बर...

प्राणियों शब्द हर हर जपे नाम नवनिध आपे रसन ऐनित रसे सत कर जानियों सुनु प्रेम रंग पाइए गुरमुखे ध्याइए अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियों बचन गुर रिद धरो पंच भू बस करो जन्म कुल उधरो द्वार हर मानियो जो तो सब सुख

गुरु जप सत कर अगम गुण जान निधान हर मन धरो ध्यान ऐस करो बचन गुरु हृदय धर सुन गुरु जल बिमल अथा मजन करो संत गुरु सिख करो नाम सच रंग सर सदा निर्वैर निरंकार निर्भव जपे प्रेम गुरु शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुगद मन भ्रम तजो नाम गुरु मुख

उदत गुर गहर गवीर बेअंत हर नाम नगे हीर मन मिलत लेवलाये उन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुर्मत हिरते शब्द गुरु ध्याये अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुरु बिमल सर संत।

गुर मिलत मुन जन रे तरे नार दाद संकार हर गुरु मुखे तरे एक नाम लग तजो रस अन रे।

जग जन्म मरण भगाए आई ही प्रतीत ही आई जिन जन के।

का ब्रह्म भरम सब छुटका, अवलोका ब्रह्म भरम सब छुटका, देव दृष्ट कारण करण सत गुरु गुरु सेव अलग गत जाकी, श्री राम दास तारण तरण। परताप सदा गुर का घट घट परदास भया।

करें पर भात शुद्ध मन गुरु पूजा दिद सहित करन। कंचन तन होए परस पारस को ज्योत स्वरूपे ध्यान धरन। जगदीवन जगन्नाथ जल थल मेरिया पूर्व विद बरन। सतगुरु गुरु सेव अलग

तिन तरयो समुद्र रुद्र खिन एक में जल हर बिंब जुगत जग रचा। कुंडली सुरजी सत संगते परमानंद गुरु मुख मचा। श्री गुरु साहेब सब ऊपर मन

सच जान मंत्र एह नित बातुर कल्याण लहे परम गत दियो काम क्रोध लोभ मोह जन जन सों तार धो हमें का फल काट साध संग रत जियो देह गे ते सने चित बिलास जगत एओ चरण कमल सदा सेओ दृढ़ता कर मत जियो नाम सार ही धार तज निकार मन

ही पाता। गुरमुख संगत सबे विचारो, वाओ वाओ का बड़ा तमाशा, किया खेल बड़मेल तमाशा। वाहे गुरु तेरी सब रचना, तू जल थल गगन पयाल पूर रहा, अमृत ते मीठे जाके बचना। माने ब्रह्मा

सत संगत से ती मन खचना किया खेल बड़मेल समासा वाहे गुरु तेरी सब रचना अगम अनंत अनाद

गुर समरथ गए किरिया धूप बुध सुमत समारन को उन धम दूजा फैरंत सदा अग पुंज तुरंग निवारन को मथुरा जन जान कहीं जय साज तू और कथो न विचारन को हर नाम बहुत बड़ो कल में भव सागर पार उतारन को संतत ही सत संगत संग सुरंग रते जस गावत है धर्म पंथ धर्यो धर्मी धर आप रहे ले उदाहरण।

रव के सुख को तिन त्रास कहा, जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुधास पर पूरन सब त्रंग प्रगट तिन आदर।

मन ध्यान धरे फिरत सगल जुग कभू को पावे आत्म परगास को। वेद बाणी सहते ग्रंथ जस गावे जाको शिव मुन जैना सजात कबिलास को। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप गदा झूठ भेद किए फिरत उदास को। सोतन सतगुण सुख भाई कृपा।

देखत दर्श भटक भ्रम भजत दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा अत लुभते अल समूजू कुसुम सुबासे विद्यमान गुर आप थपे।

अवतार माया मद मोहिते अमृत नाम दियो समरथे। उनकी रतवंत सदा सुख संपते रिद्ध अर सिद्ध ना छोड़।

जाके बसीस धर्यो गुर हथे। तीन भवन भरपूर रहो सोई, अपन तरस क्यों ना जगत कोई। आपन आप ही उपायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे, असुरे नर गण गंधर्व को जंत फिरे। अविनाशी अचल अजौनी, संभो पुरखो तुम आपार परे। करण कारण समरथ सदा।

सतगुरु नानक भगत करी एक मन तन मन धन गोविंद दियो अंगद अनंत मूरत निज धारी अगम ज्ञान रस रस हियो गुरु अमरदास।

सुदामा खूब भगत हर के जुगण अमरीक जय देव त्रिलोचन नामा और कबीर भणन तिनको अवतार।

जै तिखत अत होए रहत मन सोई। संत सहार गुरु रामदास, नानक नाम निरंजन जानू, तीनी भगत प्रेम निवलाई। सांते अंगद अंग संग भयो सायर, तिन सबद सुरद

कहो मथुरा अमृत बैन मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन सिखो नैन सत रूप सत नाम सत संतोख धर्यो आद पुरख पर तथे लिखो अक्षर मस्तक धुरे प्रगट ज्योत जगमगे।

जह देखा तह एक है गुरमुख प्रगट होए। दुख निसारण शब्द है जे मन वसाए कोए, गुर कृपा ते मन वसै कर्म प्राप्त होए। नानक हों हों करते खप मोए, कूहन लख असंख, सतगुर मिले सोबरे साचे शब्द अलंख।

बौरस सालने सवार दी खटवस मीठे पाए। त्यों बाणी पगत सलांदे हर नाम चित लाए, मन तन तन आगे राखिया सिर वेचिया गुर आगे जाए। पै पगती पगत बहु लोचदे।

तुत पासे हर गुण गाए, तन तन कर जुग नानका जे चले सतगुरु भाए। सतगुरु ना सेवियो शब्द ना रखियो उधार, तिग तिना का जीविया चित आए संसार। गुरमति पौ मन पवे ता हर रस लगे प्यार।

0: नाम रतन पर गाशिया मन तन निर्मल होए। नाम हीन लगते फिरे दिल नावे बह रोए, नानक जो तुर करते लिखिया सो मेट न सकते कोए। गुरमुखा हर तन खटिया गुर के शब्द विचार, नाम पदार्थ पाया तुत परे पंडार। हर गुण बाणी उचरे अंत न पारा वार, नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार।
1: गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश, तिथे ऊंग न पुख है हर अमृत नाम सुख।

उत्कलत मोहेत है अंत बेली को न सिखाए। सतगुरु सेवे सो सुख पाए नाम वसे मन आई। नानक से वड्डे वड पागी जे गुरमुख नाम समाई। मनमुख नाम ना चेतनी बिन नामे दुख रोए। आत्मा राम न पू

मनमुख बोले अंगले तिसमें अग्नि का वास, बाणी सुरत न बुझनी शब्द न करें प्रगास, ओ ना अपनी अंदर शुद्ध नहीं गुरु वचन न करें विश्वास, ज्ञानिया अंदर गुरु शब्द है नित हर लिव सदा विकास, हर ज्ञानिया की रख

बिक का मारण हर नाम है, गुर गरुड़ शब्द मुख पाए, जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुरु मिलिया आए, मिल सतगुरु निर्मल होया बिक हो मैं।

सतगुर पुरख निर्वैर है नित हृदय हर लिवलाए निर्वैर है नाल वैर रचाएंदा अपने कर लूकी लाए अंतर क्रोध अहंकार है अंदिन जले सदा दुख पाए कूड़ बोल बोल नित पौंक दे बिखा दे दूजे भाए बिख माया कारण परम दे फिर कर कर पत गवाए बेसवा के रे पूत ज्यो पिता नाम तिस जाए हर हर नाम न चेतनी करते आप खुआए हर गुरुमुख कृपा तारियन जन विछड़े आप मिलाए जन नानक तिस बलिहारण जो सतगुरु लागे पाए नाम लगे से उबरे बिन नाम है जम पुर जाए नानक बिन नाम है।

हर पाया परमानंद। सतगुर सेवन अपना गुर शब्दी विचार, सतगुर का पाना मन लैन हर नाम रखे उरदार। ऐथे ओथे मनियन हर नाम लगे व्यापार, गुरमुख शब्द संजाप दे तित साचे दरबार। सच्चा सौदा खर्च सच अंतर प्रेम प्यार।

जन की टेक हर नाम हर बिन नामे ठवर न ठाओ गुरमति नाव मन वसे सहजे सह समाओ वडपागी नाम ते आया एहन सलागा पाओ जन नानक मंगे तूर तिन हो सतगुरु बाणे जाओ लख चौरासी मेदनी तिसना जलती करे पुकार ए मोह माया सब पसरिया नाल चले नांती वार बिन हर सांत ना आवे किस आगे करी पुकार वड पागी सतगुरु पाया बूझया ब्रह्म विचार तिसना अग्न सब बुझ गई जन नानक हर उरदार असी खत्ते बहुत कमाम दे अंत ना पारावार हर कृपा करके बख्श ले हो हौ पापी वड गुनहगार हर जियो लेखे वार ना आवई तू बख्श मिलावन हार गुर तुठे हर प्रभ मेलिया सब किल कट विकार जिना हर हर नाम ते आया जन नानक तिन जयकार विछड़ विछड़ जो मिले सतगुर के पै पाए जन्म मरण नहीं चल भये गुरमुख नाम ते आए गुर साधु संगत मिले हीरे रतन लवन नानक लाल अमोल का गुरमुख खोज लहन मनमुख नाम ना चेत्यो तिग जीवन तिग वास जिस दा जित्ता खाना पहनना सो मन ना वस्यो गुणतास ए मन शब्द ना पेदियो क्यों होवे करवास मन मुखिया दोहागनी आवन जान मोयास गुरमुख नाम सुहाग है मस्तक मणि लिखियास हर हर नाम उरधारिया हर हृदय कमल प्रगास सतगुर सेवन आपना हो सद बलिहारी तास नानक तिन मुख उजले जिन अंतर नाम प्रगास शब्द मरे सोई जन सिजे बिन शब्द मुक्त न होई पेख करे बहु कर्म विगुते पाए दूजे परज विगोई नानक बिन सतगुरु नाव ना पाईए जेसो लोचे कोई हर का नाव अत वड ऊंचा ऊंची हु ऊंचा होई अपड़ कोई न सकई जे सो लोचे कोई मुख संजम हच्छा ना हो वही कर पेख पवे सब कोई गुर की पौड़ी जाय चढ़े कर्म प्राप्त होई अंतर आए वसे गुर शब्द विचार है कोई नानक शब्द मरे मन मानिए साची साची सोए माया मोह दुख सागर है बिख दुत्तर तरिया ना जाए मेरा मेरा कर दे पच मोए हो मैं करत विहाय मन मुखा उरवार न पार है आद विच रहे लपटाए जो तुर लिखिया सो कमावना करना कछु न जाए गुरमति ज्ञान रतन मन वसै सब देखिया ब्रह्म सुवाए नानक सतगुरु बोझै वड पागी चढ़े ते पौजल पार लंगाए बिन सतगुरु दाता को नहीं जो हर नाम दे आधार गुर कृपा ते नाव मन वसै सदा रहे उरधार तिसना बुझै तिपत होए हर कै नाए प्यार नानक गुरमुख पाईए हर अपनी कृपा धार बिन शब्द जगत बर लिया कहना कछु न जाए हर रखे से उबरे शब्द रहे लिव लाए नानक करता सब कित जानदा जिन रखी बनत बनाए होम जग सब तीर्था पढ़ पंडित थके पुराण बिख माया मोह न मिटई विच हों में आवन जान सतगुरु मिले मल उतरी हर जपिया पुरख सुजान जिना हर हर प्रभ सेविया जन नानक सतगुरु बाण माया मोह बहु चित्व दे बहु आशा लोभ विकार मन मुख अस्थिर नाथिय मर बिनस जाए खिनवार वड पाग होवे सतगुरु मिले हों में तजै विकार हर नामा जब सुख पाया जन नानक शब्द विचार बिन सतगुरु भगत न हो वही नाम

तो है जिसे हाथ न पाए, मन मुख छेती संकरे मोह कालक दाग लगाए, मोह काले तिन लोभियां जासन जन्म गवाए, सत्संगत हर मेल प्रभ हर नाम वसै मन आए, जन्म मरण की मल उतरे जन नानक हर गुण गाए, तुर हर प्रभ करते लिखिया सो मेटना ना जाए, जियो पिंड सब तिसदा प्रतपाल करे हर राए, चुगल निंदक भुखे रुल मोए ए ना हाथ ना किथाऊ पाए, बाहर पखंड सब कर्म करें मन हृदय कपट कमाए।

आवन जान ना सुजई ना सुजै दरबार माया मोह पलेटिया अंतर अज्ञान गुवार तब नर्क पा जा गया सिर डंड लगा बहु पार गुरमुखा करा ऊपर हर चेतिया से पायन मोख।

नानक गुरमुख मन स्यों लुजै, जिना सतगुरु पुरख न सेवियो शब्द न कीतो विचार। ओए मानस जून ना आखियन पशु टोर गावार, ओना अंतर ज्ञान ना ज्ञान है हरसो प्रीत ना प्यार। मन मुख मोए विकार में मर जमे वारो वार, जीव दियानो मिले सो जीव दे हर जग जीवन उद्धार। नानक गुरमुख सोहणे सिख सच्चे दरबार, हर मंदर हर साजिया हर वसै जिस नाल, गुरमती हर पाया माया मोह पर जाल। हर मंदर वस अनेक है नव निर्नाम समाल, तन भगवंती नानका जिना गुरमुख लद्दा हर पाल। वड पागी गढ़ मंदर खोजिया हर हृदय पाया नाल, मन मुख दे दिस फिर रहे अत तिसना लोभ विकार। माया मोह न चुकई मर जमे वारो वार, सतगुर सेव सुख पाया अत तिसना तज विकार। जन्म मरण का दुख गया जन नानक शब्द विचार, हर हर नाम से आए मन हर दरगे पावे मान। किलविक पाप सब कटिए हो मैं चुके गुमान, गुरमुख कमल विकसिया सब आत्म ब्रह्म पहचान। हर हर कृपा तार प्रभ जन नानक जप हर नाम, तनासरी तनवंती जानिए पाई जा सतगुर की कार कमाए। तन मन सौंपे जी सो भाई लय हुक्म फिराओ, जय बैसावे बैसे भाई जय पे जय ते जाओ। एवड तन होर को नहीं भाई जेवड सच्चा नाओ, सदा सच्चे के गुण गावा भाई सदा सच्चे के संग रहाओ। पैनन गुण चंगियाईया भाई अपनी पथ के साथ आपे खाए, तिसका क्या सालाई है भाई दर्शन को बल जाए। सतगुर विच वडिया वडियाईया भाई कर्म मिले ता पाए, एक हुक्म मन ना जाननी भाई दूजे भाई फिराए। संगत तोई ना मिले भाई बैसन मिले ना थाओ, नानक हुक्म तिना मनाए सी भाई जिना तुरे कमाया नाओ। तिन विटो हो वारिया भाई तिन को सद बलिहारे जाओ, से दाड़िया सचिया जे गुर चरनी लगन, अंदिन सेवन गुर आपना अंदिन अनदरहन। नानक से मोह सोहने सच्चे दर दिसन, मुख सच्चे सच दाड़िया सच बोले सच कमाए। सच्चा शब्द मन वस्या सतगुर माहे समाहे, सच्ची राशि सच तन उत्तम पदवी पाहे। सच सुने सच मन लैन सच्ची कार कमाहे, सच्ची दरगे बैसना सच्चे माहे समाए। नानक बिन सतगुर सच ना पाईए मन मुख भूले जाए। बाबी हा प्रयो प्रयो करे जल निद प्रेम प्यार, गुर मिले शीतल जल पाया सब दूर।

मन लहर जाए, चारे कुंडा चोक वरसदा, बूंद पवे सह चुबाए, जल ही ते सब उपजे, बिन जल प्यास न जाए, नानक हर जल जिन पिया, तिस भूख न लागे आए, बाबी हा तू सहज बोल सच्चे शब्द सुवाए, सब किस तेरे नाल है, सतगुर दिया दिखाए, आप पछाणे प्रिय

छह बरलाए चिम चिम अमृत वर्षदा कितना पुख सब जाए फूक पुकार न हो वही ज्योति ज्योत मिलाए नानक सुख सवन सुहागणी सच्चे नाम समाए तुरु खसम पेजिया सच्चे हुकुम पठाए इंद वर्षे दया कर गूड़ी छह बरलाए बाबी है तन मन सुख होए जा तत बूंद मोह पाए अन तन बहुता उपजे तरती शोभा पाए अन दिन लोक भगत करे गुर कह शब्द समाए आपे सच्चा बस लय कर कृपा करे रजाए हर गुण गावो कामणी सच्चे शब्द समाए पै का सह सिंगार करो सच रहो लिव लाए नानक नामो मन वसे हर दरगे ले छड़ाए बाबी हा सगली तरती जे फिरे ऊट चढ़े आकाश सतगुर मिले जल पाईए चूके भूख प्यास जियो पिंड सब तिसका सब किस तिसके पास बिन बोलिया सब किस जानदा किस आ गए की चै अरदास नानक कट कट एको वर्तदा शब्द करे प्रगास नानक तिसे बसंत है जे सतगुर सेव समाए हर बुठा मन तन सब पर फड़े सब जग हरियावल होए सब दे सदा बसंत है जित तन मन हरिया होए नानक नाम ना विसरे जिन सिरिया सब कोए नानक तिना बसंत है जिना गुरमुख वस्या मन सोए हर उठे मन तन पर फड़े सब जग हरिया होए वडड़े चाल चलुंबड़े नावड़ा लिये किस नाव लिये परमेश्वर पन्नन करण समरथ हर हट भी तू तू करे बोले पल्ली बाण साहिब सदा हदूर है क्या उच्ची करे पुकार जिन जगत उपाय हर रंग किया तिसे विटो कुर्बान आप छोड़े ता सौ मिले सच्चा यो विचार हों मैं फिक्का बोलना बुझ न सका कार वन त्रिण त्रिभुवन तुझे त्याईदा अन दिन सदा विहान बिन सतगुर किने न पाया कर सके विचार नदर करें जे आपनी ता आपे लहें सवार नानक गुरमुख जिनी त्याया आए से परवान जोग ना पगवी कपड़ी जोग ना महले वेश नानक कर बैठिया जोग पाई है सतगुर कह उपदेश चारे कुंडा जे पवे बेद पड़े जुग चार नानक साचा फेटे हर मन वसे पावे मोह द्वार नानक हुकम वरते खसम का मत पवी फिरे चल चित मनमुख सौ कर दोस्ती सुख के पुछे मित गुरमुख सौ कर दोस्ती सतगुर सौ लाए चित जमन मरण का मूल कटिए ता सुख होवी मित पुलिया आप समझाए सी।

बिन दर्शन क्यों तृप्तिया, नानक मिले सुभाए गुरमुख के मन रहसिया, जिना प्री प्यार क्यों जीवन फिर बहारे, जासो देखन अपना नानक जीवन भी हरे, जिना गुरमुख अंदर ने हो तै प्रीतम सच्चै लाया, राती अतैडे हो नानक प्रेम समाया, गुरमुख सच्ची आस की जित प्रीतम सच्चा पाई है, अंदर रहे आनंद नानक सह समाई है, सच्चा प्रेम प्यार गुरु पूरे ते पाई है, कबहू ना होवे पंग नानक हर गुण गाई है, जिना अंदर सच्चा ने हो क्यों जीवन प्री विहुनिया, गुरमुख मेले आप नानक चिरी विछुनिया, जिनको प्रेम प्यार सौ आप पहलाया, कर्म कर नानक लिहो मिलाए मैं जाचक दीजे नाम हर, गुरमुख हस है गुरमुख रोवे, जे गुरमुख करे साई भगत होवे, गुरमुख होवे सो करे विचार, गुरमुख नानक पावे पार, जिना अंदर नाम निदान है गुरबाणी विचार, तिनके मुख सद उजले तिस सच्चे दरबार, तिन बैंदियां उठदियां कदे ना विसरे जे आप बख्शे करतार, नानक गुरमुख मिले ना विछड़े जे मेले सृजनहार, गुर पीरा की चाकरी महा करड़ी सुखसार, नदर करे जिस आपनी तिस लाए हे प्यार, सतगुर की सेवे लगिया पौजल तरह संसार, मन चिंदिया फल पाए सी अंतर विवेक विचार, नानक सतगुर मिले प्रभ पाईए सब दुख निवारण हार, मन मुख सेवा जो करे दूजे पाए चितलाए, कुट कलत कुटुंब है माया मोह वधाए, दरगे लेखा मंगी है कोई अंत ना सकी छाए, बिन नाम है सब दुख है दुखदाई मोह माए, नानक गुरमुख नदरी आया मोह माया विछड़ सब जाए, गुरमुख हुक्म मन्ने सह केरा हुक्मे ही सुख पाए, हुक्मो सेवे हुक्म अरादे हुक्मे समय समाए, हुक्म वर्त नेम सुच संजम मन चिंदिया फल पाए, सदा सुहागन जे हुक्मे बूझे सतगुर सेवे लिव लाए, नानक कृपा करे जिन ऊपर तिना हुक्मे ले मिलाए, मन मुख हुक्म ना बुझे बपुड़ी नित हो मैं कर्म कमाए, वर्त नेम सुच संजम पूजा पाखंड परम न जाए, अंकरों कुसुद माया मोह बेदे जो हस्ती छार उड़ाए, जिन उपाय तिसे न चेते बिन चेते क्यों सुख पाए, नानक परपंच किया तुर करते पूर्व लिखिया कमाए, गुरमुख प्रतीत पई मन मानिया अंदिन सेवा कर समाए, अंतर सतगुर गुरु सब पूजे सतगुर का दर्श देखे सब आए, मनिए सतगुर परम विचारी जित मिले तिसना पुख सब जाए, हौ सदा सदा बलिहारी गुर अपने जो प्रभ सच्चा दे मिलाए, नानक कर्म पाया तिन सच्चा जो गुर चरणी लगे आए, जिन प्रिया सोने हो से सज्जन मैं नाल, अंतर बाहर हौ फिरा पी हृदय रखा समाल, जिना इक मन इक चित ध्याया सतगुर सो चित लाए, तिनकी दुख पुख हो मैं वड्डा रोग गया निर्दोख पए लिव लाए, गुण गावे गुण उचरे गुण मैं स्वय समाए, नानक गुर पूरे ते पाया सहज मिलिया प्रव्याए, मन मुख माया मोह है नाम न लगे प्यार, कूर कमावे कूर संग्रह कूर करे आहार, दिख माया तन संच मरे अंत होए सब चार, कर्म तर्म सुच संजम करे अंतर लोभ विकार, नानक मन मुख जे कमावे सो थाए न पवे दरगे होए खुआर, सब ना रागा विच सो भला भाई जित वस्या मन आए, राग नाद सब सच है कीमत कही ना जाए, रागे नादे बहारा इन्नी हुक्म ना बूझिया जाए, नानक हुक्मे बूझे तिना रास होए सतगुर ते सो जी पाए, सब किस किससे होया ज्यों तिसे धीर जाए, सतगुर विच अमृत नाम है अमृत कहे कहाए, गुरमति नाम निर्मलो निर्मल नाम से आए, अमृत बाणी तत है गुरमुख वसै मन आए, हृदय कमल प्रगासिया ज्योति ज्योत मिलाए, नानक सतगुर दिन को मेलियन जिन तुर मस्तक पाग लिखाए, अंदर तिसना अग है मन मुख पुख ना जाए, मोह कुटुंब सब कूड़ है कूड़ रहा लपताए, अंदिन चिंता चिंतवे चिंता बद्दा जाए, जम्मन मरण ना चुकई हो मैं कर्म कमाए, गुर शरणाई उबरे नानक ले छड़ाए, सतगुर पुरख हर त्याईदा सतसंगत सतगुर भाए, सतसंगत सतगुर सेवदे हर मेले गुर मेलाए,
यो पौजल जगत संसार है गुर बोहित नाम कराए गुर सिखी पाणा मन्या गुर पूरा पार लंगाए गुर सिखा की हर तूड़ दे हम पापी भी गत पाए गुरु मस्तक हर प्रभ लिखिया गुरु नानक मिलिया आए जम कंकर मार बिदारियन हर दरगे ले छाए गुर सिखा नो साबास है हर तुखा मेल मिलाए गुर पूरे हर नाम दिलाया जिन विच्चों परम चुकाया राम नाम हर कीर्त गाए कर चानन मग दिखाया हों मैं मार एक लिव लागी अंतर नाम बसाया गुरमती जम जोहे न सके सच्चे नाए समाया सब आपे आप वर्त करता जो पावे सो नाए लाया जन नानक नाउ ले ता जीवे बिन नामे खिन मर जाया मन अंतर हों मैं रोग परम पूले हों मैं साकत दुर्जना नानक रोग गवाए मिल सतगुर साधु सज्जना गुरमती हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन रात हर रत्ती हर रंग चोले हर जैसा पुरख ना लबई सब देखिया जगत में टोले गुर सतगुरु नाम दृढ़ाया मन अंत न काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुरु के गुल बोले।

مٹیو نہ جم کو تراس، کہو نانک ہر پج من۔

جگت پکھاری پھر تو ہے سب کو داتا رام جگ

जिसका सब आधारो, जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। के वस्त जी नह जाई नित नित रख उधारो, तम संसार चरण लग तरिये सब नानक।

रागमाला राग एक संग पंच बरंगन संग अला पै आठो नंदन प्रथम राग पैर होवे करही पंच रागनी संग उचरही प्रथम पैरवी बिलावली पुनिया की गावे बंगली पुन असलेखी की पई बारी ए पैरों की पांचों नारी पंचम हरख दिशा सुनावे।

मात्र दुतिया माल कौ सका लापे संग रागनी पांचों थापे गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी तनासरी ए पांचो गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग मेवारा परबल चंड कौशक उभारा खोखट औ पौरानद गाये अस्त माल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंचना।

तुरमानंद पास करे आए चंद्रबिम मंगलन सोहाए सरसबान औ आए बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र में कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कछेली पटमंजरी टोडी कही अलाप कामोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल औ रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कांगरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग में गावे पांचों संग बिरंगन लावे।

साच नाई पाखिया भाउ अपार अख है मंगह देह देह दात करे दातार फेर के अगे रखिए जित दिसै दरबार मुहो के बोलन बोलिए जित सुन करे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवे जानिए सब आपे सचियार थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेविया तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निदान गाविए सुनिए मन रखिए भाओ दुख पर हर सुख घर ले जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहिया समाई।

आई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई तीर्थ नावा जे तिस पावा बिन पाने के नाए करी जेती सिरठ उपाई वेखा बिन कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जेक गुर की सिख सुनी गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आर जा

पछताई। कागज कलम ना लिखन हार, मन्ने का वह कर्म विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने सुत हुए मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन।

जे को मन जाने मन कोई, मन्ने मार्ग ठाक न पाई, मन्ने पथ स्यो प्रगट जाय, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होय, जे को मन जाने

पवह ना पिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावह दर गहमान पंचे सोह दर राजहान पंचा का गुर एक ध्यान।

संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै होवै सचियार तब लै उपर कीता पार धरती होर परै होर होर तिस ते भार

आऊ कुदरत कमण कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावे साई पली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख योग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मुह पखसार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश मल भख खाहे असंख निंदक सिर करह पार।

अगम अगम असंख लो, असंख कह सिर भार होए, अखरी नाम अखरी सलाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग बखान, जिन एह लिखे तिस सिर नाहे, जिव फुरमा।

एक वार जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिए हाथ पैर तन दे पानी धोते उतरस खे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइए ओ धोए भरिए मत पाप।

तीरथ मल नाहो सब गुण तेरे मैं नाही कोई। बिन गुण कीते भगत ना होए स्वास्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ। कमण सो वेला वखत कमण कमण थित कमण वार कमण से रुती माह कमण जित होवा आकार। वेल न पाइया पंडती।

पवह समुंद ना जानी है समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल ना होमनी जे तिस मनो ना विसर है अंत न सिफती कहन न अंत अंत न करने देन न अंत अंत ना वेखण सुनन ना अंत अंत ना जापे क्या मन मंत अंत ना जापे कीता आकार अंत न जापे पारावार अंत कारण के ते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहो अंत न जाने कोई बहुता कर।

आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना कमाए केते मंगह जोद अपार केतियां गणत नहीं वी।

देवतियां दर नाली गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारी गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारी गावन पंडित पन्न रखीसर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाली गावन रतन उपाए तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गावह जोध महाबल सूर।

तुद पावन रत्ते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारी सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेख कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस पावे सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पात शाह सहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख शर्म पत चोली।

आई पंथी सगल जमाती मन जीत जग जीत आदेश दिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण कट कट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद्ध सिद्ध अवरा साध संजोग बजोग दोए कार चलावह लेखे आवह भाग आदेश दिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावै तिवें चलावै जिव होवै

आद अनिल अनाद अनाहक जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए पंडार जो किश पाया सो एकावार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश सया देश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी पौ लख होहे लख होवह लख वीस लख लख गेड़ा आखिय है एक नाम जगदीश एक राहे पत पवड़िया चढ़िया होए अतीस सुन गल्ला आकाश की कीता आई रीस नानक नगरी।

पै जाए। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आख हो कर्म। केते पवन पानी वह संतर, केते कान महेश, केते बर में काड़त करिय है।

नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड इत्थै नाद बनोद कोड आनंद सर्म खंड की वाणी रूप इत्थै घाट घड़िया बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां ना जाहे जे को कह पिछे पछताए तिथै घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथै

खंड सच्चा मन सोए सच खंड बसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल कित्तै खंड मंडल वर भंड।

पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सुदर तेरा केहा सो कर केहा जित बह सर्ब संभाले

दामन कुदनो चित गुप्त लिख जानन, लिख लिख धर्म विचारी, गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहन तेरे सदा सुवारी, गावन तुदनो इंद्र इंद्र आसन बैठी।

ब्राह्मण तुदनो पंडित पढ़ रखीस जुग जुग वेदा नाली गामन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मच्छ पाए आली गामन तुदनो रतन उपाए तेरे अठ सठ तीरथ नाली गामन तुदनो जोध महाबल सूरा गामन तुदनो खानी चारी गामन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे से तुदनो गावन जो तुद पावन रत्ते तेरे भगत रसाले।

सोई सोई सदा सत साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन अपाई कर कर देखे कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस भावे सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पातशाह सहा पत साहिब नानक।

सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुर गुरहाई, कहन न जाई तेरी तिल वडियाई, सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धां पुरखां कियां वडियाईया, तुद मिन सिद्धी किने ना पाईया, कर्म मिले ना ही ठाक रहाईया।

मांस खाई, हर कीरत हमरी रहरास रहाओ, हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता सह, मिल संगत गुण परगास, जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास, जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, धन धन सत संगत जित हर रस पाया।

जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाउ जनन पिता लोक सुत बनता हुए न किसकी तरिया सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन पौ करिया ऊडे ऊड़ आवे सह कोसा तिस पासे बचरे शरिया तिन कवन खलावे कवन चगावे मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा हर त्यावह।

तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप ताप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत सास्त जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निश्चल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरतै जी तू आपे करह सो होई तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सह का जानोई आसा महला चौथा तू

या सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेख है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला इत सरवर पहले निवासा, पानी पावक तिन्ह किया पंकज मोह पग नहीं चाले। हम देखा तह डुबी अले मन एक ना चेत समूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा। ना हों जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा।

क्रोध नगर बहु परया मिल साधु खंडल खंडाही पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडाही कर साधु अंजलि पुन बड्डाही कर दंडौत पुन बड्डाही रहाउ साकत हर रस साधना जानिया इन अंतर हो मैं कंडाही ज्यो ज्यो चल है चुभै दुख पावह जमकाल सह सिर डंडाही हर जन हर हर नाम सुमानी दुख जन्म मरण भव खंडाही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडाही हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डाही जन नानक नाम।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग श्री राग महला पहला कर पहला मोती ता मंदर उसरे रतनी ता होए जड़ाव कस्तूर को अगर चंदन लीप आवे चाव मत देख भूला विसरे तेरा चेतना आवे नाव हर बिन जियो जल बल जाओ मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर नाही थां रहाओ धरती ता हीरे लाल जड़ती पलंग लाल जड़ाओ मोहनी मुख मणि सो है करे रंग पसाओ मत देख भूला विसरे तेरा चेतना आवे नाओ सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद आखा आओ गुपत प्रगट होए बैसा लोक राखे पाओ मत देख भूला विसरे तेरा चेतना आवे नाओ सुल्तान हुआ मेल लश्कर तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ मत देख।

पास सो क्यों मनहो विसारिय जाके जी प्राण तिसविन सब अपवित्र है जेता पहनन खान होर गल्ला सब कूड़िया तुद पावे परवान श्री राग महल पहला जाल मोह कास मास कर

सारी है। डर गया क्या हुई श्री राग महला पहला, गुणवंती गुण वीथर अवगुणवंती चूर, जे लोड़ है वर कामणी नह मिली है फिर कूर, ना बेड़ी ना कुल्हड़ा ना पाई है फिर दूर, मेरे ठाकुर पूरे तख्त अडोल, गुरमुख पूरा जे करे पाइए साच अतोल, रहाउ प्रभ हर मंदर सोहना तिस मेहमान कलाल, मोती हीरा निर्मला कंचन कोटरी साल, बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो गुर हर ध्यान निहाल, गुर पौड़ी बेड़ी गुरु गुर तुलहा हर नाम, गुर सर सागर बोहितो गुर तीरथ दरियाओ, जे तिस भावे उजली सत सर नामन जाओ, पूरो पूरो आखिए पूरे तख्त निवास, पूरे थान सुहावन पूरे आस निरास, नानक पूरा जे मिले क्यों घाट है गुणतास, श्री राग महला पहला आप हो भैने गल मिले है, अंक सहेलड़िया मिल कह कर है कहानिया, समरत कंत किया साचे साहिब सब गुण अवगण सब असहा, करता सबको तेरे जोर एक शब्द बिचारी है, जा तू ता क्या होर रहाओ, जाए पुछो सुहागणी

लहै दरगाह झूठ खुआर रहाउ आप सुजान ना भुलै सच्चा वड किरसान पहला धरती साधकै सच नाम दे दान नौनिद उपजै नाम एक कर्म पवै निशान गुर कौ जान ना जाने क्या तिस चज अचार अंधलै नाम वसारिया मनमुख अंध गुबार आवन जान ना चुकई

रहाउ जिन्नी नाम वसारिया दूजी कारे लग दुबदा लागे पच मोए अंतर त्रिशना अग गुर राखे से उबरे होर मुठी तंदे ठग मुई प्रीत प्यार गया मोआ वैर विरोध तंदा थका हो।

गुरमुख नाम सलाहिय हौ मैं निवरी पाही रहाउ। सुन सुन गंडन गंडिय लिख पढ़ बुझह पार, तृष्णा अहनिस अगली हौ मैं रोग विकार। ओह वे परवाहु अतोलवा गुरमुख कीमत सार, लख सियाणप जे करी लख सियों प्रीत मिलाप, बिन संगत साधना त्राप।

रूंग वड्डा मन माहे क्यों दरगाह पत पाई है जां हर ना वस्या मन माहे गुर मिले सुख पाई है अगन मरै गुण माहे मन रे अहल सहर गुण सार।

जिस हर मन वसै तिस मेले गुर संयोग काया कामन जी करी भोगे भोगण हार इस सियो नेहो ना की जई जो दिसै चलन हार गुरमुख रवह सुहागणी सो प्रभ सेज पतार चारे अगन निवार मर गुरमुख हर जल पाए अंतर कमल परगासिया अमृत भरिया अगाए नानक सतगुर मीत।

हर हीरा गुर माहे सत संगत सत गुर पाई अहनस शब्द सलाहे रहाओ सच वखर धन रास लै पाई है गुर प्रगास ज्यो अगन मरे जल पाए त्यो तृष्णा दासन दास जम जंदार न लगई त्यों भौजल तरै तरास गुरमुख कूड़ न पावई सच रते सच पाए साकत सच न पा

गुर मिल पाओ जल लंगिया दरगाह पत परवान नानक ते मुख उजले धुन उपजै शब्द निशान श्री राग महला पहला वणज करहो वणजारिहो वखर लेहो संभाल तैसी वस्त वसाही है जैसी निबह नाल अगे साहु सुजान है लैसी वस्त संभाल भाई रे राम कहो चित लाए हर जस वखर लै चलो सहो देखै पति आए रहाओ जिन्ना रास ना सच है क्यों किन्ना सुख होए खोटै वणज वणजै मन तन खोटा होए ठाही पाथे मिर्ग ज्यों दुख घणो नेतरोए खोटे पोतै ना पवै तिन हर गुर दर्श ना होए खोटे जात ना पत है खोट ना सी जस कोए खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए नानक मन समझाई है गुर कै शब्द साला राम नाम रंग रतिया पार ना भरम तिना हर जप लाहा अगला निरपव हर मन

साहिब राव रहया भरपूर रहाओ आपे माछी मछली आपे पानी जाल आपे जाल मणकड़ा आपे अंदर लाल आपे बहु बिदरंगला सखिए मेरा लाल नेत्र वै सुहागनी देख हमारा हाल प्रण

दस अठार में अपरंपरु चीने कह नानक इव एक तारे गिरिराग महला पहला कर तीजा अमल कर तरती बीज शब्दों कार सच।

कर एक त्याया तीह कर रखे पांच कर साथी नौ शैतान मत कट जाई नानक आखे राहे पै चलना माल धन कित कु संजियाही श्री राग महला पहला कर चौथा सोई मौला जिन जग मौलिया हरिया किया संसारू आब खाक जिन बंद रहाई।

रहें को रह ना परिये पाई। सोई काजी जिन आप तजिया एक नाम किया आधारू है पी होसी जाए न जासी सच्चा सिरजन हारू। पांच वक्त निवाज गुजार हैं पढ़ हैं कतीब कुराना नानक आखे गोर सदेई रहे ओ पीना खाना। श्री राग महला पहला कर चौथा एक सुआन दोए सुआनी नाल पलके पौंकह सदा।

साहिब आवह रोहे तू ओना का तेरे ओहे असी बोल बगाड़ बगाड़ है बोल तू नदरी अंदर तोलह तोल जह करनी तह पूरी मत करनी बाजो घटे घट प्रणवत नानक ज्ञानी कैसा होए आप पुछ।

अंतर हर रस रव रहिया, चूका मन अभमान हिरदय कमल पर गासिया, लागा सहज त्यान मन निर्मल हर रव रहिया, पाया दरगह मान सतगुर सेवने अपना, ते विरले संसार हम मैं ममता मार कै, हर राखिया उरतार हों तिनकै बलिहारने।

कमावणी सच घट प्रगट होए अंतर जिस कै सच वसै सच्चे सच्ची सोए सच मिले से ना विछड़ है तिन निज घर वासा होए मेरे राम मैं हर बिन अवर ना कोए सतगुर सच प्रभ निर्मला

है इक वर्तदा इकु रहिया सुमाई। जिसनो आप दयाल हुई सो गुरमुख नाम समाय। पढ़ पढ़ पंडित जोत की वाद करह विचार। मत बुद्ध भवी ना बुझई अंतर लोभ विकार। लख चौरासी भरम दे भ्रम भ्रम हुए खुआर। पूर्व लिखिया कमावना कोई ना मेटन हार।

पारस परसी है पारस हुई, ज्योति ज्योत सुमाई, जिनको पूर्व लिखिया तिन सत गुर मिलिया आई। मन भुखा भुखा मत करह, मत तू करह पुकार, लख चौरासी जिन सिरी सब सह दे आधार।

से निर्मले हों सद बलिहारे जास हृदय जिनकै हर वसै इत घट है परगास मन मेरे हर हर निर्मल त्याए तुर मस्तक जिनको लिखिया ते गुरमुख रहे लिव लाए रहाओ हर संत हो देखो नदर कर निकट वसै भरपूर

तिनका जन्म सफल है जो चल है सतगुरु भाई कुल उधार है अपना धन जनेंदी माए हर हर नाम ते आई है जिसनो कृपा करे रजाए जिन्नी गुरमुख नाम ते आया विचो हो आप गवाए वो अंदर हो बाहर हो निर्मले सच्चे सच समाए नानक आए से परवान है जिन गुरमति हर त्याय श्री राग महला तीजा हर भगता हर तन रास है गुरपूछ कर है वापार हर नाम सलाहन सदा सदा वखर हर नाम आधार गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया हर भगता अतुट भंडार भाई रे इस मन को समझाए हे मन आलस क्या करह गुरमुख नाम त्याय रहाओ हर भगत हर का प्यार है जे गुरमुख करे विचार पाखंड भगत ना होवे दुबदा बोल खुआर सो जन रलाया ना रले जिस अंतर विवेक विचार सो सेवक हर आखी है जो हर राखे उरतार मन तन सौंपे आगे धरे हो मैं विचो मार धन गुरमुख सो

नाम निधान सद मन वसै महली पावै थाउ रहाउ। मनमुख मन तन अंध है तिसनो ठौर ना खाउ। बहु जूनी पौंदा फिरै ज्यों सुनै घर काउ। गुरमती घट चानना

पाई। लाहा हर हर नाम मिले सहजी नाम समाय, बिन गुर महल ना पाईए नाम ना प्राप्त होय। ऐसा सतगुर लोड़ लहु जिदू पाईए सच सोय, असुर संगारे सुख वसे जो तिस भावे सो होय। जेहा सतगुर कर जानिया तेहो जेहा सुख होय, एहो सहसा मूले नाही पाओ लाए जन कोय। नानक एक जोत दोए मूर्ति शब्द मलावा होय। श्री राग महला तीजा अमृत छोड़ बिख्या लोवाणी, सेवा करह विडाणी अपना धर्म गवावह बूझह नाही। अन दिन दुख विहानी मनमुख अंध ना चेत ही, डूब मोए बिन पानी मन रे सदा भजहो हर सरनाई। गुर का शब्द अंतर वसै ता हर विसर ना जाई। रहाओ एहो शरीर माया का पुतला विच हूं मैं दुष्टि पाई, आवन जाना जम्मन मरना मनमुख पत।

फल पाए। जत सत तप पवित्र शरीरा हर हर मन वसाए। सदा आनंद रहै दिन राती मिल प्रीतम सुख पाए। जो सतगुर की शरणागति हौं तिनकै बल जाऊं। दर सच्चै सच्ची वडियाई।

संतां संगत मिल रहे जप राम नाम सुख पाए रहाउ गुरमुख सदा सुहागनी पिर राखिया उर तार मिठा बोलह निव चलह सेजै रवे पतार सोभावंती सुहागनी जिन गुर का हित अपार पूरे भाग सतगुर मिले जा भागे का उदो होए अंतर हो दुख भ्रम कटिए सुख प्राप्त होए गुर के पाणे जो चले दुख ना पावे कोई गुर के पाणे विच अमृत है सहजी पावे कोई जिन्ना प्राप्त तिन पिया हों मैं विचों खोए नानक गुरमुख नाम ते आई है।

गुर बिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाई, जे लोचै सब कोए रहाउ। लख चौरासी फेर पया, कामण दूजै पाए, बिन गुर नींद ना आवई, दुखी रैण विहाए, बिन शब्द पिर ना पाई है।

कराए, देख कुटंब मोहे लवाना, चलदिया नाल ना जाई। सतगुर सेव गुण निदान पाया, तिस दी कीम ना पाई। हर प्रभ सखा मीत प्रभ मेरा, अंते होए सखाई। अपने मन चित कह कहाई, बिन गुर आप ना जाई। हर जीव दाता भगत वछल है, कर कृपा मन वसाई। नानक सोभा सुरत दे प्रभ आपे, गुरमुख दे वडियाई। श्री राग महला तीजा, धन जननी जिन जाया। धन पिता प्रधान, सतगुर सेव सुख पाया। विचों गया गुमान, दर सेवन संत जन खड़े। पायन गुणी निदान, मेरे मन गुरमुख त्याए हर सोए। गुर का शब्द मन वसै, मन तन निर्मल होए।

गुरमुख बूझे कोए बिन बूझे कर्म कमावणे जन्म पदार्थ खोए रहाउ जिन्नी चाखिया तिन्नी साध पाया बिन चाखे भरम भुलाए अमृत साचा नाम है कहना कछु ना जाए पीवत हूं परवान भया पूरा।

कमाए। जात सत संयम नाम है, विण नाम है निर्मल ना होए। पूरे भाग नाम मन वसै, शब्द मिलावा होए। नानक सहजे ही रंग वरतदा।

अगली मनवा रज्जा सहज सुपाई गुर का शब्द अमृत है जित पीते तिख जाय इहो मन साचा सच रत्ता सच्चे रहया समाय आखण वेखण बोलना शब्दे रहया समाय बाणी वजी चहु जुगी सचो सच सुनाय हम मैं मेरा रह गया सच्चा लया मलाय तिनको महल हदूर है जो सच रहे लिवलाय नदरी नाम ते आई है विन कर्मा पाया ना जाय पूरे भाग सत संगत लह सतगुर भेटै जिसे आय अन दिन नामे रत्या दुख बिखिया विचों जाय नानक शब्द मलावड़ा नामे नाम समाय श्री राग महला तीजा अपना भौ तिन पायुन जिन गुर का शब्द बीचार सत संगती सदा मिल रही सच्चे के गुण सार दुबधा मैल चुकाइयन।

शब्द सुवारण हार रहाव सत्य शब्द मन मोहया प्रभ आपे लय मलाय अनदिन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाय ज्योति हूँ प्रभ जापदा बिन सतगुर बूझ ना पाय जिनको पूर्व लिखिया सतगुर पेटिया तिन आय बिन नावै सब डुमणी दूजे पाए खवाय तिस बिन घड़ी ना जीवंदी दुखी रहन विहाय परम पुलाना अंदला फिर आवै जाय नदर करे।

मामदी पापी पचह पचाई सो प्रभ नदर ना आवई मनमुख बूझ ना पाई जिस विखाले सोई वेखै नानक गुरमुख पाई। श्री राग महला तीजा बिन गुर रोग ना तुटई हम मैं पीड़ ना जाए गुर प्रसादी मन वसै नामे रह समाई। गुर शब्दी हर पाई है बिन शब्द भरम भुलाए मन रे निज कर वासा होए राम नाम सलाहे तू फिर आवन जान ना होए रहाउ। हर इको दाता वर्तदा दूजा अवर ना कोई शब्द सलाही मन वसै सहजे ही सुख होए सब नदनी अंदर वेखदा जय पावै तै दे हम मैं।

आनंद सदा सुख है जिन्ना सच नाम आधार गुर शब्दी सच पाया दुख निवारण हार सदा सदा साचे गुण गाव है साचे नाही प्यार कृपा करके अपनी दितोन भगत भंडार मन रे सदा आनंद गुण गाए सच्ची बाणी हर पाई है हर सिउ रह समाई रहाउ सच्ची भगती मन लाल थिया रत्ता सहज सुभाए गुर शब्दी मन मोहया कहना कछु ना जाय जिहवा रत्ती शब्द सच्चे अमृत पीवै रस गुण गाय गुरमुख एहो रंग पाई है जिसनु कृपा करे रजाय संसार एहो संसार है सुतियां रहन विहाय एक अपने भाणे कड लयन आपे लयन मलाय आपे ही आप मन वसिया माया मोह चुकाय आप वडाई दितियन गुरमुख दे बुझाए सबना का दाता एक है भुलिया ले समझाई एक आपे आप खुआयन

पात्र जिचर गुर शब्द ना करे प्यार मन मेरे सतगुर कह पाण चल निज कर वसह अमृत पीवह ता सुख लह महल रहाउ अवगुणवंती गुण को नहीं बहन ना मिले हदूर मनमुख शब्द ना जानी अवगण सो प्रभ दूर जिन्नी सच पछाणिया सच रते भरपूर गुर शब्दी मन बेदिया प्रब मिलिया आप हदूर आपे रंगन रंगियोन शब्दे लयन मलाय सच्चा रंग न उतरै जो सच रते लिवलाय चारी कुंडा भव थके मनमुख बूझ ना पाय जिस सतगुर मेले

मिल प्रीतम दुख कटिया शब्द मलावा होए सच खटना सच रास है सच्ची सच्ची सोए सच मिले से ना बिछड़ है नानक गुरमुख होए श्री राग महला तीजा आपे कारण करता करे श्रेष्ट देखे आप उपाय सब एको एक वर्तदा अलख ना लखिया जाय आपे प्रभु दयाल है आपे दे बुझाए गुरमती सद मन वसिया सच रहे लिवलाय मन मेरे गुर की मन लहर जाय मन तन शीतल सब थी है नाम वसै मन आय रहाउ जिन कर कारण धारिया सोई सार करे गुर कै शब्द पछाणिया जाय आपे नजर करे ते जन शब्दे सोहणे तित सच्चै दरबार गुरमुख सच्चै शब्द रत्ते आप मेले करतार गुरमती सच सलाहना जिसदा अंत ना पारावार घट घट

सोई। गुरमुख बाणी ब्रह्म है, शब्द मिलावा हुई। नानक नाम संभाल तू, जित सेवे है सुख होई। श्री राग महला तीजा, जग हुमै मैल दुख पाया। मल लागी दूजे पाई, मल हुमै धोती किवै न उतरै। जे सो तीर्थ नहाई, बहु

का निर्मल हुए मन मुख हर हर कर थके मैल ना सकी तो होए रहाओ मन मैल है भगत ना होवे नाम ना पाया जाए मन मुख मैले मैले मोए जासन पत गुआए गुर प्रसादी मन वसे मल हम मैं जाए समाए ज्यों अंधेरा दीपक बाली है त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजाए हम किया हम करहेंगे हम मूर्ख गावार करने वाला विसरिया दूजे पाए प्यार माया जेवड़ दुख नहीं सब भव थके संसार गुरमति सुख पाई है सच नाम उरतार जिसनो मिले सो मिले हम तिस बलिहार जाऊं ए मन भगती रत्या सच बाणी निज थाऊ मन रत्ते जिहवा रत्ती हर गुण सच्चे गाऊ नानक नाम ना विसरे सच्चे माहि समाऊ श्री राग महला चौथा घर पहला।

पिछा तिन सजना प्रभ कित बिद मिले मलाई मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर ना कोय हम मूर्ख मुग्ध शरणागती कर कृपा मेले हर सोए रहाउ सतगुरु दाता हर नाम का प्रभ आप मलावे सोए सतगुरु हर प्रभ बुझिया गुर जीवड अवर ना कोए हाँ गुर सरनाई टह पवा कर दया मेले प्रभ सोए मन हठ किने ना पाया कर अपाव थके सब कोए सहस सियाणप कर रहे मन कोरे रंग ना होए कूड़ कपट किने ना

थी मेरे सतगुर नाम दृढ़ाई रहाउ। नाम अमूलक रतन है पूरे सतगुर पास, सतगुर सेवै लगिया कड रतन देवै परगास। धन वड भागी वड भागिया जो आए मिले गुर पास, जिन्ना सतगुर पुरख न भेटे हो से भागहीन वस काल। ओए फिर जोन पुआई है विच विस्ता कर विकराल, ओना पास दुआस न पिती है जिने अंतर क्रोध चंडाल। सतगुर पुरख अमृत सर वडभागी नावह आए, हुन जन्म जन्म की मैल उतरै निर्मल नाम दृढ़ाए। जन नानक उत्तम पद पाया

पाई। गुरमुख सज्जन गुण कारिया मिल सज्जन हर गुण गाई। हीरे हीर मिल भेदया रंग चलूले नाई। मेरे गोविंदा गुण गावा तृप्त मन होए अंतर प्यास हर नाम की। गुर तुस मलावै सोए रहाओ मन रंगो वड भागी हो। गुर तुठा करे पसाओ गुर नाम दरडाए रंग स्यो। हौ सतगुर कै बल जाओ बिन सतगुर हर नाम ना लभई। लख कोटि कर्म कमाओ बिन भागा सतगुर ना मिले। कर बैठिया निकट नित पास अंतर अज्ञान दुख भरम है। विच पड़दा दूर पई आस बिन सतगुर भेटे कंचन ना थीऐ। मनमुख लोहो बूढ़ा बेड़ी पास सतगुर बोहत हर नाव है। इत बिद चढ़िया जाय सतगुर कै पाणे जो चलै। विच बोहित बैठा आए तन तन वड भागी नानका। जिन्ना सतगुर लए मलाए श्री राग महला चौथा। हौ पंथ दसाई नित खड़ी कोई प्रभ दसे तिन जाऊं। जिन्नी मेरा प्यारा रावया

दिल मलाए। हों सतगुर मिटो वारिया जिन हर प्रभ दिया दिखाए। रहाओ हुए नमाणी तह पवा पूरे सतगुर पास निमाणिया गुरमान है। गुर सतगुर करे सबास हों गुर सालाहे न रजू मैं मेले हर प्रभ पास। सतगुरु नो सब को लोचदा जेता जगत सब कोई बिन भागा दर्शन ना थीए भागहीन बहर होए। जो हर प्रभ पाणा सो थिया तुर लिखिया ना मिटै कोई। आपे सतगुर आप हर आपे मेल मलाए आप दया कर मेल सी गुर सतगुर पीछे पाए। सब जग जीवन जग आप है नानक जल जलह समाए। श्री राग महला चौथा रस अमृत नाम रस अत भला कित बिद मिले रस खाए। जाए पुछो हो सोहागनी तुसा क्यों कर मिलिया प्रभ आए। ओए वे परवाह ना बोलनी हो मल मल तुआ तिन पाए। पाई रे मिल सज्जन हर गुणसार सज्जन सतगुर पुरख है दुख कड्डे हो मैं मार। रहाओ गुरमुखियां सुहागनी तिन दया पई मन आई। सतगुर वचन रतन है जो मन्ने सो हर रस खाए। से वड भागी वड जानी है जिन हर रस खादा गुर पाए। एहो हर रस वण तिन सबत है भागहीन नहीं खाए। बिन सतगुर पल्ले ना पवे मन मुख रहे बिललाए। ओए सतगुर आगै ना निमह ओना अंतर क्रोध बलाए। हर हर हर रस आप है आपे हर रस होए। आप दया कर देवसी गुरमुख अमृत चोए। सब तन मन हरिया होया नानक हर वस्या मन सोए। श्री राग महला चौथा दिन स चढ़ै फिर आथवै रैन सबाई जाए। आव कटै नर ना बुझै नित मूसा लाज टुकाए। गुड़ मिठा माया पसरिया मनमुख लग माखी पचै पचाए। भाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए पुत कलत मोह बिख है अंत बेली कोई ना होए। रहाओ गुरमत हर लिव उबरे अलिपत रहे सरनाए। उन्नी चलन सदा निहालिया हर खर्च लिया पत पाए। गुरमुख दरगाह मनी है हर आप लए गल लाए। गुरमुखा नु पंथ प्रगटा दर ठाक न कोई पाए। हर नाम सलाहन नाम मन नाम रहन लिव लाए। अनहद धुनी दर वज दे दर सच्चै सोभा पाए। जिन्नी गुरमुख नाम सलाहया तिन्ना सब को कह सबास। तिनकी संगत देह प्रभ मैं जाचक की अरदास। नानक भाग वड्डे तिन्ना गुरमुखा जिन अंतर नाम परगास। श्री राग महला पंजवां कर पहला क्या तू रत्ता देख कै पुत्र कलत्र शिंगार। रस भोग है खुशियां करह मान है रंग अपार। बहुत करह परमायसी वरत है हुए अपार। करता चेतना आवई मन मुख अंध गुवार। मेरे मन सुख दाता हर सोए गुर प्रसादी पाईए कर्म प्राप्त होए। रहाओ कपड़ भोग लपटाया।

पारमाना जिस जेवड अवर ना कोई जिस सिमरत सुख होए घना दुख दर्द ना मूले होए सदा सदा कर चाकरी प्रभ साहिब सच्चा सोए साध संगत होए निर्मला टटिया जम की फास सुख दाता पह पंजनो तिस आगे कर अरदास मेहर करे जिस मेहरवान ता कारज आवै रास बहुतो बहुत बखाणी है ऊचो ऊचा थाउ वरना चिहना बाहरा कीमत कह ना सकाउ नानक को प्रभ मया कर सच देव हो अपना नाउ श्री राग महला पंजवा नाम त्याए सो सुखी इस मुख उजल होए पूरे गुरते पाईए प्रगट सबनी लोए साध संगत कै घर वसै एको सच्चा सोए मेरे मन हर हर नाम त्याए नाम सह

माया का रंग सब फिक्का जातु बिनस निदान जा कै हृदय हर वसै सो पूरा प्रदान साधु की हो रेण का अपना आप त्याग अपार सियाणप सगल छड गुर की चरणी लाग तिसह प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होए भाग तिसह प्राप्त पाई हो जिस देव प्रभ आप सतगुर की सेवा सो करे जिस बिनसै हम मैं ताप नानक कौ गुर भेटिया बिनसे सगल संताप श्री राग महला पंजवा एक पछाणु जी का इको रखन हार इकस का मन आसरा इको प्राण आधार तिस सरनाई सदा सुख पार ब्रह्म करतार मन मेरे सगल उपाव त्याग गुर पूरा

मात पिता एकस की मन टेक है, जिन जियो पिंड दिता सो प्रभ मनोह ना विसरै, जिन सब किस वस कीता घर इको बाहर इको थान तनंतर आप, जी जंत सब जिन किए आठ पहर तिस जाप, एकस सेती रत्या ना हुवी सोग संताप, पार ब्रह्म प्रभ एक है दूजा नाही कोय, जियो पिंड सब तिसका जो तिस भावै सो होय, गुरपूरै पूरा भया जप नानक सच्चा सोए, श्री राग महला पंजवा जिन्ना सतगुर स्यों चित लाया, से पूरे प्रधान जिनको आप दयाल होए, किन उपजै मन ज्ञान जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम, मन मेरे एको नाम त्याए सर्व सुखा सुख उपजह दरगाह पैंदा जाए, रहाउ जन्म मरण का पाउ गया पाउ भगत गोपाल, साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल, जन्म मरण की मल कटी है गुरदर्शन देख निहाल, थान थनंतर रव रहया

जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान तिनकी शोभा निर्मली प्रगट पई जहान जिन्नी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान श्री राग महला पंजवा मिल सतगुर सब दुख गया हर सुख वसिया मन आय अंतर ज्योत परगासिया एक सस्यो निवलाय मिल साधु मुख उजला पूर्व लिखिया पाय गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचै नाय मेरे मन गुर शब्दी सुख होय गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए ना कोई रहाव मन कीआं इच्छा पूरिया पाया नाम निदान अंतर जामी सदा संग करने हार पछान गुर प्रसादी मुख उजला जप नाम दान इशनान काम क्रोध लोभ बिनसिया तजिया सब अभमान पाया लाहा लाभ नाम पूर्ण होए काम कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम आवन जाना रह गया आप हुआ मेहरवान सच महल घर पाया गुर का शब्द पछान भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार हलत पलत मुख उजले साचे के गुणसार आठ पहर गुणसार दी रत्ती रंग अपार पार ब्रह्म सुख सागरो नानक सद बलिहार श्री राग महला पंजवा पूरा सतगुर जी मिले पाईए शब्द निदान कर कृपा प्रभ अपनी जपिए अमृत नाम जन्म मरण दुख काटिए लागे सहज ध्यान मेरे मन प्रभ सरनाई पाए हर बिन दूजा को नहीं एको नाम त्याए रहाव कीमत कहण ना जाइए सागर गुणी अथाह वडभागी मिल संगति सच्चा शब्द वसाह कर सेवा सुख सागर है सिर शाह पातशाह चरण कमल का आसरा दूजा नाही थाव मैं धर तेरी पार ब्रह्म तेरे तान रहाव ने माणिया प्रभ मान तू तेरे संग समाव हर जपिए आराधिए आठ पहर गोविंद जी प्राण तन धन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तिस सच सियो मरै ना आवै जाय ना वे छोड़िया विछड़ै सब मह रहिया समाय दीन दर्द दुख भंजना सेवक कै सत पाए अचरज रूप निरंजनो गुर मेलाया माय भाई रे मीत करहो प्रभ सोय माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसै कोय रहाव दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार सखा सहाई अत वड्डा ऊंचा वड्डा अपार बालक बिरध ना जानिए निश्चल तिस दरबार जो मंगिए सोई पाईए निधारा आधार जिस पेखत किल विख रह मन तन होवे शांत एक मन एक त्याई है मन की लाहे प्रांत गुण निधान नवतन सदा पूर्ण जाकी दात सदा सदा आराधी है दिन विसरहो नहीं रात जिनको पूर्व लिखिया तिनका सखा गोविंद तन मन तन अर्पी सबो सगल वारिय एह जिंद देखै सुनै हदूर सद कट कट ब्रह्म रविंद किरत कणा नु पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद श्री राग महला पंजवा मन तन धन जिन प्रभ दिया रखिया सहज सवार सर्ब कला कर थापिया अंतर ज्योत अपार सदा सदा प्रभ सिमरिय अंतर रख उर तार
मेरे मन हर बिन अवर ना कोय, प्रभ सरनाई सदा रहो, दुख ना व्यापै कोय रहाउ। रतन पदार्थ मानका सोयना रूपा खाक, मात पिता सुत बंध पा कूड़े सबे साक, गिनकी तात सह ना जानी मन मुख पास न पाक, अंतर बाहर रव रहया तिसनो जाने दूर, तृष्णा लागी रच रहया अंतर हौ मैं कूर, भगती नाम विहूनिया आवह वंजह पूर, राख लेहो प्रभ करनहार जी जंत कर दया, बिन प्रभ कोई न रखनहार महा बिकट जम भया, नानक नाम न विसरौ कर अपनी हर मया, श्री राग महला पंजवा, मेरा तन अर धन मेरा राज रूप मैं देस, सुत दारा बनता अनेक बहुत रंग अरवेस, हर नाम हृदय ना वसई कार्य कितै ना लेख, मेरे मन हर हर नाम त्याए कर संगत नित साधकी, गुर चरणी चित लाए रहाउ। नाम निदान त्याई है मस्तक होए भाग, कार्य सब सुवारी है गुर की चरणी लाग, हौ मैं रोग भ्रम कटी है ना आवे ना जाग, कर संगत तू साधकी अठ सठ तीर्थ नाओ, जियो प्राण मन तन हरि साचा इहो सुआउ। एथे मिलह वडाइया दरगह पावह थाउ, करे कराए आप प्रभ सब किस तिस ही हाथ, मारिया पे जी

आर्य है। अवगुण कट्टण हार बिन हर नाम ना सुख होए, कर डिठे विस्थार सहजे सिफती रत्या भवजल उतरे पार। तीर्थ वर्त लख संजमा पाइय साधु धूर।

आस बिन सच्चे सब कूड़ है, अंते हुए बनास रहाउ साहिब मेरा निर्मला, तिस बिन रहन ना जाए, मेरे मन तन भुख आते अगली, कोई आन मलावे माई, चारे कुंडा पालिया सह बिन अवर ना जाए, तिस आगे अरदास कर जो मेले करतार, सतगुर दाता नाम का पूरा जिस पंडार, सदा सदा सलाही है अंत न पारावार, पर्वतगार सलाही है जिस दे चलत अनेक, सदा सदा हारा दी है एहा मत वसेख, मन तन मिठा तिस लगे जिस मस्तक नानक लेख, श्री राग महला पंजवा संत जन हो मिल भाई हो, सच्चा नाम संभाल तुसा बंद हो जी का, एथे उथे नाल गुरपुरे ते पाई है अपनी नजर निहाल, कर्म प्राप्त तिस होवे जिसनो हो।

ना को सुजे गुरमेले सच सोए रहाव सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए गुर चरनी जिन मन लगा सेवड भागी माए गुरदाता समरथ गुर गुर सब मह रहया समाए गुर परमेश्वर पार ब्रह्म गुर डुबदा लय तराय कित मुख गुर सालाही है कर्म कारण समरथ से मथे निचल रहे जिन गुर धारिया हाथ गुर अमृत नाम पी आलिया जन्म मरण का पथ गुर परमेश्वर सेवया पै भंजन दुख लथ सतगुर गहर गंभीर है सुख सागर अग खंड जिन गुर सेवया अपना जमदूत ना लागे डंड गुर नाल तुल ना लगे खोज दिथा ब्रह्मांड नाम निधान सतगुर दिया सुख नानक मन मेहमंड श्री राग महला पंजवां मिठा करके खाया कौड़ा उपजया साध भाई मीत सुरद किए बिख्या रचया बाद जांदे बिलम ना हो गई बिन नावै विस्माद मेरे मन सतगुर की सेवा लाग जो दिसै सो विनसना मन की मत त्याग रहाओ ज्यों कूकर हरकाया तावै दह दिस जाय लोभी जंत ना जाने पाख अपाख सब खाय काम क्रोध मद व्यापिया फिर जोनी पाय माया जाल पसारिया पीतर चोग बनाय तृष्णा पंखी फासिया

हर जन हर लिव उदरी नानक सद बलिहार श्री राग महला पंजवां कर दूजा गोयल आया गोयली क्या।

न परौणी उठ चल सह परबात क्या तू रत्ता गिरस्त स्यों सब फुल्ला की बागात मेरी मेरी क्या करह जिन दिया सो प्रभ लोड़ सर परे उठी चलना छड जासी लख करोड़ लख चौरासी भ्रमतियां दलब जन्म पायो ए नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आयो ए श्री राग महला पंजवां पिचर वसह सहेलड़ी जिचर साथी नाल जां साथी उठी चलिया

सोहरड़ै सुख वस गुर मिल चज अचार सिख तुद कदे ना लगै दुख सबना सोहरै वंजना सब मुकलामन हार नानक तन सुहागनी।

किसह त्यागु मन मेरे सर्ब को आधार। गुर के चरण मन मह त्याई छोड़ सगल सियाणपा साच शब्द लिव लाए रहाओ। दुख कलेश ना पौ ब्यापै गुरमंत्र हृदय होए कोट जतना कर रहे गुर बिन करियो ना कोई। देख दर्शन मन साधारे पाप सगले जाहि हौ तिनके बलिहार ने जे गुर की पैरी पाहि। साध संगत मन वसै साच हर का नाऊ सेवड़ भागी नानका जिन्ना मन एहो पाओ। श्री राग महला पंजवां संच हर धन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार। जिन तो साज सवारिया हर सिमर होए उदार। जप मन नाम एक अपार प्राण मन तन जिनह दिया हृदय का आधार। रहाओ काम क्रोध अहंकार माते व्यापिया संसार। पौ संत सरणी लाग चरणी मिटै दुख अंधार।

जिस दे प्रभ निरंकार जो दिसै सो सगल तू है पसरिया पासार। कहो नानक गुर भरम काटिया सगल।

मान अपमान मंदे सो सेवक नाही, तात समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन एहु कीर्त करला, कथन कहन ते मुक्ता।

हर हर नाम संभाल, साधु संगत मन वसै, पूर्ण होए काल रहाउ। गुर समरथ अपार गुर, वडभागी दर्शन होए, गुर अगोचर निर्मला, गुर जीवड़ अवर ना कोई, गुर करता गुर करनहार।

अपार गुरी उच्चा अगम अपार गुर की महिमा अगम है क्या कथे कथन हार जितड़े फल मन बांछी है तितड़े सत गुर पास पूर

पहला घर पहला अष्टपदियां आख आख मन वावना ज्यों ज्यों जापै वाई जिसनु वाहे सुनाई है सो केवड़ कित थाई आखण वाले जे तड़े

पापी कीतड़ा लिखना जाने कोई। जे सौ साहिर मिलिए तिल ना पुजावह रोई। कीमत किने ना पाईया सब सुन सुन आख सोई। पीर पै कामर सालक साधक सुहदे और शहीद। सेख मसायक काजी मुल्ला दर दरवेश रसीद। बरकत तिन को अगली पढ़दे रहन दरूद। पुछ ना साजे पुछ ना ताही

तुद पावन सुहागनी अपनी कृपा लह सवार रहाउ गुर शब्दी शिंगारियां तन मन पिर कै पास दुए कर जोड़ खड़ी तकै सच कह अरदास लाल रत्ती सच पै वसी पाए रत्ती रंग।

द्वार, दीपक शब्द विगासिया, राम नाम उरहार, नारी अंदर सोहनी, मस्तक मणि प्यार, सुबा सुरत सुहावनी, साचे प्रेम अपार, बिन पेर पुरख ना जानी, साचे गुर कहित प्यार, निस अंधारी सुतिए, क्यों पिर बिन रैन विहाय, अंक जलो तन जालियो, मन धन जल बल जाय, जां धन कंत ना राविया, ता बिरथा जो बन जाय, सेजे कंत में लड़ी, सूती बूज ना पाए, हौं सुती पिर जागना, किस को पूछो जाय, सतगुर मेली पै वसी,

सच रास साची दरगाह बैसई भगत सच्ची अरदास पत स्यों लेखा निबड़ै राम नाम परगास ऊंचा ऊंचो आखिए

रहाउ। सब जग बांधु काल को बिन गुर काल अपार, सच रते से उबरी दुबदहा छोड़ विकार। हौ किन कै बलिहार ने दर सचै सत्यार, सी चाने ज्यो पंखियां जाली बद कहात। गुर राखे से उबरे होर फाथे चो गै साथ, बिन नावे चुन सुटी है कोई ना संगी साथ। सचो सच्चा आखिय सच्चे सच्चा थान, जिन्नी सच्चा मन्या इन मन सच ध्यान। मन मुख सूचे जानिय है गुरमुख जिन्ना ज्ञान। सतगुर अगे अरदास कर साजन दे मलाए, साजन मिले सुख पाया जमदूत मोए बिख खाए। नावै अंदर हौ वसा नाओ वसै मन आए, बाज गुरु गोबार है बिन शब्द बूझ ना पाए। गुरमति परगास हुई

रहाउ। गिन राशि वापारिया तके कुंडा चार, मूल ना बुझै अपना वस्त रही घर बार। गिन वखर दुख अगला कूड़ मुठी कुड़ियार, लाहा एहन सनौतना परखे रतन विचार। वस्त लह कर अपने चल कारज सार, बण जारिया स्यों बणज कर गुरमुख ब्रह्म विचार। संतां संगत पाई है जे मेले में लड़हार, मिलिया हुए ना विछड़े

सोहु प्रभ जानिए साचो साचे नाई सा तन खरी सुहावनी जिन पिर जाता संग महली महल बुलाई है सो पिर रावे रंग सच सुहागन सा भली पिर मोही गुण संग पूली पूली थल चढ़ा थल चर डूंघर जाऊं बन मह भूली जे फिरा बिन गुर बूझ ना पाऊं नाम भूली जे फिरा फिर आऊ जाऊं पुछो जाए पंधाऊआ चले चाकर होई राजन जाने अपना दर कर ठाक ना होई नानके को रव रहया दूजा अवर ना कोई श्री राग महला पहला गुरते निर्मल जानिए निर्मल दे शरीर निर्मल साचो मन बसै सो जाने अब पीर सहजै ते सुख अगलो ना लागै जम तीर पाई रे मैल नाही निर्मल जल नाए निर्मल साचा एक तू होर मैल भरी सब जाए रहाओ हर का मंदर सोना किया करने हार राव सस दीप अनूप ज्योत त्रिभवन ज्योत अपार हाट पटन गढ़ कोठड़ी सच सौदा व्यापार ज्ञान अंजन पै भंजना देख निरंजन पाए गुपत प्रगट सब जानिए जे मन राखै ठाई ऐसा सतगुर जे मिले ता सहजे लय मलाए कस कस वट्टी लाइए परखे हित चित लाए खोटे ठहर ना पाईनी खरे खजाने पाए आस अंदेसा दू

दुख अगला मन मुख बूझ ना होई सुख दुख सम कर जानिए शब्द भेद सुख होई वेद पकारे वाचिए वाणी ब्रह्म व्यास मुन जन सेवक साधिका नाम रते गुणतास सच रते से जिन गए हौ सद बलिहारे जास चहु जुग मैले मल भरे जिन मुख नाम ना होए भगती पाए विहूणिया मुह काला पत खोए जिन्नी नाम वसारिया अवगण मुठी रोए खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए आप पछाण घर वसे हमें तृष्णा जाए नानक निर्मल उजले जो राते हर नाए श्री राग महला पहला सुन मन भूले बावरे गुर की चरनी लाग हर जप नाम त्याए तू जम डर पै दुख भाग दुख घणो दोहागनी क्यों थिर रह सुहाग भाई रे अवर नाही मैं थाऊं मैं तन नाम निदान है गुर दिया बल जाऊं रहाऊ गुरमत पत साबास तिस तिस कै संग मलाऊ तिस बिन घड़ी ना जीवऊ।

ते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार नाम सलाहन सद सदा हर राख है उधार सो क्यों मनहु विसारी है सब जिया का आधार शब्द मरे सो मर रहे फिर मरे ना दूजी वार शब्द ही ते पाईए हर नामे लगे प्यार बिन शब्द जग भूला फिरे मर जन्मे वारु वार सब सलाह है आपको बड़ो बडेरी होए गुर बिन आप ना चीनी है कहे सुने क्या होए नान

पिर से जड़ी गूड़ा हेत प्यार गुरमुख जान सियाणी है गुर मेली गुण चार सच मिनु वर कामणी फिर मोही रंग लाए मन तन साच विगसिया कीमत कहन ना जाए हर वार घर सुहागनी निर्मल साच नाए मन मह मनुआ जी मरे ता फिर रावे नार इकतता गैराल मिले गाल मोतियन का हार संत सभा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार खिन मह उपजे खिन खपै।

तो लिया कथन ना पाया जाए व्यापारी बन जा रिया आए वजून खाए कार कमाव है सच की लाहा मिलर जाए पूंजी साची गुर मिले ना तिस तिल ना तमाई गुरमुख तोल तोलाए सी सच तराजी तोल आसा मनसा मोहनी गुरठा की सच बोल आप तलाए तोल सी पूरे पूरा तोल कथन कहन ना छुट्टी है ना पढ़ पुस्तक पार काया सोच ना पाई है।

कै बिन जल मरनत ने मन रे क्यों छूट है बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहया बख्शे भगत भंडार रहा रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी मछली नीर ज्यो अधिको त्यों सुख कणु मन तन शांत शरीर बिन जल घड़ी ना जीवई प्रभ जाने अब पीर रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी चात्रक में सर पर थल हरियावली एक बूंद ना पवई के कर्म मिले सो पाई है किरत पया सिर दे रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी जल दुध होए आवटन आपे खवै दुध कौ खपण ना दे आपे मेल वशुन्या सच वडे आई दे रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी चकवी सूर खिन पल नींद ना सोवई जाने दूर हजूर मन मुख सो जी ना पवै गुरमुख सदा हजूर मन मुख गणत गणामणी करता करे सो होए तां की कीमत ना पवै जे लोचै सब कोए गुरमत होए तां पाईऐ सच मिलै सुख होए सच्चा नेहो ना टुटई जे सतगुर भेटै सोए ज्ञान पदार्थ पाईऐ त्रिभवन सोजी होए निर्मल नाम ना विसरै।

आई मनमुख सूझी ना पवै बिछड़ चोटा खाई नानक दर कर एक है अवर ना दूजी जाय श्री राग महला पहला मनमुख भुलै भलाई।

माया परम भुलाई परम भुली दोहागणी ना फिर अंक समाई रहाउ भूली फिरै दसंतरी भूली ग्रह तज जाय भूली डूंगर थल चढ़ै पर मैं मन डोलाय तुरहु विछुनी क्यों मिलै गर्भ मुठी बिल लाय बिछड़िया गुर मेल सी हर रस नाम प्यार साच सहज सोभा कणी हर गुण नाम आधार ज्यों पावे त्यों रख तू मैं तुझ बिन कवन पतार अखर पढ़ पढ़ भुलिए भेखी बहुत अभमान तीरथ नाता क्या करे मन मह मैल गुमान गुर बिन किन समझाइए मन राजा सुन कान प्रेम पदार्थ पाइए गुरमुख तत विचार सा तन आप गवाया।

वाचा करी मन निर्मल सुख होए गुर का शब्द मन वसिया हूं मैं विचो खोए नाम पदार्थ पाया लाभ सदा मन होए कर्म मिले ता पाईए आप ना लया जाए गुर की चरनी लग रहो विचो आप गवाए सच्चे से तीरतिया सचो पल्ले पाए भुलने अंदर सब को अपुल गुरु करतार गुरमत मन समझाया लागा तिसै प्यार नानक साच ना।

मैं तुझ बिन अवर न पावई, तू पावह सुख होए रहाउ। नाम सलाही रंग सिउ, गुर कै शब्द संतोख, जो दिसै सो चलसी।

तड़ी गुर बिन बूझ ना होए नाम वडाई जे मिले सच रपै पत होए जो तुद पावे से भले खोटा खरा ना कोई गुर सरनाई छुट्टी है मनमुख खोटी रास अष्ट धात पातशाह की घड़िए शब्द विगास आपे परखे पारखू पवे खजाने रास तेरी कीमत ना पवे सब डिठी ठोक बजाए कहने हाथ ना लगई सच टिके पत पाए गुरमत तू सलाहना होर कीमत कहन ना जाए जित तन नाम ना पावे तित

मन मुख जाने अपनी तियां पूत संजोग नारी देख भगासी है नाले हरख सो सोग गुरमुख शब्द रंगावले अहनस हर रस भोग चित चले वित जावणु साकत डोल डोलाई बाहर ढूंढ विगुची है कर्म है वस्त सुथाई मनमुख हो मैं करमुसी गुरमुख पल्ले पाई साकत निर्गुण आरिया अपना मूल पछाण रखत बिंद का एहो तनु अग्नि पास पिराण पवन कै वस देवरी मस्तक सच निशान बहुता जीवन मंगी है मुआ ना लोड़े कोई सुख जीवन तिस आखी है जिस गुरमुख वस्या सोय नाम विहूणे क्या गणी जिस हर गुर दर्श ना होय ज्यों सुपने निस भुली है जब लग निंदरा होय इउ सरपन कह वस जियड़ा अंतर हो मैं दोय गुरमत होए विचारी है सुपना एहो जग लोय अगन मरे जल पाई है जो बारक दूध माय बिन जल कमल सोना थी है बिन जल मीन मराय नानक गुरमुख हर रास में।

जो आया सो चल सी अमर सो गुर करतार पी सच्चा सालाहना सच्चे थान प्यार डर कर महला सोहणी पक्के कोट हजार हस्ती घोड़े पाखरे लश्कर लख अपार किस ही नाल ना चलिया खप खप मुए असार सोयना रूपा संतिया माल जाल जंजाल सब जग मह दोही फेरी है बिन नामे सिरकाल पिंड पड़े जियो खेल सी बद फैली क्या हाल पुत्ता देख विगसी है नारी सेज पतार चोआ चंदन लाई है कापड़ रूप शिंगार खेहू खेर लाई है छोड़ चले घर बार महर मलूक कहाई है राजा राव के खान चौधरी राव सदाई है जल बलिय अभमान मनमुख नाम वसारिया ज्यों डब ददा कान हों मैं कर कर जाए सी जो आया जग माही सब जग काजल कोठड़ी तन मन दे सवाही गुर राखे से निर्मले शब्द निवारी पाहे नानक तरिया सच नाम सिर शाह पातशाह मैं हर नाम ना विसरे हर नाम रतन वेसाह मनमुख भोजन पच मोए गुरमुख तरे अथाह श्री राग महला पहला कर दूजा मकाम कर कर बैसना।

अष्टपदियां। श्री राग महला तीजा कर पहला अष्टपदियां। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, गुरमुख कृपा करे भगत की जय। बिन गुर भगत ना होए, आपे आप मलाए बूझे, ता निर्मल होवे।

आई। बिन सतगुरु को मग ना जाने अंधे ठौर ना काई। हर सुख दाता मन नहीं वसिया अंत गया पछताई। पेई अड़ै जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया। अन दिन भगत करह दिन राती हमै मोह चुकाया। जिस स्यों राता तैसो हुए

फूक जै हमै तृष्णा मार। हर गुण दाता सद मन वसै सच रखिया उरतार। प्रभ मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाई। नाम निधान हर मन वसै हमै दुख सब जाई। सतगुर शब्द सुनाया हम सद बलिहारे जाऊं। अपने मन चित कह कहाई बिन गुरे आप ना जाई। हर जियो भगत वशल सुख दाता कर कृपा मन वसाई। नानक सोभा

पाई रहाउ। बिन सतगुर प्रतीत न आवे, नाम न लागो पाव, सुपनह सुख न पावी, दुख मह सवै समाई। जे हर हर कीचै बहुत लोची है, किरत न मेटिया जाय। हर का भाणा भगती मन्या, से भगत पए दर थाय। गुर शब्द दड़ावै रंग स्यों, बिन कृपा लया न जाय। जे सौ अमृत नीरी है, पी बिख फल लागै ताय। से जन सच्चे निर्मले, जिन सतगुर नाल प्यार। सतगुर का भाणा कमावंदे, बिख होमै तज बेकार। मन हठ कितै उपाय ना छूटी है, सिमरत शास्त्र शुद्ध हो जाय। मिल संगत साधु उभरे, गुर का शब्द कमाए। हर का

गुर प्रसादी पाईए कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा पंखी बिरख सुहावड़ा सच चुगै गुर पाए।

उधार सब नदरी कर्म कमावंदे नदरी बाहर ना कोए जैसी नदर कर देखे सच्चा कैसा ही को होए नानक नाम वडाइया कर्म प्राप्त होए श्री राग महला तीजा गुरमुख नाम त्याई है मनमुख बूझ ना पाई गुरमुख सदा मुख उजले हर

भाई दैत पुत कर्म धर्म किस संजम ना पड़े दूजा भाव ना जाने सतगुर भेटे निर्मल हुआ अन दिन नाम बखाने एको पढ़े एको ना बूझे दूजा अवर ना जाने खत दर्शन जोगी सन्यासी बिन गुर परम पलाए।

पंडित पड़ वाद बखान है बिन गुर परम पलाई लख चौरासी फेर पया बिन शब्द मुक्त ना पाई जां नाउ चेतै तां गत पाई जां सतगुर मेल मलाई सत संगत मह नाम हर उपजै जां सतगुर मिलै सुपाई मन तन अर्पी आप गवाई चला सतगुर पाई सत बलिहारी गुर अपने बिटो जे हर सीती चित लाई सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर सीती रंग राता प्रभ निकट बसै सबना घट अंतर।

बिन गुर पाया न जाय, पल पल पंडित जोत की थके, भेखी परम पलाय, गुर भेटे सहज पाया, अपनी कृपा करे रजाय। भाई रे गुर बिन सहज न होए, शब्द ही ते सहज उपजे, हर पाया सच सोई रहाओ, सहजे गाव्या थाई पवे, बिन सहजे कथनी बाद, सहजे ही भगत उपजे, सहज प्यार बैराग, सहजे ही ते सुख शांत हुए, बिन सहजे जीवन बाद, सहज सलाही सदा सदा, सहज समाद लगाई, सहजे ही गुण उचरै।

त्रै गुण भरम भलाए, पढ़िया गुणिया क्या कथिया, जा मुंडो कुत्था जाए। चौथे पद मह सहज है,

सहज मलाएसी शब्द मलावा होई, बिन सहजे सब अंध है माया मोह गुबार। सहजे ही सूझी पई सच्चे शब्द अपार, आपे बख्श मलायन पूरे गुर करतार। सहजे अधिष्ट पछाणिए निरपौ

शब्द जीवत मरै गुरमुख पव जल तरना वड्डा भाग नाउ पाईऐ गुरमत शब्द सुहाई आपे मन वसिया प्रभ करता सहजे रहिया समाई इक ना मनमुख शब्द ना पावे बंधन बंद पवाया

सच स्यों अपनी कृपा करे मलाई आपे करे कराए आपे इकना सुतियां दे जगाए आपे मेल मलाएंदा नानक शब्द समाए श्री राग महला तीजा सतगुर सेवे मन निर्मला भये पवित्र शरीर मन आनंद सदा सुख पाया भेटिया गहर गंभीर सच्ची संगत बैसना।

करी ना किस होवे काज कित आवे उस पार ब्रह्म ता निश्चल होवे राज जा को चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग ग्रिस्त कटम पलिटिया कदे

ब्रह्म तन मन शीतल होय काम क्रोध मोहे वस किया किरपन लोभ प्यार चारे किलविख उन अग किए हुआ असुर संगार पोथी गीत कवित किश कदे न करन धरिया चित आवे उस पार ब्रह्म ता निमख सिमरत तरिया सास्त सिमरत बेद चार मोखागर बिचरी तपे तपी सर जोगिया तीरथ गमन करे खट कर्मा ते दुगणे पूजा करता नाए रंग ना लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए राज मिलख सिखदारियां रस भोगण बिसथार बाग सुहावे सोहणे चलै हुक्म अफार रंग तमाशे बहु विधि चाए लग रहिया चित ना आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जून गया बहुत तनाड अचारवंत सोभा निर्मल रीत मात पिता सुत पाइया साजन संग परीत लश्कर तरकस बंद बंद जियो जियो सगली कीत चेतना आयो पार ब्रह्म ता खड़र सातल दीत काया रोग ना छिदर किस ना किस काड़ा सोग मृतना आवी चित तिस अहनस भोगै भोग सब किस कीतो ने अपना जिये ना संक धरिया चेतना आयो पार ब्रह्म जम कंकर वस परिया किरपा करे जिस पार ब्रह्म होवै साधु संग ज्यो ज्यो ओह वधाई है त्यों त्यों हर स्यों रंग दोहां सिरियां का खसम आप।

घर पंजवां जानो नहीं भावै कवन बातां मन खोज मार्ग रहाव ध्यानी ध्यान लावह ज्ञानी ज्ञान कमावह प्रभ की नहीं जाता भगवती रहत जुगता जोगी कहत मुक्ता तपसी तपहराता मोनी मोन तारी सन्यासी ब्रह्मचारी उदासी उदास राता भगत नवै प्रकारा पंडित वेद पुकारा गृहस्थी गृहस्थ तरमाता एक शब्दी बहुरूप अवतूता कापड़ी कौते जागूता एक तीर्थ नाता निरहार वर्ती अपरसा एक लूक ना देवह दरसा एक मन ही ज्ञाता घाट ना कि नहीं कहाया सब कहते हैं पाया जिस मेले सो भगता सगल उकत उपावा त्यागी शरण पावा नानक गुर चरण पराता एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग महला पहला घर तीजा जोगी अंदर जोगिया तू भोगी अंदर भोगिया तेरा अंत ना पाया सुरग माच पाया।

मेरा गुण अवगन ना बिचारिया रब अपना बिरद संवारिया कंठ लाए कह रखियों लगे ना तत्ती वाऊ जियो मैं मन तन प्रभु ते आया जिए इच्छे अड़ा फल पाया सहा पातशाह सिर कसम तू जप नानक जीवै नाऊ जियो तुद आपे आप उपाया दूजा खेल कर दिखलाया सब सचो सच वर्तदा जिस भावै तिसै बुझाई जियो गुर प्रसादी पाया तिथै माया मोह चकाया किरपा करके अपनी आपे लए समाए जियो गोपी नै गोवालिया तुद आपे गोहे उठा लिया हुक्मी भांडे साजिया तू आपे भन सवार जियो जिन सतगुर स्यों चित लाया तिनी दूजा पाहु चुकाया निर्मल जोत तिन प्राणिया ओए चले जन्म सवार जियो तेरिया सदा सदा चंगे आईया मैं रात देह बड़े आईया अन मंगिया दान देवना कहो नानक सच संभाल जियो श्री राग महला पंजवा पै पाए मनाई सोए जियो सतगुर पुरख मलाया तिस जे वड़े अवन ना कोए जियो रहाओ गुसाई मेहंडा इठड़ा अम अबे थाम मिठड़ा पैन भाई सब सजना तुद जेहा ना ही कोए जियो तेरा हुक्मे सामने आया मैं सत का हल जो आया नाऊ बीजन लगा आस कर हर बोहल बख्श जमाए जियो हाँ गुर मिले एक पछाणदा दुइया कागल चेतना जानदा हर इक तै कारै लायोन ज्यो भावै तिवै नभाए जियो तुसी भोगे हो पुंचो हो भाई हो गुर दी बाण कवाए पैनाइयो हौ हो आ माहर पिंड दा बानियां दे पंज शरीक जियो हौ आया सामै ते हंडिया पंज किरसान मजेरे मेहंडिया कन कोई कड ना हंगई नानक बुट्टा को गगराऊं जियो हौ वारी घुमा जामदा इक साहा तुद त्याए दा उजड़ थेहो वसायो हौ तुद विटहो कुर्बान जियो हर इत्थै नित त्याए दा मन चिंदी सो फल पाए दा सबे काज सवारियन लाहियन मन की भुख जियो मैं छड़िया सबो तंदड़ा गुसाई सेवी सचड़ा नौ निद नाम निदान हर मैं पल्ले बद्दा शिक जियो मैं सुखी हूँ सुख पाया गुरे अंतर शब्द वसाया सतगुर पुरख विखा लिया मस्तक तर कै हाथ जियो मैं बद्दी सच धर्म साल है गुरसिखा लहंदा पाल कै पैर धुआं पखा फेरदा तिस निव निव लगा पाए जियो सुन गल्ला गुर पह आया नाम दान इशनान दड़ाया सब मुक्त हुआ सै सारड़ा नानक सच्ची बेड़ी चाड़ जियो सब श्रिष्ट सेवे दिन रात जियो दे कान सुनहो अरदास जियो फूक वजाए सब डिठिया तुस आपे नयन छडाए जियो हुण हुक्म हुआ मेहरवान दा पै कोई न किसै रियान दा सब सुखाली बुठिया एहो हुआ हले मीराज जियो।

हुक्म पया गर्भास दूजे पहरे रहन कह बन जा रहा मित्रा विसर गया ध्यान हथो हथ नचाइए बन जा रहा मित्रा ज्यो जसदा कर कान हथो हथ नचाइए प्राणी मात कह सुत मेरा चेत अचेत मूड मन मेरे अंत नहीं कछ तेरा जिन रच रचिया तिसह ना जाने मन भीतर धर ज्ञान कहो नानक प्राणी दूजे पहरे विसर गया ध्यान तीजे पहरे रैण कै बन जा रहा मित्रा तन जोबन सिउ चेत हर का नाम ना चेत ही बन जा रहा मित्रा बद्दा छुट है जेत हर का नाम ना चेत प्राणी विकल भया संग माया तन सिउ रत्ता जोबन मत्ता अहला जन्म गवाया धर्म सेती वापार ना कीतो कर्म ना कीतो मेत कहो नानक तीजे पहरे प्राणी तन जोबन सिउ चेत चौथे पहरे रहन कै बन जा रहा मित्रा लावी आया खेत जां जम पकड़ चलाया बन जा रहा मित्रा किसे ना मिलिया भेत भेत चेत हर किसे ना मिलियो जां जम पकड़ चलाया झूठा रुदन हुआ दुआले खिन मह भया पराया साई वस्त प्राप्त होई जिस सिउ लाया हेत कहो नानक प्राणी चौथे पहरे लावी नुणिया खेत श्री राग महला पहला पहले पहरे रहन कै बन जा रहा मित्रा बालक बुद्ध अचेत खीर पिए खेलाइए बन जा रहा मित्रा मात पिता सुत हेत मात पिता सुत नेहो कनेरा माया मोह सबाई संजोगी आया किरत कमाया करनी कार कराई राम नाम बिन मुक्त न होई बूढ़ी दूजे हेत कहो नानक प्राणी पहले पहरे छूटेंगा हर चेत दूजे पहरे रहन कै बन जा रहा मित्रा पर जोबन मैं मत अहमिस काम व्यापिया बन जा रहा मित्रा अंदुले नाम ना चेत राम नाम घट अंतर नाही होर जाने रस कस मीठे ज्ञान ध्यान गुण संयम नाही जन्म मर हो गए झूठे तीर्थ वरत सुच संयम नाही कर्म धर्म नहीं पूजा नानक पाए भगत निस्तारा दुबधा व्यापे दूजा तीजे पहरे रहन कै बन जा रहा मित्रा सरहंस पलथड़े आए जोबन घटै जरुआ जिनह बन जा रहा मित्रा आम घटै दिन जाए अंतकाल पछतासी अंबले जां जम पकड़ चलाया सब कुछ अपना कर कर राखिया खिन मह भया पराया बुद्ध विसरजी गई सियाणप कर अवगुण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चित हो लिवलाए चौथे पहरे रहन कै बन जा रहा मित्रा बिरध भया तन खीन अखी अंध ना दिसई बन जा रहा मित्रा कन्नी सुने ना वैण अखी अंध जीव रस नाही रहे परा कौ ताणा गुण अंतर नाही क्यों सुख पावे मन मुख आवण जाना खड़ पक्की कुड़ भजै बिनसै आए चले क्या मान कहो नानक प्राणी चौथे पहरे गुरमुख शब्द पछाण ओड़क आया तिन सहया बन जा रहा मित्रा जर जरवाणा कन एक रत्ती गुण ना समाणिया बन जा रहा मित्रा अवगण खड़सन बन गुण संयम जावे चोट ना खावे ना तिस जमण मरना काल जाल जम जोहे ना साकै पाए भगत पै तरना पत सेती जावे सहज समावे।

मन वांछत फल देत है स्वामी, जी की बिरथा सारी, नाथ के नाते सब कै साथी, जप जुए जन्म ना हारी है, नानक की बेनंती प्रभ पह, कृपा कर पव जल तारी है, दखना धूड़ी मजन साधखे, साई थिए कृपाल, लद्दे हब्बे थोकड़े, नानक हर तन माल संत, सुंदर स्वामी ताम।

आप मूर्यो जस नानक आप सुनियो हे संत प्रेम ठगौरी पाए जाए गोविंद मन मोहया जियो संतन कै प्रसाद अगाद कंठे लग सोया जियो हर कंठ लग सोया दोख सब जोया भगत लखियन कर वस पए मन सर्ब सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए सखी मंगलो गाया इच पुजाया बहुड़ न माया होया कर गहलीने नानक प्रभ प्यारी संसार सागर।

नह मरी। सतगुर दयाल कृपाल भेट तहरे, काम क्रोध लोभ मारिया। कथन न जाए अकथ स्वामी, सदकै जाए नानक वारिया। श्री राग महला चौथा वणजारा, एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद। हर हर उत्तम नाम है, जिन सिरिया सब कोए जियो। हर जी सबे प्रतपालदा, घट घट रमैया सोए। सो हर सदा त्याई है, तिस बिन अवर ना कोए। जो मोहे माया चित लाइंदे, से छोड़ चले दुख रोए। जन नानक नाम त्याया, हर अंत सखाई होए। मैं हर बिन अवर ना कोए। हर गुर सरनाई पाईऐ बणजारिया मित्रा, वड भाग प्राप्त होए रहाओ। संत जना मिन पाईआ, हर किने न पाया नाउ। विच हऊं मैं कर्म कमावंदे, ज्यों वेसवा पुत निनाउ। पिता जात तां होईऐ, गुर तुठा करे पसाउ। वड भागी गुर पाया, हर एहलस लगा पाउ। जन नानक ब्रह्म पछाणिया, हर कीरत कर्म कमाओ। मन हर हर लगा चाओ, गुर पूरे नाम दरड़ाया। हर मिलिया हर प्रभ नाओ रहाओ। जब लग जोबन सास है, तब लग नाम त्याए। चलदिया नाल हर चल सी, हर अंते लए छडाए। हों बलिहारी तिनको, जिन हर मन उठायाए। जिन्नी हर हर नाम ना चेत्यो, से अंत गए पछताए। तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया, जन नानक नाम त्याए। मन हर हर प्रीत लगाए, वड भागी गुर पाया। गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ। हर आपे आप उपाएंदा, हर आपे देवैले। हर आपे भरम भलाएंदा, हर आपे ही मत दे। गुरमुखा मन परगास है, से विरले के ई के। हों बलिहारी तिनको, जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल परगासिया, मन हर हर उठड़ाए। मन हर हर जपन करे, हर गुर सरनाई भज पौ जिंदू। सब किल विख दुख पर हरे रहाओ। घट घट रमैया मन वसै, क्यों पाईऐ कित भत। गुरपूरा सतगुर भेटीऐ, हर आए वसै मन चित। मैं तर नाम आधार है, हर नामै ते गत मत। मैं हर हर नाम वसाहु है, हर नामे ही जत पत। जन नानक नाम त्याया, रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्याहु हो हर प्रभ सत, गुर बचनी हर प्रभ जानिया। सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ। जिनको पूर्व लिखिया, से आए मिले गुर पास। सेवक पाए वणजारिया मित्रा, गुर हर हर नाम परगास। तन तन वणजवा पारिया, जिन वखर लद्याड़ा हर रास। गुरमुखा दर मुख उजले, ते आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिन पाया, जिन्ना आप तुठा गुण तास। हर त्यावहु सास ग्रास, मन प्रीत लगी तिन्ना गुरमुखा। हर नाम जिन्ना रह रास रहाओ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्री राग की वार महला चौथा। सलोका नाल सलोक महला तीजा, रागा विच श्री राग है। जे सच तरे प्यार, सदा हर सच मन वसै। निःचल मत अपार, रतन अमोलक पाया। गुर का शब्द बीचार, जेवा सच्ची मन सच्चा। सच्चा शरीर अकार, नानक सच्चै सतगुर सेवै। सदा सच वापार महला तीजा। होर बिरहा सब तात है, जब लग साहिब प्रीत ना होए। एहो मन माया मोहया, वेखण सुनण ना होए। सह देखे बिन प्रीत ना उपजै, अंधा क्या करे। नानक जिन अखी लीतियां, सोई सच्चा दे पौड़ी।
हर इको करता एक इको दीवान हर हर इक सैदा है अमर इको हर चित धर हर तिस बिन कोई नाहि डर भ्रम भउ दूर कर हर तिसै नु सलाहि जे तुद रखै बाहर कर हर जिसनो होए दयाल सो हर जप भउ बिखम तर सलोक महला पहला दाती साहिब संदिया क्या चलै तिस नाल इक जा गंदे नाल हन इक ना सुतिया दे उठाल महला पहला सिदक सबूरी साधका सबर तो सा मलायका दीदार पूरे पायसा थाओ नाही खायका पौड़ी सब आपे तुद उपाय कै आप कारै लाई तू आपे वेख विगसदा अपनी वड्याई हर तुदहो बाहर किछ नाही तू सच्चा साई तू आपे आप वरतदा सबनी ही थाई हर तिसै त्यावहु संत जन हो जो लय छुड़ाई सलोक महला पहला फक्कड़ जाति फक्कड़ नाओ सबना जिया इका शाओ आप हो जे को भला कहाए नानक ता पर जापै जा पत लिखै पाए महला दूजा।

तू आपे कमल अलिप्त है, सह थां विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएंदा, एक निमख घड़ी कर ख्याल, हर तुदहो बाहर किस नहीं, गुर शब्दी वेख निहाल। सलोक महला तीजा, हुक्म न जाने बहुतारो है, अंदर धोखा नींद ना सोवे, जे तन खसम चले रजाई, दर कर सोभा महल बुलाई, नानक करमी एह मत पाई, गुर प्रसादी सच समाई। महला तीजा, मनमुख नाम विहूनिया, रंग कुसुम्बा देख ना भुल, इसका रंग दिन थोड़िया, सोचा इसदा मुल, दूजे लगे पच मोए,

आपे रिजक संबाहया एक वल छल करके खाम दे मुह कूड कुसत तिनी ढाया तुद आपे पावै सुह करह तुद ओतै कम ओए लाया इकना सच बुझायोन तिना अतुट भंडार दिवाया हर चेत खाहे तिना सफल है अचेता हाथ तड़ाया। सलोक महला तीजा। पढ़ पढ़ पंडित बेद बखान है माया मोह सवाई दूजे पाए हर नाम वसारिया मन मूर्ख मिले सजाए जिन जियो पिंड दिता तिस कबहू ना चेतै जो देंदा रिजक संभाए जम का पाहा गलहु न कटिया फिर फिर आवे जाए मनमुख किशु ना सूजे अंधोले पूर्व लिखिया कमाए पूरे भाग सतगुर मिले सुख दाता नाम वसे मन आए सुख मान है सुख पैनना सुखे सुख वेहाय नानक सो नाओ मनो ना विसारी है जित दर सच्चा सोभा पाए महला तीजा। सतगुर सेव सुख पाया सच नाम गुण तास गुरमती आप पछाणिया राम नाम परगास सचो सच कमावना वड्याई वड्डे पास जियो पिंड सब तिसका सिफत करे अरदास सच्चा शब्द सलाहना सुखे सुख निवास जप तप संयम मने माहे बिन नावे त्रिग जीवास गुरमती नाव पाईऐ मनमुख मोहे विनास ज्यों भावै त्यों राख तू नानक तेरा दास पौड़ी सब को तेरा तू सब सदा तू सब नारास सब तुदै पासु मंग दे नित कर अरदास जिस तू देहें तिस सब किश मिलै।

लख चौरासी फेर पया मर जम्मै होए खुआर। सतगुरु की सेवा सो करे जिसनो आप कराए सोए। सतगुरु विच नाम निदान है कर्म प्राप्त होए। सच रते गुर शब्द सियो तिन सच्ची सदा लिव होए। नानक जिसनो मेले ना विछड़ै सहज समावै सोई महला तीजा। सो भगौती जो भगवंत जानै गुर प्रसादी आप पछाणै। धावत राखै इकत घर आणै जीवत मरै हर नाम बखाणै। ऐसा भगौती उत्तम होए नानक सच समावै सोए महला तीजा। अंतर कपट भगौती कहाए पाखंड पार ब्रह्म कदे ना पाए। पर निंदा करे अंतर मल लाए बाहर मल धोवै मन की झूठ ना जाए। सत संग

पूर्व लिखिया सु मिटना न जाए, नानक बिन सतगुर सेवे मोख न पाए। पौड़ी सतगुर जिनी त्याया से कर न सुवाही, सतगुर जिनी त्याया से तृप्त अगाही। सतगुर जिनी त्याया तिन जम डर नाही, जिन को हुआ कृपाल हर से।

तार पिर छोड़िया घर अपना पर पुरखे नाल प्यार कृष्णा कदे ना चुकई जल्दी करे पुकार नानक बिन नावे कुरूपक सोहनी पर हर छोड़ी पतार महला तीजा शब्द रती सोहागनी सतगुर कै पाए प्यार सदा रावे पिरे अपना सच्चा प्रेम प्यार हत सवाल्यो सुंदरी शोभावंती नार नानक नाम सुहागनी मेली मेलन हार पौड़ी हर तेरी सब करह उस्तत जिन फाथे काढ़िया हर तुदनो करह सब नमस्कार जिन पापे ते राखिया हर नमाणिया तू मान हर डाढ़ी हूं तू डाढ़िया हर अहंकारियां मार निवाए मन मुख मूड साध्या हर भगतां दे वडियाई गरीब अनाथिया सलोक महला तीजा सतगुर कै भाणे जो चले तिस वडियाई वड्डी होए हर का नाम उत्तम मन वसै मेट न सकै कोय कृपा करे जिसे अपनी तिस कर्म प्राप्त होए नानक कारण करते वस है गुरमुख बूझै कोय महला तीजा नानक हर नाम जिनी अराध्या अन दिन हर लिवतार माया बंदी खसम की तिन अगै कमावे कार पूरा पूरा कर छोड़िया हुक्म सवार नहार गुर प्रसादी जिन बुझिया तिन पाया मुख द्वार मनमुख हुक्म ना जाननी तिन मारे जम जंदार गुरमुख जिनी अराध्या तिनी तरिया भौजल संसार सब औगण गुणी मटाया गुर आपे बख्शन हार पौड़ी हर की भगता प्रतीत हर सब किस जानदा हर जेवड़ नाही कोई जान हर धर्म बीचारदा काड़ा अंदेसा क्यों कीजै जा नाही अधर्म मारदा सच्चा साहिब सच न्याऊ पापी नर हारदा सलाह हो भगत हो कर जोड़ हर भगत जन तारदा सलोक महला तीजा अपने प्रीतम मिल रहा अंतर रखा उरतार सलाही सो प्रभ सदा सदा गुर कै हेत प्यार नानक जिस नदर करे तिस मेल लय साई सुहागन नार महला तीजा गुर सेवा ते हर पाई जा को नदर करे मानस ते देवते पहे त्याया नाम हरे हौ मैं मार मलायन गुर कै शब्द तरे नानक सहज समायन हरे अपनी कृपा करे पौड़ी हरे अपनी भगत कराए वडियाई वे खालियन अपनी आप करे प्रतीत आपे सेव कालियन हर भगतानो दे आनंद थिर घरी बहालियन पापिया नो ना दे थिर रहन चुन नरक घोर चालियन हर भगतानो दे प्यार कर अंग निसतारियन सलोक महला पहला कुबुद्ध डूमनी कुदया कसायन पर निंदा कट चूड़ी मुठी क्रोध चंडाल कारी कड़ी क्या थी है

प्राणी जरा मरण भव विसर गया, कटंब देख बिकसह कमला ज्यों, पर कर जो है कपट नरा, दूड़ा आयो हे जमह तना, तिन आग लड़ै मैं रहन ना जाए, कोई कोई साजन आई कहे, मिल मेरे बीठला लै बाहड़ी वलाए, मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए रहाओ। अनक अनक भोग राज बिसरे प्राणी, संसार सागर पै अमर पया, माया मूठा चेतस नाही जन्म गवायो आलसिया, विखम घोर पंथ चालना प्राणी, रव सस तह ना प्रवेशं, माया मोह तब बिसर गया, जा तजियले संसारं, आज मेरा मन प्रगट भया है, पेखी अले धर्म राहो, तह कर दल करन महाबली।

बदत त्रिलोचन रामैया श्री राग भगत कबीर जियो का अचरज एक सुनोरे पंडिया अब किस कहन न जाई सुर नार गण गंधर्व जिन मोहे त्रिभुवन में खुली लाई राजा राम अनहद किंगुरी बाजे जाकी दिष्ट नाद लिव लागे रहाओ पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया कनक कलस एक पाया तिसमह तार चोय अत निर्मल रसमह रसन चुआया एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजिया तीन पवन मह एको जोगी कहो कवन है राजा ऐसे ज्ञान प्रगटिया प्रखोतम कहो कबीर रंग राता और दुनी सब परम पलानी मन राम रसायन माता श्री राग बाण।

ए नार गर्भ कुंडल जब आसत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मादना एहनस एक अज्ञान सो नागा ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारिया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनहु बिसारिया फिर पछताव हैगा मूड़िया तू कमन कमत भ्रम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचरे अनरादा रहाओ बाल बनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोहे प्यापे रस मिसमेद अमृत बिख चाखी तो पंच प्रगट संतापे जप तप संयम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना अरादिया उछलिया काम काल मत लागी तो आन सकत गल बांधिया तरुण तेज पर त्रै मुख जो है सर अपसर ना पछाणिया उन्मत काम महा बिख भूले पाप पुन ना पछाणिया सुत संपत देख इहो मन गर्भिया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तोले तो भग मुख जन्म बगोया कुंडर केस कुसुम ते धौले सपत पाताल की बाणी लोचन श्रम है बुद्ध बल लाठी ता काम पव समाधानी ता ते बिखै भई मत पावस काया कमल कुमलाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाछै पछताना निकुट्टी दे देख धुन उपजै मान करत नहीं बूझै लालच करै जीवन पद कारण लोचन कशु ना सूझै थाका तेज उड्या मन पंखी तारे आंगन ना सुखाई देनी कह सुनो रे भगत हो मरन मुक्त किन पाई श्री राग तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा कनक कटक

तुम जो नायक आचहु अंतरजामी प्रभ ते जन जानी जय जन ते स्वामी शरीर आराध्य मोको विचार देहु रविदास सम दल समझावै को राग माज चौपदी कर पहला महला चौथा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद हर हर नाम मैं हर मन पाया वड भागी हर नाम ते आया गुरपूरै हर नाम सिद्ध पाई को विरला गुरमत चलै जियो मैं हर हर खर्च लिया बन पलै मेरा प्राण सखाई सदा नाल चलै गुरपूरै हर नाम दड़ाया हर निश्चल हर तन पलै जियो हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया कोई आन मलावै मेरे प्राण जीवाया।

करहो प्रतपाला, मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा, गुर जल मेल कमल विगसै जियो, मैं बिन गुर देखे नींद ना आवै, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगावै, हर हर दया करहु गुर मेलो, जन नानक गुर मिल रहस्य जियो। माज महला चौथा, हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए, मिल सत संगत हर गुण गाए, जग भौजल।

पुत्र सखा सुप्रीतम भाई, मैं दस्ते हर नर हरिय जियो, मेरी बेदन हर गुर पूरा जाने, हो रह ना सका बिन नाम वखाने, मैं औखद मंत्र दीजे गुरपूरे, मैं हर हर नाम उधरिय जियो, हम चातरक दीन सतगुर सरनाई, हर हर नाम बूंद मुख पाई, हर जल निद हम जल के मीने, जन नानक जल बिन मरिय जियो, माज महला चौथा, हर जन संत मिलो मेरे भाई, मेरा हर प्रभ दसो मैं भुख लगाई, मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते, मिल हर दर्शन मन भीजै जियो, मिल सतसंग बोली हर बाणी, हर हर कथा मेरे मन पानी, हर हर अमृत हर मन भावै, मिल सतगुर अमृत पीजै जियो, वडभागी हर संगत पावै, भागहीन भ्रम चोटा खावै, बिन भागा सतसंग ना लभै, बिन संगत मैल परिजै जियो, मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे, हर हर नाम दया मन तारे, गुरमत नाम मीठा मन पाया, जन नानक नाम मन पीजै जियो, माज महला चौथा, हर गुर ज्ञान हर रस हर पाया, मन हर रंग राता हर रस पी आया, हर हर नाम मुख हर हर बोली, मन हर रस टुल टुल पौंदा जियो, आवहु संत मैं गल में लाई है, मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाई है, हर के संत मिलो मन देवा, जो गुरबाणी मुख चौंदा जियो, वड भागी हर संत मलाया, गुरपुरे हर रस मुख पाया, भागहीन सतगुर नहीं पाया, मनमुख गर्भ जूनी नित पौंदा जियो, आप दयाल दया प्रभ तारी, मल हम मैं बिखिया सब नेवारी, नानक हट पटन विच काया, हर लैंदे गुरमुख सौदा जियो, माज महला चौथा, हों गुण गोविंद हर नाम त्याई, मिल संगत मन नाम वसाई, हर प्रभ अगम अगोचर स्वामी, मिल सतगुर हर रस की चै जियो, तन तन हर जन जिन हर प्रभ जाता, जाए पुछा जन हर की बाता, पाम मलुआ मल मल धुआ, मिल हर जन हर रस की चै जियो, सतगुर दातै नाम दिड़ाया, वड भागी गुर दर्शन पाया, अमृत रस सच अमृत बोली, गुरपूरे अमृत लीचै जियो, हर सत संगत सत पुरख मिलाइय, मिल सत संगत हर नाम ते आइय, नानक हर कथा सुनी मुख बोली।

समदस्ते तिस कै हों वारिया मिल सत संगत लद्दा हर सज्जन हों सतगुर विटो कुमाइया जियो जह जह देखा तह तह स्वामी तू घट घट रविया अंतर जामी गुर पूरै हर नाल देखा लिया हों सतगुर विटो सदवारिया जियो एको पवन माटी सब एका जोत सबाइया सब इका जोत वरतै भिन भिन ना रली किसै धीर लाइया गुर प्रसादी एक नदनी आया हों सतगुर विटो बताया जियो जन नानक बोलै अमृत बाणी गुर सिखा कै मन प्यारी पाणी उपदेश करे गुर सतगुर पूरा गुर सतगुर पर उपकारिया जियो सत चौपदे महले चौथे के माज महला पंजवा चौपदे घर पहला मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई बिलप करे चातरक की न्याई त्रिखा न उतरै शांत न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो हों भोली जियो कोल कमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो रहाओ तेरा मुख सहावा जियो सहज धुन बाणी चिर होवा देखे सारिंग पाणी तन सो देश।

रहाउ। एक घड़ी ना मिलते ता कल युग होता, हुण कद मिली है त्रिय तुद भगवंता। मोहे रहण ना विहावे नींद ना आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो। हौ कोली जियो कोल कमाई, तिस सच्चे गुर दरबारे जियो रहाउ। भाग होवा गुर संत मलाया, त्रब अवनासी घर मह पाया। सेव करी पल चसा न बिछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। हौ कोली जियो कोल कमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाउ। राग माज महला पंजवा, सारुत सुहावी जित तुद संभाली। सो काम सुहेला जो तेरी काली, सो रिदा सुहेला जित हृदय तू गुठा। सबना के दातारा जियो, तू सांझा साहिब बाप हमारा। नौ निद तेरे अखुट भंडारा, जिस तू देहे सो तृप्त अघावे। सोई भगत तुम्हारा जियो, सब को वास्ते तेरी बैठा। घट घट अंतर तू है बुठा, सबे सांझी वाल सदाइन। तू किसे न दिस है बाहरा जियो, तू आपे गुरमुख मुक्त कराए। तू आपे मन मुख जन्म पवाए, नानक दास तेरे बलिहारे। सब तेरा खेल दसाहरा जियो, माज महला पंजवा। अनहद वाजे सहज सुहेला, शब्द आनंद करे सद केला। सहज गुफा महतारी लाई, आसन ऊच सवारिया जियो। फिर किर अपने ग्रह में आया, जो लड़ींदा सोई पाया। तृप्त अगाए रहया है संतो, गुरे अनपो पुरख दिखारिया जियो। आपे राज ने आपे लोगा, आप निर्वाणी आपे भोगा। आपे तख्त बह सच न्याई, सब चूकी कूक पकारिया जियो। जेहा डिठा मैं तेहो कहया, तिस रस आया जिन भेद लहया। ज्योति ज्योत मिली सुख पाया, जन नानक एक पसारिया जियो। माज महला पंजवा, जित घर पिर सुहाग बनाया। तित कर सखिए मंगल गाया, अनद बनोद तितै कर सोह। जो तन कंत शिंगारी जियो, सा गुणवंती सावट भागण। पुत्रवंती सीलवंत सुहागण, रूपवंत सा सुगड़ बचखण। जो तन कंत प्यारी जियो, अचारवंत साई प्रधानी। सब शिंगार बने तिस ज्ञानी, सा कुलवंती सा सबराई। जो पिर कै रंग सवारी जियो, महमा तिसकी कहन ना जाए। जो पिर मेल लई अंग लाए, फिर सुहाग वर अगम अगोचर। जन नानक प्रेम साधारी जियो, माज महला पंजवा। खोजत खोजत दर्शन चाहे, भांत भांत बन बन अवगाहे। निर्गुण सरगुण हर हर मेरा, कोई है जियो आन मलावे जियो। खट सासत विचरत मुख ज्ञाना, पूजा तिलक तीरथ इशनाना। निवली कर्म आसन चौरासी, इन मह शांत ना आवे जियो। अनक बरख किए जप तापा, गमन किया धरती परमाता। एक खिन हृदय शांत ना आवे, जोगी बहुड़ बहुड़ उठतावे जियो। कर कृपा मुहि साध मलाया, मन तन सीतल धीरज पाया। प्रभ अवनासी बसिया कट पीतर, हर मंगल नानक गावे जियो। माज महला पंजवा, पार ब्रह्म अपरंपर देवा। अगम गोचर अलख अपेवा, दीन दयाल गोपाल गोविंदा। हर त्यावो हो गुरमुख गाती जियो, गुरमुख मधसूदन निस्तारी। गुरमुख संगी कृष्ण मरारी, दयाल दमोदर गुरमुख पाईए। होरत कितै ना भांती जियो, निरहारी केशव निरवैरा। कोट जना जाके पूजह पैरा, गुरमुख हृदय जा कै हर हर। सोई भगत एकांती जियो, अमोग दर्शन बेअंत अपारा।
वड समर्थ सदा दातारा, गुरमुख नाम जपियै तित तरियै, गत नानक बिरली जाति जीओ, माज महला पंजवां। कहया करना दिता लैना, गरीबां अनाथां तेरा माणा, सब किश तू है मेरे प्यारे, तेरी कुदरत कौ बल जाई जीओ, भाणै उजड़ भाणै राहा, भाणै हर गुण गुरमुख गावा, भाणै भरम भवै बहु जूनी, सब किस तिसै रजाई जीओ, ना को मूरख ना को सियाणा, वरतै सब किस तेरा भाणा, अगम अगोचर बेअंत अथाहा, तेरी कीमत कहन ना जाई जीओ, खाक संतन की देहो प्यारे, आए पया हर तेरे द्वारे, दर्शन पेखत मन आगावे, नानक मिलन सुपाई जीओ, माज महला पंजवां। दुख तदे जा विसर जावे, भुख व्यापै बहु बिद तावे, सिमरत नाम सदा सुहेला, जिस देवै दीन दयाला जीओ, सतगुर मेरा वड समरथा, जिए संभाली ता सब दुख लत्ता, चिंता रोग गई हो पीड़ा, आप करे प्रतपाला जीओ, बारक वांगी हो सब किश मंगा, दें दे तोट नाही प्रभ रंगा, पैरी पै पै बहुत मनाई, दीन दयाल गोपाला जीओ, हौ बलिहारी सतगुर पूरे, जिन बंधन काटे सगले मेरे, हिरदय नाम दे निर्मल किए, नानक रंग रसाला जीओ, माज महला पंजवां। लाल गोपाल दयाल रंगीले, गहर गंभीर बेअंत गोविंदे, ऊच अथाह बेअंत स्वामी, सिमर सिमर हौ जीवा जीओ, दुख भंजन निदान अमोले, निरपो निरवैर अथाह अतोले, अकाल मूर्त अजूनी संभो, मन सिमरत ठंडा थीवा जीओ, सदा संगी हर रंग गोपाला, ऊच नीच करे प्रतपाला, नाम रसायन मन तृपतायन, गुरमुख अमृत पीवा जीओ, दुख सुख प्यारे तुद त्याई, एह समत गुरु ते पाई, नानक की धर तू है ठाकुर, हर रंग पार परीवा जीओ, माज महला पंजवां। धन सो वेला जित मैं सतगुर मिलिया, सफल दर्शन नेत्र पेखत तरिया, धन मूरत चसे पल घड़िया, धन सो उए संजोगा जीओ, उदम करत मन निर्मल हुआ, हर मार्ग चलत भ्रम सगला खोया, नाम निधान सतगुरु सुनाया, मिट गए सगले रोगा जीओ, अंतर बाहर तेरी बाणी, तुद आप कथी तै आप बखाणी, गुर कहया सब एको एको, अवर ना कोई होएगा जीओ, अमृत रस हर गुरते पिया, हर पहनन नाम भोजन थिया, नाम रंग नाम चोज तमाशे, नाउ नानक कीने भोगा जीओ, माज महला पंजवां। सगल संतन पह वस्त इक मांगो, करो बिनंती मान त्यागो, वार वार जाई लख वरिया, देहो संतन की तू राजीओ, तुम दाते तुम पुरख बधाते,

कीता, आत्मगर बिखम तिना ही जीता। तुम दाते तुम पुरख बधाते, तुद जेवड अवर ना सूरा जियो। रेन संतन की मेरा मुख लागी, दुर्मत बिनसी कुबुद्ध अपागी। सच कर बैस रहे गुण गाए, नानक बिन से पूरा जियो। माज महला पंजवा, विसर नाही ए बड़दाते। कर किरपा भगतन संग राते, दिनस रहन जियो तुद त्याई। एहो दान मोहे करना जियो, माटी अंधी सुरत समाई। सब किश दिया पली आ जाई, आनंद बनोद चोज तमाशे। तुद भावै सो होना जियो, जिस दा दिता सब किश लैना। शक्ति ही अमृत भोजन खाना, सेज सुखाली सीतल पवना। सहज केल रंग करना जियो, सा बुद्ध दीजै जित विसरह नाही। सा मत दीजै जित तुद त्याई, सास सास तेरे गुण गावा। ओट नानक गुर चरना जियो, माज महला पंजवा। सिफत सलाहन तेरा हुक्म रजाई, सो ज्ञान ध्यान जो तुद पाई। सोई जप जो प्रभ जियो पावे, भाणे पूर ज्ञाना जियो। अमृत नाम तेरा सोई गावे, जो साहिब तेरे मन पावे। तू संतन का संत तुम्हारी, संत साहिब मन माना जियो। तू संतन की करह प्रतपाला, संत खेल है तुम संग गोपाला। अपने

प्यास प्यासा तुमरी तुम ही संग मन लीना जीओ। यो बारक पी खीर अगावे ज्यो निर्तन तन देख सुख पावे। त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यो हर संग इहो मन पीना जीओ। ज्यो अंधियार है दीपक परगासा परता चितवत पूर्ण आसा। मिल प्रीतम ज्यो होत आनंदा त्यो हर रंग मन रंगीना जीओ। संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गजाया। हर हमरा हम हर के दासी नानक शब्द गुरु सच दीना जीओ। माज महला पंजवा अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बढ़ारन हरिया। अवर साध चख सगले देखे मन हर रस सब ते मीठा जीओ। जो जो पीवे सो तृप्तावे अमर होवे जो नाम रस पावे। नाम निदान तिसह प्रापत जिस शब्द गुरु मन बूठा जीओ। जिन हर रस पाया सो तृप्त आगाना जिन हर साध पाया सो नाही डुलाना। तिसह प्रापत हर हर नामा जिस मस्तक पागी था जीओ। हर एक सहाथ आया वरसाने बहुतेरे किस लग मुक्त पय कनेरे। नाम निदाना गुरमुख पाई कहो नानक विरली दीठा जीओ। माज महला पंजवा निद सिद्ध रिद हर हर हर मेरे। जन्म पदार्थ गहर गंभीर है लाख कोट खुशियां रंग रावे। जो गुर लागा पाई जीओ। दर्शन पेखत पय पनीता सगल उदारी पाई मीता। अगम अगोचर स्वामी अपना गुर कृपा ते सच त्याई जीओ। जाको खोज है सर्ब उपाय वडभागी दर्शन को विरला पाए। ऊच अपार अगोचर थाना ओह महल गुरु देखाई जीओ। गहर गंभीर अमृत नाम तेरा मुक्त पया जिस हृदय बसेरा। गुरबंधन तिनके सगले काटे जन नानक सहज समाई जीओ। माज महला पंजवा प्रभ कृपा ते हर हर त्याव प्रभु दया ते मंगल गाव। उठत बैठत सोवत जागत हर त्याय सगल अवरदा जीओ। नाम औखद मोको साधु दिया किल बिक काटे निर्मल थिया। आनंद भया निकसी सब पीरा सगल बनासे डरदा जीओ। जिसका अंग करे मेरा प्यारा सो मुक्ता सागर संसारा। सत करे जिन गुरु पछाता सो काहे को डरदा जीओ। जब ते साधु संगत पाए

ओत पोत सेवक संग राता, प्रभ प्रतपाले सेवक सुखदाता, पाणी पक्का पीसो सेवक कै, ठाकुर ही का आहर जियो, काट सिलक प्रभ सेवा लाया, हुक्म साहिब का सेवक मन पाया, सोई कमावै जो साहिब पावै, सेवक अंतर बाहर माहर जियो, तू दाना ठाकुर सब बिद जान है, ठाकुर के सेवक हर रंग मान है, जो किस ठाकुर का सो सेवक का, सेवक

तू सुनिया तिस बलिहारी जिन रसना भणिया वार वार जाई तिस विटोह जो मन तन तुद आराधे जीओ तिस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चाले नैन निहाली तिस पुरख दयाले मन देवा तिसे अपने साजन जिन गुर मेल सो प्रभ लादे जीओ से बड़ पागी जिन तुम जाने सब कै मदे अलिपत निर्बाणी साध कै संग उन पौ जल तरिया सगल दूत उन साधे जीओ तिनकी सरण परया मन मेरा मान तान तज मोह अंधेरा नाम दान दीजै नानक कौ तिस प्रभ अगम अगादे जीओ माज महला पंजवा तू पेड़ साख तेरी फूली तू सूखम हुआ असथूली तू जल निद तू फेन बुदबदा तुद बिन अवर ना पालिए जीओ तू सूत मणिये पी तू है तू गंठी मेर सिर तू है आद मद

हर जस लेखा से चरण सहावे जो हर मार्ग चले हौ बाल तिन संग पछाणा जीओ सुन साजन मेरे मीत प्यारी साध संग किन माही उदारी किल बिख काट हुआ मन निर्मल मिट गए आवन जाना जीओ दोए कर जोड़ एक बिनो करीजै कर कृपा डुबदा पत्थर लीजै नानक कहो प्रभ भय कृपाला प्रभ नानक मन पाणा जीओ मा

दया तारी तिन सिर जनहारी, जी जंत सगले प्रतपारी, मेहरवान किरपाल दयाला, सगले तृप्त अगाए जियो, वन त्रिण त्रिपवन की तुन हरिया, करनहार खिन पीतर करिया, गुरमुख

जी प्राण प्रभ मन है आधारा, भगत जीव है गुण गाए अपारा, गुण निदान अमृत हर नामा, हर त्याए त्याए सुख पाया जीओ, मनसा तार जो धरते आवे, साध संग जन्म मरण मटावे, हास मनोरथ पूरन होवे, टीटत गुर दरसाया जीओ, अगम अगोचर किस मित नहीं जानी, साधक सिद्ध त्यावे ज्ञानी, खुदी मिटी चूका पुलावा,

सुख पाया, ठांड पाई प्रभ आपे जीव, सब किछ बहुतो बहुत उपाया, कर कृपा प्रभ सगल रजाया, दात करहु मेरे दातारा, जी जंत सब त्रापे जीव, सच्चा साहेब सच्ची नाई, गुर प्रसाद तिस सदा त्याई।

खिन पीतर हर हर हर गुण जापे जीओ माज महला पंजवा। आओ साजन संत मीत प्यारे मिल गाव है गुण अगम अपारी गावत सुनत सबे ही मुक्ते सो त्याई है जिन हम किए जीओ जन्म जन्म के।

पाई, कर कृपा प्रभ भक्ति लाभ हो, सच नानक अमृत पिए जियो, माज महला पंजवां, पये कृपाल गोविंद गुसाई, मेघ वरसै सबनी थाई, दीन दयाल सदा कृपाला, ठांड पाई करतारी जियो, अपने जी जंत प्रतपारी, ज्यों बारक माता संभारी, दुख भंजन सुख सागर स्वामी, देत सगल आहारी जियो, जल थल पूर रहया मेहरवाना, सद बलिहार जाइय कुर्बाना, रैन दिन सतिस सदा त्याई, जेखिन मह सगल उदारी।

जपत मन तन हरियावल रब नानक नदर निहारे जीओ माज महला पंजवा जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे से असथल सोइन चौबारी जिथे नाम ना जपिए मेरे गोविंदा से ही नगर उजाड़ी जीओ हर रुखी रोटी खाए संभाले हर अंतर बाहर नदर निहाले खाए खाए करे बद फैली जान विसु की वाड़ी जीओ संतां से तीरंग न लाए साकत संग विकर्म कमाए दलाब देखोई अज्ञानी जड़ अपनी आप उपाड़ी जीओ तेरी शरण मेरे दीन दयाला।

शांत सुख सहज धुन उपजी साधु संग निवासा जीओ लागी प्रीत ना तू कै मूले हर अंतर बाहर रहया पर पूरे सिमर सिमर सिमर गुण गावा काटी जम की फासा जीओ अमृत वरख अनहद बाणी मन तन अंतर शांत समाणी तृप्त अगाए रहे जन तेरे सतगुर किया दिलासा जीओ जिसका साह तिसते फल पाया कर कृपा प्रभ संग मलाया आमन जान रहे वड भागी नानक पूर्ण आसा जीओ माज महला पंजवा मीह पया परमेश्वर पाया जी जंत सब सुखी बसाया गया कलेश पया सुख साचा हर हर नाम संभाली जीओ जिसके से तिन्ही प्रित पारी पार ब्रह्म प्रभ पये रखवारी सुनी बेनंती ठाकुर मेरा पूर्ण होई काली जीओ सर्ब जिया कहो देवनहारा गुर प्रसादी नदर निहारा जल थल महियलो।

आया सगल मनोरथ पूरन होए कदे न होए दुखाला जियो। माज महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ मेघ पठाया जल फल महियल दह दिस वरसाया शांत भई बुझी सब तृष्णा आनंद भया सब ठाई जियो। सुख दाता दुख भंजन हारा आपे

गुरु के चरण बसे मन माही, अंगीकार किया तिन करतै, दुख का डेरा टाहया जीओ, मन पन बसया सच्चा सोई, बिखड़ा थान ना दिसै कोई, दूत दुश्मन सब सज्जन हुए, एको स्वामी आहया जीओ, जो किछ करे सो आपे आपै, बुद्ध सियाणप किशु ना जापै, अपनिया संतां नु आप सहाई, प्रभ भरम भलावा लाहया जीओ, चरण कमल जन का आधारू, आठ पहर राम नाम वापारू, सहज आनंद गावे है गुण गोविंद, प्रभ नानक सर्ब समाहया जीओ, माज महला पंजवा, सो सच मंदर जित सच त्याई है, सोरिदा सुहेला जित हर गुण गाई है, सा धरत सुहावी जित वस है हर जन, सच्चे नाम विटहो कुरबान जीओ, सच वडाई कीम ना पाई, कुदरत कर्म ना कहना जाई, त्याए त्याए जीव है जन तेरे, सच शब्द मन माणो जीओ, सच सलाहन वड भागी पाई है, गुर प्रसादी हर गुण गाई है,

जय सागर कटिया जम की पासा जीओ चार पदार्थ हर की सेवा पार जात जप अलख अपेवा काम क्रोध किल बिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जीओ पूर्ण भाग भये जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पानी नानक नाम वसिया जिस अंतर परवान गिरस्त उदासा जीओ माज महला पंजवा सिमरत नाम हृदय सुख पाया कर कृपा भगती प्रगटाया संत संग मिल हर हर जपिया।

ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर प्रभ सबना गल्ला जोगा जीओ छिन मह थाप उथापन हारा आप एकंती आप पसारा लेप नहीं जग जीवन दाते दर्शन दिते लहन विजोगा जीओ अंचल लाए सब शिष्ट तराई अपना नाओ आप जपाई गुर बोहित पाया कृपाते नान

अन दिन नित जागी बाहां पकड़ तिस स्वामी मेले जिसकै मस्तक लहना चरण कमल भगता मन उठे बिन परमेश्वर सगले मुठे संत जना की धूड़ नित बांछ है नाम सच्चे का गहना उठत बैठत हर हर गाइए जिस सिमरत वर निश्चल पाइए नानक कहो प्रभ होए दयाला तेरा कीता सहना राग माज अष्टपदिया महला पहला घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

सोहा वनिया मनमुख भूला ठौर ना पाई जमदर बद्दा चोटा खाई बिन नावै को संग ना साथी मुक्ते नाम त्या वनिया।

माया मोह चुकावणिया हौ वारी जियो वारी सतगुर कै बलिहारनिया गुरमति परगास हो आजी अन दिन हर गुण गावणिया रहाउ तन मन खोजे ता नाउ पाए धावत राखै ठाक रहाई गुर की बाणी अन दिन गावे सहजे भगत करावणिया इस काया अंदर वस्त असंखा गुरमुख साच मिले ता वेखा नौ दरवाजे दसवें मुक्ता अनहद शब्द बजावणिया सच्चा साहेब सच्ची नाई गुर प्रसादी मन वसाई आन दिन सदा रहे रंग राता दर सच्चै सो जी पावणिया पाप पुन की सार ना जानी दूजै लागी परम पुलाणी।

दिन जागी दर सच्चा सोभा पावनिया रहाउ आप सुने तै आपे वेखे जिसनो नदर करे सोई जन लेखे आपे लाए लए सो लागे गुरमुख सच कमावनिया जिस आप भुलाए सो किथे हाथ पाई पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाई जिन सतगुर मिलिया से वड भागी पूरे कर्म मिलावणिया ते अड़ै तन अन दिन सुती कंतव सारी अवगण मुत्ती।

सदा नाली गुर प्रसादी को नदर निहाली मेरा प्रभ अत ऊचो ऊचा कर कृपा आप मनावणिया माया मोहे एहो जग सुता।

जन पाया ज्योति ज्योत मलावणिया रहाउ इस काया अंदर बहुत पसारा नाम निरंजन अति अगम अपारा गुरमुख हो ऐसो ही पाई आपे बख्श मलावणिया मेरा ठाकुर सच दृढ़ाई गुर प्रसादी सच चित लाई सचो सच वरतै सबनी थाई सच्चे सच समावणिया वे परवाह सच मेरा प्यारा किल विख अवगुण काटन हारा प्रेम प्रीत सदा त्याई पै भाए भगत दृढ़ावणिया तेरी भगत सच्ची जे

महला तीजा अमृत बाणी गुर की मीठी गुरमुख विरलय किने चख डीठी अंतर प्रगास महारस पीवे दर सच्चे।

लाया। तुध सलाहे न रजा कबहू सच्चे नावे की भुख लावणिया। एको वेखा अवर ना बिया गुर प्रसादी अमृत पिया।

रहाउ पंडित पढ़ है साधना पाव है दूजे भाए माया मन परमाव है माया मोहे सब शुद्ध गुआई।

बिदमाया पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके चौथे पद की सार ना पावणिया आपे रंगे रंग चढ़ाई से जनराते गुर शब्द रंगाई हर रंग चढ़िया अत अपारा हर रस रस गुण गावणिया गुरमुख रिद सिद सच संयम सोई गुरमुख ज्ञान नाम मुक्त होई।

पूर्व लिखिया सो कर्म कमाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, बिन भागा गुर पाईए नाही, शब्द मेल मलावणिया, गुरमुख अलिप्त रहै संसारी, गुर कै तकिए नाम अधारी, गुरमुख जोर करे क्या तिसनो, आपे खप दुख पावणिया, मनमुख अंधे सुध ना काई, आत्म घाती है जगत कसाई, निंदा कर कर बहु भार उठावे, बिन मजूरी भार पहुंचावणिया, इहो जग वाड़ी मेरा प्रभ माली, सदा संभाले को नाही खाली, जेही वासना पाए ते ही वरतै, वासु वास जनावणिया, मनमुख रोगी है संसारा, सुखदाता विसरिया अघम अपारा, दुखिए नित फिर है बिललांदी, बिन गुर शांत ना।

किस बाज हूँ सच्चे मैं होर न कोई, जिस लाए लय सो निर्मल होई। नानक नाम वसै घट अंतर, जिस देवै सो पावणिया। माज महला।

अमृत बाणी मन वसाई, अमृत नाम त्यावणिया रहाव। अमृत बोले सदा मुख वैणी, अमृत वेख परख सदा नैणी। अमृत कथा कह सदा दिन राती, अवरा आख सुनावणिया। अमृत रंग रता लिव लाई, अमृत गुर प्रसादी पाई। अमृत रसना बोले दिन राती, मन तन अमृत पी आवणिया। सो किस करै जो चित ना होई, तिस

निरंजन सुई जिन सिर जीतने आपे गोई। नानक नाम संभाल सदा तू सहजे सच समावणिया। माज महला तीजा से सच लागे जो तुद पाई।

मन निर्जल निज घर वासा पावणिया गुरु कै शब्द हृदय दिखाया माया मोह शब्द जलाया सचो सचा वेख सलाही गुर शब्दी सच पावणिया जो सच राते तिन सच्ची लिव लागी हर नाम संभाल है से वडभागी सच्चा शब्द आप मलाई सत संगत सच गुण गावणिया लेखा पढ़िया जे लेखे विच होवे ओहो अगम अगोचर शब्द सुध होवे अन दिन सच शब्द सलाही होर कोई ना कीमत पावणिया पढ़ पढ़ था के शांत न आई तृष्णा जाले सुध न काई बिख विहाज है बिख मोह प्यासी कूड़ बोल बिख खावणिया गुर प्रसादी एको जाना दूजा मार मन सच समाना नानक एको नाम वरतै मन अंतर गुर प्रसादी पावणिया माज महला तीजा वर्ण रूप वरत है सब तेरे मर मर जमह फिर पवह कनेरे तू एको निकल अगम अपारा गुरमति बूझ बुझावणिया हों वारी जियो वारी राम नाम मन वसावणिया किस रूप ना रेखिया वर्ण ना कोई गुरमति आप

सब थाई ज्योति ज्योत मलावणिया इसना अगन जले संसारा लोभ अभिमान बहुत अहंकारा।

सच सलाही सब घट अंतर सचो सच सुहावनिया सच सलाही सदा हजूरे गुर कै शब्द रहया पर पूरे गुर पर साधु सच नदरी आवे सच्चे ही सुख पावनिया सच मन अंदर रहया समाए सदा सच निश्चल आवे ना जाए सच्चे लागे सो मन निर्मल गुरमति सच समावनिया सच सलाही अवर न कोई जित सेवे सदा सुख होई।

निर्मल है बाणी, निर्मल जोत सब माहि समाणी, निर्मल बाणी हर सालाही, जप हर निर्मल मैल गवावणिया, हौ वारी जीओ वारी, सुखदाता मन वसावणिया, हर निर्मल गुर शब्द सलाही, शब्दो सुन तिसा मटावणिया, रहाउ निर्मल नाम वसिया मन आई, मन तन निर्मल।

माया मोह इस मनहन चाई अंतर कपट दुख पावनिया गुरमुख भगत जा आप कराई तन मन राता सहज सुपाई बाणी वज्जै शब्द बजाई गुरमुख भगत थाई पावनिया बहु ताल पूरे बाजे बजाई ना को सुने ना मन वसाई माया कारण पेड़ बंद नाचै दूजै पाए दुख पावनिया जिस अंतर प्रीत लगै सो मुक्ता इंद्री वस सच संयम जुगता गुर कै शब्द सदा हर त्याई एहा भगत हर पावनिया गुरमुख भगत जुग चारे होई होरत भगत ना पाए कोई नानक नाम गुर भगती पाई गुर चरणी चित लावणिया माज महला तीजा सच्चा सेवी सच सालाही सच्चे नाई दुख कब ही।

माज महला तीजा आत्म राम परगास गुर ते होवे हौं मैं मैल लागी गुर शब्दी खोवे मन निर्मल अन दिन भगती राता भगत करे हर पावणिया हौं वारी जियो वारी आप भगत करन अवरा भगत करावणिया इन्ना भगत जना को सद नमस्कार कीजै जो अन दिन हर गुण गावणिया रहाउ आपे करता कारण कराई जित पावै तित कारै लाई पूरै भाग गुर सेवा होवै गुर सेवा ते सुख पावणिया।

बहु कर्म कमावे मुक्त न पाई, देशांतर भवे दूजे भाई खुआई। बिरथा जन्म गवाया कपटी, बिन शब्द है दुख पावनिया। तावत राख ठाक रहाई, गुर प्रसादी परम पद पाई। सतगुर आपे मेल मलाई, मिल प्रीतम सुख पावनिया। एक कूड़ लागे कूड़े फल पाई, दूजे भाई बिरथा जन्म गवाई। आप डूबे सगले कुल डूबे, कूड़ बोल बिख खावनिया। इस तन मह मन को गुरमुख देखे, भाई भगत जा हूं मैं सुख है। सिद्ध

दिन राती गुरमति शब्द सुनावणिया बिन शब्द अंतर अनेरा ना वस्त लह ना चूकै फेरा सतगुर हाथ कुंजी होरत दर खुले नाही गुरपूरै भाग मलावणिया गुपत प्रगट तू सबनी थाई गुर प्रसादी मिल सोजी पाई नानक नाम सलाहे सदा तू गुरमुख मन वसावणिया माज महला तीजा गुरमुख मिले मलाए आपे काल ना जो है दुख ना संतापे हौ मैं मार बंधन सब तोड़े गुरमुख शब्द सुहावणिया हौ वारी जीओ वारी हर हर नाम सुहावणिया गुरमुख गावे गुरमुख नाचे हर सेती चित लावणिया रहाउ गुरमुख जीवे मरे परवान आर जा ना सीजे शब्द पछाण गुरमुख मरे ना काल ना खाई गुरमुख सच समावणिया गुरमुख हर दर सोभा पाई गुरमुख विचों आप गवाई आप तरे कुल सगले तारी गुरमुख जन्म सवारणिया गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर गुरमुख हौ मैं चूकै पीर गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे गुरमुख सहज समावणिया गुरमुख नाम मिले वडियाई गुरमुख गुण गावे सोभा पाई सदा आनंद रह दिन राती गुरमुख शब्द करावणिया गुरमुख अन दिन शब्द राता गुरमुख जुग चारे है जाता गुरमुख गुण गावे सदा निर्मल शब्दे भगत करावणिया बाज गुरु है अंध अंधारा

लेकर आए, गुरमुख हृदय उठाए आप आई, नानक नाम मिले बड़ियाई, पूरे गुरते पावणिया, माज महला तीजा, एका जोत जोत है शरीरा, शब्द दिखाए सतगुर पूरा, आपे फर्क की तुन घट अंतर, आपे बणत बनावणिया, हों वारी जियो वारी, हर सच्चे के गुण गावणिया, बाज गुरु को सहज ना पाई।

तेरा, जम्मण मरण ना चूके फेरा, गुरमुख हो ऐसो हों मैं मारी, सचो सच त्यावणिया, काया अंदर पाप पुन दोए पाई, दुही मिलके सृष्ट उपाई, दुए मार जाए इकत घर आवे, गुरमत सहज समावणिया, कर ही माही दूजे पाए अनेरा, चानण होवे छोड़े होमे मेरा, प्रगट शब्द है सुखदाता, अन दिन नाम त्यावणिया, अंतर ज्योत प्रगट पा सारा, गुरसाखी मिटिया अंधियारा, कमल बगास सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मलावणिया, अंदर महल रतनी भरे भंडारा।

कि नानक जिस नदर करे सो पाए, कर कृपा मन वसावणिया। माज महला तीजा, हर आपे मेले सेव कराए, गुर कै शब्द।

सत सच्चा हृदय वसावणिया, सच्चा नाम सदा है निर्मल, गुर शब्दी मन वसावणिया। रहाउ आपे गुरदाता कर्म विधाता, सेवक सेव है गुरमुख हर जाता। अमृत नाम सदा जन सू है, गुरमत हर रस पावणिया। इस गुफा में एक थान सुहाया, पूरे गुर हम मैं परम चुकाया। अन दिन नाम सलाहन रंग राती,

हर गुण गावे शब्द सुहाई मिल प्रीतम सुख पावनिया जम जा गाती दूजे भाई कर लाई नाम भूले दे सजाई कड़ी मोहत का लेखा लेवै रतियों मासा तोल कढावनिया पे अड़ै फिर चेते नाही दूजे मुठी रोवै ताही खरी कवाले उपरूप कलखणी सुपने फिर नहीं पावनिया पे अड़ै फिर मन वसाया पूरे गुर हदूर दिखाया कामन फिर राख्या कंठ लाई शब्दे फिर रावै सेज सुहावनिया।

पाड़ गोज मानव सामणिया गुरमुख पढ़ हर नाम सलाह है दर सच्चह सोभा पावणिया रहाउ अलक अपेयो हर रहया समाई उपाय न किती पाया जाई कृपा करी ता सतगुर भेटै नदरी मेल मनावणिया दूजै पाए पड़ै नहीं दूजै त्रेविद माया कारण लूजै त्रेविद बंधन टूटै गुर शब्दी मुक्त करावणिया इहो मन चंचल वासना आवै दुबदा लागै दह दिस तावै बिख का कीड़ा बिख मै राता बिख ही माही पचावणिया हौ हौ करे तै आप जनाई बहु कर्म करै किस थाए ना पाई तुझते बाहर किशु ना होवै बख्शे शब्द सुहावणिया उपजै पचै हर बूजै नाही अन दिन दूजै पाए फराही मन मुख जन्म गया है बिरथा अंत गया पछतावणिया फिर परदेश शिंगार बढ़ाई मन मुख आंदे ऐसे।

करै शब्द पुछाता, अन दिन भगत करे दिन राती, सहजे ही सुख पावनिया, सब मैं वरतै एको सोई, गुरमुख विरला बूझै कोई, नानक नाम रते जन सोहै, कर किरपा आप मलावनिया, माज महला तीजा, मनमुख पढ़ै पंडित कहावै, दूजै पाए महा दुख पावै, बिख्या माते किस सूजै ना।

सेवा ते हर मन वसिया हर रस सहज पी आमणिया रहाउ वेद पढ़े हर रस नहीं आया वाद वखाणे मोहे माया अज्ञान मत्ती सदा अंधियारा गुरमुख बूज हर गावणिया अकथो कथिय शब्द सुहावे गुरमती मन सचो पावे सचो सच रवह दिन राती इहो मन सच रंगावणिया जो सच रत्ते तिन सचो पावे आपे दे ना पछो तावे गुर कै शब्द सदा सच जाता मिल सच्चे सुख पावणिया कूड़ कसत तिन्ना मैल ना लागे गुर प्रसादी अन दिन जागे निर्मल नाम वसै कट पीतर ज्योति ज्योत मलावणिया त्रै गुण पढ़े हर तत् ना जाने है मूलों भुले गुर शब्द ना पछाण है मोह व्यापी किस सूजै नाही गुर शब्दी हर पावणिया वेद पकार है त्रिविध माया

मोह जलाई सो हर सिउं चित लाई हर दर महली शोभा पावणिया रहाउ देवी देवा मूल है माया सिमरत शास्त्र जिन उपाया काम क्रोध पसरिया संसारी आए जाए दुख पावणिया तिस विच ज्ञान रतन एक पाया गुर प्रसादी मन वसाया जात सत संयम सच कमावै गुर पूरे नाम त्यावणिया पे अड़ै धन परम फुलाणी दूजे लागी फिर पछोताणी हलत पलत दोवै गवाई सुपने सुख ना पावणिया पे अड़ै धन कंत संभाले गुर प्रसादी वेखै नाले फिर कै सहज रह रंग राती शब्द शिंगार बनावणिया सफल जन्म जिन्ना सतगुर पाया दूजा भाओ गुर शब्द जलाया एको रव रहिया घट अंतर मिल सत संगत हर गुण गावणिया सतगुर ना सेवे सो काहे आया त्रिग जीवन बिरथा जन्म गवाया मनमुख नाम चेतना आवै बिन नावे बहु दुख पावणिया जिन शिष्ट साजी सोई जाने आपे मिलै शब्द पछाणे नानक नाम मिलया तिन जन को जिन तुर मस्तक लेख लखावणिया माज महला चौथा आदि पुरख अपरंपरे।

आप लिखत तुर पाई, नानक नाम मिलै पौ भंजन, गुर शब्दी सुख पावणिया। माज महला पंजवां कर पहला, अंतर अलख न जाई लखिया, नाम रतन लै गुजा रखिया, अगम अगोचर सब

राज महला पंजवा कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता कौन सो ज्ञानी कौन सो बक्ता कौन सो गृह कौन उदासी कौन सो कीमत पाए जियो किन बिद बादा किन बिद छूटा किन बिद आवन जावन टूटा कौन कर्म कौन नेह कर्मा कौन सो कह कहाए जियो कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया कौन सो सन्मुख कौन वे मुखिया किन बिद मिलिया किन बिद बिछरे एह बिद कौन प्रगताए जियो कौन सो अखर जित धावत रहता कौन उपदेश जित दुख सुख सम सहता कौन सो चाल जित पार ब्रह्म त्याई किन बिद कीर्तन गाए जियो गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता गुरमुख ज्ञानी गुरमुख बक्ता तन गिरह उदासी गुरमुख गुरमुख कीमत पाए जियो हउमै बादा गुरमुख छूटा गुरमुख आवन जावन टूटा गुरमुख कर्म गुरमुख नेह कर्मा गुरमुख करे सो सुपाए जियो गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया गुरमुख मिलिया मनमुख विछरे गुरमुख बिद प्रगटाए जियो गुरमुख अखर जित तावत रहता गुरमुख उपदेश दुख सुख सम सहता गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याई गुरमुख कीर्तन गाए जियो सगली बरत बनाई आपे आपे करे कराए थापे इकस ते होयो आनंता नानक एकस माहे समाए जियो माज महला पंजवा प्रब अबनासी ता क्या काड़ा हर भगवंता ता जन खरा सुखाला।

मन तन पावणिया तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला तुम संग लवै ना लावणिया रहाव तेरा कीता जिस लागै मीठा घट घट पार ब्रह्म तिन जन दीठा थान थनंतर तू है इको एक वरतावणिया सगल मनोरथ तू देवन हारा भगती पाए परे पंडारा दया तार राखे तुद से पूरे कर्म समावणिया अंधकूप ते कंडे चाड़े कर कृपा दास नदर निहाले गुण गावे है पूर्ण अबनासी कह सुन तोट ना आवणिया एते उते तू है रखवाला मात गर्भ में है तुम ही पाला माया अग्न ना पो है तिनको रंग रते गुण गावणिया क्या गुण तेरे आख संभाली मन तन अंतर तुद नदर निहाली तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी तुद बिन अवर ना जानणिया जिसको तू प्रभ पया सहाई।

कुछ अथाह अपार अमोला, तू साचा साहेब दास तेरा गोला, तू मीरा साची ठकुराई, नानक बल बल जावणिया, माज महला पंजवा कर दूजा, नित नित दयो संभाली है, मूल ना मनहु विसारी है, रहाओ संतां संगत पाई है, जित जम कह पंथ ना जाई है, तोसा हर का नाम लै, तेरे कुलह ना लागे गाल जियो, जो सिमरन दे साई है, नरक ना से पाई है, तत्ती वाओ ना लगई, जिन मन बुठा आए जियो, से सुंदर सोहने साध

बिछड़े कर कृपा में लोह राम चार कुंट दह दिस ब्रह्मे थक आए प्रभ की शाम तेन दुध ते बाहरी कितै न आवे काम जल बिन साख कुमलावती उपजह नाही दाम हर नाह न मिलिए साजन है कत पाइए विश्राम जित घर हर कंत न प्रगटई पाठ नगर से ग्राम सरब शिंगार तंबोल रस सन देही सब खाम।

जिसका निःचल ताम चेत गोविंद अरादियै होवे आनंद घणा संत जना मिल पाईऐ रसना नाम पणा जिन पाया प्रभ अपना आए तिसह गणा एक खेन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना जल तल मई अल पूरिया रव्या विच बना सो प्रभ चेतना आवई कितड़ा दुख गणा जिन्नी राव्या सो प्रभु तिन्ना भाग मना हर दर्शन कौ मन लोचदा नानक प्यास मना चेत मलाई सो प्रभु तिसकै पाई लगा वैसाख तीरन क्यों वादियां जिन्ना प्रेम बशो हर साजन पुरख वसार कै लगी माया तो पुत्र कलत्तर ना संग तना हर अवनासी ओ पलच पलच सगली मुई झूठ तंदे मो इक सहार के नाम बिन अग्गे लई है खोहे दयो विसार विगुचना प्रभ बिन अवर ना कोई प्रीतम चरणी जो लगे तिन की निर्मल सोए नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलहो परापत होए वैसाख सुहावा तां लगे जां संत भेटै हर

जेठ रंगीला तिस धनी जिस कह भाग मथन असाढ़त पंदा तिस लगे हर लाह ना जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस दुइय भाइव गुची है गल पई सो जमकी फास जेहा बीजै सो लुणै मथै जो लिखियास रैण मियाणी पछताणी उठ चली गई निराश जिनको साधु भेटी है सो दरगहा हुए खलास कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन हुए प्यास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास असार सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यो प्यार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ा विया दिसन सबे शार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वाण तेन प्रभ संग मौलिया समरत पुरख अपार हर मिलने नो मन लोचदा कर्म मिलावन हार जिन्नी सखिए प्रभ पाया हौ तिन कै सद बलिहार नानक हर जी मया कर शब्द सवार नहार सावन तिना सुहागनी जिन राम नाम उरहार भादोए परम पलानिया दूजे लगा हेत लख शिंगार बनाया कारज नाही केत जित दिन देह बिनससी तित वेलै कहसन प्रेत पकड़ चलायन दूत जम किसे ना देनी भेत छड खड़ोते खिने माही जिन स्यों लगा हेत हाथ मरोड़े तन कपे

तन तन प्यास दर्शन घणी कोई आण मलावे माई संत सहाई प्रेम के हों किन कै लागा पाई बिन प्रभ क्यों सुख पाई है दूजी नाही जाय जिन्नी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आगाय आप त्याग बिनती करह लेहो प्रभु लड़ लाए जो हर कंत मलाइया से विछड़ कतह ना जाय प्रभ बिन दूजा को नहीं नानक हर सरनाई असु सुखी वसंदियां जिन्ना मया हर राय कत्तक कर्म कमावणे दोष ना काहू जोग परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग वे मुख होए राम ते लगन जन्म विजोग खिन मह कौड़े होए गए जितड़े माया भोग विच ना कोई कर सके किस ठहरू वह रूज कीता किशु ना होवई लिखिया तुर संजोग वड भागी मेरा प्रभ मिले ता उतर है सब बियोग नानक को प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोच कत्तक होवे साध संग बिन सह सबे सोच मंगर माहे सुहंदियां हर पिर संग बैठड़िया तिनकी शोभा क्या गणी जे साहेब में लड़िया तन मन मौलिया राम सिंह संग साध सही लड़िया साध जना ते बाहरी से रहन अके लड़िया तिन दुख ना कबहू उतरे से जम कै बस पड़िया जिन्नी राव्या प्रभ अपना से दिसन नित खड़िया रतन जवे हर लाल हर कंठ तिना जड़िया नानक बांछे धूड़ तिन प्रभ सरनी दर पड़िया मंगर प्रभ आराधना बहुड़ ना जन्मड़िया पोख तुखार ना व्यापई कंठ मिलिया हर ना मन भिद्या चरनार बिंद दर्शन लगड़ा सा ओट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी ला बिख्या पोहे ना सकई

लाख बेरियां, हर सज्जन अगम अगाह, शरण पई नारायण नानक दर पैया, पोख सोहंदा सर्ब सुख जिस बख्शे वे परवाह, माग मज्जन संग साधुआ तूड़ी कर इशनान, हर का नाम त्याए सुन सबना नू कर दान, जन्म कर्म मल उतरे मन ते जाए गुमान।

नंतिया हर सुरजन देखा नैन जी की बिरथा सुह सुनी हर समृत पुरख अपार मरण जीवन आराधना सबना का आधार ससुरै पेय तिस कंत की वड्डा जिस परवार ऊंचा अगम अगाध बोध किसे अंत न पारावार सेवा सा तिस भाव सी संता की होए शार दीना नाथ दयाल देव पतत उदारण हार आद जुगादी रखदा सच नाम करतार कीमत कोई ना जाने।

संत अराधन सद सदा सबना का बख्शिंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दिकीन जिंद गुर शब्दी आराधी है जपिया निर्मल मंत कीमत कहन ना जाइए परमेश्वर बेअंत जिस मन वसै नारायणु सो कहिए भगवंत जी की लोचा पूरी है मिले स्वामी कंत नानक जीवे जप हरी दोख सबे ही हंत दिन रैन जिस ना विसरे सो हरिया होवे जंत सर्ब कला प्रभ पूर्णो मन निमाणी थां हर ओट गई मन अंदरी जप जप जीवा नाम कर कृपा प्रभ अपनी जन धूड़ी संग समाओ ज्यों तू राख है त्यों रहा तेरा दिता पैना खाओ उदम सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाए ना सुजई किथे कूकण जाओ अज्ञान बनासन तम हरन ऊचे अगम अमाओ मन विछड़िया हर मेलिया नानक एहो सवाओ सर्व कल्याणा तित दिन हर परसी गुर के पाओ वार माज की तत्

प्यार लगा खण दुध दूजे माए बाप की सुध तीजे भैया भाभी बेब चौथे प्यार अपनी खेड पंजवे खान पीण की तात छिवे कामना पुछे जात सतवें सांझ किया घरवास अठवें

पाया। ज्यो भावै त्यो रख तू, सब करे तेरा कराया। इकना बख्श है मेल लह, गुरमति तुझ लाया। एक खड़े करह तेरी चाकरी, विण नावै होर ना पाया। होर कार वे कार है, एक सच्ची कार है लाया। पुत कलत कटंब है, एक अलिपत रहे जो तुझ पाया। ओहे अंदर हूं बाहर हूं निर्मले, सच्चा नाहे समाया। सलोक महला पहला, सोइने कै पर्वत गुफा करी। कै पानी पयाल, कै विच धरती कै आकाशी। उर्द रहां सिर पार, पुर कर काया कपड़ पहरा। तुआ सदाकार, बग्गा रत्ता पियला काला। बेता करी पुकार, हुए कुचील रहा मल तारी। दुर्मत मत विकार, ना हूं ना मैं ना हूं। नानक शब्द विचार। महला पहला, वस्त्र पखाल पखाले काया। आपे संयम होए, अंतर मैल लगी नहीं जाने। बाहर हूं मल मल धोए, अंधा भूल पया जम जाले। वस्त पराई अपनी कर जाने, हम मैं विच दुख काले। नानक गुरमुख हम मैं टुटे, ता हर हर नाम त्यावे। नाम जपे नामो आराधे, नामे सुख समावे पवड़ी। काया हंस संजोग मेल मलाया, तिन्ही किया वजोग जिन उपाया। मूर्ख भोगे भोग दुख सबाया, सुख हो उठे रोग पाप कमाया। हरख हो सोग वजोग उपाय खपाया, मूर्ख गणत गणाए झगड़ा पाया। सतगुर हाथ नबेड़ झगड़ चुकाया, करता करे सो होग ना चले चलाया। सलोक महला पहला, कूड़ बोल मुरदार खाई। अवरी नो समझावन जाए।

तिस भाव सी, नानक रखै लाज महला पहला। हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, गुर पीर हा माता भरी जा मुरदार न खाई। गली पिस्त ना जाइए छुट्टै सच कमाई, मारन पाहे हराम मैं होए हलाल न जाय। नानक गली कूड़ी कूड़ो पल्ले पाए, महला पहला। पंज निवाजा वक्त पंज, पंजा पंजे नाम। पहला सच हलाल दुई, तीजा खैर खुदाई। चौथी नीयत रास मन, पंजवी सिफत सनाई। करनी कलमा आख कै ता मुसलमान सदाई। नानक जेते कूड़ियार कूड़ै कूड़ी पाई। पौड़ी एक रतन पदार्थ वणज दी, एक कच्चै दे वापारा। सतगुर तुठै पाईयन अंदर रतन भंडारा। बिन गुर किनै ना लद्या अंधे भौंक मोए कूड़ियारा। मनमुख दूजै पच मोए ना बूझ विचारा। एक सबाजो दूजा को नहीं किस आगे करह पुकारा। एक निरतन सदा भौंक दे एक ना भरे तुजारा। बिन नावे होर धन नाही होर बिख्या सब छारा। नानक आप कराए करे आप हुक्म सवारन हारा। सलोक महला पहला। मुसलमान कहावन मुश्किल जा हुए ता मुसलमान कहावे। अवल औल दीन कर मिठा।

रब कीर जाए मन्नी सिर उपर, करता मन्नी आप गवावे। तो नानक सर्व जिया मेहरमत होए, ता मुसलमान कहावे।

काम कामनी मोह तजै ता अंजन माहे निरंजन पावे तज मान अभमान प्रीत सुत दारा तज प्यास आस राम लिवलावे नानक साचा मन वसै साच शब्द हर नाम समावे पौड़ी राजे रैयत सिकदार कोई ना रहसियो हट पटन बाजार हुक्मी तहसियो पक्के बंक द्वार मूर्ख जाने अपने दर्भ भरे भंडार रीते एक खणे ताजी रथ तुखार हाथी पाखरे बाग मिलख घरवार किते से अपने तंबू पलंग निवार सराय के लालती नानक सच दतार सनाखत कुदरती सलोक महला पहला नदियां होवह तीनवा सुम होवह दुध कीओ सगली धरती सक्कर होवे खुशी करे नित जीओ।

महला पहला पार अठारह मेवा हुए गरुड़ा हुए सुआऊ चांद सूर्य दोए फिर दे रखी है निश्चल होए थाऊ पी तू है सालाहना आखण लह ना चाऊ महला पहला जे देह दुख लाई है पाप ग्रह दोहरा रात पीने।

अग्गी पाला कपड़ हुए खाना हुए वाऊ सुरगै दिया मोहनिया इस्त्रियां होन नानक सबो जाऊ पी तू है सालाहना आखन लह ना चाऊ पवड़ी बद फैली गै बाना खसम ना जाने सो कहिए देवाना आप ना पछाने।

क्या मन नाही सच्चा सोए, क्या मेवा क्या घ्यो गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मांस, क्या कपड़ क्या सेज सुखाली, की जह भोग बलास, क्या लश्कर क्या नेब खवासी, आवे महली वास, नानक सच्चे नाम मेण सबे टोल वड़ास। पवड़ी जाति दे क्या हाथ, सच परखिए मोहरा हुए हाथ, मरिए चखिए सच्चे की सरकार, जुग जुग जानिए हुक्म मने सिरदार, दर दी बाणिए फुरमानी है कार, खसम पठाया तबल बाज बीचार, शब्द सुनाया एक होए असवार, एक ना साखती इकनी बदे पार, इक ना ताकती। सलोक महला पहला, जा पक्का ता कटिया, रही सो पलरवाड़, सन की सारा चिथिया, कान लया तन झाड़, दोए पुड़ चक्की जोड़ के पीसन आए बहिठ, जो दर रहे सो उबरे, नानक अजब डिठ। महला पहला, वेख जे मिठा कटिया, कट कुट बद्दा पाए, खुंडा अंदर रख के देन सो मल सजाए, रस कस टटर पाई।

मेरबद बादशाह अफजू खुदाई, एक तू ही एक तू ही महला पहला, ना देव दानवा नरा ना सिद्ध साधका तरा, अस्त एक दिगर कोई एक तुई एक तुई महला पहला, ना दादे देहां दे आदमी ना सपत जेर जिमी, अस्त एक दिगर कोई एक तुई महला पहला, ना सूर सस मंडलो ना सपत दीप नह जलो, अन पौन फिर ना कोई एक तुई महला पहला, ना रिजक दस्त आकसे हमारा एक आस वसे, अस्त एक दिगर कोई एक तुई महला पहला, परंदे ना ग्रहा जर दरख्त आबे आस कर, देहांद सुई एक तुई महला पहला, नानक ललार लिखिया।

गुरमुख जानिया गुरमति आप दुआए सच पछाणिया सच तेरा दरबार शब्द निशानिया सच्चा शब्द विचार सच समाणिया मनमुख सदा कूड़ियार परम फलाणिया विष्टा अंदर वास साधना जानिया बिनमावे दुख पाए आवन जानिया नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणिया सलोक महला पहला सीहा बाजा चरगा कुहिया इना खवाली काह काहो खान तिना मास खवाली एह चलाए राह नदियां विच टिब्बे दे खाले थली करे असगा कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे स्वाह जेते जी जीवह लै साहा जीवाले तां के असाहा नानक ज्यों ज्यों सच्चे भावे त्यों त्यों दे ग्राह महला पहला एक मास हारी एक त्रिण खाहे एक ना शक्ति अमृत पाहे एक मिटिया मह मिटिया खाहे एक पौन समारी पौन समार एक निरंकारी नाम आधार जीवे दाता मरे ना कोए नानक मुठे जाहे नाही मन सोए पौड़ी पूरे गुर की कार कर्म कमाई है गुरमति आप गवाए नाम त्याई है दूजी कार है लग जन्म गवाई है विण नावे सब विस पेंजे खाई है सच्चा शब्द सलाहे सच समाई है विण सतगुर सेवे नाही सुख निवास फिर आई है दुनिया खोटी रास कूड़ कमाई है नानक सच खरा सलाहे पत सिउ जाई है सलोक महला पहला तुद भावे ता वावह गावह तुद भावे जल नावह जा तुद भाव

सिख कहावै जा तुद भावै ता होवै राजे रस कस बहुत कमावै जा तुद भावै तेग बगावै सिर मुंडी कट जावै जा तुद भावै जाहे दसंतर सुन गल्ला घर आवै जा तुद भावै नाहिर चावै तुद पाणी तू भावै नानक एक कह बेनंती होर सगले कूड़ कमावै महला पहला जा तू वड्डा सब वडियाईया चंगा चंगा होई जा तू सच्चा ता सब को सच्चा कूड़ा कोई ना कोई आखण वेखण बोलण चलण जीवन मरना तात हुक्म साज हुक्मै विच रखै नानक सच्चा आप पौड़ी सतगुर सेवन संग परम चुकाई है सतगुर आखै कार सो कार कमाई है सतगुर हुए दयाल ता नाम त्याई है लाहा भगत सो सार गुरमुख पाई है मनमुख कूड़ गुबार कूड़ कमाई है सच्चे दै दर जाए सच चवाई है सच्चा अंदर महल सच बुलाई है नानक सच सदा सच्यार सच समाई है सलोक महला पहला कल काती राजे का साई धर्म पंख कर उडरिया कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसै नाही कह चढ़िया हों भाल विकुन्नी होई अंधेरै राहो ना कोई विच हों मैं कर दुख रोई कहो नानक किन बिदगत होई महला तीजा कल कीरत प्रगट चानन संसार गुरमुख कोई उतरै पार जिसनो नदर करे तिस देवै नानक गुरमुख रतन सो लेवै पौड़ी भगतां तै संसारिया जोड़ कदे ना आया करता आप अपुल है ना भुलै किसै दा भुलाया भगत आपे मेलियन जिन्नी सचो सच कमाया संसारी आप खुआयन जिन्नी कूड़ बोल बोल बिख खाया चलन सार ना जाननी काम क्रोध विस वधाया भगत करन हर चाकरी जिन्नी अन दिन नाम त्याया दासन दास होए कै जिन्नी विचों आप गवाया ओना खसमै कै दर मुख उजले सच्चै शब्द सुहाया सलोक महला पहला सबाही सलाह जिन्नी त्याया इक मन से पूरे साह वखतै उपर लड़ मोए दूजै बहुते राह मन कियां मती खिंदियां बहुत पए असगाह गोते खाहे ना निकलै तीजै मुही ग्राह भुख तिखा दोए पौंकियां खादा हुए स्वाह पी खाने स्यों दोस्ती।

राजा का बोल नानक पूरा जे करे कटे नाही तोल पौड़ी जा तू ता क्या होर मैं सच सुनाई है मुट्ठी तंदे चोर महल ना पाई है इन चित कठोर सेव गवाई है जित घट सच ना पाई सो भन कढ़ाई है क्यों कर पूरे वट तोल तोलाई है कोई ना आखै घट हों मैं जाई है लइयन खरे परख दर भी नाई है सौदा एक तहट।

संसार किन समझाई है, सच ना धरे प्यार तंदे ताई है। काल बुरा खै काल सिर दुनियाई है, हुक्मी सिर जंदार मारे दाई है। आपे दे प्यार मन वसाई है, मोहत ना चसा विलम भरिए पाई है। गुर प्रसादी बुझ सच समाई है, सलोक महला पहला तुम्मी तुम्मा विस। आकत तूरा निम फल मन मुख वसह तिस, जिस तू चेतना आवही नानक कहिए किस। हंडन करमा बाहरी महला पहला।

खट दर्शन कह पीख किसे सच समावना सच्चा पुरख अलख शब्द सुहावना मन्ने नाउ बसंक दरगाह पावना खालक कौ आदेश ताडी जावना।

आपण है। देखू चाया पे लाए हुक्म पया तुर खसम का अती हूं टका खाए। गुरमुख स्यो मन मुख अड़े डुबे हक न्याय। दुहा सिरिया आपे खसम वेखै कर व्यपाय। नानक एवै जानिए सब किस तिसहर जाय। महला दूजा नानक परखे आप कौ ता पारख जान। रोग दारू दोवै बुझै ता वैद सुजान। वाट ना करी मामला जाने मेहमान। मूल जान गल्लां करे हान लाए हान। लब ना चली सच रह सो विष्ट परवान। सर समझे आगास को।

तृप्तिया सायर परेक सुख नानक सच्चे नाम की कीति पुछा पुछ महला दूजा नेह पलंग तस जन्मस

पौड़ी खसमै कै दरबार टाडी वसिया सच्चा खसम कलाण कमल विगसिया खसम पूरा पाए मनो रहस्या दुश्मन कड्डे मार सज्जन सरस्या सच्चा सतगुरु सेवन सच्चा मार्ग दस्या सच्चा शब्द विचार काल बदौसिया ढाडी कथे अकथ शब्द सवारिया नानक गुण गहरास।

पाए नानक बख्शे बख्शी है नाहे ता पाही पाए। महला पहला नानक बोलन चखना दुख छड मंगी है सुख सुख दुख दोए दर कपड़े पहर है जाए मनुख जिथे बोलन हारी है तिथे चंगी चुप पौड़ी। चारे कुंडा देख अंदर पालिया सच्चे पुरख अलख सिरज निहालिया उजड़ भुले राह गुर वेखा लिया सतगुर सच्चे वाह सच संभालिया पाया रत्न कराह दीवा बालिया सच्चा शब्द सलाहे सुखिए सच वालिया ने डरिया डर लग गर्भ से गालिया नाम भुला जग फिर बेतालिया। श्लोक महला तीजा पै विच जम्मै पै मरै

लाया, सच्ची सिफत सालाहा कपड़ा पाया, सच्चा अमृत नाम भोजन आया, गुरमति खादा राज तिन सुख पाया, ढाडी करे पसाओ शब्द बजाया, नानक सच सलाहे पूरा पाया, शुद्ध राग गौड़ी ग्वारी महला पहला, चौपदे दोपदे

डूबै तरै जिन किश किया सो किश करै हुक्मे आवै हुक्मे जाए आगे पाछे हुक्म समाई हंस हेत आसा समान तिस विच भूख बहुत नैसान पाओ खाना पीना आधार बिन खादे मर होए गवार जिसका कोए कोई कोए कोए सब को तेरा तू सबना का सोए जाके जी जंत धन माल नानक आखन बिखम बीचार गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख सत भाई कर इहो वसेख कहना है किछ कहन न जाए तौ कुदरत कीमत नहीं पाए रहाओ शर्म सुरत धोए ससुर भए करनी कामन कर मन लए साहा संजोग व्याह वजोग सच संतत कहो नानक जोग गौड़ी महला।

तट तीर्थ जाही, रत्न पदार्थ काट ही माही, पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाण, पीतर होंदी वस्त ना जाने, हौ ना मुआ मेरी मुई बलाई, ओ ना मुआ जो रहे आसमाई, कहो नानक गुर ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नदर ना आया, गौड़ी महला पहला दखनी, सुन सुन बूझे मन नाउ, तां कै सद बलिहारे जाऊ, आप पुलाए ठौर ना ठाऊ, तू समझावे।

गुरमुख मुख तो बंद ना पाए, शब्द विचार छुटे हर नाई। तरवर पंखी बहो निसबास, सुख दुखिया मन मोह विनाश। सांझ बिहाग तकह आगास, दह दिस तावह कर्म लिखियास। नाम संजोगी गोइन थाट, काम क्रोध फूटे बिखमाट। बिन बखर सुनो कर हाट, गुर मिल खोले बजर कपाट। साध मिले पूरब संजोग, सच रहस्ये पूरे हर लोग। मन तन देले सहज सुभाए, नानक तिनके लागो पाए। गौड़ी महला पहला, काम क्रोध।

मुंडा पढ़वाऊ जेवा इंद्री एक सुवाऊ दिष्ट वकारी नाही पहु पाऊ आप मारे ता पाए नाऊ शब्द मरे फिर मरन ना हुए बिन मुए क्यों पूरा हुए परपंच व्याप रहया मन दोए फिर नारायण करे सो होए बोहित चढ़ो जा आवे वार थाके बोहित दरगाह मार सच सलाही तन गुरुद्वार नानक दर कर एक अंकार गौड़ी महला पहला।

मन माने अमृत रस पीजे रहाउ जन्म जीत मरण मन मानिया आप मुआ मन मन ते जानिया नजर पई कार करते जानिया जत सत तीरथ मज्जन नाम।

उठाऊं। नानक गुरमत सहज सुमाऊं। गौड़ी महला पहला सतगुर मिले सो मरण दिखाई। मरन रहन रस अंतर पाई। गर्भ निवार गगन पुर पाई। मरन लिखाए आए नहीं रहना। हर जप जाप रहन हर सरना रहाउ। सतगुर मिले तदुबदा भागे। कमल बगास मन हर प्रभ लागे। जीवत मरे महारस आगे। सतगुर मिले सच संयम सूचा। गुर की पौड़ी ऊंचो ऊंचा। कर्म मिले जम

गुरबचनी सच शब्द पछाता, तेरा तान नाम की वडियाई, नानक रहना भगत सरनाई, गौड़ी महला पहला, जिन अकथ कहाया अपयो पी आया, अन पै बिसरे नाम समाया, क्या डरिए डर डर है समाना, पूरे गुर कै शब्द पछाना रहाओ, जिस नर राम हृदय हर रास, सहज सुभाए मिले साबास, जाहे सवारे सांझ बयाल, इत उत मन मुख बांधे काल, अहनस राम हृदय से पूरे, नानक राम मिले भ्रम दूरे, गौड़ी महला पहला, जन्म मरे त्रै गुण हितकार, चारे वेद कथ है आकार, तीन अवस्था कह बखियान, तुरियावस्था सतगुर ते हर जान, राम भगत गुर सेवा तरना, बहुड़ जन्म ना हुए है मरना रहाउ, चार पदार्थ कह सब कोई, सिमरत सासत पंडित मुख सोई, बिन गुर अर्थ भी चार ना पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया, जा कै हृदय बसया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई, हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद, जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा माही निरास बुझाया, दीना नाथ सर्व सुख दाता, नानक हर चरणी मन राता, गौड़ी चेती महला पहला, अमृत काया रह सुखाली, बाजी एहु संसारु, लभ लोभ मुझ कूड़ कमावे, बहुत उठावे पारु, तू काया मैं रुलदी देखी, ज्यों तारी ऊपर चारु, सुन सुन सिख हमारी, सो कृत कीता रहसी मेरे जियड़े, बहुड़ ना आवे वारी रहाउ, हौ तुदे आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी, निंदा चिंदा करह पराई, झूठी लाए तिबारी, वेल पराई जो है जियड़े, करह चोरी बुरियारी, हंस चलिया तू पिछे रहिए, छुट्टड़ हुई है नारी, तू काया रही है सुपनंतर, तुद क्या कर्म कमाया, कर चोरी मैं जा किश लिया, ता मन भला पाया, हलत ना सोभा पलत ना ढोई, अहला

भोग तिसै का पाणा रहाउ, साहु हमारा ठाकुर पारा, हम तिसके बनजारी, जियो पिंड सब रास तिसै की, मारे आपे जीवाले, गौड़ी चेती महला पहला, अवर पंच हम एक जना, क्यों राखों कर बार मना।

नित कामण अवर लुटेन सो पंच जना ताहे मड़ोली लूटिया देहरा सा तन पकड़ी एक जना जम डंडा गल संगल पड़िया भाग गए से पंच जना कामण लोड़े सोयना रूपा मित्र।

लभ लोभ की ताविसता, जपस निरंजन रचस मना, काहे बोलह जोगी कपट कना रहाउ, काया कमली हंस एयाणा, मेरी मेरी करत बिहानीता, प्रणवत नानक नांगी दाजै, फिर पाछै पछतानीता, गौड़ी चेती महला पहला, औखद मंत्र मूल मन एकै, जे कर दृढ़ चित की जैरी, जन्म जन्म के पाप कर्म के काटन हारा ली जैरी, मन एको साहिब पाई रे, तेरे तीन गुणा संसार समाव है, अलख न लखना जाई रे रहाउ, सक्कर खंड माया तन मीठी, हम तो पांड उचाई रे, रात अनेरी सूजस नाही, लाज टूकस मूसा पाई रे, मन मुख करह तेता दुख लागे, गुरमुख

तिनकी पंख होवे जे नानक तो मूड़ा किस पाई रे। गौड़ी चेती महला पहला कत की माई बाप कत केरा किदू थाम हो हम आई।

केते पशु अपाई, केते नाग कुली मह आई, केते पंख उड़ाई, हट पटन बिज मंदर पन्ने, कर चोरी कर आवे, अगों देखै पिछों देखै, तुझते कहां छुपावे। हट तीरथ हम नव खंड देखे, हट पटन बाजारा, लैके तकड़ी टोलन लागा, घट ही मह वणजारा। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे, दया करहु किश मेहर पावहु। डुबदे पत्थर तारी।

आराम का मूढ़े फिर पाछे पछताहे रे रहाओ अनता तन तरनी तरे अनत ना चाहे आ जाए अनत को चाहन जो गए से आए अनत गवाए आपन लिया जे मिले ता सब को पागठ हो।

गौरी बैरागण महला पहला हरनी हुआं बन वसा कंद मूल चुन खाऊं गुर प्रसादी मेरा सहो मिले वार वार हौ जाऊं जियो मैं बनजार नराम की तेरा नाम बखर वापार जी रहाउ कोकिल हुआ अम बसा सहज शब्द विचार सहज सुपाए मेरा सहु मिले

पार मेरा सहु वसै हौ मिलोंगी वहां पसार। नागन होआ तर वसा शब्द वसै पहु जाय। नानक सदा सुहागनी जिन ज्योति ज्योत समाए। गौड़ी पूर्वी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीरत आखिए करते का हुए बिचारु। तित कर गाव हो सोहिला शिवर हो सिरजनहारु। तुम गाव हो मेरे नरपहु का सोहिला हौ वारी जाऊं। जित सोहिले सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े संभालियन देखेगा देवनहार। तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कवन समार। संबत साहा लिखिया मिलकर पाव तेल। देहो सज्जन आसीसड़िया ज्यो होए साहिब स्यो मेल। कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन। सदन हारा सिमरिया नानक से दे आवन। राग गौड़ी गवार री महला तीजा चौपदी।

शब्द पछाण सतगुर कह पहे ब्रह्म पहु जाई पैरा कह सच रंग समाई रहाउ गुर मिले हर मन वसै सुपाई मेरा प्रभ भारा कीमत नहीं पाई।

वै जो पांडा हुई ऊंदे पांडे टिके ना कोई गुर शब्दी मन नाम निवास नानक सच पांडा जिस शब्द प्यास गौरी ग्वार दी महला तीजा।

साची वाणी शब्द विचार गावत रहै जे सतगुर पावे मन तन राता नाम सुहावे रहाउ एक गावे है एक भगत करे नाम ना पावे बिन असने सच्ची भगत गुर शब्द प्यार अपना पिर राखिया सदा उरतार भगत करह मूर्ख आप जनाव है नच नच टप है बहुत दुख पाव है नचे टपे भगत न होए शब्द मरे भगत पाए जन सोए भगत वशल भगत कराए सोए सच्ची भगत विचों आप खोए मेरा प्रभ साचा सब बिद जाने नानक बख्शे नाम पछाणे गौड़ी गुआरी महला तीजा मन मारे तात मर जाए बिन मुए कैसे हर पाए मन मरे दारू जाने कोई मन शब्द मरे बूझे जन सोए जिसनो बख्शे दे वडियाई गुर प्रसाद हर वसै मन आई रहाउ गुरमुख करनी कार कमावे ता इस मन की सोजी पावे मन मैं मत मैगल मिकदारा गुर अंकस मार जीवालन हारा मन असाद साधे जन कोए अचार चरे ता निर्मल होए गुरमुख एहो मन लया सवार हौ मैं विचों तजे वकार जो तुर राखियन मेल मलाए कदे ना विचण है शब्द समाए अपनी कला आपे ही जाने नानक गुरमुख नाम पछाणे गौड़ी गुआरी महला तीजा हौ मैं विच सब जग बौराना दूजे पाए परम पुलाना बहु चिंता चितवै आप ना पछाना धंधा करतिया आन दिन वेहाना हिरदय राम रमहु मेरे भाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाउ गुरमुख हिरदय जिन राम पछाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता हौ मैं मारे गुर शब्द पछाता कृपा करे प्रभ कर्म बधाता से जन सच्चे जो गुर शब्द मलाए ताव

रहाउ। असंत अनारी कदे ना बूजै, कथनी करे तै माया नाल लूजै। अंध अज्ञानी कदे ना सीजै, इस जुग में राम नाम निस्तारा। विरला को पाई गुर शब्द विचारा, आप तरै सगले कुल उदारा। इस कल युग में कर्म धर्म ना कोई, कली का जन्म चंडाल कह कर होई। नानक नाम बिना को मुक्त ना होई, गौड़ी महल्ला।

नाम जपो हो पवजल उतरो हो पार रहाओ परमे आवे परमे जाए एहो जग जन्मया दूजे पाए मन मुख ना चेतै आवे जाए आप भुला के प्रभ आप भुलाया एहो जियो वडाणी चाकरी लाया महा दुख खटे बिरथा जन्म गवाया किरपा कर सतगुरु मलाए एको नाम चेते विचो परम चकाए नानक नाम जपे नाओ नौ निद पाए गौड़ी गुआर दी महला तीजा जिन्ना गुरमुख त्याया।

तुझ ही माही समाही। इतने जन्म भूल परे से, जा पाया ता भूले नाही। जा का कार्य सोई पर जाने, जे गुर कै शब्द सम

का है हर की, पाज मिल साधु संगत जन की, तर पौ जल कथ कथा सुन हर की, गोबिंद सत संगत में लाई, हर रस रसना राम गुण गाए रहाउ, जो जन त्याव है हर हर नामा, तिन दासन दास करहो हम रामा, जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुनावे, सो जन हमरे मन चित पावे, जन पग रेन वड भागी पावे।

जहां हर जस गावे सारिंग प्रीत बसह जल तारा नरपत प्रीत माया देख पसारा हर जन प्रीत जपे निरंकारा नर प्राणी प्रीत माया धन खाटे गुरसिख प्रीत गुर मिले गलाटे जन नानक प्रीत साध पग चाटे गौड़ी गुआरी महला चौथा भीखक प्रीत भीख प्रभ पाए भूखे प्रीत होवे अन खाए गुरसिख प्रीत गुर मिल आघाए हर दर्शन देहो हर आस तुम्हारी कर कृपा लोच पूर हमारी रहाओ चकवी प्रीत सूरज मुख लागे मिले प्यारी सब दुख त्यागे गुरसिख प्रीत गुरु मुख लागे बछरे प्रीत खीर मुख खाए हृदय बिगसै देखे माए गुरसिख प्रीत गुरु मुख लाए होर सब प्रीत माया मोह काचा बिन सजाए कूड़ा कच पाचा जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा गौड़ी गुआर रे महला चौथा सतगुर सेवा सफल है बनी जित मिल हर नाम त्याया हर तनी जिन हर जपया तिन पीछे छोटी कणी गुरसिख हर बोलो हो मेरे भाई हर बोलत सब पाप लह जाई रहाओ जब गुर मिलया तब मन वास आया तावत पंच रहे हर त्याया अन दिन नगरी हर गुण गाया सतगुर पग धूर जिन्ना मुख लाई तिन कूड़ त्यागे हर लिब लाई ते हर दरगाह मुख उजल पाई गुर सेवा आप हर पावे कृष्ण बल भद्र गुर पग लग त्यावे नानक गुरमुख हर आप तरावे गौड़ी गुआर री महला चौथा हर आपे जोगी डंडा तारी हर आपे रव रहया बनवारी हर आपे तप तापे लाए तारी ऐसा मेरा राम रहया भरपूर निकट वसै नाही हर दूर रहाओ हर आपे शब्द सुरत धुन आपे हर आपे वेखै बिगसै आपे हर आप जपाए आपे हर जापे हर आपे सारिंग अमृत धारा हर अमृत आप पिया मनहारा।

रंग सिउ जे आप दयाल हुए देह हम बन जारे राम के हर वणज करावे दे रासरे रहाओ लाहा हर भगत तन खटिया हर सच्चे साहा मन पाया हर जप हर वखर लद्या जम जा गाती नेड़ ना आया होर वणज करह वापारिये अनंत तरंगी दुख माया वे जे है वणज हर लाया फल तेहा तिन पाया हर हर वणज सो जन करे

सौदागरी सौदागर तावे तन खटे आसा करे माया मोह वधावे त्यों हर जन हर हर बोलता हर बोल सुख पावे बिक संचय हटवानिया बह हाट कमाए मोह झूठ पसारा झूठ का झूठे लपटाए त्यों हर जन हर तन संचया हर खर्च लै जाए इह माया मोह कटंब है।

गौड़ी बैरागण महला चौथा नित दिन सरात लालच करी पर मैं परमाया वेगार फिरे वेगारिया सिर पार उठाया जो गुर की जन सेवा करे सो कर कै काम हर लाया मेरे राम तोड़ बंधन माया कर कै कम लाए नित हर गुण गावे हर नाम सुमाए रहाउ नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजी अर्थ सब माया कै बंदे कै दान ले कै नरपत मर जाया तन तन सेवा सफल सतगुरु की जित हर हर नाम जप हर सुख पाया नित सौदा सूद की कै बहु भांत कर माया कह ताई जा लाहा दे ता सुख मने तू टै मर जाई जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लागे जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आगे।

हमरे मन चित हर आस नित क्यों देखा हर दर्स तुम्हारा जिन प्रीत लाई सो जानता हमरे मन चित हर बहुत प्यारा हौ कुर्बानी गुरे अपनी जिन बिछड़िया मेलिया मेरा सिरजनहार।

रहाउ। हमरे अवगुण बहुत बहुत है, बहु बार बार हर गणत न आवे। तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श लह हर पावे। हम अपराधी राखे गुर संगति, अपदेश दियो हर नाम छडावे। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोल है तब विस्म होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है, जैसे हम सतगुर राख लिए छडाए। तू गुर पिता, तू है गुर माता, तू गुर बंधप मेरा सखा सखाए। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जान हो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे।

हर हर दयाल कर कृपा बख्शे अवगण सब मेरे रहाओ। किस रूप नहीं किस जात नाही किस ढंग ना मेरा क्या मुंह लै बोल है गुण विहून नाम।

जन नानक हाथ विहाजिया हर गुलम गलामी गौड़ी बैरागण महला चौथा ज्यों जननी सुत जन पालती राखह नदर मजार अंतर बाहर मुख देह ग्रास खिन खिन पोचार त्यों सतगुर गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारक हर प्रभ के है यानी तन तन गुरु गुर सतगुर पांदा जिन हर उपदेश दे किए सियाणी रहाओ जैसी गगन परंती उड़ती कपरे बागे वाली ओह राखै चीत पीछे बिच बचरे नित हिरदय सार संभाली त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की गुर सिख रखै जी नाली जैसे काती तीस बतीस है विच राखै रसना मास रात केरी कोई जान हो मास काती कह किस हाथ है सब वसगत है हर केरी त्यों संत जना की नर निंदा करह हर राखै पैज जन केरी भाई मत कोई जानो किसी कै किस हाथ है सब करे कराया जरा मरा ताप सिरत साप सब हर कै वस है कोई लाग न सकै बिन हर का लाया ऐसा हर नाम मन चित नित त्यावहु जन नानक जो अंति अवसर लय छाया गौड़ी बैरागण महला चौथा जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुर कहिए मन की दुबदा बिन सजाए हर परम पद लहिए मेरा सतगुर प्यारा कित बिद मिले हों खिन खिन करी नमस्कार मेरा गुर पूरा क्यों मिले रहाओ कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुर पूरा इच पुन्नी जन केरिया ले सतगुर तूरा हर भगत दरड़ावे हर भगत सुने तिस सतगुर मिलिये टोटा मूल ना आवई हर लाभ नित दृढ़िये जिस को हृदय विगास है पाओ दूजा नाही नानक तिस गुर मिल उधरे हर गुण गावाही महला चौथा गौड़ी पूर्वी हर दयाल दया प्रभ कीनी मेरे मन तन मुख हर बोली गुरमुख रंग भया अत गूड़ा हर रंग पीनी मेरी चोली अपने हर प्रभ की हों गोली जब हम हर सेती मन मानिया कर दीनो जगत सब गोल अमोली रहाओ करहो विवेक संत जन पाई खोज हृदय देख टंडोली हर हर रूप सब जोत सबाई हर निकट वसै हर कोली हर हर निकट वसै सब जग कह अपरंपर पुरख अतोली हर हर प्रगट कियो गुर पूरै सिर वेचियो गुर पै मोली हर जी अंतर बाहर तुम सरनाग तुम वड पुरख वडोली जन नानक अन दिन हर गुण गावै मिल सतगुर गुर वे चोली गौड़ी पूर्वी महला चौथा जग जीवन अपरंपर स्वामी जगदीश्वर पुरख बधाते जित मार्ग तुम प्रेर हो स्वामी तित मार्ग हम जाते राम मेरा मन हर से तीराते सत संगत मिल राम रस पाया हर नाम मैं नाम समाते रहाओ हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साते तिनके पाप दोख सब बिनसे जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक ते गुर संतोख सरनाते दुर्मत मैल गई सब तिनकी जो राम नाम रंग राते राम तुम आपे आप आप प्रभ ठाकुर तुम जेवड़ अवर ना दाते जन नानक नाम लए ता जीवै हर जपिए हर कृपाते गौड़ी पूर्वी महला चौथा करहो कृपा जग जीवन दाते मेरा मन हर से तीराचे सतगुर बचन दियो अत निर्मल जप हर हर हर मन माचे
राम मेरा मन तन बेद लियो हर साचे जिहे काल कै मुख जगत सब ग्रसिया गुर सतगुर कै बचन हर हम बाचे रहा जिनको प्रीत नाही हर सेती ते साकत मूड नर काचे तिनको जन्म मरण अत भारी विच विस्ता मर मर पाचे तुम दयाल सरन प्रतपालक मोको दीजै दान हर हम जाचे हर के दास दास हम कीजै मन निरत करे कर नाचे आपे साहा वड्डे प्रभ स्वामी हम बन जारे है ताचे मेरा मन तन जियो रास सब तेरे जन नानक के साहा प्रभ साचे गौड़ी पूर्वे महला चौथा तुम दयाल सर्व दुख भंजन

हम सतगुर पार ब्रह्म कर मानी, हम मूढ़ मुगद अशुद्ध मत होते, गुर सतगुर कै बचन हर हम जानी रहाउ, जितने रस अनरस हम देखे सब तितने फीक फीकाने, हर का नाम अमृत रस चाखिया मिल सतगुर मीठ रस गानी, जिनको गुर सतगुर नहीं पीटिया ते साकत मूढ़ देवानी, तिनके कर्महीन तुर पाए देख दीपक मोहे पचाने, जिनको तुम दया कर मेलो ते हर हर सेव लगाने, जन नानक हर हर हर जप प्रगटे मत गुरमत नाम समाने। गौड़ी पूर्वी महला चौथा। मेरे मन सो प्रभ सदा नाल है स्वामी, कहो कितै हर पहु नसीऐ, हर आपे बख्श लए प्रभ साचा, हर आप छुड़ाए छुटिऐ, मेरे मन जप हर हर हर मन जपिऐ, सतगुर की सरनाई भज पौ मेरे मना, गुर सतगुर पीछे छुटिऐ रहाउ, मेरे मन सेव हो सो प्रभ सरब सुख दाता, जित सेवै निज कर वसीऐ, गुरमुख जाए लहो कर अपना, कस चंदन हर जस कसीऐ, मेरे मन हर हर हर हर हर जस उत्तम, लै लाहा हर मन हसीऐ, हर हर आप दया कर देवै, ताय अमृत हर रस चखीऐ, मेरे मन नाम बिना जो दूजै लागे, ते साकत नर जम कुटिऐ, ते साकत चोर जिन्ना नाम वसारिया, मन तिनकै निकट ना पिटिऐ, मेरे मन सेवो हो अलख निरंजन नरहर, जित सेवै लेखा छुटिऐ, जन नानक हर प्रभ पूरे किए, खिन मासा तोल ना कटिऐ। गौड़ी पूर्वी महला चौथा। हमरे प्राण वसगत प्रभ तुमरै, मेरा जियो पिंड सब तेरी, दया करहो हर दर्श दिखावहु, मेरे मन तन लोच कनेरी, राम मेरे मन तन लोच मिलन हर केरी, गुर कृपाल कृपा किंचत गुर कीनी, हर मिलिया आए प्रभ मेरी रहाउ, जो हमरे मन चित है स्वामी, साबिद तुम हर जानो मेरी, अन दिन नाम जप

अन दिन अनद पया बड भागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश्वर करते सब वसगत है हर केरी जन नानक शरणागत आए हर राखो पैज जन केरी गौड़ी पूर्वी महला चौथा इहो मनुआ खिन ना टिकै बहु रंगी दह दह दिस चल चल हांडी गुरपुरा पाया वड भागी हर मंत्र दिया मन ठाढे राम हम सतगुर लाले कांडे रहाउ हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु साढ़े पार उपकार पुन बहु किया बहु दुत्तर तार पराढ़े जिनको प्रीत हृदय हर नाही तिन कूरे गाडन गाडी ज्यो पानी कागद बिन सुजात है त्यों मन मुख गर्भ गलाढ़े हम जानिया कशु ना जान है आगै ज्यो हर राख है त्यों ठाढ़े हम पूल चूक गुर कृपा तारो जन नानक पुतरे कांडे गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम करोद नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडाई पूर्व लिखित लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडाई कर साधु अंजलि पुन वड्डाई कर डंडोत पुन वड्डाई रहाउ साकत हर रस साधना जानिया तिन अंतर हम मैं कंडाई ज्यों ज्यों चल है चुभै दुख पावे जम काल सह सिर डंडाई हर जन हर हर नाम समाणी दुख जन्म मरण भव खंडाही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडाही हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डाही जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडाई गौड़ी पूर्वी महला चौथा इस गढ़ में हर राम राय है किस साधना पावे तीठा हर दीन दयाल अनुग्रह किया।

हर यज्ञ में अगोचर पार ब्रह्म है, मिल सतगुर लाग बसीठा, जिन गुर बचन सुखा नेहियर है, तिन आगह आन परीठा, मन मुख हियरा अत कठोर है, तिन अंतर कार करीठा, बिसियर कौ बहु दूध पी आई है, बिक निकसै फोल फलीठा, हर प्रभ्यान मलाव गुर साधु, कस गरड़ो शब्द मुख लीठा, जन नानक गुर के लाले गोले, लग संगत करुआ मीठा।

मुख मस्तक पाग सुभागी राम गुरमत हर लिव लागी रहाउ। कट कट रमैया रमत राम राई गुर शब्द गुरु लिव लागी। हो मन तन देवो काट गुरु कहो मेरा भ्रम पहो गुर बचनी भागी। अंधियार है दीप ज्ञान जलाई गुर ज्ञान गुरु लिव लागी। अज्ञान अंधेरा बिनस बनासेउ कर वस्त लही मन जागी। साकत बदक माया तारी तिन जम जो हन लागी। हुन सतगुर आगै सीस ना बेचिया हुए आवह जाहे अभागी। हमरा बिनो सुनो प्रभ ठाकुर हम शरण प्रभु हर मांगी। जन नानक की लज पात गुरु है सिर बेचे हो सतगुर आगी। गौड़ी पूर्वी महला चौथा हम अहंकारी अहंकार अज्ञान मत गुर मिले आप गवाया। हम मैं रोग गया सुख पाया तन तन गुरु हर राया। राम गुर कै बचन हर पाया रहाउ। मेरा ही अरे प्रीत राम राय की गुर मार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सतगुर आगे जिन विछड़िया हर गल लाया। मेरा अंतर प्रीत लगी देखन को गुर हृदय नाल दिखाया। सहज आनंद भया मन मोरे गुर आगे आप बिचाया। हम अपराध पाप बहु कीने कर दुष्टि चोर चुराया। अब नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर पाया। गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजै शब्द अनाहद गुरमत मनुआ गावे। वड भागी गुर दर्शन पाया तन तन गुरु लिव लावे। गुरमुख हर लिव लावे रहाउ। हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे। हम मल मल तो वह पाव गुरु के जो हर हर कथा सुनावे। हृदय गुरमत राम रसायन जिहवा हर गुण गावे। मन रसक रसक हर रस आगामी फिर बहोर न भूख लगावे। कोई करे उपाव अनेक बहुतेरी बिन कृपा नाम ना पावे। जन नानक को हर कृपा तारी मत गुरमत नाम दृढ़ावे। राग गौड़ी माज महला चौथा गुरमुख जिंदू जप नाम करम्मा। मत माता मत जियो नाम मुख रामा। संतोख पिता कर गुरपुरख अजन्मा वड भागी मिल रामा। गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो। गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो। वड भागी मिल सुगड़ सुजाणी जियो। मेरा मन तन हर रंग पिन्ना आवहु संत हो मिल नाम जपाहा। विच संगत नाम सदा ले लाहा जियो। कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो। मिल पूर्व लिखियड़े तुर कर्मा सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो। मन मोर कुह कियड़ा शब्द मुख पाया हर अमृत बुठड़ा मिलिया हर राया जियो। जन नानक प्रेम रतन्ना गौड़ी माज महला चौथा आओ सखी गुण कामण करीहा जियो। मिल संत जना रंग मान रलिया जियो। गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो। हर तुठै टुल टुल मिलिया जियो।

प्यारिया वस मेरे गोविंदा हर कर कृपा मन वस जीव मन चिंदियाड़ा फल पाया मेरे गोविंदा गुरपुरा वेख विगस जीव हर नाम मिलिया सोहागणी मेरे गोविंदा मन अन दिन अन दरहस जीव हर पायड़ा वडभागी मेरे गोविंदा नित लै लाहा मन हस जीव हर आप उपाय।

एक राजे तख्त बह नित सुखिये एक ना भिख मगाया जियो सब इको शब्द वरतदा मेरे गोविंदा जन नानक नाम ते आया जियो गौड़ी माज महला चौथा मन माही।

हर हर नाम प्रगासिया मेरे गोविंदा सब दालत दुख लह जाही दियो हर पद उत्तम पाया मेरे गोविंदा वडभागी नाम समाही दियो नैनी मेरे प्यारिया नैनी मेरे गोविंदा किनै हर प्रभ डिठड़ा नैनी दियो मेरा मन पन बहुत बैरा गया मेरे गोविंदा हर बाजो हूं धन कुम लैनी जियो संत जना मिल पाया मेरे गोविंदा मेरा हर प्रभ सज्जन सैनी जियो हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा मैं सुख विहानी रैनी जियो मैं मेलो संत मेरा हर प्रभ सज्जन मैं मन तन भुख लगाइया जियो हो रह ना सको बिन देखे मेरे प्रीतम मैं अंतर बिरहो हर लाइया जियो हर राया मेरा सज्जन प्यारा गुर मेले मेरा मन जीवाइया जियो मेरा मन तन आसा पूरिया मेरे गोविंदा हर मिलिया मन वादाइया जियो वारी मेरे गोविंदा वारी मेरे प्यारिया हों तुद विकटने हों सदवारी जियो मेरा मन तन प्रेम परम का मेरे गोविंदा हर पूंजी राख हमारी जियो सतगुरु विश

हरे आपे सब कट भोगदा मेरे गोविंदा आपे रसिया भोगी जियो हर सुजान ना भुलई मेरे गोविंदा आपे सतगुर जोगी जियो आपे जगते उपाए दा मेरे गोविंदा हरे आप खिले बहुरंगी जियो एक ना भोग पुगाए दा मेरे गोविंदा एक नगन फिर है नंग नंगी जियो आपे जगते उपाए दा मेरे गोविंदा हर दान देवै सब मंगी जियो भगता नाम आधार है मेरे गोविंदा हर कथा मंग है हर चंगी जियो हर आपे भगत कराए दा मेरे गोविंदा हर भगता लोच मन पूरी जियो आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा रब रहया नहीं दूरी जियो हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा हर आप रहया भरपूरी जियो हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा हर वेखै आप हदूरी जियो हर अंतर वाजा पौन है मेरे गोविंदा हर आप बजाए त्यों वाजे जियो हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा गुर शब्दी हर प्रभ गाजे जियो आपे सरन पुआए दा मेरे गोविंदा हर भगत जना राख लाजे जियो वडभागी मिल संगती मेरे गोविंदा जन नानक नाम सिद्ध काजे जियो गौड़ी माज महला चौथा मैं हर नामे हर बिरहो लगाई जियो मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जियो हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो मेरा नाम सखा हर पाई जियो गुण गावो संत जियो मेरे हर प्रभ केरे जियो जप गुरमुख नाम जियो भाग वडेरे जियो हर हर नाम जियो प्राण हर मेरे जियो फिर बहुड़ ना भवजल फेरे जियो क्यों हर प्रभ वेखा मेरा मन तन चाओ जियो हर मेलो संत जियो मन लगा पाओ जियो गुर शब्दी पाईए हर प्रीतम राव जियो वड भागी जप नाओ जियो मेरा मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो हर मेलो संत जियो गोविंद प्रभ पासा जियो सतगुर मत नाम सदा प्रगासा जियो जन नानक पूरे अड़ी मन आसा जियो गौड़ी माज महला चौथा मेरा बिरही नाम मिले ता जीवा जियो मन अंदर अमृत गुरमत हर लीमा जियो मन हर रंग रतड़ा हर रस

प्रीतम मित्र हर पुरख सुजान जियो। गुर मेले संत हर सुगड़ सुजान जियो। हौ नाम विटहो कुर्बान जियो। हौ हर हर सज्जन हर मीत दसाई जियो। हर दसो संतो जी

गुर शरदा पूर अमृत मुख पाई दियो, हर हो दयाल हर नाम त्याई दियो, जन नानक हर रस पाई दियो। महला पंजवा राग गौड़ी गुआरी चौपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, किन बेद कुशल होत मेरे भाई क्यों।

सुपने पेखारी, एक कुशल मोको सतगुरु बताया, हर जो किश करे सो हर किया भगता पाया, जन नानक कहो मैं मार समाया, इन बिद कुशल होत मेरे भाई, इउं पाईए हर राम सहाई, रहाओ दूजा गौड़ी ग्वारी महला पंजवा, क्यों भ्रमिए भ्रम किसका होई, जां जल थन महियल रविया सोई, गुरमुख उबरे मनमुख पत खोई, जिस राखै आप राम दयारा, तिस नहीं दूजा को पहुंचन हारा, रहाओ सब मह वरतै एक अनंता, ता तू सुख सो होए अचिंता, ओहो सब किस जाने जो वरतंता, मन मुख मोए दिन दूजी प्यासा, बहु जोनी पवह तुर किरत लिखियासा, जैसा बीजह तैसा खासा, देख दर्श मन पया विगासा, सब नदनी आया ब्रह्म परगासा, जन नानक की हर पूर्ण आसा, गौड़ी ग्वार री महला पंजवा, कई जन्म पय कीत पतंगा, कई जन्म गजमीन कोरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर ब्रिख जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल एह दे संजरिया रहाओ, कई जन्म सैल गिर करिया, कई जन्म गर्भ हिर खरिया, कई जन्म साख कर उपाया, लख चौरासी जोन प्रमाया, साध संग भयो जन्म प्रापत, कर सेवा पज हर हर गुरमत, त्याग मान झूठ अभमान, जीवत मरह दरगाह परवान, जो किश होआ सो तुझ ते होग, अवर ना दूजा करने जोग, ता मिलिए जा लह मलाई, कहो नानक हर हर गुण गाई, गौड़ी ग्वार री महला पंजवा, कर्म भूम मह बोह नाम, पूर्ण होए तुम्हारा काम, फल पावह मिटै जम त्रास, नित गावह हर हर गुण जास, हर हर नाम अंतर उर तार, शीघ्र कार्ज लिहो सवार रहाओ, अपने प्रभ स्यों हो सावधान, ता तू दरगाह पावह मान, उगत सियाणप सगली त्याग, संत जना की चरणी लाग, सर्ब जी है जां कै हाथ, कदे ना विछड़े सब कै साथ, अपाव छोड़ गहो तिसकी ओट, निमक माही होवै तेरी छोट, सदा निकट कर तिसनो जान, प्रभ की आज्ञा सत कर मान, गुर कै बचन मटाव हो आप, हर हर नाम नानक जप जाप, गौड़ी ग्वार री महला पंजवा, गुर का बचन सदा अबनासी, गुर कै बचन कट्टी जम फासी, गुर का बचन जी कै संग, गुर कै बचन रचै राम कै रंग, जो गुर दिया सुमन कै काम, संत का किया सत करमान, रहाओ गुर का बचन अटल अशेद, गुर कै बचन कट्टे भ्रम भेद, गुर का बचन कतहु न जाय, गुर कै बचन हर के गुण गाय, गुर का बचन जी कै साथ, गुर का बचन अनाथ को नाथ, गुर कै बचन नरक ना पवै, गुर कै बचन रसना अमृत रवै, गुर का बचन प्रकट संसार, गुर कै बचन नया व्यहार, जिस जन होए आप कृपाल, नानक सतगुर सदा दयाल, गौड़ी ग्वार री महला पंजवा, जिन कीता माटी ते रतन, गर्भ मह राखिया जिन कर जतन, जिन दीनी सोभा वडियाई, तिस प्रभ को आठ पहर त्याई, रमैया रेन साध जन पावो, गुर मिले अपना खसम त्यावो, रहाओ जिन कीता मूड़ ते बक्ता, जिन कीता बे सुरत ते सुरता।

सिमर गुणतास, एको मन एको सब ठाई, पूर्ण पूर रहे हो सब जाय, गुरपूर सब परम चकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया। गौड़ी ग्वार दी महला पंजवा, अगले मोए से पाछे परे, जो उबरे से बांध लख खरे।

रूपक दीपाहे अग्न सीत का लाहस दुख नाम जपत मन होवत सुख उतर जाए तेरे मन की प्यास पूर्ण होए सगली आस ढोले नाही तुमरा चीत अमृत नाम जप गुरमुख मीत नाम औखद सोई जन पावे कर कृपा जिस आप दिवावे हर हर नाम जा कह हृदय वसे दुख दर्द ते नानक नसे गौड़ी गुआरी महला पंजवा बहुत दर्ब कर मन ना आघना अनक रूप देख नह पतियाना पुत्र कलत्तर उर्जियो जान मेरी ओह बिन सह ओए पस मैं ढेरी बिन हर भजन देखो बिल लाते त्रिग तन त्रिग धन माया संगराते रहाओ ज्यो बिगारी कै सिर दी जह दाम ओए खसमै कै ग्रह उन दुख सहाम ज्यो सुपने होए बैस्त राजा नेत्र पसारे तन रार्थ काजा ज्यो राखा खेत ऊपर पराए खेत खसम का।

राखा उठ जाए। उस खेत कारण राखा खड़े तिसके पाले कछु ना पड़े। जिसका राज तिसे का सुपना, जिन माया दीनी तिन लाई तृष्णा। आप बनाहि आप करे रास, नानक प्रभ आगे अरदास। गौड़ी ग्वारी महला पंजवा, बहु रंग माया बहु विद पेखी। कलम कागद सियान पलेखी, महर

रहाउ। हस पवन हस्त असवारी, जोआ चंदन सेज सुंदर नारी। नट नाटक आखारे गाया, तामह मन संतोख न पाया। तख्त सभा मंडन दोलीचे, सगल मेवे सुंदर बागीचे। अखेर बिरत राजन की लीला, मन ना सुहिला पर पंच हीला। कर कृपा संतन सच कहया, सर्व सुख इहो आनंद लहया। साध संग हर कीर्तन गाइए, कहो नानक वड भागी पाइए। जा कै हर तन सोई सुहेला, प्रभ कृपा ते साध संग मेला। रहाउ दूजा गौड़ी गुआरी महला पंजवां।

संसार। जो हलाहल सो पीवै बवरा, अमृत नाम जानै कर कौरा। साध संग कै नाही नेर, लख चौरासी भ्रमता फेर। एकै जाल फहाए पंखी, रस रस भोग करहै बहुरंगी। कहो नानक जिस पए कृपाल, गुरपूरै ताके काटे जाल। गौड़ी गुआररी महला पंजवां, तौ किरपा ते मार्ग पाईऐ। प्रभ किरपा ते नाम ते आईऐ, प्रभ किरपा ते बंधन छुटै। तौ किरपा ते हम मैं टुटै, तुम लाभ हो तौ लाग है सेव। हम ते कछु ना होवै देव रहाउ। तुद पावै ता गावा बाणी, तुद पावै ता सच बखाणी। तुद भावै ता सतगुर मया, सर्ब सुखा प्रभ तेरी दया। जो तुद भावै सो निर्मल करमा, जो तुद भावै सो सच धर्मा। सर्ब निदान गुण तुम ही पास, तू साहिब सेवक अरदास। मन तन निर्मल होए हर रंग, सर्ब सुखा पावो सत संग। नाम तेरा रह मन राता, एहु कल्याण नानक कर जाता। गौड़ी गुआर दी महला पंजवां, आन रसा जेते तैं चाखे। निमखना तृष्णा तेरी लाते, हर रस का तू चाख है साधु। चाख तो हुए रह।

राम गुण गाओ निमक निमक हर हर हर त्याओ आन ना सुनिए कतहु जाइए साध संगत बड़ पागी पाइए आठ पहर जिहवे आराध पार ब्रह्म ठाकुर आगाद इहां उहां सदा सुहेली हर गुण गावत रसनी अमोली बनस्पत मौली फल फूल पेडे एह रस राती बहुर ना छोड़े आन ना रस कस लवै ना लाई कहो नानक गुर पए है सहाई गौड़ी गुआरी महला पंजवा मन मंदर तन साजी बार इस ही मधे बस्त अपार इस ही पीतर सुनियत साह कवन बापारी जा का उहां वसाह नाम रतन को व्यवहारी अमृत भोजन करे आहारी रहाओ मन तने अर्पी सेव करी जय कमन सो जुगत जित कर पीजै पाए लगो तज मेरा तेरै कमन सो जन जो सौदा जोरै महल साहा का किन बिद पावै कमन सो बिद जित पीतर बुलावै तू वड साह जाके कोट बन जारे कमन सो दाता ले संचारे खोजत खोजत निज कर पाया अमोल रतन साच दिखलाया कर कृपा जब मेले साह कहो नानक गुर कै विसार गौड़ी महला पंजवा गुवाररी रैन दिनस रह इक रंगा प्रभ को जाने सद ही संगा ठाकुर नाम कियो उनवर्तन तृप्त अगावन हर कै दर्शन हर संग राते मन तन हरे गुर पूरे की सरनी परे रहाओ चरण कमल आत्म आधार एक निहार है आज्ञाकार एको बनज एको व्यवहारी अवरना जान है बिन निरंकारी हरख सोग दोहू ते मुक्ते सदा अलिपत जोग अर जुगते दिस है सब में है सब ते रहते पार ब्रह्म का उए ध्यान धरते संतन की महिमा कमन बखानो अगाध बोध किस मित नहीं जानो पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय तूर संतन की नानक दी जय गौड़ी गुआरी महला पंजवा तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत तू मेरा प्रीतम तुम संग हीत तू मेरी पत तू है मेरा गहना तुझ बिन निमख ना जाई रहना।

भंडार, रंग रसा तू मन है आधार, तू मेरी शोभा तुम संग रतिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया, मन तने अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुर ते पाया, सतगुर ते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है, गौड़ी गुआरी महला पंजवां, व्यापत हरक सोग विस्थार, व्यापत सुरग नर के अवतार, व्यापत धन निर धन पेख सोभा, मूल ब्यादि व्याप सलोभा, माया व्यापत बहु परकारी, संत जीव है प्रभ ओट तुम्हारी, रहाउ व्यापत हम बुद्ध का माता, व्यापत पुत्र कलत्तर संग राता, व्यापत हस्त कोड़े अर बस्ता, व्यापत रूप जोबन मदमस्ता, व्यापत भूम रंक अर रंगा, व्यापत गीत नाद सुन संगा, व्यापत सेज महल शिंगार, पंच दूत व्यापत अंधियार, व्यापत कर्म करे हौ फासा, व्यापत गिरस्त व्यापत उदासा, विचार व्यवहार व्यापत ए जात, सब किश व्यापत बिन हर रंग रात, संतन के बंधन काटे हर राय, ता को कहां व्यापै माय, कहो नानक जिन तूर संत पाई, ता कै निकट न आवै माई, गौड़ी गुआर री महला पंजवां।

मन सोया माया बिस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रह, साबत वस्त ओ अपनी लह रहाओ। सगल सहेली अपने रसमाती, ग्रह अपने की खबर ना जाती, मुसनहार पंच बटवारी, सुने नगर परे ठगहारी। हुन तेरा कह बाप ना माई, हुन तेरा कह मीत ना पाई, दर्ब स्याणप ना होए रहते, साध संग ओए दुष्ट वस उत्ते।

गौड़ी ग्वारी महला पंजवा जाके वस खान सुल्तान जाके वस है सगल जहान जाका किया सब किश हुए तिसते बाहर ना ही कोई कहो बेनंती अपने सतगुर पाए काज तुम्हारे दीन बाहे रहाओ सब ते ऊंच जाका दरबार सगल भगत जाका नाम आधार सर्व व्यापत पूर्ण तनी जाकी शोभा कट कट बनी जिस सिमरत दुख डेरा टह जिस सिमरत जम किशु ना कह जिस सिमरत होत सूके हरे जिस सिमरत डूबत पाहन तरे संत सभा कहो सदा जयकार हर हर नाम जन प्राण आधार कहो नानक मेरी सुनी अरदास संत प्रसाद मोको नाम निवास गौड़ी ग्वारी महला पंजवा सतगुर दर्शन अगन निवारी सतगुर भेट तह मैं मारी सतगुर संग नाही मन डोले अमृत बाणी गुरमुख बोले सब जग साचा जा सच महराती शीतल शांत गुरते प्रभ जाते रहाओ संत प्रसाद जपै हर नाऊ संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ संत प्रसाद सगल दुख मिटे संत प्रसाद बंधन ते छुटे संत कृपा ते मिटे मोह परम साध रेण मजन सब धर्म साध कृपाल दयाल गोविंद साधा मह ए हमरी जिंद किरपा निध किरपाल त्यावो साध संगता बैठन पावो मोहे निर्गुण कौ प्रभ कीनी दया साध संग नानक नाम लया गौड़ी ग्वारी महला पंजवा साध संग जपियो भगवंत केवल नाम दियो गुरमंत ताज अभमान पये निरवैर आठ पैर पूजो गुर पैर अब मत बिनसी दुष्ट बेगानी जब ते सुनिया हर जस कानी।

कर कर्म देख बोले सुने सब आप सदा संग ताको मन जाप संत प्रसाद भयो परगास।

पार ब्रह्म स्यों लागी प्रीत निर्मल करनी साची रीत गुरपूरै मेटिया अंधियारा नानक का प्रभ अपर अपारा गौड़ी ग्वार दी महला पंजवा जिस मन वसै तरै जन सोए जा कै कर्म प्राप्त होए दुख रोग कछ पौ ना व्यापै अमृत नाम हृदय हर जापै पार ब्रह्म परमेश्वर क्या यह।

कृतपाल अगमय गोचर सदा बेअंता सिमरमना पूरे गुरमंता जाकी सेवा सर्व निदान

जामी सुख निदान हर अलख स्वामी जी जंत तेरी सरनाई नानक नाम मिले बड़ियाई गौड़ी गुआरी महला पंजवा जी जुगत जां कह है हाथ सो सिमरहो अनाथ को नाथ रब चित आए सब दुख जाए पै सब बिन सह हर कह नाए बिन हर पव काहे का मन है हर बिसरत काहे सुख जान है रहाओ जिन तारे बहु तरन आगास जां की जोत जी परगास जां की बख्शना में तय कोए सिमर सिमर प्रभ निरपव होए आठ पैर सिमर हो प्रभ नाम अनक तीरथ मज्जन इशनाम।

पुरख जपै भगवान आठ पहर हर हर गुण गाऊं कहो नानक कहो तिस बल जाऊं राग गौड़ी ग्वारी महला पंजवां चौपदे दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो परायो सोई अपना जो तज छोड़न तिस स्यों मन रचना कहो गसाई मिली ऐ के जो बिबरजत तिस स्यों ने रहाओ झूठ बात सा सच कर जाती सत होवन मन लगे ना राती बावे मार्ग टेढ़ा चलना सीधा छोड़ अपूठा बुनना दोहां सनिया का खसम प्रभ सोई जिस मेले नानक सो मुक्ता होई गौड़ी ग्वार वी महला पंजवां कल युग मह मिले आए संयोग जिचर आ गया तिचर भोग भोग जलै न पाइए राम स्नेही किरत संयोग सती उठ होई रहाओ देखा देखी मन हठ जल जाइए प्रिय संग न पावे बहु जोन पवाइए सील संयम प्रिय आग्या माने तिस नारी को दुख ना जमाने कहो नानक जिन प्रियो परमेश्वर कर जानिया धन सती दरगाह परवानिया गौड़ी ग्वार महला पंजवां हम तनवंत भागठ सच ना।

ना मूल परे पंडार अखूट अतोल खाव है खर्च है रल मिल पाई टूट ना आवे वध दो जाई।

सगल निदहना गौरी महला पंजवा अगम रूप का मन महथाना गुर प्रसाद किने बिरले जाना सहज कथा के अमृत कुंटा जिसह प्राप्त तिसलह पुंचा रहा अनहत बाणी थान निराला तां की धुन मोहे गोपाला तह सहज अखारे अनेक अनंता पार ब्रह्म के संगी संता हरख अनंत सोग नहीं बिया सो कार गुरु नानक को दिया गौड़ी महला पंजवा कवन रूप तेरा अरादो कवन जोग काया ले साधो कवन गुण जो तुझ लै गाव कवन बोल पार ब्रह्म री जाव रहाव कवन सो पूजा तेरी करो कवन सो बिद जित पव जल तरो कवन तप जित तपिया होए कवन सो नाम हमे मल खोए गुण पूजा ज्ञान ध्यान नानक सगल काल जिस कर कृपा

माया वड्याई सो वड्डा जिन राम निवलाई रहाउ। भूमिया भूम ऊपर नित लुजै छोड़ चलै तृष्णा नहीं बुझै। कहो नानक एहो तत बीचारा बिन हर भजन नाहीं छुटकारा। गौड़ी महला पंजवां पूरा मार्ग पूरा इशनान सब किश।

हर कै मार्ग पतत पनीत पूरी शोभा पूरा लोकीक करन हार सद वसै हदूरा कहो नानक मेरा सतगुर पूरा गौड़ी महला पंजवा संत की धूर मिटे अग कोट संत प्रसाद जन्म मरण ते छोट संत का दर्स पूर्ण इशनान संत कृपा ते जपिए नाम रहाव संत कै संग मिटिया अहंकार दृष्ट आवे सबे कंकार संत सो प्रसन्न आए वस पंचा अमृत नाम हृदय लै संचा कहो नानक जा का पूरा कर्म तिस भेटे साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा हर गुण जपत कमल परगासै हर सिमरत त्रास सब नासै सा मत पूरी जित हर गुण गावे बड़े भाग साधु संग पावे रहाव साध संग पाईए निदनामा साध संग पूर्ण सब कामा।

मुख हर हर बोले सो जन इत उत कतह ना डोले जा कै हर तन सो सच साह गुरपूरै कर दीनो विसाह जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया गौड़ी महला पंजवा नाम भगत कै प्राण आधार नामो धन नामो व्यवहार नाम वडाई जन शोभा पाए कर कृपा जिस आप दिवाए रहाओ नाम भगत कै सुख स्थान नाम रत सो भगत परवान हर का नाम जन को तारे सास सास जन नाम सुमारे कहो नानक जिस पूरा भाग नाम संग ताका मन लाग गौड़ी महला पंजवा संत प्रसाद हर नाम ते आया तब ते तावत मन

राध भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता सब ताज अनाथ इक सरन आयो ऊच अस्थान तब सहजे पायो दुख दर्द परम पौ नसया करनहार नानक मन बसया।

सिमरन की बरिया, सिमरत नाम पै पार उतरिया रहाओ। नेतर संतन का दर्शन पेख, प्रभ अवनासी मन महलेख, सुन कीर्तन साध पह जाए, जन्म मरण की त्रास मटाए। चरण कमल ठाकुर उरतार, दलाब दे नानक निस्तार। गौड़ी महला पंजवां, जाको अपनी कृपा धारे, सो जन रसना नाम उचारे। हर बिसरत सहसा दुख व्यापे, सिमरत नाम परम पौ

पहले करत जन सोऐ ताकौ माया अगन ना पोऐ मन तन मुख हर नाम दयाल नानक तजिया ले।

साध संग मिल भजह गोपाला गौड़ी महला पंजवा कल कलेश गुर शब्द निवारी आवन जान रही सुख सारी तै बिन से निरभउ हर त्याया साध संग हर के गुण गा।

जात पूरा गुड़ काढ़े, जन्म जन्म के टूटे गांडे। कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जिस भेटत गत पई हमारी। गौड़ी महला पंजवां, साध संग तां की सरनी परो, मन तन अपना आगै धरो। अमृत नाम पीवो मेरे भाई, सिमर सिमर सब तपत बुझाई रहाओ। ताज अवमान जन्म मरण निवारो, हर के दास के चरण नमस्कार हो। सास सास प्रभ मनह सुमाले, सो तन संचो हो जो चाले नाले। तिसह प्राप्त जिस मस्तक भाग, कहो नानक ता की चरणी लाग। गौड़ी महला पंजवां, सूके हरे किए खिन माए, अमृत दृष्ट संच जीवाए। काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी सेव रहाओ। मिट गई चिंत पुन्नी मन आसा, कर दया सतगुर गुणतासा। दुख नाठे सुख आए समाए, ढील ना परी जा गुर फुरमाए। इच पुन्नी पूरे गुर मिले, नानक तेजन सुफल फले। गौड़ी महला पंजवां।

सब का नाउ सगल रोग का बिनसे आथाउ सहज सुपाए बोले हर वाणी आठ पहर प्रभ सिमरहु प्राणी दुख दर्द जम नेड़ ना आवे कहो नानक जो हर गुण गावे गौड़ी महला पंजवा पले दिनस पले संजोग जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग।

ओ करी जित रस ना उचरै हर हरि सफल ओह माथा संत नमस्कारस चरण पनीत चलह हर मार्ग कहो नानक भला मेरा कर्म जित पेते साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा गुर का शब्द राख मन माहे नाम सिमर चिंता सब जाहे।

तुमरी कृपा ते दरगाह धाम। तुझ बिन पार ब्रह्म नहीं कोए, तुमरी कृपा ते सदा सुख होए रहाओ। तुम मन बसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा ते ब्रह्म पौ भागे। पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी, सगल कथा के अंतर जामी। करो अरदास अपने सतगुर पास।

हर हर नाम जपहु नित प्राणी, नाम बिहून त्रिग देह बिगानी रहाउ। नाम बिना नाही मुख भाग, परत बिहून

तू है मेरा स्वामी, सब किस सुमते तू अंतर जामी, पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट, तेरी शरण उदर है जन कोट रहाव, जेते जी तेते सब तेरे, तुमरी कृपा ते सुख कनेरे, जो किस वरतै सब तेरा पाना, हुक्म बूझै सो सच समाना, कर कृपा दीजै प्रवदान, नानक सिमरै नाम निदान, गौड़ी महला पंजवां, ताका दर्श पाईऐ वड भागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाकै हर वस्या मन माही, ताको दुख सुपने पी नाही रहाओ, सर्व निदान राखे जन माहे, ताकै संग किल विख दुख जाए, जन की महिमा कति न जाए, पार ब्रह्म जन रहया समाए, कर कृपा प्रभ बिनो सनीजै, दास की तूर नानक को दीजै, गौड़ी महला पंजवां, हर सिमरत तेरी जाए बलाए, सर्व कल्याण बसै मन आए, भज मन मेरे एको नाम, जी तेरे कै आवै काम रहाओ, रैन दिनस गुण गाओ अनंता, गुरपूरे का निर्मल मंता, छोड़ अपाव एक टेक राख, महापदार्थ अमृत रस चाख, विक्रम सागर तेई जन तरे, नानक जाको नदर करे, गौड़ी महला पंजवां, हृदय चरण कमल प्रभ तारे, पूरे सतगुर मिल निस्तारे, गोविंद गुण गाव हो मेरे भाई, मिन साधु हर नाम त्याई रहाओ, दलभ देह होई परवान, सतगुर ते पाया नाम निशान, हर सिमरत पूरन पद पाया, साध संग पै परम मटाया, जत कत देखो तत रहया समाए, नानक दास हर की सरनाए, गौड़ी महला पंजवां, गुर जी के दर्शन कौ बल जाओ, जप जप जीवा सत गुर नाओ, पार ब्रह्म पूर्ण गुरदेव, कर कृपा लागो तेरी सेव रहाओ, चरण कमल हृदय उरतारी, मन तन धन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होवै परवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत धूर पाईऐ वड भागी, नानक गुर भेटत हर सिउं लिव लागी, गौड़ी महला पंजवां, करै दुख कर्म दिखावै होर, राम की दरगाह बांधा चोर, राम रमै सोई रामाणा, जल थल महियल एक समाणा रहाउ, अंतर बेख मुख अमृत सुनावै, जमपुर बाता चोटा खावै, अनक पड़दे मह कमावै विकार, खिन मह प्रगट होवे संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक तिस किरपाल बिदाता, गौड़ी महला पंजवां, राम रंग कदे उतर न जाए, गुरपूरा जिस दे बुझाए, हर रंग राता सो मन साचा, लाल रंग पूर्ण पुरख बधाता रहाओ, संतह संग बैस गुण गाए, ताका रंग न उतरै जाए, बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग फीके सब माया, गुर रंगे से पहे निहाल, कहो नानक गुर पहे है दयाल, गौड़ी महला पंजवां, सिमरत स्वामी किल विख नासे, सुख सहज आनंद निवासे, राम जना को राम परोसा, नाम जपत सब मिटियो अंदेसा रहाओ, साध संग कस पौ ना परांति, गुण गोपाल गाय है दिन राती, कर कृपा प्रभ बंदन छोट, चरण कमल की दीनी ओट, कहो नानक मन पई प्रतीत, निर्मल जस पीवह जन नीत, गौड़ी महला पंजवां, हर चरणी जा का मन लागा, दुख दर्द प्रमता का भागा, हर धन को वापारी पूरा, जिसे

आनंदा जप जप जीवे परमानंदा नाम रास साध संग खाटी कहो नानक प्रभ अपदा काटी गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सब मिट है कलेश चरण कमल मन मह प्रवेश उच्चरो हो राम नाम लख बारी अमृत रस पीव हो प्रभ प्यारी रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा काम क्रोध लोभ मद खोए साध कै संग किल विख सब धोए कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक दीजे साध रवाला गौड़ी महला पंजवा जिसका दिया पैने खाए तिस स्यों आलस क्यों बने माए खसम बिसार आन कम लागह कौडी बदले रतन त्याग रहाओ प्रभु त्याग लागत अन लोभा दास सलाम करत कत सुबा अमृत रस खावे है खान पान जिन दिए तिसै ना जानह स्वान कहो नानक हम लूण हरामी बख्श ले हो प्रभ अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा प्रभ के चरण मन माहे ध्यान सगल तीरथ मज्जन इशनान हर दिन हर सिमरन मेरे भाई कोट जन्म की मल लह जाई रहाओ हर की कथारित माहे बसाई मन बाशत सगले फल पाई जीवन मरण जन्म परवान जहां कैर दैवसै भगवान कहो नानक से जन पूरे जिन्ना परापत साधु तूरे गौड़ी महला पंजवा खांदा पैंदा मुकर पाए तिसनो जो है दूत धर्म राय तिस स्यों बेमुख जिन जियो पिंड दीना कोट जन्म परम है बहु जूना रहाओ साकत की ऐसी है रीत जो किश करे सगल विपरीत जियो प्राण जिन मन तन तारिया सोई ठाकुर मनहु बिसारिया बदे विकार लिखे बहु कागर नानक उधर कृपा सुख सागर पार ब्रह्म तेरी सरनाए बंधन काट तरे हर नाए रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा अपने लोभ को कीनो मीत सगल मनोरथ मुकत पद दीत ऐसा मीत करहु सब कोई जाते बिरथा कोई ना होए रहाओ अपने सुआए हृदय लै तारिया दुख दर्द रोग सगल बदारिया रसना गीदी बोलत राम पूर्ण होए सगले काम अनक बार नानक बलिहारा सफल दर्शन गोविंद हमारा गौड़ी महला पंजवा कोट बिगन हिरे खिन माहे हर हर कथा साध संग सुनाहे पीवत राम रस अमृत गुण जास जप हर चरण मिटी खुद तास रहाओ सर्व कल्याण सुख सहज निदान।

कहो नानक अटल एह धर्म गौड़ी महला पंजवां कर कृपा भेटे गुरसोई तित बल रोग न व्यापै कोई राम रमन तरन पै सागर सरल सूर फारे जमकागर रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम एह आसर पूर्ण पय काम जप तप संयम पूरी वडियाई गुर कृपाल हर पय सहाई मान मोह खोए गुर भरम पेख नानक पसरे पार ब्रह्म गौड़ी महला पंजवा बिखै राज ते अंधला पारी दुख लागे राम नाम चितारी तेरे दास को तुही वडियाई माया मगन नरक लै जाई।

हर को नाम, बिचर संसार पूर्ण सब काम। वड भागी हर कीर्तन गाइए, पार ब्रह्म तू देहे ता पाइए रहाउ। हर के चरण हृदय उरतार, भव सागर चढ़ उतरह पार। साधु संग करहो सब कोय, सदा कल्याण फिर दुख ना होय। प्रेम भगत भज गुणी निदान, नानक दरगाह पाइए मान। गौड़ी महला पंजवा, जल थल महियल पूर्ण हर मीत। ब्रह्म बिन से गाए गुण नीत, उठत सोवत हर संग पहरुआ। जां कै सिमरन जम नहीं डरुआ रहाउ। चरण कमल प्रभ हृदय निवास, सगल दुख का होया नास। आसा मान तान तानेक, साचे साहा की मन मह टेक। महा गरीब जन साध अनाथ, नानक प्रभ राखे दे हाथ। गौड़ी महला पंजवा, हर हर नाम मज्जन कर सूचे। कोट ग्रहण पुन फल मूचे रहाउ। हर के चरण हृदय मह बसे, जन्म जन्म के किल विख नसे। साध संग कीर्तन फल पाया, जम का मार्ग दृष्ट न आया। मन बच क्रम गोविंद आधार, ताते छुट्यो बिख संसार। कर कृपा प्रभ कीनो अपना, नानक जाप जपे हर जपना। गौड़ी महला पंजवा, पौ सरनाई जिन हर जाति। मन तन शीतल चरण हर राति, पै भंजन प्रभ मन ना बसाही। डरपत डरपत जन्म बहुत जाही रहाउ। जा कै हृदय बस्यो हर नाम, सगल मन

राम भगवंत पूरे गुर का निर्मल मंत चरण कमल हृदय मह जाप नानक पेख जीवै प्रताप गौड़ी महला पंजवा तन इहो थान गोविंद गुण गाए कुशल खेम प्रभ आप बसाए रहाओ विपत तहां जहां हर सिमरन नाही कोट आनंद जह हर गुण गाही हर बिसरय दुख रोग कनेरे प्रभ सेवा जम लगे ना नेरे सोवड भागी निश्चल थान जह जपिय प्रभ केवल नाम जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी नानक को मिलिया अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा जो प्राणी गोविंद त्यावे पढ़िया अनपढ़िया परम गत पावे साधु संग सिमर गोपाल बिन नाम है झूठा तन माल रहाओ रूपवंत सो चतुर सियाणा जिन जन मानिया प्रभ का पाणा जग में आया सो परवान घट घट।

कर पूजी सौदे को तावै बिन पूंजी नानक राम नाम जप चीत सिमर स्वामी हर सामीत गौड़ी महला पंजवा सा मत निर्मल कहियत तीर राम रसायन पीवत बीर हर के चरण हृदय कर ओट जन्म मरन ते होवत छोट रहाओ सो तन निर्मल जित उपजै न पाप राम रंग निर्मल प्रताप साध संग मिट जात बिकार सब ते ऊज एहो उपकार प्रेम भगत राते गोपाल नानक जाचे साध रवाल गौड़ी महला पंजवा ऐसी प्रीत गोविंद सिंह लागी मेल लए पूर्ण वड भागी रहाउ भरता पेख बिकसै ज्यो नारी त्यों हर जन जीवै नाम चतारी पूत पेख ज्यो जीवत माता ओत पोत जन हर स्यो राता लोभी आनंद करै पेख तना जन चरण कमल स्यो लागू मना।

जो जन गीते चरण कमल प्रेम भक्ति बीते रहाओ आन रसादि सह सब चार नाम बिना निफल संसार अंध को

के किल विख खोए, सिमरह साध करह आनंद, मन तन रव्या परमानंद, जिसह प्राप्त हर चरण निदान, नानक दास तिसह कुर्बान। गौड़ी महला पंजवां।

संत संग जप केवल नाम, कर्म तर्म नियम ब्रत पूजा, पार ब्रह्म बिन जान ना दूजा, तां की पूर्ण होई काल, जां की प्रीत अपने प्रभ नाल, सो वैष्णो है अपर अपार, कहो नानक।

गौड़ी महला पंजवां जीवत छाड़ जाहे देवानी मोया उनते को वरसानी सिमर गोविंद मन तन तुर लिखिया काहू काज न आवत बिखिया रहाउ बिखैठ गौरी जिन जिन खाई ताकी तृष्णा कबहू न जाई दारण दुख दुत्तर संसार राम नाम बिन कैसे उतर सपार साध संग मिल दोए कुल साध राम नाम नानक आराध गौड़ी महला पंजवां गरीबा उपर जे खिंजै दाड़ी पार ब्रह्म सा अग्न मह साड़ी पूरा न्याओ करे करतार अपने दास को रखनहार रहाउ आद जगाद प्रगट प्रताप निंदक मुआ उपज वद ताप तिन मारिया जे रखे न कोई आगे पाचे मंदी सोए अपने दास राखे कंठ लाए शरण नानक हर नाम त्याए गौड़ी महला पंजवां महजर झूठा की तुने आप पापी को लागा संताप जिसह सहाई गोविंद मेरा तिसको जम नहीं आवे नेरा रहाउ साची दरगाह बोले कूड़ सिर हाथ पछोड़ै अंधा मूड़ रोग व्यापे कर दे पाप अदली होए बैठा प्रभ आप अपन कमाए आपे बांधे दर्ब गया सब जी कै साथे नानक सरन परे दरबार राखी पैज मेरे करतार गौड़ी महला पंजवां जन की धूर मन मीठ खटानी पूर्व कर्म लिखिया तुर प्राणी रहाउ अहम बुद्ध मन पूर थे धाई साध तूर कर सुद मंजाई अनक जला जे धोवै देही मैल न उतरै सुद न तेही सतगुर भेट्यो सदा कृपाल हर सिमर सिमर काटिया पौ काल मुकत भुगत जुगत हर नाओ प्रेम भगत नानक गुण गाओ गौड़ी महला पंजवां।

कहो नानक जिस कृपा तार है हिरदा शुद्ध ब्रह्म विचार है गौड़ी महला पंजवां थिर कर बैसो हर जन प्यारी।

रहाउ। तुझ बिन करी ना जीवना, त्रिग रहना संसार। जी प्राण सुख दातिया, निमख निमख बलिहार जी। हस्त अलंबन देहो प्रभ, गर्त हो उदर गोपाल। मोहे निर्गुण मत थोरिया, तू सद ही दीन दयाल। क्या सुख तेरे सम्मला, कवन विधि विचार। सरल समाई दास हित, ऊचे अगम अपार। सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध, नाम महारस माहे। सो प्रसन्न भये केसवा, सेजन हर गुण गाहे। मात पिता सुत बंध पो, तू मेरे प्राण आधार। साध संग नानक भजै, बिख तरिया संसार। गौड़ी बैरागण रोहोए के, संत के घर महला पंजवां।

हाल। बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिरले काहू एक लिव लागी। जिन हर पाया से बड भागी, ब्रह्मादिक सनकादिक चाहै। जोगी जति सिद्ध हर आहै, जिस है प्रापत सो हर गुण गाहै। ताकि शरण जिन बिसरत नाही, बड भागी हर संत मलाही।

बुद्ध बलहीनी मोहे परदेसन दूर ते आई नाहिन दर्ब ना जोबन माती मोहे अनाथ की करो समाई खोजत खोजत पई बैरागन प्रभ दर्शन कहो हौ फिरत तसाई दीन दयाल कृपाल प्रभ नान साध संग मेरे जनन बुझाई गौड़ी महला पंजवा प्रभ मिलवे कौ प्रीत मन लागी पाई लगो मोहे करो बेनती को संत मिले बड़ भागी रहाओ मन अर्पो तन राखो आगे मन की मत मोहे सगल त्यागी जो प्रभ की हर कथा सुनावे अन दिन फिरो तिस पिछे विरागी पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे पेट्यो पुरख रसक बैरागी मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी गौड़ी महला पंजवा।

राखहु राखनहारी, खेद करह और बहुत संताव है, आयुहु शरण तुहारी, कर कर हारियु अनक बहु भांति, छोड़ह कतहु नाही। एक बात सुन ताकि ओटा, साध संग मिट जाही, कर कृपा संत मिले मोहे, तिन ते धीरज पाया, संति मंत दियो मोहे निरपहु, गुर का शब्द कमाया, जीत लये ओए महा बिखादी, सहज सुहिली बाणी, कहो नानक मन भया परगासा, पाया पद निर्वाणी। गौड़ी महला पंजवा, ओ अबनासी राया, निरपहु संग तुम्हारे बसते,

तिस करते पूर रहे हो रतनागर रे। जाचक जाचै नाम तेरा स्वामी कट कट अंतर सोई रे। नानक दास तां की सरनाई जाते वृथा ना कोई रे। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर हर कबहू ना मनहु बिसारे इहां उहां सर्ब सुख दाता। सगल कटां प्रित पारी रहाओ महा कष्ट काटे खिन पीतर। रसना नाम चितारी शीतल शांत सुख हर सरनी। जलती अग्न निवारी गर्भ कुंड नरक ते राखै। पव जल पारी उतारी चरण कमल अराधत मन मह। जम की त्रास बदारी पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर। ऊंचा अगम अपारी गुण गावत त्यावत सुख सागर। जुए जन्म ना हारी काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो। निर्गुण के दातारी कर कृपा अपनो नाम दीजै। नानक सद बलिहारी राग गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुख नाही रे हर भगत बिना जीत जन्म एहो रतन अमोलक। साध संगत जप एक खिना रहाव सुत संपत बंता बनोद। छोड़ गए बहु लोग भोग हैवर गैवर राज रंग। त्याग चल्यो है मूढ़ नंग चोआ चंदन देह फूलिया। सो तन धर संग रूलिया मोहे मोहिया जाने दूर है। कहो नानक सदा हदूर है। गौड़ी महला पंजवा मन तर तरबे हर नाम नु। सागर लहर संसार संसार गुरबोहित पार ग्राम नु। रहाओ कल कालख अंधियारिया गुर ज्ञान दीपक उजियारिया। बिख बिख्या पसरी अत घनी उबरे जप जप हर गुनी। मतवारू माया सोया गुर भेटत भ्रम पौ खोया। कहो नानक एक त्याया घट घट नदरी आया। गौड़ी महला पंजवा दीवान हमारू तुही एक। सेवा थारी गुरह टेक रहाओ अनक जुगत नहीं पाया। गुर चाकर ले आया मारे पंच बिखा दिया। गुर कृपा ते दल साध्या बख्शीस वजहो मिल एक नाम। सुख सहज आनंद विश्राम प्रभ के चाकर से भले। नानक तिन मुख उजले गौड़ी महला पंजवा। जी अरे ओला नाम का अवर जे करन कराम नू। तिन मह पहो है जाम का रहाओ अवर जतन नहीं पाई है। वड्डे भाग हर त्याई है लाख हिकमती जानी है। आगे तिल नहीं मानी है हम बुद्ध कर्म कमावने। ग्रह बालू नीर बहावने प्रभ कृपाल कृपा करे। नाम नानक साधु संग मिले गौड़ी महला पंजवा। बार ने बलिहार ने लख बरिया नामो हो नाम साहिब को। प्राण अधरिया रहाव कर्ण करावन तुही एक। जी जंत की तुही टेक राज जोगन प्रभ तू चली। तू निर्गुण तू सरगुणी इहां उहां तुम रखे। गुर कृपा ते को लखे अंतर जामी प्रभ सुजान। नानक तकिया तुही तान गौड़ी महला पंजवा। हर हर हर आराधी है संत संग हर मन वसै। परम मोह पहो साधी है रहाओ वेद प्राण सिमरत पने। सब ऊच बराजत जन सुने सगल अस्थान पै पीत चीन। राम सेवक पै रहत कीन लाख चौरासी जोन फिर है। गोविंद लोक नहीं जन्म मर है बाल बुद्ध स्यान पहु मैं रही। हर साध सरन नानक गही गौड़ी महला पंजवा। मन राम नाम गुण गाई है नीत नीत हर सेवी है।
सास सास हर त्याय रहाओ। संत संग हर मन वसै, दुख दर्द अनेरा भ्रम नसै। संत प्रसाद हर जापीए, सो जन दुख ना व्यापीए। जा को गुर हर मंत्र दे, सो उभरिया माया अग्न ते। नानक को प्रभ मया कर, मेरा मन तन वासै नाम हर। गौड़ी महला पंजवा, रसना जपिए एक नाम। इहां सुख आनंद घना, आगे जी कै संग काम। रहाओ कटिए तेरा अंग रोग, तू गुर प्रसाद कर राज जोग। हर रस जिन जन चाखिया, तां की तृष्णा लाथिया। हर विश्राम निध पाया, सो बहुर न कत ही ताया। हर हर नाम जा को गुर दिया, नानक तां का भउ गया। गौड़ी महला पंजवा, जा को बिसरै राम नाम, ताहूं को पीर। साध संगत मिल हर रवह, से गुणी गहीर। रहाव जा को गुरमुख हृदय बुध, ता कै कर तल नव निध सिद्ध। जो जान है हर प्रभ धनी, किस नाही ता कै कमी। करन हार पछानिया, सर्ब सुख रंग माणिया। हर धन जा कै ग्रह वसै, कहो नानक तिन संग दुख नसै। गौड़ी महला पंजवा, गर्भ बड़ो मूल इतनो, रहन नहीं गहो कितनो। रहाव बेबरजत बेद संतना, वाहू स्यों रे हितनो। हार जुआर जुआ बिदे, इंद्री वस लै जितनो। हरन भरन संपूर्णा, चरण कमल रंग रितनो। नानक उदरे साध संग, कृपा निध मैं जितनो। गौड़ी महला पंजवा, मोहे दासरो ठाकर को, तान प्रभ का खाना। रहाओ ऐसो है रे खसम हमारा, खिन मह साज सवार नहारा। काम करी जे ठाकुर पावा, गीत चरित प्रभ के गुण गावा। सरन परयो ठाकुर वजीरा, तिना देख मेरा मन धीरा। एक टेक एको आधारा, जन नानक हर की लागा कारा। गौड़ी महला पंजवा, है कोई ऐसा हूं मैं तोरे, इस मीठी ते एहो मन हो रह। रहाओ अज्ञानी मनुख भया, जो नाही सो लोरे। रैन अंधारी कारिया, कमन जुगत जित पूरे। प्रमतो हारिया, अनक विधि कर टोरे। कहो नानक कृपा पही, साध संगत निध मोरे। गौड़ी महला पंजवा, चिंता मन करना मई। रहाओ दीन दयाला पार ब्रह्म, जा कै सिमरन सुख भय। अकाल पुरख अगाध बोध, सुनत जसो कोट अग खय। कृपा निध प्रभ मया धार, नानक हर हर नाम लय। गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन सरन प्रभु सुख पाए। जान दिन बिसरै प्राण सुख दाता, सो दिन जात अजाए। रहाव एक रैन के पहुन तुम आए, बहु जुग आस बंधाए। ग्रह मंदर संपै जो दिसै, ज्यों तरवर की छाए। तन मेरा संपै सब मेरी, बाग मिलक सब जाए। देवनहारा बिसरियो ठाकुर, खिन मह होत पराए। पहरै बागा कर इशनाना, चोआ चंदन लाए। निरपहो निरंकार नहीं चीनिया, ज्यों हस्ती नवाए। जो होए कृपाल, ता सतगुर मेलै। सब सुख हर के नाए, मुक्त भया बंधन गुर खोले। जन नानक हर गुण गाए। गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन गुर गुर गुर सद करिए। रत्न जन्म सफल गुर किया, दर्शन को बले हरिए। रहाव जेते सास ग्रास मन लेता, तेते ही गुण गाइए। जो हुए दयाल सतगुरे अपना, ता एह मत बुद्ध पाइए। मेरे मन नाम लए जम बंद ते छूटे,
सर्ब सुखा सुख पाई सेव स्वामी सतगुर दाता मन बंचत फल आई है नाम इष्ट मीत सुत करता मन संग तुहार चल है कर सेवा सतगुर अपने की गुरते पाई है पाल गुर कृपाल कृपा प्रभ धारी बिनसे सर्ब अंदेसा नानक सुख पाया हर कीर्तन मिटियो सगल कलेशा राग गौड़ी महला पंजवां।

कारी अनक प्रकारी परिग्रह बेकारी बुरा भला नहीं सुजिए अनक बंधन माया परमत परमाया गुण निद नहीं गाया मन बिखै ही मह लुजिए जा कोरे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया तरे नानक सो जन दर हर सिजिए गौड़ी महला पंजवां सबहू को रस हर हो रहाओ काहू जोग काहू भोग काहू ज्ञान काहू ध्यान काहू हो दंड धर हो।

कर कीर्तन हुए उदार। राग गौड़ी माला महल्ला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पायो बाल बुद्ध सुखरे, हरख सोग मान मृत दुख सुख। चित समसर गुर मिले रहाओ, जो लो हो किस

दिए केते बंद परे जो साधु कर मस्तक धरियो तब हम मुक्त भए जो लो मेरो मेरो कर तो तौ लो बिख घेरे मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को तब हम सहज सोए जो लो पोट उठाई चलियो तौ लो दान भरे पोट डार गुरु पूरा मिलिया तौ नानक निर्भय गौड़ी माला महला पंजवा भावन त्यागियो री त्यागियो मैं गुर मिल त्यागियो सर्व सुख आनंद मंगल रस मान गोबिंद आग्यो रहाओ मान अभमान दो समाने मस्तक डार गुर पाग्यो संपत हरख न आपत दुखा रंग ठाकुर लाग्यो बास बासरी एक स्वामी उद्यान दृष्टाग्यो निरपौ भये संत भ्रम डार्यो पूर्ण सर्वाग्यो जो किस करतै कारण कीनो मन बुरो न लाग्यो साध संगत प्रसाद संतन कै सोयो मन जाग्यो जन नानक ओड़ तुहारी परियो आयो सरनाग्यो नाम रंग सहज रस माने फिर दुख ना लाग्यो गौड़ी माला महला पंजवा पाया लाल रतन मन पाया तन शीतल मन शीतल थिया सतगुर शब्द समाया रहाओ लाथी भूख त्रिशन सब लाथी चिंता सगल बिसारी कर्मस्तक गुर पूरे तरेओ मन जीतो जग सारी तृप्त अगाए रहे हृदय अंतर डोलन ते अब चूके अखुट खजाना सतगुर दिया तोट नहीं रे मूके अचरज एक सुनो रे भाई गुरे ऐसी बूझ बुझाई लाहे परदा ठाकुर जो पेटे हो तो बिसरी तात पराई कहो ना जाई एहो अचंभव सो जाने जिन चाखिया कहो नानक सच भये बिगासा गुर निधान हृदय लै राखिया गौड़ी माला महला पंजवा उबरत राजा राम की सरनी सर्व लोक माया के मंडल गिर गिर परते धरनी रहाओ शास्त्र सिमरत वेद बिचारी महापुरखन इउं कहिया बिन हर भजन नाही निस्तारा सुख ना किन्हू लहिया तीन भवन की लक्ष्मी जोरी बूजत नाही लहरे बिन हर भगत कहा थित पावे फिर तो पहरे पहरे अनक बलास करत मन मोहन पूरन होत ना कामा जल तो कबहू ना बूजत सगल बिरथे बिन नामा हर का नाम जपो मेरे मीता एह सार सुख पूरा साध संगत जन्म मरण निवारे नानक जन की धूरा गौड़ी माला महला पंजवा मोको एह बिद को समझावे करता होए जनावे रहाओ अनजानत किस इन्ह कमानो जप तप कशु ना सादा दह दिस लै इह मन दौरायो कमन कर्म कर बांदा मन तन धन भूम का ठाकुर हौ इसका इह मेरा परम मोह कस सूजस नाई इह पैखर पए पैरा तब इह कहां कमावन परिया जब इह कछु ना होता जब एक निरंजन निरंकार प्रभ सब किस आपे करता अपने कर्तव्य आपे जाने जिन इहो रचन रचाया कहो नानक करन हार है आपे सतगुर परम चुकाया गौड़ी माला महला पंजवा हर बिन अवर क्रिया बिथे जप तप संयम कर्म कमाणी एह ओरे मूसे रहाओ बरत नेम संयम मह रहता इनका आड़ ना पाया आगे चलन और है पाई ऊहा काम ना आया तीर्थ नाए अर धरनी भ्रमता।

मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो, एहो अजर नानक सुख सही है जियो, गौड़ी माज महला पंजवा।

मूर्त मारे सुख वसा सच शब्द निशान रहाव सबे गल्ला जातियां सुन के चुप किया तद ही सुरत ना लदिया माया मोहड़िया दे बजारत सारता से अखी डिठड़िया कोई जे मूर्ख लोभिया मूल ना सुनी कहया इकस दोहो चौहो क्या गणी सब इकत साध मुठी एक अध नाए रसियड़ा का विरली जाए बुठी भगत सच्चे दर सोहंदे आनंद करह दिन रात रंग रत्ते परमेश्वर है जन नानक तिन बल जात गौड़ी महला पंजवा मांज दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम आठ पहर आराधी है पूरन सतगुर ज्ञान रहाव जित घट वसै पार ब्रह्म सोई सुहावा थां जम कंकर नेड़।

सब फिक्किया तन मन फिक्का होय, बिन परमेश्वर जो करे फिट सो जीवन सोय। अंचल गह कह साधका तरना इहो संसार, पार ब्रह्म आराधी है उदरै सब परवार। साजन बंद समित्र सो हर नाम हिरदय दे, औगण सब मटाए कह पर उपकार करे। माल खजाना थे हो कर हर के

एहन समग्न रहे माया में, कहो कैसे गुण गावे रहाओ। पूत मीत माया ममता स्यों, एहे विद आप बंधावे। मृग तृष्णा ज्यो झूठो इहो जग, देख तास उठतावे। भुगत मुक्त का कारण स्वामी, मूर्ता ही बिसरावे। जन नानक कोटन में को, भजन राम को पावे। गौड़ी महला नौवा, साधु इहो मन गहियो ना जाई। चंचल तृष्णा संग बस्त है, याते थिर न रहाई रहाओ। कठिन क्रोध घट ही के भीतर, जेहे शुद्ध सब बिसराई।

सब बिद बन आई गौड़ी महला नौवा साधु गोविंद के गुण गावो मानस जन्म अमूलक पायो बिरथा काहे गवावो रहाओ पतत पनीत दीन बंद हर सरन ताहे तुम आवो गज को त्रास मिट्यो जेह सिमरत तुम काहे बिसरावो ताज अवमान मोह माया पुन भजन राम चित लावो नानक कहत मुक्त पंत एहो गुरमुख हुए तुम पावो गौड़ी महला नौवा को माई भूल्यो मन समझावे वेद पुराण साध मग सुन कर निमख ना हर गुण गावे रहाओ दुर्लभ देह पाए मानस की बिरथा जन्म सरावे माया मोह महा संकट बन तास्यो रुच उपजावे अंतर बाहर सदा संग प्रभ तास्यो नेहो ना लावे नानक मुक्त ताहे तुम मानो हो जेह कट राम सुमावे गौड़ी महला नौ साधो राम सरन बिसरामा वेद पुराण पढ़े को एह गुण सिमरे हर को नामा रहाओ लोभ मोह माया ममता फुन औ बिखियन की सेवा हरख सोग परसै जे नाहिन सो मूरत है देवा सुर्ग नरक अमृत बिख ए सब।

प्राणी गौड़ी महल्ला नौवा मन रे कहां भयो तै बौरा अहनस औद कटै नहीं जाने भयो लोभ संग होरा रहा जो तन तै अपनो कर मान्यू हर सुंदर ग्रह नारी इन मैं कछ तेरो रे नाहिन देखो सोच बिचारी रतन जन्म अपनो तै हारियो गोविंद गत नहीं जानी निमख ना लीन भयो चरणन सियो बिरथा औद सरानी कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावै और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावै गौड़ी महला नौवा नर अचेत पाप ते डर रे दीन दयाल सगल भय भंजन सरन ताहे तुम पर रे रहाओ वेद पराण जास गुण गावत तां को नाम ही है मो धर रे पावन नाम जगत मैं हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे मानस देह बहुर नह पावै कछु उपाओ मुक्त का कर रे नानक कहत गाए करना मैं भव सागर कह पार उतर रे राग गौड़ी अष्टपदिया महला पहला गौड़ी गुआर री एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद निद सिद्ध निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहया बिखमार त्रिकुटी छूटी बिमल मजार गुर की मत जिए आई कार इन बिद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ एक सुख मानिया सहज मलाया निर्मल बाणी भरम चुकाया लाल पए सूहा रंग माया नदर पई बिख थाक रहाया उल्ट पई जीवत मर जागया शब्द रवे मन हर स्यो लागया रस संग्रह बिख पर हर त्यागया पाए बसे जम का पौ भागया साध रहे बादम अहंकारा चित हर स्यो राता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पई सुख आत्म तारा तुझ बिन कोई न देखो मीत किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी रातो हर नाए सिखिया दीखिया भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज घर जाओ गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना जोत पई ज्योति माहे सुमाना लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना नह पंडित नह चतुर सियाना नह भूलो नह परम पुलाना कथो न कथनी हुक्म पछाना नानक गुरमत सहज सुमाना गौड़ी गुआर री महला पहला मन कुंचर काया उद्यान गुरु अंकल।

कर्म है अमृत तस कर ले, नन्ना कार न कोई करे, राख है आप वड्याई दे, नील अनिल अग्न एक ठाई, जल निवरी गुरबूज बुझाई, मन दे लिया रहस गुण गाई, जैसा कर बाहर सो तैसा, बैस गुफा में आँखों कैसा, सागर डूंघर निरपो ऐसा, मुए को कहो मारे कौन, न डरे को कैसा डर कवन, शब्द पछाने तीने पौन, जिन कहया तिन कहन बखानिया, जिन बूझया तिन सहज पछानिया, देख भी चार मेरा मन मानिया, कीरत सूरत मुक्त एक नाई, तही निरंजन रहया समाई, निज कर व्याप रहया निज ठाई, पुस्तत करह केते मुन प्रीत, तन मन सूचै साच सोचीत, नानक हर पज नीता नीत, गौड़ी गुआरी महला पहला, ना मन मरे न कार्य होय, मन वस दूता दुरमत दोय, मन माने गुरते एक होय, निर्गुण राम गुण वस होय, आप निवार बिचारे सोए रहाओ, मन भूलो बहु चितै विकार, मन भूलो सिर आवै भार, मन माने हर एक अंकार, मन भूलो माया घर जाए, काम बुरु दूर है ना ठाए, हर भज प्राणी रसन रसाए, गैवर हैवर कंचन सुत।

मेल मलाए गुण संग्रह औगण शब्द जलाए गुरमुख नाम पदार्थ पाए बिन नावे सब दुख निवास मनमुख मूड माया चितवास गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखे आस मन चंचल धावत फुन धावे साचे सूचे मैल ना भावे नानक गुरमुख हर गुण गावे गौड़ी ग्वार री महला पहला हौ मैं करत्या नह सुख होए मन मत झूठी सच्चा सोए सगल बगूते भावे दोए सो कमावे तुर लिखिया होए ऐसा जग देखिया जुआरी सब सुख मांगे नाम बिसारी रहाओ अदिष्ट दिसै ता कहया जाए बिन देखे कहना बिथा जाए गुरमुख दिसै सहज सुभाए सेवा सुरत एक लिवलाए सुख मांगत दुख आगल होए सगल विकारी हार परोए एक बिना झूठे मुक्त ना होए कर कर करता देखै सोए तृष्णा अगन शब्द बुझाए दूजा परम सहज सुपाय गुरमति नाम हृदय वसाए साची बाणी हर गुण गाए तन मह साचो गुरमुख भाव नाम बिना नाही निज ठाव प्रेम परायण प्रीतम राव नदर करे ता बूझै नाम माया मोह सर्ब जंजाला मनमुख कुचील कुशत बिकराला सतगुर सेवे चूकै जंजाला अमृत नाम सदा सुख नाला गुरमुख बूझै एक लिवलाए निज करवासै साच समाए जम्मण मरना ठाक रहाए पूरे गुरते एह मत पाए कथनी कथों ना आवै और गुर पुछ देखिया नाही दर होर दुख सुख भाणै तिसै रजाए नानक नीच कह लिवलाए गौड़ी महला पहला दूजी माया जगत चितवास काम क्रोध अहंकार बनास दूजा

0: पौ जोगी निरंजन त्यावे अन दिन जागे सच लिव लावे सो जोगी मेरे मन पावे काल जाल ब्रह्म अग्नि जारी जरा मरण गत गर्भ निवारी आप तरह पितरी निस्तारी सतगुर सेवे सो जोगी होए पै रच रह सो निरपो होए जैसा सेवै तैसो होए नर निह केवल निरपो नाओ अनाथा नाथ करे बल जाओ पुनरप जन्म नाही गुण गाओ अंतर बाहर एको जाने गुर कै शब्दे आप छाने
1: साचे शब्द दर निसाने
0: शब्द मरै तिस निज कर वासा आवै ना जावै चूकै आसा गुर कै शब्द कमल परगासा जो दीसै सो आसन रासा काम क्रोध बिख भूख प्यासा नानक बिरले मिलै उदासा गौड़ी महला पहला ऐसो दास मिलै सुख होई दुख विसरै पावै सच सोई दर्शन देख पई मत पूरी अठसठ मज्जन चरना धूरी रहाव नेत्र संतोखे एक लिवतारा जेवा सूची हर रस सारा सच करनी अब अंतर सेवा मन तृप्ता सिया अलख अपेवा जह जह देखो तह तह साचा बिन बूझे झगरत जग काचा गुर समझावै सोजी होई गुरमुख विरला बूझै कोई कर कृपा राखो रखवाले बिन बूझे पशु भये बेताले गुर कहया अवर नहीं दूजा किस कहो देख करो अन पूजा संत हेत प्रभ त्रि भवन धारी

कामण हितकारी क्रोध बनासै सगल विकारी तत मत खोवै नाम वसारी पर कर चीत मनमुख डोलाए गल जेवरी धंधै लपटाए गुरमुख छूट सहर गुण गाए ज्यों तन विधवा पर को देई काम दाम चित पर वस से बेल पेर त्रिपत ना कबहू होई पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा वेद प्राण पढ़ै सुन थाटा बिन रस राते मन बहु नाटा ज्यों चातरक जल प्रेम प्यासा ज्यों मीना जल माहे उलासा नानक हर रस पी त्रिपतासा गौड़ी महला पहला हठ कर मरै न लेखै पावै वेस करै बहु भस्म लगावै नाम विसार बहुर पछतावै तू मन हर जियो तू मन सुख नाम बसार सह जम दुख रहाओ चोआ चंदन अगर कपूर माया मगन परम पद दूर नाम बसारे है सब कूड़ो कूर नेजे वाजे तखत सलाम अदकी तृष्णा व्यापै काम बिन हर जाचे भगत ना नाम वाद अहंकार नाही प्रभ मेला मन दे पावह नाम सुहेला दूजे पाए अज्ञान दुहेला बिन दम के सौदा नहीं हाट बिन बोहित सागर नहीं वाट बिन गुर सेवे घाटे घाट तिसको वाह वाह जे वाट दिखावे तिसको वाह वाह जे शब्द सुनावे तिसको वाह वाह जे मेल मलावे वाह वाह तिसको जिसका एहो जियो गुर शब्दी मत अमृत पियो नाम वडाई तुद भाणे दियो नाम बिना क्यों जीवा माए अन दिन जपत रहो तेरी सरनाए नानक नाम रते पत पाए गौड़ी महला पहला हों मैं करत भेखी नहीं जानिया गुरमुख भगत विरले मन मानिया हों हों करत नहीं सच पाईए हों मैं जाए परम पद पाईए रहाओ हों मैं कर राजे बहुतावह हों मैं खपह जन्म मर आवह हों मैं निवरै गुर शब्द विचारै चंचल मत त्यागै पंच संघारै अंतर साच सहज घर आवह राजन जान परम गत पावह सच करनी गुर परम चकावै निरपो कै घर ताड़ी लावै हों हों कर मरना क्या पावै पूरा गुर भेटे सो झगर चकावै जेती है तेती केहो नाही गुरमुख ज्ञान भेट गुण गाही हों मैं बंधन बंद पवावै नानक राम भगत सुख पावै गौड़ी महला पहला प्रथमे ब्रह्मा कालै घर आया ब्रह्म कमल पयाल ना पाया आग्या नहीं लीनी भरम भलाया जो उपजै सो काल संघारिया

आवत जावत दुख मोह है रहाव। अपयो पियो अकथ कथ रही है, निज कर बहस सहज कर लही है। हर रस माते इहो सुख कही है, गुरमत चाल निश्चल नहीं डोलै। गुरमत साच सहज हर बोलै, पीवै अमृत तत वरोलै। सतगुर देखिया दीखिया लीनी, मन तन अर्पियो अंतरगत कीनी। गत मित पाई आत्म चीनी, भोजन नाम निरंजन सार। परमहंस सच जोत अपार, जह देखो तह एकंकार। रह निरालम एका सच करनी, परम पद पाया सेवा गुरचरणी। मन ते मन मानिया चूकी अहं भरमणी, इन विद कौन कौन नहीं तारिया। हर जस संत भगत निस्तारिया, प्रभ पाए हम अवर ना पारिया। साच महल गुर अलख लखाया, निश्चल महल नहीं छाया माया। साच संतोखे परम चुकाया, जिनकै मन वसिया सच सोई। तिनकी संगत गुरमुख होई, नानक साच नाम मल खोई। गौड़ी महला पहला, राम नाम चित रापै जाका। उपजंप दर्शन की जय ताका, राम ना जपो अपाग तुम्हारा। जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा रहाओ, गुरमत राम जपै जन पूरा। तित काट अनहत बाजे तूरा, जो जन राम भगत हर प्यार। से प्रभ राखे कृपा धार, जिनकै हिरदय हर हर सोई। तिनका दर्स परस सुख होई, सर्व जिया मैं एको रवे। मनमुख अहंकारी फिर जूनी भवे, सो बूझै जो सतगुर पाए। हउ मैं मारे गुर शब्दे पाए, अर्ध उर्ध की संद क्यों जाने। गुरमुख संद मिले मन माने, हम पापी निर्गुण कौ गुण करिए। प्रभ हुए दयाल नानक जन तरिए। सोलह अष्टपदियां ग्वारी गौड़ी कियां, गौड़ी बैरागण महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ज्यो गाई को गोयली राख है कर सारा। एहन सुपालह राख ले आत्म सुख तारा। इत उत राखो दीन दयाला, तो शरणागत नजर निहाला रहा। जह देखो तह राव रहे राख राखन हारा। तू दाता भुगता तू है, तू प्राण अधारा। किरत पया अद ऊर दी, बिन ज्ञान बिचारा। बिन उपमा जगदीश की, बिन सैना अधियारा। जग बिन सत हम देखिया, लोभे अहंकारा। गुर सेवा प्रभ पाया, सच मुक्त द्वारा। निज कर महल अपार को, अपरंपर सोई। बिन शब्द ते

अपनो नहीं पाया। मीठे को कौड़ा कह, कड़ुए को मीठा, राते की निंदा करह, ऐसा कल मैं दीता। चेरी की सेवा करह, ठाकुर नहीं दिस, पोखर नीर वरोली है, माखन नहीं रिस। इस पद जो अर्थाए ले, सो गुरु हमारा, नानक चीन आप को, सो अपर अपारा। सब आपे आप वर्तदा, आपे परमाया, गुर किरपा ते बूझी है, सब ब्रह्म समाया। राग गौड़ी ग्वारी महला तीजा, अष्टपदिया, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। मन का सूतक दूजा पाओ, परमे भूले आवो जाओ। मनमुख सूतक कबह ना जाए, जिचर शब्द ना पीजे हर कह नाए रहाओ। सबो सूतक जेता मोह आकार, मर मर जम्मे वारो वार। सूतक अगन पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किस खाहे। सूतक कर्म ना पूजा होए, नाम रत्ते मन निर्मल होए। सतगुर सेवे सूतक जाए, मरे ना जन्मे काल ना खाए। सास्त सिमरत सोध देखो कोय, विण नामे को मुक्त ना होए। जोग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल मह गुरमुख उतरस पार। साचा मरे ना आवे जाय, नानक गुरमुख रह समाय। गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा। हर जियो राखो हृदय उर धारा, गुरमुख सोभा साच द्वारा। पंडित हर पर तजोह विकारा, गुरमुख भोजन उतरो पारा। रहाओ गुरमुख विचो हो मैं जाए, गुरमुख मैल ना लागे आए। गुरमुख नाम वसे मन आए, गुरमुख कर्म धर्म सच होई। गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई। अपना मन प्रबोधो बूझो सोई, लोक समझावो हो सुने ना कोई। गुरमुख समझो सदा सुख होई, मनमुख डंप बहुत चतराई। जो किछ कमावे सो थाए ना पाई, आवे जावे थोर ना काई। मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना, बागजियो लाए बह नित ध्याना। जम पकड़िया तब ही पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई। गुर प्रसादी मिले हर सोई।

इहु संसारा नित तीर्थ नावै न जाए अहंकारा बिन गुर भेटे जम करे खुआरा सो जन साचा जे हूं मैं मारे गुर कै शब्द पंच संघारे आप तरे सगले कुल तारे माया मोहे नटबाजी पाई मन मुख अंध रहे लपटाई।

तेरा अहंकारी आप ना चीने बाजी हारी कापड़ पहर करे चतुराई माया मोहे अत परम पलाई बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई नाम रते सदा बैरागी गिरही अंतर साच लिवलागी नानक सतगुर सेवह सेवड भागी गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा तिस ते उपजे देव मोह प्यासा त्रै गुण भरमे नाही निज करवासा हम हर राखे सतगुरु मलाया अन दिन भगत हर नाम दिरड़ाया रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला पड़वाद बखाण है सिर मारे जमकाला तापना चीन है बन है पांड पराला मनमुख अज्ञान कुमारग पाए हर नाम बसारिया बहु कर्म दिरड़ाए पवजल डूबे दूजे पाए माया का मोहताज पंडित कहावे बिख्या राता बहुत दुख पावे जम का गल जेवड़ा नित काल संतावे गुरमुख जम काल नेड़ ना आवे हौ मैं दूजा शब्द जलावे ना मेरा ते हर गुण गावे माया दासी भगतां की कार कमावे चरनी लागे ता महल पावे सद ही निर्मल सहज समावे हर कथा सुन है से तनवंत दिस है जो गुमाही तिनको सब निवह अन दिन पूज कराही सहजे गुण रवह साचे मन माही पूरे सतगुर शब्द सुनाया त्रै गुण मेटे चौथे चित लाया नानक हौ मैं मार ब्रह्म मलाया गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा वेद पढ़े वाद वखाणे अंतर तामस आप ना पछाणे ता प्रभ पाए गुर शब्द वखाणे गुर सेवा करो फिर काल ना खाए मनमुख खादे दूजे पाए रहाओ गुरमुख प्राणी अपराधी सीधे गुर कै शब्द अंतर सहज रीदे मेरा प्रभ पाया गुर कै शब्द सीधे सतगुर मेले प्रभ आप मलाए मेरे प्रभ साचे कै मन पाए हर गुण गावह सहज सुपाए बिन गुर साचे परम पलाए मनमुख अंधे सदा बिख खाए जम डंड सह सदा दुख पाए जमुआ ना जो है हर की सरनाई हौ मैं मार सच लिवलाई सदा रह हर नाम लिवलाई सतगुर सेव है से जन निर्मल पविता मन स्यो मन मिलाए सब जग जीता इन विद कुशल तेरे मेरे मीता सतगुरु सेवे सो फल पाए हिरदय नाम विचों आप गवाए अनहद बाणी शब्द वजाए सतगुर ते कमन कमन ना सीधो मेरे भाई भगती सीधे दर सोभा पाई नानक राम नाम वड्याई गौड़ी महला तीजा त्रै गुण बखाणे भरम ना जाए बंधन ना टूटे है मुक्त ना पाए मुक्त दाता सतगुर जुग माहे गुरमुख प्राणी भरम गवाए सहज तुन उपजै।

जाई, मूल छोड़ लागे दूजे पहाई, बिख का माता बिख माही समाई, माया कर मूल जंतर परमाए, हर जियो विसरिया दूजे पाए, जिस नजर करे सो परम गत पाए, अंतर साच बाहर साच वरताए, साच ना छपे जे को रखे छपाए, ज्ञानी बूझ सहज सुपाए, गुरमुख साच रहिया लिभ लाए, हमें माया शब्द जलाए, मेरा प्रभ साचा मेल मलाए, सतगुरु दाता शब्द सुनाए, तावत राखे ठाक रहाए, पूरे गुरते सो जी पाए, आपे करता सृष्ट सिर्ज जिन गोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई, नानक गुरमुख बूझै कोई, गौड़ी महला तीजा, नाम अमोलक गुरमुख पावे, नामो सेवे नाम सहज समावे, अमृत नाम रसना नित गावे, जिसनु कृपा करी सो हर रस पावे, अनगिन हिरदय जपो जगदीसा, गुरमुख पावो परम पद सूखा रहाओ, हिरदय सूख पया परगास, गुरमुख गावे है सच गुण तास, दासन दास नित होवे दास, ग्रह कटंब मह सदा उदास, जीवन मुक्त गुरमुख को होई, परम पदार्थ पावे सोई, त्रै गुण मेटे निर्मल होई, सहजे साच मिले प्रभ सोई, मोह कटंब स्यों प्रीत ना होई, जां हिरदय वसिया सच सोई, गुरमुख मन बेदिया अस्थिर होई।

सब जग महलोए गुरमुख बाणी मीठी लागी अंतर बिगसै अन दिन लिव लागी सहजे सच मिलिया परसादी सतगुर पाया पूरे वड भागी हौ मैं ममता दुर्मत दुख नास जब हृदय राम नाम गुणतास गुरमुख बुद्ध प्रगटी प्रभ जास जब हृदय रविया चरण निवास जिस नाम दे सोई जन पाए गुरमुख मेले आप गवाए हृदय साचा नाम वसाए नानक सहजे साच समाए गौड़ी मोहल्ला तीजा मन ही मन सवारिया पै सहज सुपाए शब्द मन रंगिया लिवलाए निज कर वस्या प्रभ की रजाए सतगुर सेवया जाए अभमान गोविंद पाई है गुणी निदान रहाओ मन बैरागी जा शब्द पौ खाए मेरा प्रभ निर्मला सब तै रहया समाए गुर किरपा ते मिले मलाए हर दासन को दास सुख पाए मेरा हर प्रभ इन बिद पाया जाए हर किरपा ते राम गुण गाए त्रिग बहु जीवन जित हर नाम ना लगे प्यार त्रिग सेज सुखाली कामन मोह गुबार तिन सफल जन्म जिन नाम आधार त्रिग त्रिग ग्रह कटंब जित हर प्रीत ना होए सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए हर नाम बिना मैं अवर ना कोए सतगुर ते हम गत पत पाई हर नाम ते आया दूख सगल मटाई सदा आनंद हर नाम लिव लाई गुर मिले हमको शरीर शुद्ध पई हम मैं तृष्णा सब अग्न बुझई बिनसे क्रोध खिमा गह लई हर आपे कृपा करे नाम देवे गुरमुख रतन को बिरला लेवे नानक गुण गावे हर अलख अपीवे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी बैरागुण महला तीजा।

मन करहला अत निर्मला मल लागी हूं मैं आई परतख पीर घर नाल प्यारा विछड़ चोटा खाई मन करहला मेरे प्रीतमा हर हृदय पाल पलाए उपाय किते ना लभई गुर हृदय हर देखाए मन करहला मेरे प्रीतमा दिन रहन हर लिवलाए कर जाए पावह रंग महली गुर मेले हर मिलाए मन करहला तू मीत मेरा पाखंड लोभ तजाए पाखंड लोभी मारिए जम डंड दे सजाए मन करहला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए हर अमृत सर गुर पूरिया मिल संगती मल लह जाए मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए एहो मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए मन करहला मेरे साजना हर खर्च लिया पत पाए हर दरगाह पहनाया हर आप लया गल लाए मन करहला गुर मन्या गुरमुख कार कमाए गुर आगे कर जोदड़ी जन नानक हर मेलाए गौड़ी महला चौथा मन करहला विचारिया विचार देख संभाल बन फिर थके बनवासिया फिर गुरमत हृदय निहाल मन करहला गुर गोविंद संभाल रहाओ मन करहला विचारिया मनमुख फाथिया महाजाल गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम संभाल मन करहला मेरे प्यारिया सत संगत सत गुर भाल सत संगत लग हर त्याई है हर हर चले तेरे नाल मन करहला वडभागिया हर एक नदर निहाल आप छडाए छुट्टी है सतगुर चरण संभाल मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत संभाल गुर नौनिध नाम वखालिया हर दात करी दयाल मन करहला तू चंचला चतुराई छड विकराल हर हर नाम संभाल तू हर मुक्त करे अंतकाल मन करहला वडभागिया तू ज्ञान रतन संभाल गुर ज्ञान खड़ग हाथ धारिया जम मारियड़ा जमकाल अंतर निदान मन करहले भ्रम पवह बाहर पाल गुरपुरख पूरा भेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा संभाल हर रंग कदे ना उतरे गुर सेवा शब्द संभाल हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल वडभागी गुरमुख पाया जन नानक नाम संभाल राग गौड़ी गवारी महला पंजवा अष्टपदियां एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद जब इहो मन में करत गुमाना तब इहो बावर फिरत बेगाना जब इहो हुआ सगल कीरीना तातेर मैया कट कट चीना सहज सुहेला फल मशकीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किसको इहो जानस मंदा तब सगले इस मेलह फंदा मेर तेर जब इन्ह चुकाई ताते इस संग नहीं बैराई जब इन अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल भारी जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किस कर माने भेदा तब ते दुख दंड अर खेदा जब इन एको एकी बूझिया तब ते इसनो सब किस सूझिया जब इहो तावे माया अर्थी नह त्रिपतावे नह ते सलाथी जब इसते इहो होयो जौला पीछे लाग चली उठकौला
कर कृपा जो सतगुर मिलियो मन मंदर मह दीपक जलियो जीत हार की सोजी करी तो इस कर की कीमत परी कर्ण करामन सब किश एक है आपे बुद्ध विचार विवेक है दूर ना नेरे सब कै संगा सच सलाहन नानक हर रंगा गौड़ी महला पंजवा गुर सेवा ते नामे लागा तिसको मिलिया जिस मस्तक भागा तिस कै हिरदय रविया सोए मन पन सीतल निश्चल होए ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहां उहां जो काम तेरे रहाओ जास जपत पौ अपदा जाए धावत मनुआ आवे ठाए जास जपत फिर दुख ना लागे जास जपत एह होमै भागे जास जपत वस आवह पंचा जास जपत हृदय अमृत संचा जास जपत ए तृष्णा बुझे जास जपत हर दरगाह सिजे जास जपत कोट मिटह अपराध जास जपत हर होवह साध जास जपत मन शीतल होवे जास जपत मल सगली खोवे जास जपत रतन हर मिले बहुर न छोड़े हर संग हिले जास जपत कई बैकुंठ वास जास जपत सुख सहज निवास जास जपत एह अग्न ना पोहत जास जपत एहो काल ना जोहत जास जपत तेरा निर्मल माथा जास जपत सगला दुख लाथा जास जपत मुश्किल कछु ना बने जास जपत सुन अनहत तुने जास जपत एह निर्मल सोए जास जपत कमल सीधा होए गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी जिस कै हृदय मंत्र दे हरि अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा कहो नानक जिस सतगुर पूरा गौड़ी महला पंजवा गुर का शब्द हृदय अंतर तारे पंच जना स्यों संग निवारे दस इंद्री कर राखे वास ता कै आत्मै होए प्रगास ऐसी दृढ़ता ता कै होए जाको दया मया प्रभ सोए रहाओ साजन दुष्ट जाकै एक समान जेता बोलन तेता ज्ञान जेता सुनना तेता नाम जेता पेखन तेता ध्यान।

जपना सहजे भोजन सहजे भाऊ सहजे मिट्यो सगल दुराऊ सहजे होआ साधु संग सहज मिलियो पार ब्रह्मन संग सहजे ग्रह में सहज उदासी सहजे दुबदा तन की नासी जा कै सह

सहज कथा मह आत्म रसिया तां कै संग अविनाशी वसिया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया सहजे रुण चुनकार सुहाया तां कै तार पार ब्रह्म समाया सहजे जाको परयो कर्मा सहजे गुर भेट्यो सच धर्मा जां कै सहज भया सो जाने नानक दास तां कै कुर्बान गौड़ी महला पंजवां प्रथमे गर्भवास ते तरिया पुत्र कलत्र कटंब संग जुरिया भोजन अनक प्रकार बहु कपरे सर पर गमन करहंगे बपरे तमन अस्थान जो कबहु ना तरै तमन शब्द जित दुर्मत हरे रहाओ इंद्रपुरी मैं सर पर मरना ब्रह्मपुरी निह चल नहीं रहना शिवपुरी का होएगा काला त्रैगुण माया बिनस बिताला गिर तर धरन गगन अर तारी राव सस पवन पावक नीरारी दिन सरैन बरत अर पेदा सासत सिमरत।

अनको नगर तहां सदवसे तह पाओ परमा सोग न चिंता आवण जामण मृत ना होता तह सदा आनंद अनहत आखारी भगत वसह कीर्तन आधारी पार ब्रह्म का अंत न पार कौन करे ताका विचार कहो नानक जिस कृपा करे निश्चल थान साध संग करे गौड़ी महला पंजवा जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसह वडियाई जो इस मारे तिसका दुख जाई ऐसा कोई जे दुखदा मार गवावे तिसह मार राज जोग कमावे रहाव जो इस मारे तिसको पहो नाही जो इस मारे सो नाम समाहे जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझे जो इस मारे सो दरगाह सिजे जो इस मारे सो तनवंता जो इस मारे सो पतवंता जो इस मारे सोई जति जो इस मारे तिस हुवे गति जो इस मारे तिसका आया गनी जो इस मारे सो निश्चल तनी जो इस मारे सो वडभागा जो इस मारे सो अनदिन जागा जो इस मारे सो जीवन मुक्ता जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता जो इस मारे सोई सो ज्ञानी जो इस मारे सो सहज त्यानी इस मारी बिन थाए ना परे कोट कर्म जाप तप करे इस मारी बिन जन्म ना मिटे इस मारी बिन जमते नहीं छुटे इस मारी बिन ज्ञान ना होई इस मारी बिन झूठ ना धोई इस मारी बिन सब किछ मैला इस मारी बिन सब किछ जौला जाको पये कृपाल कृपा निद तिस पई खलासी होई सगल सिद्ध गुर दुबदा जाकी है मारी कहो नानक सो ब्रह्म बिचारी गौड़ी महला पंजवा हर स्यो जुरै ता सबको मीत हर स्यो जुरै ता निश्चल चीत हर स्यो जुरै ना व्यापै काड़ा हर स्यो जुरै ता हुए निस्तार।

आस नीच कुल सुने है, तिसकै संग खिन मह उदरे है। कोट मज्जन जाकै सुन नाम, कोट पूजा जाकै है ध्यान। कोट पुन सुन हर की वाणी, कोट फला गुरते भिद जानी। माने अपने मैं फिर चेत, बिनस जाहे माया के हेत। हर अबनासी तुमरे संग, मन मेरे रच राम कै रंग। जाकै काम उतरे सब भूख, जाकै काम ना जो है दूत। जाकै काम तेरा वड गमर, जाकै काम होवे तू अमर।

भांत, जांकी दृष्ट हुए सदा निहाल, मन मेरे कर कांकी काल, ना को चतर ना ही को मूड़ा, ना को हीन ना ही को सूरा, जित को लाया तित ही लागा, सो सेवक नानक जिस भागा, गौड़ी महला पंजवां, बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी, त्यों जीवे है साकत नाम बिसारी, एक निमख जो सिमरन मह जिया, कोट दिन सलाख सदा थिर थिया रहाव, बिन सिमरन त्रिग कर्म करास, काग बतन बिस्ता महवास, बिन सिमरन पय कुकर काम, साकत बेसुआ पूत नाम, बिन सिमरन जैसे सींग सतारा, बोलह कूर साकत मुख कारा, बिन सिमरन घर दब की न्याई, साकत थान पृष्ठ फराई, बिन सिमरन

कर हर काया, साकत लोभी बंद ना पाया, बिन सिमरन है आत्म काती, साकत नीच तिस कुल नहीं जाती, जिस भया कृपाल तिस सतसंग मलाया, कहो नानक गुर जगत तराया, गौड़ी महला पंजवा, गुर कै बचन मोहे परम गत पाई, गुर पूरै मेरी पैज रखाई, गुर कै बचन त्यायो मोहे नाम।

गुर कै बचन मिटिया मेरा आप, गुर की दया ते मेरा वड प्रताप। गुर कै बचन मिटिया मेरा परम, गुर कै बचन पेख्यो सब ब्रह्म। गुर कै बचन कीनो राज जोग, गुर कै संग तरिया सब लोग। गुर कै बचन मेरे कार्य सिद्ध, गुर कै बचन पाया नाउ निध। जिन जिन कीनी मेरे गुर की आसा, तिस की कटिया जम की पासा। गुर कै बचन जागिया मेरा कर्म, नानक गुर भेटिया पार ब्रह्म। गौड़ी महला पंजवां।

गुर की रेण नित मज्जन करूं, जन्म जन्म की हम मैं मल हरूं, किस गुर को चलावूं पाखा, महा अग्न ते हाथ दे राखा, किस गुर कै ग्रह ढोवूं पानी, जिस गुर ते अकल गत जानी, किस गुर कै ग्रह पीसो नीत, जिस प्रसाद वैरी सब मीत, जिन गुर मोह को दीना जियो, अपना दस राय आपे मुल लियो, आपे लायो अपना प्यार, सदा सदा तिस गुर को करी नमस्कार, काल कलेश पै भ्रम दुख लाथा, कहु नानक मेरा गुर समराथा। गौड़ी महला पंजवां, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देव, नाम बिना त्रिग त्रिग असने।

ज्यों मृतक मिथ्या सिंगार नाम बसार करे रस भोग सुख सुपने नहीं तन मह रोग नाम त्याग करे अनुकाज बिनस जाए झूठे सब पाज नाम संग मन प्रीत ना लावे कोट कर्म करतो नरक जावे हर का नाम जिन मन ना अरादा चोर की न्याई जमपुर बादा लाख अडंबर बहुत बिसथारा नाम बिना झूठे पासारा हर का नाम सोई जान ले कर कृपा नानक जिस दे गौड़ी महला पंजवा आद मद जो अंत न बाहै सो साजन मेरा मन चाहै हर की प्रीत सदा संग चाले दयाल पुरख पूर्ण।

सुन पंत डराओ बहुत पैहारिया, मैं तक्की कोट संता लेहो उबारिया, मोहन लाल अनूप सर्ब साधारिया, गुर निव निव लागो पाए देहो देखारिया, मैं किए मित्र अनेक इकस बलिहारिया, सब गुण किस ही नाही हर पूर भंडारिया, चहो दिस जपिए नाओ सूख सुवारिया, मैं आही ओड़ तुहार नानक बलिहारिया, गुर काढ़ेओ कुजा पसार मोह कुपारिया, मैं जीतेओ जन्म अपार बहुर ना हारिया, मैं पायो सर्ब निदान अकथ कथारिया, हर दरगाह शोभावंत बाहां लुडारिया, जन नानक लब्दा रतन अमोल अपारिया, गुर सेवा भौजन तरिये कहो पुकारिया, गौड़ी महला पंजवा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, नारायण हर रंग रंगो जप जेवा हर एक मंगो रहाओ, ताज हों मैं गुर ज्ञान भजो मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसै सो संग ना गयो साकत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रब रहियो कोट मदे किने गुरमुख लहियो, हर संतन कर नमो नमो नौ निद पाव है अतुल सुखो, नैन अलोवो साध जनो हृदय गावो नाम निधो, काम क्रोध लोभ मोह तजो जन्म मरण दोहों ते रहियो, दुख अंधेरा करते मिटियो गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो, जिन सेव्या सो पार परियो जन नानक गुरमुख जगत तरियो, महला पंजवा गौड़ी हर हर गुर गुर करत भरम गए, मेरे मन सब सुख पायो रहाओ, बल तो जल तो तौकिया गुर चंदन सीत लायो, अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर ज्ञान दी पायो, पावक सागर गहरु चर संतन नाव तरायो, ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभ गह पूजा अपायो, पौ खंडन दुख भंजनो भगत वचल हर नायो, अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृथ संत उठायो, निर्गुण यारे की बेनती देहो दर्श हर रायो, नानक सरन तुहारी ठाकुर सेवक द्वारे आयो, गौड़ी महला पंजवा रंग संग बिखिया के भोगा, इन संग अंध न जानी हौ संचो हौ खातता सगली अवद बेहानी रहाओ, हौ सूरा प्रधान हौ को नाही मुझे सुमानी, जो बनवंत अचार कुलीना मन में हुए गुमानी, ज्यो उलझायो बाद बुद्ध का मरत्या नहीं बिसरानी, पाई मीत बंदप सखे पाछे तिन्हू कौ संपानी, जित लागो मन बासना अंत साई प्रगटानी, अहम बुद्ध सुच कर्म कर एह बंधन बंधानी, दयाल पुरख कृपा।

मिठ रस भोग भोजन सब झूठ कितै ना लेखे मैं मत जोबन गर्भ गाली दुद्धा थनी ना आवे नानक सा धन मिलै मलाई बिन पिर नींद ना आवे मुंद न मानड़िया जियो बिन धनी प्यारे क्यों सुख पावेगी बिन उर तारे नाह बिन कर वास नाही पुछो हो सखी सहेलियां बिन नाम प्रीत प्यार नाही वस है साच सहेलियां सच मन सज्जन संतोख मेला गुरमती सौ जानिया नानक नाम ना छोड़ै सा धन नाम सहज समानिया मिल सकी सहेलड़ी हो हम फिर रावेहा गुर पुछ लिखोगी जियो शब्द सनेहा शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछतानिया निकस जातो रह अस्थर जाम सच पछाणिया साच की मत सदा नौतन शब्द नेहो नवेलो नानक नदरी सहज साचा मिलो सखी सहेली हो मेरी इच्छ पुन्नी जियो हम कर साजन आया मिलवर नारी मंगल गाया गुण गाए मंगल प्रेम रहसी मुंद मन अमाहो साजन रहसे दुष्ट व्यापे साच जप सच लाहो कर जोड़ सा तन करै बिनती रहन दिन रस पिनिया नानक पिर तन करह रलिया इच्छ मेरी पुनिया गौड़ी चंत महला पहला सुन नाह प्रभु जियो ए कलड़ी बन माहे क्यों धीरैगी नाह बिना प्रभु वे परवाहे धन नाह बाजो रह ना साकै बिखम रैण कनेरिया नह नींद आवै प्रेम पावै सुन बेनंती मेरिया बाजो प्यारे कोई ना सारे ए कलड़ी कुरलाए नानक सा धन मिलै मलाई बिन प्रीतम दुख पाए फिर छोड़ियाड़ी जियो कमन मलावै रस प्रेम मिली जियो शब्द सुहावै शब्दे सुहावै तां पत पावै दीपक देह उजारै सुन सखी सहेली साच सहेली साचे के गुण सारे सतगुर मेली तां फिर रावी बिगसे अमृत बाणी नानक सा धन तां फिर रावे जां तिसकै मन पाणी माया मोहनी नी करिया जियो कूड़ मुट्ठी कूड़ियारे क्यों फूलै गल जेवड़िया जियो बिन गुर अथ प्यारे हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे तिस ही का सो होवै पुन दान अनेक नामन क्यों अंतर मल धोवै नाम बिना गत कोए ना पावे हठ निग्रह बेबाणै नानक सच कर शब्द सियापै दुबदा महल के जाने तेरा नाम सच्चा जीऊ

भगत लाहा अन दिनु तिस बाज वखर कोई ना सूजे नाम ले वो खिन खिनु परख लेखा नदर साची कर्म पूरे पाया नानक नाम महारस मीठा गुर पूरे सच पाया राग गौड़ी पूर्वी संत महला तीजा

हर के गुण सारे हिन पल रह न सकै जियो बिन हर प्यारे बिन हर प्यारे रह न साकै गुर बिन महल न पाईऐ जो गुर कहे सोई पर कीजै तिसना अग्न बुझाईऐ हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई बिन सेवै सुख न पाए नानक सा धन मिलै मलाई जिसनो आप मलाए धन रैन सुहेलड़िए जियो हर सिओ चित लाए सतगुर सेवे भाओ करे जियो विचों आप गवाए हर गुण गाए अन दिन लागा भाओ सुन सखी सहेली जी की मेली गुर कै शब्द सुन।

कापड़ तन ना सुहाई। कापड़ तन सुहावै जां पिर भावै, गुरमती चित लाइऐ। सदा सुहागण जां सतगुर सेवे, गुर कै अंक समाइऐ। गुर शब्दै मेला तां पिर रावी, लाहा नाम संसारी। नानक कामण नाह प्यारी, जां हर के गुण सारी। सा धन रंग माणे दियो, अपने नाल प्यारे। अहनस रंग राती जियो, गुर शब्द विचारे। गुर शब्द विचारे हमें मारे, इन बिद मिलो प्यारे। सा धन सुहागण सदा रंग राती, साचे नाम प्यारे। अपने गुर मिल रही है अमृत गही है, दुबदा मार निवारे। नानक कामण हर वर पाया।

कूड़ मुठी कूड़ियारी, कूड़ निवारी गुरमत सारी, जूए जन्म ना हारी, गुर शब्द सेवे सच समावे, बिचो हम मारी, हर का नाम हृदय बसाई, ऐसा करे सिंगारू, नानक कामन सहज समाणी, जिस साचा नाम आधारू, मिल मेरे प्रीत मां जियो, तुद बिन खरी निमाणी, मैं नैनी नींद ना आवे जियो, पावे अन्न ना पानी, पानी अन्न ना पावे, मरिए हावे, बिन फिर क्यों सुख पाईए, गुर आगे करो बिनंती, जे गुर पावे ज्यों मिले तिवें मिलाईए, आपे मेल लए सुख दाता, आप मिलिया घर आए, नानक कामन सदा सुहागण, ना फिर मरे ना जाए, गौड़ी महला तीजा, कामन हर रस बेदी जियो, हर कै सहज सुपाए, मन मोहन मोए लिया जियो, दुबदा सहज समाए, दुबदा सहज समाए, कामन वर पाए, गुरमती रंग लाए, एहो शरीर कूड़ कसत भरिया, कल ताई पाप कमाए, गुरमुख भगत जित सहज धुन उपजे, बिन भगती मैल ना जाए, नानक कामन पिरह प्यारी, विचों आप गवाए, कामन पिर पाया जियो, गुर कै पाए प्यारे, रैन सुख सुती जियो, अंतर उर तारे, अंतर उर तारे मिलिए प्यारे, अन दिन दुख निवारे, अंतर महल पिर रावे कामन, गुरमती विचारे, अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार निवारे, नानक सच मिली सुहागण, गुर कै हेत अपारे, आव हो दया करे जियो, प्रीतम अत प्यारे, कामन बिनो करे जियो, सच शब्द सिंगारे, सच शब्द सिंगारे, हम मैं मारे, गुरमुख कार्य सवारे, जुग जुग एको सच्चा सोई, बूझै गुर बिचारे, मनमुख काम व्यापी, मोहि संतापी, किस आगे जाए पुकारे, नानक मनमुख थाओ ना पाए, बिन गुर अत प्यारे, मुंद एयाणी भोली निगुणिया जियो, फिर अगम अपारा, आपे मेल मिलिए जियो, आपे बख्शन हारा, अवगुण बख्शन हारा, कामन कंत प्यारा, कट कट रहे आसमाई, प्रेम प्रीत पाए भगती पाईए, सतगुर बूझ बुझाई, सदा आनंद रहे दिन राती, अन दिन रहे लिवलाई, नानक सहजे हर वर पाया, सा तन नौ निद पाई, गौड़ी महला तीजा, माया सार सबल वरतै जियो, क्यों कर दुत्तर तरिया जाए, राम नाम कर बोहे था जियो, शब्द खेवट विच पाए, शब्द खेवट विच पाए, हर आप लंघाए, इन बिद दुत्तर तरिए, गुरमुख भगत प्राप्त होवे, जीवतियां इयों मरिए, जिन मह राम नाम किलविख काटे, पए पवित्र शरीरा, नानक राम नाम निस्तारा, कंचन पए मनूरा, स्त्री पुरख काम व्यापे जियो, राम नाम की बिद नहीं जानी, मात पिता सुत भाई खरे प्यारे जियो, डूब मोए बिन पानी, डूब मोए बिन पानी, गत नहीं जानी, हम मैं तात संसारे, जो आया सो सब को जासी, उबरे गुर विचारे, गुरमुख होवे राम नाम बखाने, आप तरे कुल तारे, नानक नाम बसे घट अंतर, गुरमत मिले प्यारे, राम नाम बिन को थिर नाही जियो, बाजी है संसारा, दृढ़ भगत सच्ची जियो।

सेवा सुरत भगत एह साची विचों आप गवाई है। हम मत हीन मूरख मुगद अंधे सतगुर मार्ग पाए, नानक गुरमुख शब्द सहावे अन दिन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो आपे शब्द सवारे, आपे सतगुर आप शब्द जियो जुग जुग भगत प्यारे। जुग जुग भगत प्यारे हर आप सवारे, आपे भगती लाए आपे दाना आपे बीना आपे सेव कराए। आपे गुणदाता अवगुण काटे हिरदय नाम वसाए, नानक सद बलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए। गौड़ी महला तीजा।

छोड़ परदेश सदाए दूजै किनै सुख ना पायो पिरा जियो बिखिया लोभ लुभाए बिखिया लोभ लुभाए भरम भलाए ओह क्यों कर सुख पाए चाकरी वडाणी खरी दुखाली आप वेच धर्म गवाए माया बंधन टिकै नाही खिन खिन दुख संताए नानक माया का दुख तदे चूकै जा गुर शब्दी चित लाए मन मुख मुग्ध गवार पिरा जियो शब्द मन ना वसाए माया का भ्रम अंध पिरा जियो हर मार्ग क्यों पाए क्यों मार्ग पाए बिन सतगुर पाए मन मुख आप गणाए हर के चाकर सदा सुहेले गुर चरणी चित लाए जिसनो हर जियो करे कृपा सदा हर के गुण गाए नानक नाम रतन जग लाहा गुरमुख आप बुझाए राग गौड़ी संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन बैराग भया जियो क्यों देखा प्रभ दाते मेरे मीत सखा हर जियो गुरपुरख बधाते पुरखो बधाता एक श्री तर क्यों मिलह तुझै अड़ीनिया कर करह सेवा आसीस चरणी मन आस दर्श निमानिया सास सास ना घड़ी विसरे पल मूरत दिन राते नानक सारिंग ज्यों प्यासे क्यों मिलिए प्रभ दाते एक बिनो करो जियो सुन कंत प्यारे मेरा मन तन मोहे लिया जियो देख चलत तुम्हारे चलता तुम्हारे देख मोही उदास तन क्यों धीरे गुणवंत नाहा दयाल बाला सर्व गुण भरपूरे।

करि आवहु नाह प्यारी। हो मन अर्पी सब तन अर्पी, अर्पी सब दिसा हो सिर अर्पी तिस मीत प्यारे। जो प्रभ दे संदेसा अर्पया ता सीस सुथान गुर पह, संग प्रभु दिखाया खिन माहे सगला दुख मिटिया। मनो चिंदिया पाया दिन रहन रलिया करै कामण, मिटे सगल अंदेसा बिनवंत नानक कंत मिलिया। लोड़ ते हम जैसा मेरा मन आनंद भया जियो, वजी वधाई कर लाल आया प्यारा। सब तिखा बुझाई मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर, सखी मंगल गाया सब मीत बंद पहरखे उपजिया। दूत थाऊ गवाया अनहत वाजे बजे है घर में है, फिर संग सेज विछाई बिनवंत नानक सहज रह। हर मिलिया कंत सुखदाई, गौड़ी महला पंजवा। मोहन तेरे ऊचे मंदर महल अपारा, मोहन तेरे सोहन द्वार जियो संत धर्मशाला। धर्मशाल अपार दयार ठाकुर सदा कीर्तन गावे, जह साध संत इकत्तर होवे तहां तुझे त्यावे। कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा, बिनवंत नानक दर्श प्यासे मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली, मोहन तू मान है एक जी अवर सब राली। मान है ता एक अलेख ठाकुर जिन्ह सब कल तारिया, तुद बचन गुर कै वस किया आद पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहिया आप सब कल तारिया, बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक सरन तुम्हारिया। मोहन तुद सत संगत ध्यावै दर्स ध्याना, मोहन जम नेर ना आवै तुद जपै निधाना। जम काल किनको लगै नाही जो एक मन त्यावे, मन बचन कर्म जे तुद आराध है से सबे फल पावे। मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर्श सुगियाना, बिनवंत नानक राज निश्चल पूरन पुरख भगवाना। मोहन तू सुफल फलिया सन परवारे, मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब सब तारे। तारिया जहान

ना आया। बेअंत गुण तेरे कथे ना जाही, सतगुर पुरख मरारी बिनवंत नानक टेक राखी। जित लग तरिया संसारी, गौड़ी महला पंजवां सलोक। पतत असंख पनीत कर, पुनः पुनः बलिहार। नानक राम नाम जप पाव को, तिन किल बिख दाहनहार। संत जप मना तू राम नारायण, गोविंदा हर माधु। त्याए मना मरार मुकंदे, कटिए काल दुख फादु। दुख हरन दीन सरन सिरी तहर, चरण कमल अरादिए। जम पंथ बिखड़ा अग्न सागर, निमक सिमरत साधिए। कल मलै दहता सुध करता, गिन सरैन अरादु। बिनवंत नानक करहु कृपा, गोपाल गोविंद माधु। सिमर मना दामोदर दुख हर, पै पंजन हर राया। श्री रंगो दयाल मनोहर, भगत वच्छल बिरदाया। भगत वच्छल पुरख पूरन, मन है चिंदिया पाईए। ताम अंध कूप ते उधारै, नाम मन वसाईए। सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन, गुण अनक भगती गाया। बिनवंत नानक करहु कृपा, पार ब्रह्म हर राया। चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर, सर्व कला जिन तारी। करुणा में समरथ स्वामी, कट कट प्राण आधारी। प्राण मन तन जी दाता, बेअंत अगम अपारू। शरण जोग समरथ मोहन, सर्व दुख बिदारू। रोग सोग सब दुख बिन सह, जपत नाम मरारी। बिनवंत नानक करहो कृपा, समरथ सब कल तारी। गुण गाओ मना अचुत अबनासी, सब ते ऊच दयाला। बिसंबर देवन को एक है, सर्व करे प्रतपाला। प्रतपाल महा दयाल दाना, दया तारे सब किसे। काल कंटक लोभ मोह नासे, जी जा कै प्रभु बसे। सो प्रसन्न देवा सफल सेवा, पई पूर्ण काला। बिनवंत नानक इच पुन्नी, जपत दीन दयाला। गौड़ी महला पंजवां, सुन सखिए मिल उदम करेहा। मनाए लह हर कंते, मान त्याग कर भगत ठगौरी। मोह है साधु मंते, सखी वास आया फिर छोड़ ना जाई। एह रीत भली भगवंत है, नानक जरा मरन पै नरक निवारै। पनीत करै तिस जनतै, सुन सखिए एह भली बिनंती। एहो मतांत पकाइयै, सहज सुभाए अपाद रहत होए। गीत गोविंदह गाइयै, कल कलेश मिटह भ्रम नासह। मन चिंदिया फल पाइयै, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर। नानक नाम ते आइयै, सखी इश करी नित सुख मनाई। प्रभ मेरी आस पुजाए, चरण प्यासी दर्श बैरागण। पेखों थान सबाए, खोज लहो हर संत जना संग। समरथ पुरख मलाए, नानक किन मिलिया सुर जन सुख दाता। सेवड भागी माए, सखी नाल वसा अपने नाह प्यारे। मेरा मन तन हर संग हिलिया, सुन सखिए मेरी नींद पली। मैं आपनड़ा फिर मिलिया, प्रम खोयो शांत सहज स्वामी। प्रगास भया कौल खिलिया, वर पाया प्रभ अंतर जामी। नानक सुहाग ना टलिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गौड़ी बावन अखरी महला पंजवां सलोक। गुरुदेव माता गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंदप सुहोदरा। गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसै, गुरुदेव मंत्र नरोदरा। गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत,
गुरुदेव पारस परस परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतत पवित्र करा, गुरुदेव आदि जुगादि जुग जुग, गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूड पापी जित लग तरा, गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा सलोक, आपह किया कराया आपह करमै जोग, नानक एको रब रहया दूसर होवा ना होग पौड़ी, ओं साध सतगुर नमस्कार आद मद अंत निरंकार, आपह सुन आपह सुख आसन, आपह सुनत आप ही जासन, आपने आप आपह उपायो, आपह बाप आप ही मायो, आपह सूखम आपह असथूला, लखी न जाई नानक लीला, कर कृपा।

लवै न को एक है आप अवर न है हो होवन हार होत सद आया वाका अंत न काहू पाया कीत हस्त मह पूर समाने प्रगत पुरख सब ठाऊ जाने जाको दीनो हर रस अपना नानक गुरमुख हर हर तेह जपना सलोक आत्म रस जे जानिया हर रंग सहजे मान नानक धन तन धन जन आए ते परवान पौड़ी आया सफल ताहू को गनिय जास रसन हर हर जस भनिय आए बस है साधु कै संगे अन बिन नाम त्याव है रंगे आवत सोजन न महराता जा को दया मया बेदाता एक है आवन फिर जोन न आया नानक हर कै दर्श समाया सलोक यास जपत मन हुए आनंद बिनसै दूजा भाव दुख दर्द तृष्णा बुझे नानक नाम समा

या भव जल करना यया जन्मना आवै सो एक नाम ले मन है परो यया जन्मना हारी है गुरपूरे की टेक नानक तेह सुख पाया जा कै हिरै एक सलोक अंतर मन तन बस रहे पीत ऊत के नीत गुरपूरा अपदेसिया नानक जपी है नीत पौड़ी अन दिन सिमर हो तास को जो अंत सहाई होए एह बिख्या दिन चार छे छाड़ चल्यो सब कोए काको मात पिता सुत धिया ग्रह बनता कस संग ना लिया ऐसी संच जो बिन सत नाही पत सेती अपने घर जाही साध संग कल कीर्तन गाया नानक तेते बहुर ना आया सलोक अत सुंदर कलीन चतर मुख ज्ञानी तनवंत मृतक कई है नानका जेह प्रीत नहीं भगवंत पौड़ी गंगा खाट शास्त्र हो ज्ञाता पूरक कुंभक रेचक करमाता ज्ञान ध्यान तीर्थ इशनानी सोम पाक अपरस उदयानी राम नाम संग मन नहीं हेता जो कशकीनो सो अनेता वाते उत्तम गनो चंडाला नानक जेह मन बसह गोपाला सलोक कुंट चार दह दिस ब्रह्मे कर्म कीर्थ की रेख सुख दुख मुक्त जोन नानक लिखियो लेख पवड़ी कक्का कारण करता सो लिखियो लेख न मेटत को नहीं होत कश दो बारा करने हार न भूलन हारा काहू पंथ दिखारे आपे काहू उद्यान भ्रमत पछतापे आपन खेल आप ही कीनो जो जो दीनो सो नानक लीनो सलोक खात खर्चत बिलछत रहे टूट ना जाहे भंडार हर हर जपत अनेक जन नानक नाहे सुमार पौड़ी खखा खूना कछ नहीं तिस समरथ कै पाहे जो देना सो दे रहे हो भावे तह तह जाहे खर्च खजाना नाम तन या भगतन की रास हिमागिरी भी आनंद सहज जपत रह गुणतास खेलह बिगसह आनंद स्यों

नदर करी नानक जो प्रभ पाणिया पूरी तिना परी। सलोक गन मिन देखो मने माही सर पर चलनो लोग आस अनित गुरमुख मिटे नानक नाम अरोग पौड़ी। गग्गा गोविंद गुण रवो सास सास जप नीत कहां बसासा देह का बिलम ना करे हो मीत। नह बारक नह जोबन नह बिरदी कस बंद ओह बेरा नह दूजी है जो आए पर जम फंद। ज्ञानी ध्यानी चतुर पेख रहन नहीं ए ठाए छाड़ छाड़ सगली गई मूड़ तहां लपटाए। गुर प्रसाद सिमरत रह जाहू मस्तक भाग नानक आए सफलते जा को प्रिय है सुहाग। सलोक कोखे शास्त्र वेद सब आन ना कथतो कोई आद।

दास मारे दास दासन के पानी हारे सच्चा शार होत तेरे संता अपनी कृपा करो भगवंता शाड सयानप बहु चतराई संतन की मन टेक टकाई शार की पुत्री परम गत पाई नानक जाको संत सहाई सलोक जोर जुल्म फूलह कनो काची दे विकार हम बुद बंधन परे नानक नाम छुटार पौड़ी जज्जा जान हों कछ हुआ बांधे ज्यो नलनी भ्रम सुआ जो जान हो भगत ज्ञानी आज्ञा ठाकुर तिल नहीं मानी जो जान मैं कथनी करता व्यापारी बसधा ज्यो फिरता साध संग जे हों मैं मारी नानक तां को मिले मरारी सलोक चालांगे उठ नाम जप निसबासुर आराध कारहा तुझे ना व्यापई नानक मिटे उपाद पौड़ी चज्जा चूरन मिटे तुमारो राम नाम स्यों कर व्यवहारो चूरत चूरत साकत मुआ जां कह हृदय होत पाओ बिया चरह कसम्मल पाप तेरे मनुआ अमृत कथा संत संग सुनुआ चरह काम क्रोध दृष्टाई नानक जाको कृपा गुसाई सलोक यतन करो तुम अनक बिद रहन न पावो मीत जीवत रहो हर हर भजो हो नानक नाम प्रीत पवड़ी जन्या जानो दृढ़ सही बिन सजात एह हेत गणती गणो ना गण सको ऊठ सधारे केत न्यो पेखो सो बिनसतो कास्यो करिय संग ज्ञान होया बिद सही चित झूठो माया रंग ज्ञान तो सोई संत सोए प्रमते की चत भिन्न अंधकूप ते कढ़ो जेह हो वो सो प्रसन्न ज्ञान कै हाथ समरथ ते कारण करने जोग नानक ते उस्तत करो याहू कियो संयोग सलोक टूटे बंधन जन्म मरन साध सेव सुख पाए नानक मनो ना बिसरे गुण निद गोविंद राय पौड़ी टहल करहो तौ एक की जाते बिरथा ना कोय मन फन मुख ही है बसै जो चाहो सो होए टहल मैल ता को मिले जा को साध कृपाल साधु संगत तौ बसै जो आपन होहे दयाल तोहे ताहे बहु पवन बिन

जी रसिया, ठाकुरे अपने जो जन पाया, नानक वा का मन सीतलाया। श्लोक। दंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ पौड़ी। डड्डा डेरा एहो नहीं, जह डेरा तह जान, वा डेरा का संयम, गुर कै शब्द पछान। या डेरा को श्रम कर खाल, जाका तसु नहीं संग चाल, वा डेरा की सो मित जान, जाको दृष्ट पूर्ण भगवान। डेरा निश्चल सच साध संग पाया, नानक ते जन नह डुलाया। श्लोक। ताहन लागे धर्म राय, किन्ह न घाल्यो बंद, नानक उबर

अब कह परे साध जना सरनाए, दुख के फाहे काटिया नानक लिए समाए। सलोक जह साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत, ना हो ना तू नह छुटह निकट ना जाइयो दूत। पौड़ी नाना रण ते सीजी है आत्म जीतै कोवे, हौ मैं अनस्यो लर मरे सो सोभा दू होए। मणि मटाए जीवत मरे गुर पूरे अपदेश, मनुआ जीतै हर मिले तेहे सूर तन वेश। ना को जाने आपनो एक है टेक आधार, रैन दिनस सिमरत रह सो प्रभ पुरख अपार। रेण सगल या मन करै एऊ कर्म कमाए, हुक्मै बूझै सदा सुख नानक लिखिया पाए। सलोक तन मन तन अर्पो तिसै प्रभु मलावै मोहे, नानक भ्रम पहु काटियै चूकै जम की जोह। पौड़ी तत्ता तांस्यो प्रीत कर गुण निध गोबिंद राय, फल पावह मन बांछते तपत तुहारी जाय। त्रास मिटै जम पंथ की जास बसै मन नाव, गत पावह मत हुए परगास महली पावह ठाव। ताहू संग ना धन चलै ग्रह जोबन नहराज, संत संग सिमरत रहो।

तद्दा तावत तौ मिट संत संग होए बास तुरते कृपा करो आप तौ होए मनह परगास।

नानक सो अरादी है अंत न पारा वार पौड़ी पप्पा परमित पार न पाया पतत पावन अगम हर राया होत पनीत कोट अपराधू अमृत नाम जप है मिल साधु परपंच त्रोहो मोह मिटनाई जाको राखो आप गुसाई पातशाह सत्तर सिर सो नानक दूसर अवरना को सलोक फाहे काटे मिटे गवन फतह पही मन जीत नानक गुर ते थित पाई फिर न मिटे नित नीत पौड़ी फफा फिरत फिरत तू आया दुर्लभ देह कल युग मह पाया फिरया अवसर चरै ना हाथा नाम जप हो तो कटिया फासा फिर आवन जान ना होई एक जप हो जप सोई।

मत पूरी प्रधान ते गुरपूरे मन मंत जिह जान्यो प्रभ अपना नानक ते भगवंत पौड़ी मम्मा जाहू मर्म पछाना भेटत साध संग पतियाना दुख सुख अवाकै समत बिचारा नरक सुर्ग रहत अवतारा ताहू संग ताहू निरलेपा पूर्ण घट घट पुरख बसेखा वा रस मैं वाहू सुख पाया नानक लिप्त नहीं ते माया। सलोक यार मीत सुन साजन हो बिन हर शूतन नाही नानक तेह बंधन कटे गुर की चरणी पाहे पवड़ी जइया यतन करत बहु बिदिया एक नाम बिन कह लो सिदिया याहू जतन कर होत छटारा वाहू जतन साध संगारा या उबरण धारे सब को वाहे जपे बिन उबर ना हो याहू तरन तारन समराता राख लेहो निर्गुण नरनाथा मन बच क्रम जेहे आप जनाई नानक तेहे मत प्रगट।

जग रहो नानक नदरी पार पौड़ी रारा रेन होत सब जाकी ताज अवमान छुटै तेरी बाकी रण दरगह तो सीजै पाई जो गुरमुख राम नाम लिवलाई रहत रहत रह जाहे बिकारा गुर पूरे कै शब्द अपारा राते रंग नाम रस माते नानक हर गुर की नींदाते सलोक लालच झूठ बिखै ब्याद या देही महबास हर हर अमृत गुरमुख पिया नानक सूख निवास पौड़ी लल्ला लावो औखद जाहु दुख दर्द ते मिटै खनाहु नाम औखद जे हृदय हतावै ताहे रोग सुपने नहीं आवै हर औखद सब घट है पाई गुरपूरे बिन बिद ना बनाई गुरपूरे संयम कर दिया नानक तो फिर दुख ना थिया सलोक वासुदेव सर्वतर मैं ऊन ना कतहूं ठाए अंतर बाहर संग है नानक काए दुराए पौड़ी ववा वैर ना करिए काहू घट घट अंतर ब्रह्म समाहू वासुदेव जल थल मैं रविया गुर प्रसाद विरले ही गविया वैर विरोध मिटे ते मन ते हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते वर्ण चिहन सगल है ते रहता नानक हर हर गुरमुख जो कहता सलोक हौ हौ करत बेहानिया साकत मुग्ध अजान रड़क मोए ज्यो त्रिखावन नानक किरत कमान पौड़ी अड़ाड़ा लाड़ मिटै संग साधु कर्म तर्म तत नाम अराधु रूड़ो जेहे बसे दमाही वा की डाड़ मिटत बिन साही अड़ाड़ करत साकत गावारा जेहे ही है हम बुद बेकारा अड़ाड़ा गुरमुख अड़ाड़ मटाई निमख माही नानक समझाई सलोक साधु की मन ओट गहो उकत सियान पत्याग गुर दीखिया जेहे मन बसै नानक मस्तक भाग पौड़ी ससा शरण परे अबहारी शास्त्र सिमरत बेद पुकारी सोधत सोधत सोध बिचारा बिन हर भजन नहीं छुटकारा सास सास हम भूलन हारे तुम समरत अगणत अपारे शरण परे की राख दयाला नानक तुमरे बाल गोपाला सलोक खुदी मिटी तब सुख पाए

जो खिन मैं ऊने सुबर पराहु खरा निमा ना होत परानी हन दिन जापै प्रभ निर्वाणी भावै खसम ता वा सुख देता पार ब्रह्म ऐसो आगंता असंख खते खिन बख्शन हारा नानक साहेब सदा दयारा। सलोक सत कहो सुन मन मेरे सरन परहु हर राय उक्त सियानप सगल त्याग नानक लय समाए पौड़ी ससा सियानप छाड़ आना हिकमत हुक्म ना प्रभ पतियाना सहस भांत करह चतुराई।

जियो पिंड जिन सुख दिए ताहे ना जानत तत। लाहा माया कारणी दहंदिस ढूंढन जाए, देव महार दतार प्रभ निमख न मनह बसाए। लालच झूठ बकार मोह या संपै मन माहे, लंपट चोर निंदक महा तिन्हू संग बिहाय। तुद भावै ता बख्श लै है खोटे संग खरे, नानक पावै पार ब्रह्म पाहन नीर तरे। सलोक खात पीत खेलत हसत भरमे जन्म अनेक, भवजल ते काढो प्रभु नानक तेरी टेक। पौड़ी खेलत खेलत आयो अनक जोन दुख पाए, खेद मिटे साधु मिलत सतगुर बचन समाए। खिमा गही सच संचियो खायो अमृत नाम, खरी कृपा ठाकुर भई अनद सुख विश्राम। खेप नबाही बहुत लाभ कर आए पतवंत, खरा दलासा गुर दिया आए मिले भगवंत। आपन किया करह आप आगे पाछे आप, नानक सो सराही है जे घट घट रहिया ब्याप। सलोक आए प्रभ शरणागती कृपा निभ दयाल, एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल। पौड़ी अखर मह त्रे भवन प्रभ धारी, अखर कर कर वेद बिचारी। अखर शास्त्र सिमरत प्राणा, अखर नाद कथन वखियाना। अखर मुकत जुगत पै परमा, अखर कर्म किरत सुच धर्मा। दृष्टमान अखर है जेता नानक पार ब्रह्म निरलेपा। सलोक हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती, उर्ज रहे सब संग अनूप रूपावती। उस्तत कहन न जाए मुखों तोहारिया, मोही देख दर्स नानक बलिहारिया। पौड़ी हे अचुत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूर्ण हे सर्व मैं दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान जाकै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार, हे संत है कै सदा संग निधारा आधार।

0: माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन गुरुदेव बंधप सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश गुरुदेव मंत नरोधरा गुरुदेव शांत सतबुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुरुज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतत पवित्र करा गुरुदेव आदि जुगादि जुग जुग गुरुदेव मंत हर जप उधरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूढ़ पापी जित लग तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा इह सलोक आद अंत पढ़ना
1: गौड़ी सुखमनी।

पतवंत प्रभु को सिमरह से जन परवान, प्रभु को सिमरह से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरह से बेमोहताजे, प्रभु को सिमरह से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरह से सुखवासी, प्रभु को सिमरह सदा अविनाशी।

हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाय। हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौह कुंट जाते। हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन वह आप निरंकारा। कर किरपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। सलोक दीन दर्द दुख भंजना, कट कट नाथ अनाथ। शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी जह मात पिता सुत मीत न पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जह महाभयान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरे चलै। जह मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पाव सुख कनेरे। सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंधन परै, हर का नाम जपत निस्तरै। अनक माया रंग तेख ना बुझावै, हर का नाम जपत आघावै। जिह मार्ग इहो जात अकेला, तह हर नाम संग होत सहेला। ऐसा नाम मन सदा त्याई, नानक गुरमुख परम गत पाई। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तह पार पराही। अनक बिगन जह आए संघारै, हर का नाम।

जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जपे हर का भगत प्रगट नहीं छपे हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संग केते करे पार जात इहो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम।

संत का संग बड़ पागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है, नाम तुल कछ अवर ना होए, नानक।

पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना पुन दान होमे बहु रतना शरीर कटाए होमे कर राती वर्त नेम करे बहु भांति नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे महा उदासत पीसर पीवे अग्न माहे होमत परान कनक असव है विर भूम दान न्योली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमख निमख कर शरीर कटावे तो पी हों मैं मैल न जावे हर के नाम समसर कस नाही नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ दे छुट्टे गर्भ गमान ना।

जा का मन हुए सगल की रीना, हर हर नाम तिन घट घट कीना, मन अपने ते बुरा मिटाना, एक है सगल सृष्ट साज।

सगल कटाको देवहुदान कर्ण कराम नहार स्वामी सगल कटाके अंतर जामी अपनी गत मित जानो आपे आपन सांगे आप प्रभ राते तुमरी उस्तत तुमते होए नानक अवर ना जान सुकोए सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम मह उदम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी।

अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार शिंगारिया गर्भ अग्न मह जिन्ह उभारिया बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पर जोबन भोजन सुख सूद बिरद पया ऊपर साख सैन मुख अपयाउ बैठ कौ दैन एहो निर्गुण गुण कछु ना पूजै बख्श ले हो तो नानक सीजै जेह प्रसाद धारी ऊपर सुख बसह सुत परात मीत बनता संग हसह जेह प्रसाद पीवह शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमुला जेह प्रसाद भोगह सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना तिसह त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मूड अंध व्यापी नानक काढ ले हो प्रभ आपी आद अंत जो राख नहार तिस स्यों प्रीत ना करै गवार जाकी सेवा नव निध पावे।

दृढ़ कर्मा न मन है प्रतीत, काल न आवे मूले चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ बकार महालोभ त्रोह, याहू जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख ले हो आपन कर कर्म, तू ठाकुर तुम पह अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम

लपट रहो तह अंध अंधार बताऊ स्यो जो लावे ने ताको हाथ न आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन धन कुटुंब सुभा।

मिथ्या रथ हस्ती असव वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या ध्रोह मोह अभमान मिथ्या आपस ऊपर करत गमान अस्थिर भगत साध की सरन नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हसत पर दर्भ को हिरह मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रियर उपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बकार को ताव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बेकारा बिन बूझे मिथ्या सब भये सफल देहे नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आरजा।

तिसलै लड़ लाई थान थन अंतर रहे आसमाय सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरी सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद छत्ति अमृत खाहे तिस ठाकर को रख मन माहे जे प्रसाद सुगंधत तन लाव है तिस को सिमरत परम गत पाव है जे प्रसाद बस है सुख मंदर तिसे त्याहे सदा मन अंदर जेहे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरहो तिस रसना जेहे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जेहे प्रसाद पाठ पटंबर हंधावह तिसे त्याग कत अवर लुभावह।

मुखता को जस रसन बखाने ये प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याई केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगाह मान पावे नानक पात सेती।

ऐसा प्रभ त्याग अब रकत लाग हो, गुरु प्रसाद नानक मन जाग हो, जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस पाप को मूल।

कथा साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटे अभिमान साध कै संग प्रगटे सुज्ञान साध कै संग बुझे प्रभ नेरा साध संग सब होत नबेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन परानी नानक साध की शोभा प्रभ माहे सुमानी साध कै संग अगोचर मिले साध कै संग सदा पर फुले साध कै संग आवह बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग न कतहू धावे साध संग अस्थित मन पावे साध कै संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न।

साध क्या संग नाही हो ताप, साध क्या संग तजै सब आप, आपे जाने साध बुदाई, नानक साध प्रभु बने आई। साध क्या संग न कब हुतावे, साध क्या संग सदा सुख पावे, साध संग बस्त अगोचर लह, साधु कै संग अजर सह, साध क्या संग बसे थानी उच्च, साधु कै संग महल पहुंच, साध क्या संग दृढ़ है सब धर्म, साध क्या संग केवल पार ब्रह्म, साध क्या संग पाहि नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान, साध क्या संग सब कुल उधार है, साध संग साजन मीत।

तर सत्तर समान ब्रह्म ज्ञानी क्या नाही अब महान ब्रह्म ज्ञानी ऊचते ऊंचा मन अपने है सबते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन भये नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी कीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।

ब्रह्मज्ञानी हम बुद्ध त्यागत ब्रह्मज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्मज्ञानी कै घर सदा आनंद ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास।

बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को खोजह महेश्वर। नानक

निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार है, नानक ओह अपरस सगल निस्तार है, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस।

कार अष्टपदे कई कोट होए पुजारी कई कोट अचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन भ्रम है उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसो।

कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पात्र बिरख निपजाय, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसास, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जन, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण जीवे, कई कोट जख किनर पसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच, सब ते नेरे सब हूं ते दूर, नानक आप अलिपत रहया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई कोट बहु जोनी फिर है, कई कोट बैठते ही खाए, कई कोट काल है थक पाए, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किस प्रभ कह हाते, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ कौ खोजंते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिलियो प्रभ अविनाश, कई कोट मांग है सत संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खानी अरखंड, कई

आवे प्रभ भावे बिन सास्ते राखे प्रभ भावे ता हर गुण भाखे प्रभ भावे ता पतत उधारे आप करे आपन बीचारे दोहा श्रेय का आप स्वामी खेले बिगसे अंतर जामी।

त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गमन पाए विश्राम। नानक प्रभु कै सद कुर्बान, सलोक सुखी बसै मशकीनिया। आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी। जिसकै अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत सुवान। जो जाने मैं जो बनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत। आपस कहो कर्मवंत कहावे, जन्म मरै बहु जोन प्रमावै।

संसारी अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर अवतार, अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगाह कहो कैसे गवे, आपस कहो जो भला कहावे, तिसह पलाई निकट न आवे, सर्ग की रेन जाका मन होए, कहो नानक ताकी निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते कश होए, तब इसको सुख नाही कोए, जब एह जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता, जब तारे को बैरी मीत, तब लग निश्चल नाही चीत, जब लग मोह मगन संग माई,

अपार कौतक करे रंग अपार मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कहन ना जाए सत सत सत प्रभ स्वामी।

अष्टपदी संत कै दुख में आर जा कटै, संत कै दुखन जमते नहीं छुटै, संत कै दुखन सुख सब जाय, संत कै दुखन नरक मह पाय, संत कै दुखन मत हुए मलीन, संत कै दुखन शोभा ते हीन, संत के हथे को रखै ना कोय, संत कै दुखन थान भ्रष्ट होय, संत किरपाल किरपा जे करै, नानक संत संग निंदक भी तरै, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग ज्यों लवै।

नाही। नानक संत पावै ता ओए पी गत पाहे। संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिन टिकन ना पाई। संत का निंदक महा हत्यारा, संत का

भरमाइए संत का दुखी उजड़ पाइए संत का दुखी अंतर तेत होता जो सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किस नाहे आपन बीज आपे ही खाहे संत के दुखी को अवर ना राखन हार नानक संत भावे ता लए उभार संत का दुखी इयों बिन लाए ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजै

संत का दुखी सद मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जो तिस पावे सोई थिया। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी उठ

कर हर कर्म सर्वण हर कथा हर दरगाह नानकी उज्जन मथा बड़ भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करह विचार ते तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोलह हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछान इत उत की ओह सोजी जान नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्ह निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुजै किसकी जानो तृष्णा बुझै साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओह हर जन रहत अन दिन कीर्तन केवल बखियान गृहस्थ मैं सोही निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसह ना लागह दुख जिस को हर प्रभ मन चित आवे सो संत सहेला नहीं डुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक कहो किस ते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया।

ਬਿਰਥਾ ਜਾਨਨ ਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ

संग मिल जोत प्रगटावे, दिन संतन की बाँचो तूर, नानक की हर लोचा पूर, मन मूरख काहे बिन लाइए, पुरब लिखे का लिखिया पाइए।

तिरै संग लपट रहे हो रस लोभी पतंग। राम नाम जप हिरदे माहे नानक पत सेती घर जाहे। जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन घर पाया। ताज अभमान ले।

राज मह राज, जोग मह जोगी, तप मह तपीसर, ग्रस्त मह भोगी, त्याए त्याए भगत है सुख पाया, नानक किस पुरख का किने अंत ना पाया, जाकी लीला की मित नाहि, सगल देव हारे।

के पाई, सब काट तिसके सब तिसके ठाव, जप जप जीवै नानक हर नाम, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरियां सब भवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवन, कर कृपा जिसे अपने नाम लाए, नानक चौथे पद मह सो जन गत पाए, रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान,

मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसह बुझाए तिसह सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जां कै हृदय प्रवेश सत नित बूझै जे कोय नाम जपत तां की गत होय आप सत किया सब सत आपे जानै अपनी मित गत जिसकी सृष्ट सो करनै हार अवर ना बूझ करत बीचार करते की मित ना जानै किया नानक जोत सुभावै सो वर्तिया बिस्मन बिस्म भये बिस्माद जिन बूझिया तिसे आया स्वाद प्रभ कै रंग राच जन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे वे दाते दुख काटन हार जा कै संग तरै संसार जन का सेवक सो वड भागी।

अपने सेवक की आप पात राख ताकी गत मित कोए ना लाख। प्रभ के सेवक को ना पहुंचे, प्रभ के सेवक उचते उच्चे, जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया, नीकी कीरी मह कल राख, पसम करे लश्कर कोट लाख, जिसका शासन काटते आप, तां को राखत दे कर हाथ, मानस जतन करत बहु पांत, तिसके कर्तव बिरथे जात, मारे ना राखे अवर ना कोए, सर्व जिया का राखा सोए, काहे सोच करह रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख वडाणी, बारंग बार बार प्रभ जपिए, ई अमृत इह मन तन तृपिए, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किस अवर नाही।

नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम तिसकै संग सिख उधरै नानक हर गुण गाव अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै।

नाम सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाओ बिन सह पूर्ण होए आस भगत भाई आत्म परगास तित कर जाए बसै अबनासी।

प्राण आधार अनक अपावना छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करहु मन लाए मन बंछत नानक फल पाए संग न चालस तेरे तना तू क्या लपटाव है मूर्ख मना।

रहत रहत गत पावहु। सार कूत सत हर को नाव, सहज सुपाए नानक गुण गाव। गुण गावत त्रि उत्तर सुमैल, बिन सजाए हों मैं बिख फैल। होहे अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास हर नाम संभाल। चाड़ सियान पसगली मना, साध संग पावह सच धना।

आप एक भगवंत एको एक एक हरे आप पूर्ण पूर रहे हो कब व्याप अनक विस्थार एक ते पये एक अराध परासत गए मानता ने अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नानक एक जाता सलोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सरनाय नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रभदान कर कृपा देव हो हर नाम साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाखिया से जन त्रिपताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुपार परे प्रेम रस रंग उपजै चाहो साध कै संग परे सरनयान सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन लिवलाग बड़ भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेव की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन कौ प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख भ्रम गया इच्छ पुन्नी सरदा सब पूरी रव रहया सतसंग हजूरी जिसका साथन लिया मलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरै जे घर ना भानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन दिया सो क्यों बिसरै जे अगन मह राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरै जे

हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावहु, आप जपहु अवरहा नाम जपावहु। भगत भाई तरियै संसार, बिन भक्ति तन होसी चार। सर्व कल्याण सुख निध नाम, बूढ़त जात पाए विश्राम। सगल दुख का होवत नास,

दर्श सुख हुए, मन बिगसै साध चरण धोए, भगत जना कै मन तन रंग, बिरला को पावे संग, एक बस्त दीजै करमया

अष्टपदी जब अकार एहु कस ना दृष्टेता पाप पुन तब कहत एहुता जब धारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात जब इसका वर्ण चिहन ना जापत तब हरख सोग कहो किसे व्यापत जब आपने आप पार ब्रह्म तब मोह कहां किस होवत परम आपन खेल आप वर्तीजा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बांध मुक्त कहो किस कहो गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाय तब शिव सकत कहो कित ठाय जब आप है आप अपनी जोत धरे तब कवन नडार कवन कत डरे आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख अपने आसन तह जन्म मरण कहो कहां बनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत गोचर प्रभेका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपने आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा।

पति यारा, तह कौन कतह कौन सुनने हारा, बहो बेअंत पूछते उच्चा, नानक आपस को आपह पहुंचा, जह आप रचियो प्रपंच अकार, तेहो गुण मह कीनो विस्थार, पाप पुन कह भई।

नानक फल पावहु, हलत पलत दोए लेहो सवार, राम नाम अंतर उर धार, पूरे गुर की पूरी दीखिया, जिस मन बसै तिस साच परीखिया, मन तन नाम जपो निवलाई, दुख दर्द मन ते भउ जाए।

निरपौ जपै सगल भौ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटै अहंकार तिस जन को कोई

दृष्ट दर्शन पेठत उदरत श्रेष्ट चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसै सो होत निहाल ताकै निकट ना आवत काल अमर पए अमरा।

हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन परगास अष्टपदे संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिग्री एक स घट माहे।

न कछ करा, आप भला करतूत अतनी की, आपे जाने अपने जी की, आप साच धारी सब साच, ओत पोत अपन संगराच, ताकी गत मित कही ना जाए।

तिस सदा सुख हुए, आप मलाए नहीं प्रभ सोए। ओह तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुआउ, जन कै संग चित आवे नाउ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक।

हस्तपदी पूरे गुर का सुन अपदेश पार ब्रह्म निकट कर पीख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्याग हो तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगल सागर तरहो हर धन के परले हो भंडार नान

सुनत कमावत होत उधार, आपतरै लोकह निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जा कै मन लागा हर रंग, जय जय शब्द अनाहद वाजै, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै, प्रगटे गोपाल महात कै माथे, नानक कुदरे तिन कै साथे, सरन जोग सुन सरन ही आए, कर कृपा प्रभ आप मलाए।

समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग महता की गत होए गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाए साध सरन नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत जिस जन आवै।

भगत प्रवेश, लाभ मिले तो टाहिरै हर दरगाह पतवंत, राम नाम धन संचवै साच साहा भगवंत, उठत बैठत हर भजो साधु संग परीत, नानक दुरमत छुट गई।

नानक संत निर्मल भये जिन मन वसिया सोए पौड़ी तृतीया त्रै गुण बिखै फल कब उत्तम कब नीच नरक सुर्ग भ्रम तो घणो सदा संघार नीच हरख सोग सहसा संसार हौ हौ करत बिहाय जिन किए तिसह न जाननी चित वह।

दुख दार्द अपवित्रता नासह नाम आधार सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल मन निर्मल मुख उजला होए नानक साधरवा।

नानक प्रभ कै रंग पौड़ी पंचम पंच प्रधान ते जे जान्यो परपंच कुसुम बास बहुरंग कणो सब मिथ्या बलबंच नह जापै नह बूझियै नह कछ करत बिचार स्वाद मोह रस भेदियो अज्ञान रचियो संसार जन्म मरण बहु जोन भ्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार नह सिमरियो मन ना बिचार विवेक पाओ भगत भगवान संग माया लिपत नारंच नानक बिरले पाई है जो नारच है परपंच सलोक खट शास्त्र ऊचो कह अंत न पारावार भगत सो है गुण गावते नानक प्रभ कह द्वार पौड़ी खष्टम खट शास्त्र कह सिमरत कथ है अनेक उत्तम ऊचो पार ब्रह्म गुणयंत ना जान है सेख नारद मुन जन सुख ब्यास जस गावत गोविंद रस गीते हर स्यों बीते भगत रचे भगवंत मोह मान भ्रम बिनसेओ पाई सरन दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल लाभ मिले तोटा हिरे साध संग लिव लाए खाट खजाना गुण निदहरे नानक नाम त्याए सलोक संत मंडल हर जस कथ है बोल है सत सुभाए नानक मन संतोखी है एकस स्यों लिव लाए पौड़ी सप्तम संचो नाम धन टूट ना जाहे भंडार संत संगत मह पाई है अंत ना पारावार आप तजो हो गोविंद भजो हो सरन पर हो हर राय दुख हरे पव जल तरे मन चिंदे आप फल पाए आठ पहर मन हर जपै

अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निध सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल परगास सदा आनंद निर्मल रीत निरोधर मंत सगल धर्म पवित्र इशनान सब मह ऊच बसेख ज्ञान हर हर भजन पूरे गुर संग जप तरिय नानक ना

सारे नरक सुर्ग अवतार पौड़ी नौमी नवे सिदर अपवीत हर नाम ना जप है करत विपरीत पारत्रय रम है बक है साध निंद करना सुनही हर जस बिंद फिर है पर दर्भ उदर कहताई अग्न ना निवरे तृष्णा ना बुझाई हर सेवा बिन एह फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमह अभागे सलोक दस दिस खोजत मैं फिरयो जत देखूं तत सोए मन बस

मन मह चितवे पूर्ण भगवंत हस्त चरण संत टहल कमाइए नानक इहो संजम प्रभु कृपा पाइए।

पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम इंद्री बस कर सुनो हर नाम मन संतोख सर्ब जी दया इन बिद वर्त संपूर्ण भया धावत मन राख एक ठाई मन तन शुद्ध।

पतत उदारन मन बसै नानक छूटै नाम पौड़ी त्रौदशी तीन ताप संसार आवत जात नरक अवतार हर हर भजन न मन मह आयु सुख सागर प्रभ निमुख न गायु हरख सोग का देह कर बांधेउ दीर्घ रोग माया असाध्यु दिने विकार करत श्रम पायु नैनी नींद सुपन बरड़ायु हर बिसरत होवत एह हाल सरन नानक प्रभ पुरख दयाल। श्लोक चार कुंट

सगल भगवान नानक गुरमुख ब्रह्म पहचान। श्लोक आत्म जीता गुरमति गुण गाए गोविंद संत प्रसादी पै मिटे नानक बिनसी किंद। पौड़ी अमावस आत्म सुखी पही।

हूँ मैं छुट्टी, सिमरत हर को नाम, शरण गही पार ब्रह्म की, मिटिया आवागमन, आप तरिया कुटुंब स्यों, गुण गोविंद।

नानक सुख विश्राम सलोक पूर्ण कभो ना ढोलता पूरा किया प्रभ आप दिन दिन चढ़े सुआया नानक होत ना घाट पौड़ी पूर्णमा पूर्ण प्रवेक करण कारण समरथ जी जंत दयाल पुरख सभी ऊपर जा का हाथ गुण

सतगुर सुख वसन महला चौथा जिने अंदर प्रीत पिरम की ज्यो बोलन तिवें सोहन नानक हर आपे जानदा जिन लाई प्रीत पिरन पौड़ी तू करता आप भुल है भुलन विच नाही तू करहै सो सच्चे भला है गुर शब्द बुझाही तू करन कारण समरथ है दूजा को नाही तू साहिब अगम दयाल है सब तुद त्याही सब जी तेरे तू सब सदा तू सब छड़ाही। सलोक महला चौथा सुन साजन प्रेम संदेसरा अखी तार लगन गुर तुठै सजन मेलिया जन नानक सुख सुवन महला चौथा सतगुरु दाता दयाल है जिसनो दया सदा हुए सतगुर अंदरों निर्वैर है सब देखै ब्रह्म एक सोए निर्वैरा नाल जे वैर चलाएं दे तिन विचों किस्तिया ना कोई सतगुर सबना।

नानक करता सब किछ जानदा, जिदू किछ गुजा ना होए पौड़ी, जिसनो साहिब वड्डा करे सोई वड जानी, जिस साहिब पावै तिस बख्श लए, सो साहिब मन पाणी, जे को ओस दी रीस करे सो मूड अजानी, जिसनो सतगुर मेले सो गुण रवै गुण आख बखाणी, नानक सच्चा सच है बुझ सच समाणी, सलोक महला चौथा हर सत निरंजन अमर है, निर्भउ निरवैर निरंकार, जिन जपया एक मन एक चित, तिन लथा हूं मैं भार, जिन गुरमुख हर आराध्या

आप मलाई गुण की सांझ तिन स्यो करी सब अवगण शब्द जलाए अवगण विकण पल्लरी जिस दे सो सच्चे पाए बलिहारी गुरे अपने जिन अवगण मेट गुण प्रगट आए वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आलाए सलोक महला चौथा सतगुर विच वड्डी वड्याई जो आन दिन हर हर नाम ते आवे हर हर नाम रमत सुच संजम हर नामे ही त्रिपतावे हर नाम तान हर नाम देवान हर नामो रख करावे जो चेत लाए पूजे गुरमूरत सो मन इच्छे फल पावे जो निंदा करे सतगुर पूरे की तिस करता मार दिवावे फिर ओह वेला ओ सहत न आवे ओह अपना बीजिया आपे खावे नरक कोर मुहे काले खड़िया ज्यों तस्कर पाए गलावे फिर सतगुरु की सरनी पवे ता उबरे जहां हर हर नाम त्यावे हर बाता आ

सतगुरु की सेवा निर्मली, निर्मल जन होए सो सेवा काले, जिन अंदर कपट वकार झूठ, वे आपे सच्चै वख कड्डे जजमाले, सच्यार सिख बह सतगुर पास कालन, कूड़ियार ना लपनी कितै थाए पाले, जिन्ना सतगुर का आख्या सिखावे नाही, तिना मुँह पलेरे फिरै दईए गाले, जिन अंदर प्रीत नहीं हर केरी, से किचर कवे राइन मन मुख बेताले, सतगुर नो मिले सो अपना मन थाए रखे, ओ आप वरतै अपना।

रखै, हलत पलत सब तिसका गया, नित चहिया पाए झगू सुटे, झकदा झकदा झड़ पया, नित अपाव करै माया धन कारण, अगला धन भी उड गया, क्या ओह खट्टे क्या ओह खावै, जिस अंदर सहसा दुख पया, निर्वैर नाल जे वैर विचारी, सब पाप जगतै का तिन सिर लया, ओस अगे पिछे ढोई नाही, जिस अंदर निंदा मुहे अंब पया, जे सोने नो ओह हाथ पाए, आखेहू से तीर रल गया, जे गुर की सरनी फिर ओह आवे, ता पिछले औगण बख्श लया, जन नानक अन दिन नाम त्याया, हर सिमरत किल विक पाप गया, पौड़ी तू है सच्चा सच तू, सब तू ऊपर तू दीवान, जो तुद सच त्याईंदे, सच सेवन सच्चे तेरा मान, उन्ना अंदर सच मुख उजले, सच बोलन सच्चे तेरा तान, से भगत जिन्नी गुरमुख सा लाहिया,

से फिटे गुरु अंगद कीते कूड़ियारे गुरु तीजी पीढ़ी वेचारिया क्या हाथ एना वेचारे गुरु चौथी पीढ़ी टिकिया तिन निंदक दुष्ट सब तारे कोई पुत सिख सेवा करे सतगुरु की तिस कारज सब सवारे जो इच्छा सो फल पाए सी पुत धन लक्ष्मी खड़ मेले हर निस्तारे सब निधान सतगुरु विच जिस अंदर हर उर तारे सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिखत ललारे जन नानक मांगै धूड़ तिन जो गुरसिख मित प्यारे महला चौथा जिनको आप दे बड़ियाई जगत भी आपे आन तिनको पैरी पाए डरिए तां जे किश आप दू कीचै सब करता अपनी कला वधाए देखो भाई एहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का जिन अपने जोर सब आन निवाए अपने भगतां की रख करे हर स्वामी निंदकां दुष्टां के मुंह काले कराए सतगुर की वड्याई नित चढ़ै सवाई हर कीरत भगत नित आप कराए अन दिन नाम जपो गुर सिखो हर करता सतगुर करी वसाए सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो हर करता आप मुंह कढ़ाए गुरसिखा के मुंह उजले करे हर प्यारा गुर का जयकार संसार सबत कराए।

सच साहा हमारे सच पूंजी नाम दिरड़ाए प्रभ वणजारे थारे सच सेव है सच वणंज लह गुण कथ है निरारे सेवक भाए से जन मिले गुर शब्द सुवारे तू सच्चा साहब अलख है गुर शब्द लिखारे। सलोक महला चौथा जिस अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवी भला ओस दे आखे कोई ना लगे नित उजाड़ी पुकारे खला जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या ओस दा सब गया नित चुगली करे अनहोंदी पराई मुंह कढ ना सके।

0: है जिन हर वसिया मन माहे हर दर गहती मुखी उजली तिनको सब देखन जाहे जिन निरपव नाम त्याया तिनको पवो कोई नाहे हर उत्तम तिनी सरेविया जिनको तुर लिखिया आहे ते हर दरगह पैनाई है जिन हर बुठा मन माहे वे आप तरे सब कटंब सियो तिन पिछे सब जगत छडाहे जन नानक को हर मेल जन इन वेख वेख हम जिवाहे महला चौथा सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए
1: से जंत पई हरियावली।

जिन नाम अरादिया आप तरिया जिन्नी दिखा तिन्ना लए छाई हर सतगुर मेलो दया कर जन नानक धोए पाए पौड़ी सच सच्चा सतगुर अमर है जिस अंदर हर उर धारिया सच सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बेख मारिया जां दिखा पूरा सतगुरु ता अंदरों मन साधारिया बलिहारी गुरे अपने सदा सदा घुम वारिया गुरमुख जिता मनमुख हारिया सलोक महला चौथा कर किरपा सतगुर मेलियोन मुख गुरमुख नाम त्याए सी सो करे जे सतगुर भाव सी गुरपुरा करी वसाए सी जिने अंदर नाम निधान है तिनका पहु सब गवाए सी जिन रखन को हर आप होए होर केती चाक चाक जाए सी जन नानक नाम त्याए तू हर हलत पलत छोड़ाए सी महला चौथा गुर सिखा कै मन पावंदी गुर सतगुर की वडियाई हर राखो पैज सतगुरु की नित चढ़े सुआई गुर सतगुर कै मन पार ब्रह्म है पार ब्रह्म छड़ाई गुर सतगुर तान दी बाण हर तिन

मन वजी वधाई। सलोक महला चौथा। जिन्ना अंदर अमरथल से जान सूलिया, हर जान है से बिरहो। हौ तिन बिटो सद घुम घोलिया, हर मेलो सज्जन पुरख मेरा सिर तिन बिटो तल रोलिया। जो सिख गुर कार कमाव है हौ गुलम तिना का गोलिया, हर रंग चलूलै जो रते तिन भिन्नी हर रंग।

त्यों संतो निर्मल होए गुरमुख गुण वे हाजी है मल होमै कड्डै धोए सच मणंजह रंग स्यों सच सौदा होए तोटा मूल ना आवे लाहा हर भावै सोए नानक तिन सच मणंजिया जिन्ना धुर लिखिया प्राप्त होए पौड़ी सालाही सच सालाहना सच सच्चा पुरख निराली सच सेवी सच मन वसै सच सच्चा हर रखवाली।

उठा सतसंगत में हर पुस्तत है संग साधु मिले प्यारिया वे पुरख प्राणी धन ज्ञान है उपदेश कर है पर उपकारिया हर नाम दृढ़ाव है हर नाम सुनाव है हर नामे जग निस्तारिया गुर वेखण को सब कोई लोचै नवखंड जगत नमस्कारिया तुद आपे आप रखिया सतगुर विच गुर आपे तुद सवारिया तू आपे पूज है पूज कराव है सतगुर को सिरजन हारिया कोई विछड़ जाए सतगुरु पासो तिस काला मुह जम मारिया तिस अगै पिछे ढोई नाही गुरसिखी मन विचारिया सतगुरु नो मिले से ही जन उबरे जिन हिरदय नाम समारिया जन नानक के गुरसिख पुत हो हर जपे हो हर निस्तारिया महला तीजा हो मैं जगत भलाया दुरमत बिखिया बेकार सतगुरु मिले ता नदर होए मनमुख अंध अंधियार नानक आपे मेल लए जिसनो शब्द लाए प्यार पौड़ी सच सच्चे की सिफत सलाहा है सो करे जिस अंदर भिजे जिन्नी एक मन एक अराध्या तिनका कंध ना कबहू सिजे तन तन पुरख साबास है जिन सच रसना अमृत पिजे सच सच्चा जिन मन भामदा से मन सच्ची दरगाह लिजे तन तन जन्म सचियारिया मुख उज्जल सच करिजे सलोक महला चौथा साकत जाए निवह गुर आगे मन खोटे कूड़ कूड़ आरी जां गुर कह उठो मेरे भाई वह जाहे कुसर बगलारी गुर सिखा अंदर सतगुर वरतै चुन कड्डे लद्दो वारे कोई अगे पिछे बह मुंह सुपाइन ना रलनी खोटे आरे ओना दा भख सो ओथै नाही जाए कूड़ लहन भेडारे जे साकत नर खवाई है लोची है बिख कड्डे मुख उगलारे हर साकत सेती।

हे जन भगत है सच सच्चा जिनी आराध्या जिन गुरमुख खोज टंडोलिया तिन अंदरों ही सच लादिया सच साहेब सच जिनी सेविया काल कंटक मार तिनी साध्या सच सच्चा सब दू वड्डा है सच सेवन से सचर लादिया सच सच्चे नू साभास है सच सच्चा सेव फलादिया।

माया धारी अत अन्ना बोला, शब्द ना सुनी बहु रोल कचोला, गुरमुख जापै शब्द लिवलाए, हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए, जो तिस भावै सो करे कराया, नानक वजदा जंत वजाया। पौड़ी, तू करता सब किस जानदा, जो जिया अंदर वरतै, तू करता आप अगणत है, सब जग विच गणतै, सब कीता तेरा वरतदा, सब तेरी बणतै, तू घट घट एक वरतदा, सच साहिब चलतै, सतगुरु नु मिले सो हर मिले, नाही किसे परतै। श्लोक महला चौथा, एहो मनुआ दृढ़ कर रखी है, गुरमुख लाइय चित, क्यों सास ग्रास वसारी है, बहंदियां उठदियां नित, मरण जीवन की चिंता गई, एहो जियड़ा हर प्रभु वस, ज्यों पावै त्यों रख तू, जन नानक नाम बखश। महला तीजा, मनमुख अहंकारी महल ना जाने, खिन आगे खिन पीछे, सदा बलाइय महल ना आवे, क्यों कर दरगाह सीजे।

सफल है। जित सतगुर का मन मन्ने, जहां सतगुर का मन मन्या, ता पाप कसम्मल पन्ने। अपदेश जे दिता सतगुरु, सो सुनिया सिखी कन्ने। जिन सतगुर का पाणा मन्या, तिन चढ़ी चवगण वन्ने। एह चाल नराली गुरमुखी, गुर दीखिया सुन मन भिन्ने। सलोक महला तीजा, जिन गुर गोपिया अपना, तिस ठौर ना ठाओ। हलत पलत दोवें गए, दरगाह नाही थाओ। ओह वेला हाथ ना आवई, फिर सतगुर लगह पाए। सतगुर की गणतै कुसी है, दुखे दुख विहाय। सतगुर पुरख निरवै।

दुर्मत अहंकारी अंतर क्रोध जुए मातहारी कूड़ कसात ओह पाप कमावे क्या ओह सुने क्या आख सुनावे अन्ना बोला खोए उजड़ पाए मनमुख अंधा आवे जाए बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास उतै सच वर्तदा कूड़े आरा चित उदास ओए वल छल कर झत कड दे फिर जाए बह कूड़े आरा पास विच सच्चे कूड़ ना गड़े मन वेखो को निरजास कूड़े आर कूड़े आरी जाए रले सच्यार सिख बैठे सतगुर पास। सलोक महला पंजवां रहंदे खोंदे निंदक मारियन कर आपे आहर संत सहाई नानका वरतै सब जाहर महला पंजवां मुंडो भुले मुंड ते कितै पाए न हाथ।

आपणी आपे पछताणी अज राइल फरेसता तिन पीड़े कहानी। सलोक महला पंजवा सेवक सच्चे शाह के से परवान दूजा सेवन नानका से पच पच मोए अजान। महला पंजवा जो तुर लिखिया लेख प्रभ मेटना ना जाए राम नाम धन वखरो नानक सदा त्याए। पौड़ी पंजवा नारायण लया न ठूंगड़ा पैर किथे रखे करदा पाप अमित्या नित विसो चखे निंदा करदा पच मोआ विच देही पखे। सच्चे साहिब मारिया कौन किसनो रखे नानक तिस शरणागती जो पुरख अलखे। सलोक महला पंजवा नरक घोर बहु दुख घणे किरत घणा का थान तिन प्रभ मारे नानका होए होए मोए हराम। महला पंजवा अवखद सबे

उस दिता पूरै सतगुरु हर तन सच अखोट सब अंदेसे मिट गए जम का भौ छुट काम क्रोध बुरे आईयां।

संग जोट सलोक महला चौथा तपा न होवे अंदरों लोभी नित माया नू फिरे जज मालिया अगों दे सद्या सतै दी भिखिया लए नाही पिछों दे पछताए कै आण तपै पुत विच बहालिया पंच लोग सब हसन लगे।

कम कराई सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुहे जेवड़ तू वड वड्डे। जिस तू मिल है सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े। जिसनो तू आप मलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड़ गड़े। तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे। ज्यों पावे त्यों रख तू सच्चिया नानक मन आस तेरी वड वड्डे। सुद गौड़ी की वार महला पंजवां राय कमाल दी मौज दी की वार की धुन उपर।

ना लद्या नानक से साबास जिन्नी गुरमिल एक पछाणिया पौड़ी जिथै बैसन साध जन सो थान सुहंदा ओए सेवन समर्थ अपना बिनसै सब मंदा पतत उदारन पार ब्रह्म संत वेद कहंदा भगत वचल तेरा बिरद है जुग जुग वरतंदा नानक जाकै एक नाम मन तन पावंदा श्लोक महला पंजवा चिड़ी चौंकी पहु फुटी वगन बहुत तरंग अचरज रूप संतन रचे नानक नाम।

सुहावियां लगड़ियां अक कंठ बिरह विछोड़ा तनी सियो नानक सह सह गंठ महला पंजवां वसारेंदे मर गए मर पे ना सकै मूल वे मुख होए राम ते ज्यों तस्कर उपर सूल पौड़ी सुख निधान प्रभ एक है अबनासी सुनिया जल तल मैयल पूरिया घट घट हर भणिया ऊच नीच सब एक समान कीट हस्ती बनिया मीत सखा सुत बंद पो सब तिस दे जनिया तुस नानक देवै जिस नाम तिन हर रंग मणिया।

अठे पैर भौंदा फिरे खामन संधड़ै सूल दोजक पौंदा क्यों रहे जा चेतना होए रसूल पौड़ी तिसै सरे वो प्राणी हो जिसदा नाव पल्लै ऐसै रहो सहेलिया अगे नाल चलै घर बंद हो सच धर्म का गड थम अहलै ओट लै हो नारायण दीन दुनिया चलै नानक पकड़े चरण हर किस दरगाह मल्लै सलोक महला पंजवा जाचक मंगै दान दे प्यारिया देवन हार दा तार मैं नित चितारिया नखोट न जाई मूल अतुल भंडारिया नानक शब्द अपार तिन सब किश सारिया महला पंजवा सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक मुख उजल सदा सुखी नानक सिमरत एक पौड़ी उथे अमृत वंडी है सुखिया हर करने जम कै पंथ ना पाई है फिर नाही मरने जिसनो आया प्रेम रस तिसै ही जरने बाणी उचर है साध जन हम्यो चल है चरने पेख दर्शन नानक जीविया मन अंदर धरने सलोक महला पंजवा सतगुर पूरै सेवै दुखां का होए नाथ नानक नाम अराते है कारज आवै रात महला पंजवा जित सिमरत संकट छुट है आनंद मंगल बिचराम नानक जपिया सदा हर निमक न बिसरो नाम पौड़ी जिनकी शोभा क्या गणी जिनी हर हर लद्दा साधा सरणी जो पवै तो छुट्टै बद्दा गुण गावै अबनासी है जोन गर्भ ना दद्दा गुर भेटिया पार ब्रह्म हर पढ़ बुझ समद्धा नानक पाया सो धनी हर अगम अगद्दा सलोक महला पंजवा कामना करे ही अपना फिर है अवत्ता लोए नानक नाए वसारे सुख कनेहा हुए महला पंजवा बिखै कुड़तन सगल माहे जगत रही लपटाए नानक जन विचारिया मीठा हर का नाउ पौड़ी एह निशानी साध की जिस भेटत तरी जम कंकर नेड़ ना आवई फिर बहुड़ ना मरी भव सागर संसार बिख सो पार उतरी हर गुण गुम्फो मन माल हर सब मल पर हरी नानक प्रीतम मिल रहे पार ब्रह्म नर हरी सलोक महला पंजवा नानक आए से परवान है जिन हर गुठा चित डाली अल पलालिया कम ना आवह मित महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया पूर्ण

सब मंदिर उत्ते सलोक महला पंजवा पठंदियां बहंदियां सवंदियां सुख सोए नानक नाम सलाह है मन तन शीतल होए महला पंजवा लालच अटिया नित फिर स्वार्थ करे ना कोए जिस गुर भेटै नानका तिस मन वसिया सोए पौड़ी सबे वस्तु कौड़िया सच्चे नाओ मिठा साध आया तिन हर जना चक साधी डिठा पार ब्रह्म जिस लिखिया मन तिसै उठा एक निरंजन राव रहिया

एक जिस तो सदैव आप जित खादे मन तृप्ति है नानक साहिब दात पौड़ी लाहा जग में से खट है जिन हर धन रास दुतिया भाव न जाननी सच्चे दी आस निश्चल एक सरेविया होर सब विनाश पार ब्रह्म जिस विसरै तिस बिरथा सास कंठ लाए जन रखिया नानक बल जास। श्लोक महला पंजवा। पार ब्रह्म फरमाया मीह उठा सहज सुपाए अन तन बहुत उपजिया रिथमी रजी तिप्त अगहाय सदा सदा गुण उच्चरै दुख दालद गया बिलाय पूर्व लिखिया पाया मिलिया तिसै रजाय परमेश्वर जी वालिया नानक तिसै त्याय। महला पंजवा। जीवन पद मेरे

रंग रूप रस बाद के करह परानिया जिस पलाए आप तिस कल नहीं जानिया रंग रते निर्वाण सच्चा गावही नानक सरन द्वार जे तुद पावही पौड़ी जम्मन मरन ना तिनको जो हर लड़ लागे जीवत से परवान हुए हर कीर्तन जागे साध संग जिन पाया से वड भागे नाए विसरिया त्रिग जीवना टूटे कच धागे नानक धूड़ पनीत साध लख कोट पिरागे।

पौड़ी रसना उचरै हर श्रवणी सुने सो उदरै मित्ता हर जस लिखै लाए भावनी से हस्त पविता अठ सठ तीर्थ मजना सब पुन तिन किता संसार सागर ते उदरे बिख्या गढ़ जिता नानक लड़ ला।

तन फटन जिन्ना साहिं विसरै महला पंजवां प्रेतों की तुन देवता तिन करनै हारे सबे सिख उभारियन प्रभ काज सवारे निंदक पकड़ पछाड़ियन झूठे दरबारे नानक का प्रभ।

हर परवान सर्व त्याग भज केवल नाम गौड़ी कबीर जी नगन फिरत जो पाई जोग बन का मिर्ग मुक्त सब होग क्या नांगे क्या बांधे चाम जब नहीं चीन से आत्म राम रहाओ मूंड मुंडाए जो सिद्ध पाई मुक्ति भेद न गई आकाई बिंद राख जो तरिये पाई खुसरे क्यों ना परम गत पाई कहो कबीर सुनो नर पाई राम नाम बिन किन गत पाई गौड़ी कबीर जी।

इस परचाए परच रहो एस गौड़ी कबीर जी जो जन परमित परमन जाना बातन ही बैकुंठ समाना ना जाना बैकुंठ कहां ही जान जान सब कह तहां ही रहाओ कहन कहावन नह पतियई है तो मन माने जाते हो मैं जई है जब लग मन बैकुंठ की आस

जौ की जय जौ आपन जी जय। मैं ना मरू मरबो संसारा, अब मोहे मिलो है जे आवन हारा रहाओ। या देही परमल महकंदा, ता सुख बिसरे परमानंदा। कुटा एक पंच पनिहारी, टूटी लाज परे मत हारी। कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओह कुटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्म किए बहुरंगा। ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए रहाओ। जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, कबहू राजा छत्रपत कबहू पेखारी। साकत मर है संत सब जीव है।

ला पंजवा ऐसो अचरज देखियो कबीर दद कै भोलै बरोलै नीर रहाओ हरी अंगूरी गदहा चरै नित उठ हासै हिंगै मरै माता पैसा अमोहा जाए कुद कुद चरै रसातल पाए।

गौड़ी कबीर जी पंच पदे ज्यो जल छोड़ बाहर भयो मीना पूर्व जन्म हो तप काहीना अब कहो राम कवन गत मोरी तजी ले बनारस मत पई थोरी रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया मरती बार मगहर उठ आया बहुत बरस तप किया कांसी मरन भया मगहर की बासी कांसी मगहर

सुगंध बसाई, कहत कबीर चेतरे अंधा, सत राम झूठा सब धंधा, गौड़ी कबीर जी तिपदे चार तुके, जमते उल्ट भये है राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम, बैरी उल्ट भये है मीता, साकत उल्ट सुजन भये चीता, अब मोहे सर्ब कुशल कर मानिया, शांत भई जब गोविंद जानिया, रहाउ तन मह होती कोट अपाद, उल्ट भई सुख सहज समाद, आप पछानै आपै आप, रोग ना व्यापै तीनो ताप, अब मन उल्ट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ, कहो कबीर सुख सहज समावो, आप ना डरो ना अवर डरावो, गौड़ी कबीर जी पिंड मुआ जियो केहे घर जाता, शब्द अतीत अनाहद राता, जिन राम जानिया तिनह पछानिया, ज्यो गूंगे साकर मन मानिया, ऐसा ज्ञान कथै बनवारी, मन रे पवन दृढ़ सुख मन नारी, रहाओ सो गुर करहो जे बहुर ना करना, सो पद रवहो जे बहुर ना रवना, सो ध्यान धरहो जे बहुर ना धरना, ऐसे मरहो जे बहुर ना मरना, उल्टी गंगा जमन मलावो, बिन जल संगम मन महनावो, लोचा समसर एहो व्यवहारा, तत विचार क्या अवर बिचारा, आप तेज बाए पृथ्वी अकासा, ऐसी रहत रहो हर पासा, कह कबीर निरंजन त्यावो, तित घर जाओ जे बहुर ना आवो, गौड़ी कबीर जी तिप दे कंचन स्यो पाईए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल, अब मोहे राम अपना कर जानिया।

बैठे घर आया, कहो कबीर चंचल मत त्यागी, केवल राम भगत निज भागी। गौड़ी कबीर जी जेह मरना सब जगत तरासिया, सो मरना गुर शब्द परगासिया। अब कैसे मरूं मरन मन मानिया, मर मर जाते जिन राम ना जा।

गौड़ी कबीर जी कत नहीं ठौर मूल कत लाव खोजत तन मह ठौर ना पाव लागी होए सो जाने पीर राम भगत अनियाले तीर रहाओ एक भाए देखो सब नारी क्या जानो सह कौन प्यारी कहो कबीर जाके मस्तक भाग सब पर हर ताको मिले सुहाग गौड़ी कबीर जी जाके हरसा ठाकुर पहाई मुक्त

कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, क्या बस जो बेख दे महतारी। गौड़ी कबीर जी बिन सत सती होए कैसे नार, पंडित देखो हृदय विचार। प्रीत बिना कैसे बदे स्नेह, जब लग रात तब लग नहीं नेह। रहाओ साहन सत करे जी अपने, चोर मैये को मिले ना सुपने। तन मन तन ग्रह

चौड़ कत बोड़ी हर सिंह तोड़ बिख्या संग जोड़ी रहाओ तुर नर दादे लागी आग निकट नीर पास पीवस ना झाग चेतत चेतत निकस्यो नीर तो जल निर्मल कथत कबीर गौड़ी कबीर जी जेहे कुल पूतना ज्ञान बीचारी विधवा कसना भई महतारी जेहे नार राम भगत नह साधी जनमत कसना मुओ अपराधी रहाओ मुच मुच गर्भ गए कीन बचिया बुढ़ पुज रूप जीवे जग मजिया।

तिनकै सद बल हारै जाओ। सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो भाई मेरे मन भावै रहाओ। जेहे कट राम रहया भरपूर, तिनकी पग पंकज हम धूर।

मेरी पाठी, संच महारस तन भया काठी, वाको कही है सहज मतवारा, पीवत राम रस ज्ञान बीचारा रहाउ, सहज कलालन जो मिले आई, आनंद माते अन दिन जाई, चीनत चीत निरंजन लाया, कहो कबीर तो अनुभव पाया, गौरी कबीर जी मन का सुभाव मन व्यापी, मन है मार कमन सिद्ध थापी, कमन सो मन जो मन मारे, मन को मार कहो किस तारे रहाउ, मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत ना हुई।

बूज बूजनहार सुभागा रहाउ। सूरज चंद करह उजियारा, सब मह पसरिया ब्रह्म पसारा। कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुख रामै होए। गौड़ी कबीर जी बेर की पुत्री सिमरत पहाई, सांकल जेवरी लै है आई। आपन नगर आपते बांधिया, मोह कै फांद काल सर सांधिया। रहाउ कटी ना कटै टूट नह जाई, सास आपन होए जग को।

तुझह ले तारू खिचह ता प्रेम कै चावक मारू कहत कबीर भले असवारा वेद कतेव ते रह निरारा गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए तेह मुख देखत लू कट लाए एक दुख राम राय काटो मेरा अग्न दह अर गर्भ बसेरा रहाओ काया बेगूती बहु विद भांति को जारे को गढ़ ले माटी।

दूता राखै कवना, राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चित रहया समाए रहाउ, काको जरै काहे होए हान, नटवट खेल।

के पदे 35 राग गौड़ी ग्वार री अष्टपदी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख मांगत दुख आगे आवे सो सुख हमहु ना मांगिया पावे बिछिया अजहो सुरत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाउ इस सुख ते सेव ब्रह्म डराना सो सुख हमहु साच कर जाना सनकादक नारद मुन सिखा तिन भी तन में।

जाना, जिसका भ्रम गया तिन साच पछाना, इस मन को रूप ना रेखिया काई, हुक्मे होया हुक्म बूझ समाई, इस मन का कोई जाने पियो, एह मन लीन भय सुख देव, जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन को राव रहे कबीरा, गौड़ी ग्वार रे अहनस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध भय लिव लागे रहाओ, साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प तार तारे।

तपि रे जी न लाज लाज तो हे नाही हर तज कत काहू के जाही रहाओ जाको ठाकुर ऊंचा होई सो जन पर कर जात ना सोही सो साहिब रहया भरपूर सदा संग नाही हर दूर कवला चरण सरन है जाके कहो जन का नाही घर ताके सब को कह जास की बाता सो समरथ निज पत है दाता कह कबीर पूर्ण जग सोई जाके हृदय अवर ना हो।

आऊ, कौन को पुरख कौन की नारी, या तत लेहो शरीर बिचारी, कह कबीर ठग स्यो मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया, अब मोको भय राजा राम सहाई, जन्म मरण कट परम गत पाई रहाओ, साधु संगत दियो रलाई, पंच दूत ते लियो छड़ाई, अमृत नाम जपो जप रसना, मोल दास कर लीनो अपना, सतगुर की

माया तपत बुझिया अंगियार, मन संतोख नाम आधार, जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी, जत पेखो तत अंतर जामी, अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूर्व लिखत मिलिया मेरे भाई।

उठत बैठत सूतक लागे, सूतक परै रसोई, फासन की बिद सब को जाने, छूटन की एक कोई, कह कबीर राम हृदय विचारे, सूतक तिन्ह ना

धारी ऊपर दुर्मत भांडा फूटा आंधी पाछे जो जल बरख एह तेरा जन पीना कह कबीर मन भया परगासा उदय पान जब चीना गौड़ी चेती एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर जस सुन है ना हर गुण गाव है बातन ही असमान गराव है ऐसे लोगन स्यों क्या कही है जो प्रभ किए भगत ते बाहज तिन ते सदा डराने रही है रहाओ आप ना देहे चुरु भर पानी तेह निंद है जेह गंगा आनी बैठत उठत कुटलता चल है आप गए और नहू काल है छाड़ को चर्चा आन ना जान है ब्रह्मा हूं को कहो ना मान है आप गए और नहू खोव है आग लगाए मंदर में सोव है अवर्ण हस्त।

तिन तैसी झल देखी गौड़ी तह पावस सिंध धूप नहीं सहिया तह उत्पत परलो नाही जीवन मृत ना दुख सुख व्यापै सुन समाद दो तह नाही सहज की अकथ कथा है निरारी तुल नहीं चढ़ै जाए ना मकाती हल्की लगे ना भारी रहाउ अर्ध उर्द दो तह नाही रात दिन सतह नाही जल नहीं पवन पावक फुन नाही सतगुर तहां समाही अगम अगोचर रह निरंतर गुर कृपा ते लहिए कहो कबीर बल जाओ गुर अपने सत संगत मिल रही है गौड़ी पाप पुन दोए बैल बसाही पवन पूंजी परगासियो तृष्णा गुण भरी घट पीतर इन बिद टांड बसाहयो ऐसा नायक राम हमारा सगल संसार कियो बनजारा रहाउ काम क्रोध दोए भये जगाती मन तरंग बटवारा पंच तत् मिल दान नवेर है टांडा उतरियो पारा कहत कबीर सुनो रे संतो अब ऐसी बन आई घाटी चढ़त बैल एक थाका चलो गोन छिटकाई।

कहो डडिया बंद है धन खड़ी पाहू घर आए मुकलाऊ आए रहाऊ ओहो जे दिसै खूहड़ी कौन लाज वहारी लाज घड़ी स्यों टूट पड़ी उठ चली पनेहारी साहिब हुए दयाल कृपा करे अपना कार्य सवारे ता सुहागन जानिए गुर शब्द बीचारे किरत की बांधी सब फिरै

कबीरा गौड़ी जोगी कह है जोग पल मीठा अवरना दूजा भाई रुंडित मुंडित एक है शब्दी ए कह है सिद्ध पाई हर बिन भरम भलानी अंधा जाप है जाओ आप छुटकावन ते बांधे बहु

पिंड तह नाही, रचनहार तह नाही, जोड़नहारू सदा अतीता, एह कहिए किस माही। जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे, जब लग होए।

रहाउ। खांड ब्रह्मांड मह सिंगी मेरा बटुआ, सब जग पसमा धारी, ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है, छूटे हुए पसारी, मन पवन दोए तुम्बा करी है, जुग जुग सारद साजी, थिर पई तंती टूटस नाही, अनहद किंगरी बाजी, सुन मन मगन पए है पूरे, माया डोल ना लागी, कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं, खेल गयो बैरागी, पौड़ी, गाज नाव, गाज दास, गाज इक्कीस, पुरिया एक तनाई, साठ सूत नाव खंड बहत्तर, पाठ लगो अधिकाई, गई बनावन माहो, कर छोड़े जाए जला हो रहाओ, गजी ना मिनिये तोल ना तुलिये, पांचन सेर अढ़ाई, जो कर पांचन बेग ना पावे, चगर करे करहाई, दिन की बैठ खसम की बरकस,

सह नतर रही उरझाई छोड़ पसार इहां रहो बपुरी कहो कबीर समझाई गौड़ी एक जोत एका मिली किंबा हुए मोहोए जित घट नाम ना उपजै फूट मरे जन सोए सांवल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तो हे रहाओ साध मिले सिद्ध पाई है।

आई गौड़ी जेते जतन करत ते डूबे भाव सागर नहीं तारियो रे कर्म धर्म करते बहु संयम हम बुद्ध मन जारियो रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनो बिसारियो रे हीरा लाल अमोल जन्म है कौडी बदले हारियो।

संतन संगानी काष्ट लोहो उधारियो रे तावत जोन जन्म भ्रम थाके अब दुख कर हम हारियो रे कह कबीर गुर मिलत महारास प्रेम भगत निस्तारियो रे गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरारे चलत रचियो जगदीश काम सवाए गज बस परे मन बौरारे अंकस सहयो सीस बिखै बाच हर राच समझ मन बौरारे निरपै हुए ना हर भजे मन बौरारे गहयो ना राम जहाज रहाओ मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरारे लीनी हाथ पसार छूतन को सहसा परिया मन बौरारे नाचियो घर कर बार ज्यो नलनी सुअटा गहयो मन बौरारे माया एहो व्यवहार जैसा रंग कुसुंभ का मन बौरारे त्यों पसरियो पासार नामन को तीर्थ कर

कीर्तन हर की सेव गौड़ी अगन ना दह पवन नहीं मगन कस कर नीर ना आवे राम नाम धन कर संचौनी सो धन कत ही ना जावे हमरा धन माधो गोविंद धरनी धर यह सार धन कही है जो सुख प्रभ गोविंद की सेवा सो सुख राज ना लही है रहाओ इस धन कारण शिव सन कादिक खोजत भय उदासी मन मुकंद जिहवा नारायण परे ना जम की फासी निज धन ज्ञान भगत गुरदीनी तास समत मन लागा जलत अंब थंब मन धावत परम बंधन पहु भागा कह कबीर मदन के माते हृदय देख बिचारी तुम कर लाख कोट असव हसती हम कर एक मुरारी गौड़ी ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की लुभद ना त्याग दयो जो जो कर्म किए लालच स्यो ते फिर ग्रह परयो भगत बिन बिरथे जन्म गयो साध संगत भगवान भजन बिन कहीं ना सच रहे ओ रहाओ ज्यों उद्यान कुसम पर फुल्लत किन्ह ना कराओ लयो तैसे भ्रमत अनेक जोन मह फिर काल हयो या धन जोगन अर सुत दारा देखन कौ जो दयो तिन्ही माहे अटक जो उर्जे इंद्री परेर लयो औद अनल तन तिन को मंदर चहु दिस ठाट ठयो कह कबीर पै सागर तरन को मैं सतगुरु ओट लयो गौड़ी।

अन्न तन सब रस गोविंद तोरा रहाउ। इस माटी मह पवन समाया, झूठा परपंच जोर चलाया। किन्हू लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी। कह कबीर एक नीम उसारी, किन मह बिन सजाए अहंकारी। गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। दीन दयाल परोसे तेरे, सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाउ। जां तिस भावै तां हुक्म मनावै, इस बेड़े को पार लंघावै। गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चूक गई फिर आमन जानी। कहो कबीर भज सारग पानी, उरवार पार सब एको दानी। गौड़ी नौवा जोन छाड़ जो जग मह आयो, लागत पवन खसम बिसरायो। जियरा हर के गुना गाओ रहाओ, गर्भ जोन मह उर्द तप करता। तव जठर अगन मह रहता, लख चौरासी जोन भ्रम आयो। अब के छुटके ठौर ना ठायो, कहो कबीर भज सारग पानी। आवत दिसै जात ना जानी, गौड़ी पूर्वी सुर्ग बास ना बांच।

गुण गाइय जाते पाइय परम निदान रहाउ। क्या जप क्या तप संजमो क्या वर्त क्या स्नान जब लग जुगत ना जानी भाउ भगत भगवान। संपै देख ना हरखी विपत देख ना रोए ज्यों संपै त्यों विपत है विद निरत आसो होए। कह कबीर अब जानिया संतन हृदय मझार सेवक सो सेवा भले जिह घट बसै मरार। गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं खिंच ले जिन पार।

रची पीवत मर्दन लाग कह कबीर चित चेतिया राम सिमर बैराग राग गौड़ी पंथ निहारे कामनी लोचन भरी ले उस

जीवन पद कारण हर की भगत करी जय एक आधार नाम नारायण हरस नाराम रवीजय राग गौड़ी ग्यारवा आस पास घन तुरसी का बिरवा माज बना रस गाऊं रे वाका स्वरूप देख मोही गुआरन मोको छोड़ ना आऊ ना जाहू रे तो हे चरण मन लागो सारंग धर सो मिले जो बडभागो रहाउ बिंद्राबन मन हरन मनोहर कृष्ण चरावत गाऊ रे जा का ठाकुर तुही सारिंग धर मोहे कबीरा नाहू रे गौड़ी पूर्वी बारवा

साधु परम प्रगट हुए नाचो हो या माया के डांडे सूर के सन्मुख रन ते डरपे सती के सांचे पांडे डगमग छाड़ रे मन बौरा अब तो जरे मरे सिद्ध पाई है लीनो हाथ संदौरा रहाओ काम।

गौड़ी लाख चौरासी जी जोन मह प्रमत नंद बहु ठाकोरे भगत हेत अवतार लियो है भाग बडो बपरा कोरे तुम जो कहत हो नंद को नंदन नंद सो नंदन का कोरे तरन आकाश दसो दिस नाही तब इहो

नाम पदार्थ मन बसाइए हृदय शुद्ध जो निंदा हुए हमरे कपरे निंदक धोए निंदा करे सो हमरा मीत निंदक माहे हमारा चीत निंदक सो जो निंदा हो रे हमरा जीवन निंदक लो रे निंदा हमरी प्रेम प्यार निंदा हमरा करे उदार जानक वीर को निंदा सार निंदक डूबा हम उतरे पार राजा राम तू ऐसा निरपहु तरन तारन राम राया रहाओ जब हम होते तब तुम नाही अब तुम हो हम नाही अब हम तुम एक भये है एक देखत मन पति आही जब बुद्ध होती तब बल कैसा अब बुद्ध बल ना खटाई कह कबीर बुद्ध हर ली मेरी बुद्ध बदली सिद्ध पाई गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बांधी बस्त अनूप बीच पाई कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे करते बार ना लाई अब मन जागत रहो रे पाई गाफल होए कै जन्म गवायो चोर मुस्से घर जाई रहाओ पांच पहरुआ दर में रहते तिनका नहीं पतियारा चेत सुचेत चेत हुए रहो तव लै परगास उजारा नौ कर देख जो कामन भूली बस्त अनूप ना।

दास गुण गाव है तास बस है मोरे प्राणा ना रहाउ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मित गगन मंडल में त्या नाना। विखै रोग पै बंधन भागे मन निज कर सुख जा नाना। एक समत रत जान मान प्रभ दूसर मन है ना आनाना। चंदन बास पय मन बासन त्याग घटियो अबमानाना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर तास प्रभु है था नाना। तेहे बड भाग बसियो मन जाकै कर्म प्रधान मथा नाना। काट सकत शिव सहज परगासियो एकै एक समानाना। कह कबीर गुर भेट महासुख भ्रमत रहे मन मानाना।

बावन अक्षर लोक त्रय सब कछ इन ही माहे ए अखर खिर जाहिंगे ओए अखर इन मह नाहे जहां बोल तह अक्षर आवा जह अबोल तह मन ना रहावा बोल अबोल मद है सोई जस ओह है तस लख ना कोई लह लहू तो क्या कहूं कहूं ता को पकार बटक बीज में रब रहे हो जाको तीन लोक बिस्थार अलह लहमता भेद शै कश कश पायो भेद उल्ट भेद मन बेदेओ पायो अपंग अशेद तुरक तरीकत

सस बगास संपट नहीं आवा, हर जे तहां कुसम रस पावा, कह कहां कह का समझावा, खखा एह खोड़ मन आवा, खोड़े छाड़ ना दह दिस तावा, खसमह जान खिमा कर रह, तो हुए निखियो अखै।

गह गगन रहाई, कग्गा घट घट निमसै सोई, घट फूटे घट कबह ना होई, तां घट माहे घाट जो पावा, सो घट छाड़ अब घट कत पावा, नन्ना निग्रह स्नेहो कर निर्वारो संदेह, नाही देखना भाजी है परम सियानप एह, चचा रचत चित्र है भारी।

शाक है शत्रपत पासा, शाक के ना रहो शाद के ना आसा। रे मन मैं तो सिन सिन समझावा, ताहे शाद कत आप बंधावा।

न डर हुआ डर उर होए भागै टड्डा ढिग ढूंढ कातियाना ढूंढत ही तह गए पराना चढ़ समेर ढूंढ जब आवा जिह गड़ गड़ो सो गड़ मह पावा।

जाई। तन त्रि भवन मह रहो समाई, जो त्रि भवन तन माहे समावा, तो तत्त है तत मिलिया सच पावा। थथा अथाहा थाहा नहीं पावा, ओह अथाहा एहो थिर ना रहावा। थोड़े थल थानक आरंभ है, बिन ही थंब है मंदर थंब है। ददा देख जो बिन सनहारा,

बसेरा, हरदह उर्दह मांझ बसेरा, हरदह चाड उर्द जो आवा, तो अरदह उर्द मिलिया सुख पावा। नन्ना निस दिन निरखत जाई, निरखत नैन रही रतवाई। निरखत निरखत जब जाए पावा, तबले निरख है निरख मलावा। पप्पा अपार पार नहीं पावा, परम ज्योत स्यों परचो लावा। पांचो इंद्री निग्रह करी, पाप पुन दो निर्वरी। फफा बिन फूल फल हुई,

बिंद मलावा, बिंद है बिंद ना बिचरन पावा, बंदो होए बंदगी गह, बंद को होए बंद सुदल है, पब्बा भेद है भेद मलावा, अब पवो पान परोसो आवा, जो बाहर सो पीतर जानिया, पया भेद पूपत पहचानिया, मम्मा मूल गहया मन माने, मरमी हुए सो मन को जाने, मत कोई मन मिलता बिल मावे, मगन पयाते सो सच पावे, मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए, मन ही मन स्यों कह कबीरा, मन सा मिलया ना कोई, यह

जैया जो जानह तौ दुर्मत हन कर बस काया गाँव रण रूतो भाजे नहीं सूरो थारो नाव रारा रस निरस कर जानिया होए नरस सो रस पहचानिया ए रस छाडे ओह रस आवा ओह रस पिया ए रस नहीं भावा लल्ला ऐसे लिव मन लावे अनत न जाए परम सच पावे अर जो तहां प्रेम लिव लावे तो अलह लह लह चरण समावे ववा बार बार बिसन समहार

होए एहो अर ओहो जब मिले तब मिलत ना जाने कोय। सत्सा सो नीका कर सुध हो घट परचा की बात नरुद हो। घट परचै जो उपजै पाओ पूर रहया तह त्रे पवन राओ। खखा खोज परै जो कोई जो खोजै सो बहुर ना होई। खोज बूझ जो करै बिचारा तो भव जल तरत ना लावै बारा। सत्सा सो सह सेज सवारै सोई सही संदेह निवारै। अल्प सुख छाड परम सुख पावा तब एह त्री ओह कंत कहावा। हा हा होत हुए नहीं जाना जब ही हुए तब है मन माना। है तो सही लख जो कोई तब ओही ओह एहो ना होई। न्यो न्यो करत

एकादशी एक दिश तावे तो जोनी संकट बहुर ना आवे। शीतल निर्मल भया शरीरा दूर बतावत पाया नीरा। बारस बारह उगवे सूर एनस बाजे अनहद तूर। देखिया तिहूं लोक का पियो अचर्ज भया जीव ते सियो। तेरस तेरह अगंबखान अर्ध उर्द बिच सम पहचान। नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल समान। चौदस चौदह लोक मजार रोम रोम मह बसह मरार। सत संतोख का धरहु ध्यान कतनी।

प्रीत, पंच चोर की जाने रीत, कर छोड़े बाहर जिन जाए, नातर खरार सहराय राय, बुधवार बुध करे प्रगास, हृदय कमल मह हर का बास, गुर मिल दो एक सम धरै, उर्द पंकल।

माहि हैनस कसमल तो वह नाहि सो किरत सहारे सो एह ब्रत चढ़ै अन दिन आप आप स्यो लड़ै सुरखी पांचो राखै सबै तो दूजी दृष्ट ना पैसै कवै थावर थिर कर राखै सोई जोत दी वटी घट मह जोई बाहर भीतर भया प्रगास तब हुआ सगल कर्म का नास जब लग घट मह दूजी आन तौ लो महल न लाभै जान रमत राम।

योग की एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवा पाहन तारियले राम कहत जन कस ना तरे रहाउ तारी ले गन का बिन रूप कुबजा ब्याज अजामल तारियले करन बदक जन तेउ मुक्त भये हौ बाल बाल जिन राम कहे दासी सुत जन बिदर सुदामा उगर सैन कौराज दिए जापहीन तापहीन कोलहीन क्रमहीन नामे के स्वामी तेउ तरे राग गौड़ी रवदास जी के पदे गौड़ी गुआररी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटलता जन्म को भांति।

प्रसाद कूप भरियो जैसे दादरा कस देश बदेश ना बूझ ऐसे मेरा मन बिख्या बमोहया कश आरा पार ना सूझ सगल भवन के नायका एक छिन दर्श

आए बोरे मोसौ को न कह समझाई जाते आवा गमन बिलाई रहाव बहु विद धर्म निरूपी है करता दिसै सब लोए कवन कर्म ते छूटी है जेह साजे सब सिद्ध होए कर्म अकर्म विचारी है शंका सुन वेद पुराण संसा सद हृदय बसै कौन हिरै अभमान बाहर उदक पखारी है घट भीतर बेबिद बेकार शुद्ध कवन पर होए बो सोच कुंचर बिद व्यवहार रब प्रगास रजनी जथागत जानत सब संसार पार समानो तांबो छुए कनक होत नहीं बार परम परस गुर भेटी है पूर्व लिखत लेलाट हुन मन मन मन ही मिले छुटकत बजर कपाट भगत जुगत मत सत करी भ्रम बंधन काट बेकार सोई बस रस मन मिले गुण निर्गुण एक बेचार अनक जतन निग्रह।

पड़े रिथीसुर जुग जुग बेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मछ पयाले गावन तुदनो

वह तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावे है हर त्यावे है तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जियो तिन टूटी जम की पासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जियो तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी ते तन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप ताप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको।

जान होई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा महला पहला चौपदी कर दूजा सुन वड्डा आखे सब कोई

चित्त तरे जा तू करनहार करतार क्या मोहताजी क्या संसार आप अपाए आपे दे आपे दुर्मत मन है करे गुरु प्रसाद वसै मन आए दुख अनेरा विचों जाए साच प्यारा आप करे अवरी को साच ना दे जे किसै देव खाने नानक आगे पूछ ना ले आसा महला पहला ताल मदीरे घट के घाट दोलक दुनिया वाजह वाज नारद नाचै कल का पाओ जति सती कह राख पाओ नानक नाम विटो कुरबान अंधी दुनिया साहिब जान रहाओ।

मान ता किस दरगाह पावे मान। आसा महला पहला जेता शब्द सुत धुन तेती।

सर्व निरंतर रव रहिया नाल कटंब सात वरदाता ब्रह्मा पालन सिष्ट गया आग्या अंत न पायो ताका कंस छेद क्या बड़ा पया रतन उपाये तरे खीर मथिया होर पखलाए जे असी किया कह नानक छपै क्यों छपया एकी एकी वंड दिया आसा महला पहला कर्म करतूत बेल बिस्थारी राम नाम फल हुआ तिस रूप नारेख अनाहद वाजै शब्द निरंजन की।

याद जब लग हृदय न आवह याद तौ प्रवाह के ही क्या कीजै जन्म जन्म किस लीजी लीजै रहाउ मन की मत मता गल मता जो किस बोलिया सब खतो खता क्या मुँह लै कीचै अरदास पाप पुन दोए साखी पास जैसा तू करहे तैसा को होए तुझ बिन दूजा नाही कोए जे ही तू मत देहे ते ही को पावे तुद आपे पावे तिवें चलावे राग रतन परियां परवार तिस विच उपजै।

अंग हर जियो राखो अपनी सरनाई गुर प्रसादी हर रस पाया नाम पदार्थ नौ निद पाई रहाओ कर्म धर्म सच साचा नाओ ता कै सद बलिहारै जाओ जो हर राते से जन परवान तिनकी संगत परम निदान हर वार जिन पाया धन।

हमरी जात पात सच नाओ, कर्म धर्म संयम सत भाव, नानक बख्शे पूछ ना होए, दूजा मेटे एको सो होए। हासा महला पहला, एक आव है एक जाव है आई, एक हर राते रह समाई, एक धरन गगन में ठौर ना पाव है, से कर्म हीन हर नाम ना त्याव है, गुरपूरे ते गत मित पाई, एहो संसार बेख वत अत भौजल,

अठसक मज्जन हर रस रीद, गुरमुख निर्मल मैल ना लागे, नानक हिरदय नाम वड्डी तुर भागे, आसा महला पहला, निव निव पाई लगो गुरे अपने, आत्म राम निहारिया, करत बिचार हिरदय हर रविया, हिरदय देख बिचारिया, बोलो राम करे निस्तारा, गुर प्रसाद रतन हर लाभ है, मिटै अज्ञान हुए उजियारा।

बंधन नहीं टूटे है। विच हों मैं भरम ना जाई, सतगुर मिले ता हों मैं टूटे, ता को लेखे पाई। हर हर नाम भगत प्रिय प्रीतम, सुख सागर उर तारी, भगत वछल जग जीवन दाता, मत गुरमत हर निस्तारी। मन स्यों जूझ मरे प्रभ पाई, मनसा मन है समाई, नानक कृपा करी जग जीवन, सहज भाई लिवलाई। आसा महला पहला, किसको कहे सुनावे है किसको, किस समझावे है समझ रही, किसे पढ़ावे है पढ़ गुण बूझे, सतगुर शब्द संतोख रही। ऐसा गुरमत रमत शरीरा, हर भज मेरे मन गहर गंभीरा रहाउ। अनत तरंग भगत हर रंगा, अनदिन सूचे हर गुण संगा, मिथ्या जन्म साकत संसारा, राम भगत जन रह निरारा। सूची काया हर गुण गाया, आत्म चीन रह लिवलाया, आद अपार अप

ग्रास अहलस अंदले दीपक दे पौ जल डूबत चिंत करे कह सुनह जो मानह नाऊ हौ बलिहारे तां कह जाऊ नानक एक कह अरदास जियो पिंड सब तेरे पास जा तू देह जपी तेरा नाऊ दरगाह बैसन होवै थाऊ जा तुद भावै तां दुरमत जाए ज्ञान रतन मन वसै आए नदर करे ता सतगुर मिले प्रणवत नानक पवजल तरे आसा महला पहला पंचपदी दुध बिन तेन पंख बिन पंखी जल बिन उत्पुज काम नाही क्या सुल्तान सलाम विहूना अंधी कोठी तेरा नाम नाही की विसरह दुख बहुता लागे दुख लागे तू विसर नाही रहाऊ अखी अंध जीव रस नाही कन्नी पवन ना वाजे चरनी चले पजूता आगे बिन सेवा फल लागे अखर बिरख बाग भोए चोखी

सो प्रगट जाय। सच निशान है ठाक न पाय। पंडित पढ़े बखान है वेद। अंतर वसत न जान है भेद। गुरबिन सोजी बूझ ना हुए। साचा रव रहिया प्रभ सोय। क्या हौ आखां आख बखानी। तू आपे जान है सर्ब वडाणी। नानक एको दर दीवान। गुरमुख साच तहां गुदरान। आसा महला पहला। काची गागर देह दोहेली। उपजै बिरसै दुख पाई। इहो जग सागर दुत्तर क्यों तरियै। बिन हर गुर पार न पाई। तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे। तुझ बिन अवर ना कोई हरे। सर्बी रंगी रूपी तू है। जिस बख्शे जिस नदर करे रहाओ। सास बुरी घर वास ना देवै। फिर स्यों मिलन ना दे बुरी। सखी साजनी के हों चरण सरेमो। हर गुर कृपा ते नदर धरी। आप विचार मार मन देखिया। तुम सा मीत ना अवर कोई। ज्यों तू राख है तिव ही रहना। दुख सुख देव है कर है सोई। आसा मनसा धूब नासक। त्रिहो गुण आसम रास पई। तुरी अवस्था गुरमुख पाई है। संत सभा की ओट लही। ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप। जिस हर हिरदय अलख अपेवा। नानक राम नाम मन राता। गुरमत पाई सहज सेवा। आसा महला पहला पंच पदी।

सच नाम जा नव निध पाई, रोवै पूत ना कलपै माई। एत मोहे डूबा संसार, गुरमुख कोई उतरै पार। एत मोहे फिर जूनी पाहे, मोहे लागा जम पुर जाहे। गुर दीखिया ले जप तप कमाहे, ना मोह टूटै ना थाए पाहे। नदर करे ता एहो मोह जाए, नानक हर स्यो रह समाए। आसा महला पहला, आप करे सच अलख अपार। हों पापी तू बख्शन हार, तेरा भाणा सब किछ होवै। मन हथ कीचै अंत वगोवै रहाउ, मन मुख की मत कूड़ व्यापी। बिन हर सिमरन पाप संतापी, दुर्मत त्याग लाहा किछ लेवहो। जो उपजै सो अलख अपेवहो, ऐसा हमरा सखा सहाई।

भोगी दया दिगंबर देहे बिचारी आप मरे अवरा नह मारी एक तू होर वेश बहु तेरे नानक जाने चोज ना तेरे हासा महला पहला एक ना भरिया गुण कर तुआ मेरा सहु जागे हौ निस भर सोआ क्यों क्यों कंत प्यारी होवा सहु जागे हौ निस भर सोआ रहाऊ आस प्यासी सेजै आवा आगे।

पहला दो पदे तित सरवर डै पैले नवासा पानी पावक तिनह किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डुबियाले मन एक न चेत समूर मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरिया हासा महला पहला।

तेरा आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावे आत्म राव सच्चा नावन ता थी जा एनस लागे भाव एक लोकी होर समचरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीश का कबहून खूटस नाहे। आसा घर चौथा महला पहला।

धर कर महला हस्ती घोड़े छोड़ वलायत देश गए। पीर पेकांबर सालक सादिक छोड़ी दुनिया थाए पए। साध सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमण लिए। दुखिए दर्द वंद दर तेरे नाम रते दरवेश पए। खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत धोती कीनी। तू साहिब हो सांगी तेरा प्रणवै नानक जात कैसी। आसा घर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पीतर पंच गुप्त मन वासी थिर ना रह जैसे भवह उदासी। मन मेरा दयाल सेती थिर ना रह। लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाओ। फूल माला गल पहरूंगी हारू मिलेगा प्रीतम तब करूंगी शिंगारू। पंच सखी हम एक पतारू पेड़ लगी है जियड़ा चालन हारू। पंच सखी मिल रु

आया तिस क्या कहिए भाई, जो किस करना सो कर रहया, कीते क्या चतराई, तेरा हुक्म भला तुद भावे, नानक ताको मिले वडाई, साचे नाम समावे रहाव, किरत पया परवाना लिखिया, बहुड़ हुक्म ना होई, जैसा लिखिया तैसा पढ़िया, मेट ना सके कोई, जे को दरगाह बहुता बोले, नाव पवे बाजारी, सतरंज

सगली जोत हमारी समया नाना वर्ण अनेकं कहो नानक सुन पर थर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। आसा महला पहला गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर तावै कर करनी कस पाई पाठी भवन प्रेम का पोचा इतरस अम्यो चुआई बाबा मन मतवारू नाम रस पीवै सहज रंग रच रहिया ऐनस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गहया रहाउ पूरा साच प्याला सहजे तिसह पियाए जा कौ नदर करे अमृत का व्यापारी होवै क्या मद छूछै भाउ धरे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवै मुक्त बैकुंठ करे किया सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म ना हारे कहो नानक सुन पर थर जोगी खीवा अमृत धारे आसा महला पहला खुरासान खसमा ना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष न दे करता जम कर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने तै की दर्द न आया करता तू सबना का सोई जे सकता सकते कौ मारी ता मन रूस न होई रहाओ सकता सिंह मारे पै बगै

कोई। गुर कै दर्शन सदा सुख होए, गुर कै दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवै परवार साधार, नुगुरे को गत काई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाही, गुर कै शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुखता को लगै ना पीर, जम काल किस नेड़ ना आवै, नानक गुरमुख साच समावै, आसा महला तीजा, शब्द मुआ विचों आप गवाए, सतगुर सेवे तिल ना तमाए, निरपहु दाता सदा मन हुए, सच्ची बाणी पाए भाग कोई।

साचा शब्द समाहे सेवड़ भागी जिन नाम त्याया सदा गुण दाता मन वसाया जो गुण संग्रह तिन बलिहार है जाऊं दर साचे साचे गुण गाऊं आपे देवे सहज सुपाए नानक कीमत कहन ना जाए आसा महला तीजा सतगुर विच वड्डी वड्याई श्री वछुने मेल मलाई आपे मेले मेल मलाई अपनी कीमत आपे पाए हर की कीमत किन बिद होए हर अपरंपर अगम अगोचर गुर कै शब्द मिले जन कोए रहाओ गुरमुख कीमत जाने कोए विरले कर्म परापत होए ऊची बाणी ऊचा होए गुरमुख शब्द बखाने कोए विणनावे दुख दर्द शरीर सतगुर भेटे ता उतरे पीर बिन गुर भेटे दुख कमाए मनमुख बहुती मिले सजाए हर का नाम मीठा अतरस होए पीवत रह पियाए सोए गुर कृपा ते हर रस पाए नानक नाम रते गत पाए आसा महला तीजा मेरा प्रभ साचा गहर गंभीर सेवत ही सुख शांत शरीर शब्द तरे जन सहज सुपाए किनकै हम सद लागह पाए जो मन राते हर रंग लाए तिनका जन्म मरण दुख लाथा ते हर दरगाह मिले सुपाए रहाओ शब्द चाखै साचा साध पाए हर का नाम मन वसाए हर प्रभ सदा रहया भरपूर आपे नेड़ आपे दूर आखण आखै बकै सब कोई आपे बख्श मलाए सोए कहने कथन ना पाया जाए गुर प्रसाद वसे मन आए गुरमुख विचों आप गवाए हर रंग राते मोह चुकाए अत निर्मल गुर शब्द विचार नानक नाम सुवारन हार आसा महला तीजा दूजे पाए लगे दुख पाया बिन शब्द बिरता जन्म गवाया सतगुर सेवै सोजी।

सुख पाई, संत संगत मेल हर गुण गाय, नामे नाम करे विचार, आप तरह कुल उधरनहार, गुर की वाणी नाम वजाय, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत सर हर जल नाया, दुरमत महल सब दुरत गुआया, आसा महला तीजा, मनमुख मर है मर मरन बगाड़ है, दूजे भाए आत्म संघार है, मेरा मेरा कर कर विभूता, आत्मना चीन है पर मैं विच सूता, मर मुया शब्दे मर जाए, उस्तत निंदा गुर समझण आई, इस युग में है लाहा हर जप लै जाए, रहाउ नाम मिहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लो भाई, नाम मिहूनी दुख जले सबाई, सतगुर पूरे बूझ बुझाई, मन चंचल बहु चोटा खाए, इथों छुड़किया खौर ना पाए, गर्भ जोन विस्टा का वास, तिथ घर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति ज्योत मलाई, निर्मल बाणी निज घर वासा, नानक हो मैं मारी सदा उदासा, आसा महला तीजा, लाले अपनी जात गुआई।

सोग हरक दोए सम कर जाने गुर प्रसादी शब्द उधर रहाउ करनी कार तुरो फरमाई बिन शब्द को थाए ना पाई करनी कीर्त नाम वसाई आपे देवे ढिल ना पाई मन मुख भरम भुले संसार बिन राशी कूड़ा करे व्यापार बिन राशी वखर पल्ले ना पाई मन मुख भुला जन्म गुआ।

होए नानक नाम वडाई होए आसा महला तीजा मनमुख झूठो झूठ कमावै खसमै का महल कदे ना पावै दूजह लगी

पाखंड वकार रहाउ सदा सुहागण जो प्रभ पावे गुर शब्दी सिंगार बनावे सेज सुखाली अन दिन हर गावे मिल प्रीतम सदा सुख पावे सा सुहागण साची जिस साच प्यार अपना पिर राखे सदा उर धार नेड़े वेखे सदा हदूर।

नानक साच संभावै सोई। आसा महला तीजा भगत रत्ता जन सहज सुपहाई। गुर कै भै साचै साच समाई।

ताय अवर ना कोई गुरसागर पूरा पंडार उत्तम रतन जवाहर अपार गुर प्रसादी देवनहार नानक बख्शे बख्शनहार आसा महला तीजा गुर साहिर सतगुर सच सोए पूरे भाग गुर सेवा होए सो बूझै जिसे आप बुझाए गुर प्रसादी सेव कराए ज्ञान रतन सब सोजी होए गुर प्रसाद अज्ञान बनासै अन दिन जागै वेखै सच सोए रहाउ मोह गमान गुर शब्द जलाए।

अंतर ब्रह्म पहचान, गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार, गुर का शब्द सहज विचार, गुरमुख भगत जुगत सच सोए, पाखंड भगत निरत दुख होए, एहा भगत जन जीवत मरे, गुर प्रसादी भवजल तरे, गुर कै बचन भगत थाए पाए, हर जीव आप वसै मन आए, हर कृपा करे सतगुरु मलाए, निश्चल भगत हर सिउ चित लाए, भगत रते पिन सच्ची सोए, नानक नाम रते सुख होए। आसा घर अठवां काफी महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर कै भाणै सतगुर मिले सच सूझी होई, गुर प्रसादी मन वसै हर बूझै सोई, मैं सहो दाता एक है अवर नाही कोई, गुर कृपा ते मन वसै तां सदा सुख होई रहाउ, इस जुग में निरपो हर नाम है पाईऐ गुर विचार, बिन नामै जम कै वस है मन मुख अंध गुआर, हर कै भाणै जन सेवा करै बूझै सच सोई, हर कै भाणै सलाहियै भाणै मन्नै सुख होई, हर कै भाणै जन्म पदार्थ पाया मत उत्तम होई, नानक नाम सलाहे तू गुरमुख गत होई, आसा

बाजी हारी हमरे हर तड़ा जे हलत पलत सब सवारी कालयुग मह धड़े पंच चोर चगड़ाए काम क्रोध लोभ मोह अभमान वधाए जिसनो कृपा करे तिस सत संग मलाए हमरा हर धड़ा जिन एह धड़े सब गवाए मिथ्या दूजा पाओ धड़े बह पावे प्राया सिदर अटकले अपना अहंकार वधावे जैसा बीजे तैसा खावे जन नानक का हर धड़ा धर्म सब सृष्ट जिन आवे आसा महला चौथा हिरदय सुन सुन मन अमृत पाया।

माया मलतारी विण गुण जन्म मुए अहंकारी शरीर सरोवर गुण प्रगट किए नानक गुरमुख मत तत कढ़िए।

ओ गुरमुख परगासा, नाम बिना मैं धर नहीं काई, नाम रविया सब सास ग्रासा रहाओ, नामै सुरत सुनी मन पाई, जो नाम सुनावै सो मेरा मीत सखाई, नाम हीन गए मूड नंगा, पच पच मुए बिख देख पतंगा, आपे थापे थाप उथापे, नानक नाम देवै हर आपे, आसा महला चौथा, गुरमुख हर हर वेल वधाई, हल लागे हर रस करसाई, हर हर नाम जप अनत तरंगा, जप जप नाम गुरमत सालाही, मारिया काल जम कंकर भुयंगा रहाऊ, हर हर गुरमह भगत रखाई, गुर तुट

अंधा सबने फल कर्म किए दुख तंदा हर हर हर जस जपै वड भागी नानक गुरमत नाम लिव लागी।

गुरमत हर गुण बोलो जोगी एह मनुआ हर रंग भेन जोगी हर देहो मती उपदेश जुग जुग हर हर एको वरतै तिस आगे हम आदेश रहाउ गाव है राग भांत बहु बोल है एह मनुआ खेलै खेल जो वह कूप सिंचन को बसधा उठ बैल गए चर बेल काया नगर मह कर्म हर बोव हो हर जामे हरिया खेत मनुआ अस्थर बैल मन जोव हो हर सिंचो हो गुरमत जेत जोगी जंगम सिष्ट सब तुमरी जो देहो मती तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी।

खिन लागे हम तब लग समारो नाम। मेरा मन ऐसी भगत बन आई हम हर बिन खिन पल रह ना सको। जैसे जल बिन मीन मर जाई रहा कब को मेले पंच सत गायन। कब को राग धुन उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे। तब लग मेरा मन राम गुण गावे तब को नाचे पाम पसारे। कब को हाथ पसारे हाथ पाम पसारत बिलम तिल लागे। तब लग मेरा मन राम समारे कब को लोगन को पति आवे। लोक पतीने ना पत होए जन नानक हर हिरदय सद त्याव हो। ता जय जय करे सब कोई आसा महला चौथा। सत संगत मिली है हर साधु मिल संगत हर गुण गाए। ज्ञान रतन बलिया घट चानन अज्ञान अंधेरा जाए। हर जन नाच हो हर हर त्याई ऐसे संत मिल है मेरे भाई। हम जन के तो वह पाए रहाओ हर हर नाम जप हो मन मेरे। अन दिन हर निब लाए जो इच्छो हो सोई फल पाव हो। फिर भूख ना लागे आए आपे हर अपरंपर करता हर आपे बोल बुलाए। से संत भले तुद भावे है जिनकी पत पावे है थाए। नानक आख नाराजे हर गुण ज्यों आखे त्यों सुख पाए। भगत भंडार दिए हर अपने गुण गाहक वणज लै जाए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर अठवां के काफी महला चौथा। आया मन तुराहो हो मैं रोई है गुरमुख नाम त्याए अस्थिर हुई है। गुरपुरे साबास चलन जानिया लाहा नाम सो सार शब्द समाणिया। रहाओ पूर्व लिखे देहे से आए माया चलन अज के कल तुरो फुरमाया। बिरथा जन्म तिना जिनी नाम वसारिया जुए खेलन जग के इहो मन हारिया। जीवन मरण सुख होए जिन्ना गुर पाया नानक सच्चे सच सच समाया। आसा महला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम त्याया। गुर प्रसादी भुज सच समाया जिन तुर लिखिया लेख तिनी नाम कमाया। दर सच्चे सत्यार महल बुलाया रहाओ अंतर नाम निदान गुरमुख पाईऐ। अन दिन नाम त्याए हर गुण गाईऐ। अंतर वस्त अनेक मनमुख नहीं पाईऐ हम मैं गर्भ गर्भ आप खुआईऐ। नानक आपे आप खुआईऐ गुरमत मन परगास सच्चा पाईऐ। राग असावरी कर सोलवा के दो महला चौथा सोधंग। एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम अन दिन हर नाम कीर्तन करो। सतगुरु मोको हर नाम बताया हम हर बिन खिन पल रह ना सको। रहाउ हमरे सर्वन सिमरन हर कीर्तन हम हर बिन रह ना सको। हम एक खिन जैसे हंस सरवर बिन रह ना सके तैसे हर जन क्यों रह।

हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद नानक सिमरत हर हर भगवान असावरी महला चौथा माई मोरो प्रीतम राम बताव होरी माई हों हर बिन खिन पल रह ना सकूं जैसे कर हर बेल रिझाई रहाउ हमरा मन बैराग बिरकत भयो हर दर्शन मीत कैताई जैसे अल कमला बिन रह ना सकै तैसे मोहे हर बिन रहन ना जाई राख सरन जगदीश्वर प्यारी मोहे शरदा पूर हर गुसाई जन नानक कै मन

सोई फिर खाया, जिन सुख बैठा ली तिस भौ बहुत दिखाया। भाई मीत कुटुंब देख बिबादी, हम आई वसगत गुर प्रसादी। ऐसा देख बमोहित हुए, साधक सिद्ध सुर देव मनुखा। बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे रहाओ, एक फिर है उदासी।